ओम शांति। हम सभी इस धरा पर कितने भाग्यवान हैं कि सवेरे आँख खुलती है तो सामने चैतन्य रूप में भगवान दिखाई देते हैं, उनसे मिलन होता है, उनको हम गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको हम शुक्रिया करते हैं। हमारे भाग्य के तो क्या कहने, जिनके भाग्य की महिमा स्वयं भाग्य विधाता भी करते हैं। जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो, उनके भाग्य में भला क्या कमी रह सकेगी। तो आइए हम सारा दिन याद करें, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ऊपर हाथ उठाकर बाबा को कहें, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपने हमें महान भाग्य दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। याद रखें, कभी भी भूल से भी ये न कहें, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। नहीं, भगवान के बच्चे और दुखी, भगवान के बच्चे और गरीब, जिनको भगवान ने सर्व खजानों का मालिक बनाया है, वो भला निर्धन कहाँ। निर्धन तो वे हैं जिनके मन निर्धन हैं, निर्धन तो वे हैं जिनके पास खुशी का खजाना नहीं, जो शांति की तलाश में भटकते हैं, जिनके संबंधों में प्रेम नहीं है। हम तो सर्व खजानों से भरपूर हैं, तो सारा दिन अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते रहें। इस संगम युग पर संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, घर बैठे भगवान मिल गया, जीवन जीने का सत्य मार्ग मिल गया, मुक्ति और जीवन मुक्ति जो हमारा परम लक्ष्य था वो सहज ही हमें प्राप्त हो गया। जिसके लिए युगों से सब भटकते थे, जिसके लिए अनेक सन्यासी महामंडलेश्वर शंकराचार्य साधनाएं करते हैं, वो मार्ग हमें सहज प्राप्त हो गया, तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। भगवान ने स्वयं हमारी पालना की।

बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो अपने भाग्य को देखो, तुम भगवान की पालना में पल रहे हो, रोज सवेरे उठते ही तुमको बाप जगाते हैं, सवेरे जगाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। कोई बच्चा यदि दुखों में आंसू बहाए तो उसके आंसू पहुंचते हैं। फिर बाबा ने कहा, संसार वाले अगर ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है, कितना बड़ा भाग्य है। सोचो हम उसके कितने समीप आ गए जिसको केवल हम एक बार देखना चाहते थे, हमारा उस पर अधिकार हो गया जो सर्व खजानों का मालिक है। तो जो कुछ उसके पास है वो सब हमारा हो गया। अपने भाग्य को देख कर जरा मुस्कुराओ तो सही, सवेरे आंख खुलते ही हाथ ऊपर उठाकर कह देना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 5 बार मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिनको भगवान ने स्वयं अपने दिल में स्थान दिया है। तो आज सारा दिन अपने भाग्य को स्मृति में लाते हुए हम अपने 5 स्वरूपों को याद करेंगे, हर घंटे में 1-2 बार। हमारा अनादि स्वरूप, मैं चमकते हुए मणि, बिल्कुल अपना स्वरूप स्पष्ट देखेंगे और देखते ही रहेंगे। परम धाम में जब मैं अपने निराकार स्वरूप में हूँ तो भगवान के अति समीप हूँ, मेरा तेज सभी आत्माओं से बहुत ज्यादा है, मेरा आदि स्वरूप देव स्वरूप कंचन काया है। जब मैं देवता हूँ तो परम पूज्य हूँ, मेरी पवित्रता अति आकर्षक है, मेरा तेज बहुत ज्यादा है, इतना तेज कि मेरे स्वरूप का दर्शन करके ही भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। मैं वहाँ संपूर्ण पावन हूँ, पूज्य स्वरूप, मैं विघ्न विनाशक हूँ या विष्णु स्वरूप हूँ या इष्ट देवी हूँ अष्टभुजाधारी, अब मैं ब्राह्मण हूँ और अब मुझे बनना है फरिश्ता, अर्थात मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। अपने इन 5 स्वरूपों को हर घंटे में 2 बार याद करेंगे और स्मृति स्वरूप होकर समर्थ बनेंगे। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। पहले हमने जाना था कि रोकने अथवा विराम देने की कला क्या होती है, और ये कहा था कि निकृष्ट संकल्पों को रोक लगाना और व्यर्थ विचारों को ब्रेक देना एक बहुत बड़ी कला है, जिससे कि हम जीवन में कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक दुर्घटनाओं से बच जाते हैं और पवित्रता के मार्ग पर तीव्रगामी होते हैं। परंतु अब हम उससे कुछ भिन्न और कुछ समान कला के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम रोकना नहीं बल्कि संतुलित करना या नियंत्रण करना या अपने वश में करना कह सकते हैं। इन दोनों कलाओं के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे देना अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि इस अवसर पर बोलने से बहुत भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस प्रकार वाणी को पूरे रूप से रोकना एक कला है। कभी व्यक्ति के मन में जोश आता है तो वो बोलना ही नहीं बल्कि चिल्लाना चाहता है, जोर जोर से गरजना चाहता है। हमें विवेक प्राप्त हुआ है और वो संकल्पों को विराम देता है। यह है पहले वर्णन की हुई कला का उदाहरण। अब हम जिस कला का वर्णन कर रहे हैं उसमें वाणी को बिल्कुल बंद करने की बात नहीं है। इस कला का जानकार व्यक्ति बोलता तो है, परंतु शांतिपूर्वक, धैर्यवत, मिठास से, स्नेहपूर्वक, माप तोल कर मन को मोहित अथवा शांत करने वाले शब्द बोलता है। स्पष्ट है कि ये दूसरे प्रकार की कला है। स्वर को ज्यादा ऊंचा करने की बजाय धीमा करना, अधिक बोलने और न बोलने की बजाय कम बोलना, अपनी जबान को काबू में रखकर भावावेश की बजाय अनुशासनबद्ध होकर बोलना, अनाप शनाप बोलने की बजाय मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, अभद्रता, अनीति, उश्रृंखलता, उद्दंडता, अपमानकारी शब्दों की बजाय सज्जनता, शिष्टता, कुलीनता और औचित्य का ध्यान रखकर बोलना, ये अपने प्रकार की दूसरी कला है। इसे ही हम आत्मनियंत्रण अथवा स्वशासन कहते हैं। वाणी और कर्मों का ये नियंत्रण तभी संभव है जब पहले संकल्पों पर नियंत्रण हो। यदि संकल्पों पर नियंत्रण नहीं है, हम अपने विचारों को अपने वश में नहीं रख पाते हैं, तो कोई व्यक्ति जोर जोर से ना बोलते हुए भी हाथों से थप्पड़ मार भी देते हैं, वह शरीर की भाषा में भी किसी ऐसे हाव भाव को प्रकट कर देते हैं जिससे कि उसके मन की चंचलता अथवा उद्दंडता का परिचय मिले या उद्विग्नता का भाव प्रकट हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति मन की गहराइयों में उठने वाले तीर, तलवार, भाले, नेज, तोप, बंदूक या हैंड ग्रेनेड जैसे संकल्पों को भी रोक कर उनके बजाय मधुर वाणी का राग चला दे, मनमोहक शब्दों को प्रयोग कर दे, और यदि ऐसा नहीं हो तो कम से कम भाषा और भाव दोनों को ऐसे स्तर पर रखे कि उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव न हो, जिससे सुनने वाले को हिचकोले।

0: हाय, मैं हूँ यूवी सिंगर, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वसदार सिवा विच तू ही मेरे टोलना वे।

यदि व्यक्ति को नियंत्रण करने की कला का अभ्यास नहीं होगा तो वो नियंत्रण के अभाव के कारण कुछ ऐसे बातें कह और कर बैठेगा कि जिससे उसे पछतावा हो और फिर उसके परिणामों को ही समेटने में लगा रहेगा। अपने किए गए कर्मों और बोले गए वचनों से पैदा हुई समस्याओं को निपटाने में ही उसकी घड़ियां बीतती जाएंगी। इसमें प्रवीण होने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो 16 प्रकार के प्रसिद्ध संतुलन हैं, उनको हम सीखें और उनका अभ्यास करें। उन 16 प्रकार के संतुलनों को जाने बिना किसी न किसी प्रकार की अति होती ही रहेगी। 16 प्रकार के संतुलन कुछ इस प्रकार है, प्रेम और नेम यानी कि लव और लॉ का संतुलन, बालक और मालिकपन के भाव का संतुलन, बिजी और इजी का संतुलन, मुड़ने या बदलने की योग्यता और दृढ़ रहने और डटे रहने का संतुलन, जिम्मेवारी के एहसास और सहज एवं हल्केपन के एहसास का संतुलन अथवा कर्मठता एवं न्यारेपन का संतुलन, बोलने और चुप रहने का संतुलन, अंतर्मुखता और बाह्य मुखता का संतुलन, भौतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों का संतुलन, औपचारिकता और अनौपचारिकता का संतुलन, न्यारेपन और प्यारेपन का संतुलन, खुशी और गंभीरता का संतुलन, सतर्कता और विज्ञानता का संतुलन, साक्षीपन और साथीपन का संतुलन, नम्रता और स्वमान का संतुलन, प्रसन्नता और सावधानी का संतुलन, झुकने और झुकाने का संतुलन। तो अगर ये सारे प्रकार के संतुलन अपने जीवन में हम बना लें, जितना हम इनको बैलेंस में रखेंगे उतना ही हम सब की दुआओं के यानी कि ब्लेसिंग के पात्र बनते जाएंगे।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा अनदर 5 रुपीज। मामा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल बट इन डेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर...

नियंत्रण करने का दूसरा एक स्वरूप है हल्का करना अथवा भारी करना या घटाना या बढ़ाना। किसी बात को लेकर बहुत गंभीर समस्या मान लेना या किसी गंभीर समस्या को भी एक हल्की बात समझना, ये दो दृष्टिकोण होते हैं। परंतु इस प्रसंग में नियंत्रण एवं संतुलन का ये भाव है कि न किसी बात को इतना भयानक समझना कि नींद भी न आए और हाथ पांव भी काम न कर सकें, और न उसे इतना कम महत्व देना कि हमारी हानि हो जाए अथवा कोई दुर्घटना हो जाए, बल्कि उसकी गंभीरता और हल्केपन का संतुलन करना ही ठीक है। अगर कोई कागजी शेर को जीता जागता शेर मानकर या राय के पहाड़ को पहाड़ मानकर घबरा जाए तो वो भी गलत है। और यदि घर में किसी एक छोटे दीपक की अग्नि या मोमबत्ती को बिस्तरों के पास पड़ा देखकर लापरवाही करे तो वो भी गलत है। किसी समस्या को देखकर बहुत चिंतित हो उठना भी ठीक नहीं, और किसी छोटी सी बात को इतना महत्व दे देना कि जिससे माथा भारी हो जाए, उसमें भी हानि है। इन दोनों दृष्टिकोणों में संतुलन स्थापित करना, मन में उठने वाले इन दो भावों को सामंजस्य देकर उन्हें नियंत्रित रखना, अर्थात पूरी मेहनत भी करना और चिंता मुक्त भी रहना, ये एक बड़ी कला है। मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं और समस्याएं तो आती हैं, और यदि वो उनसे घबरा उठे और उसके हाथ पांव शिथिल हो जाएं, तब भी उसे जीवन कला से अनभिज्ञ माना जाएगा। और यदि वो छोटी सी बात लेकर रात भर चिंता से करवट बदलता रहे तो भी उसे कलाहीन माना जाएगा। जीवन में सफल वे लोग होते हैं जो न अपनी छाती पर अथवा दिमाग में चिंताओं का बोझ लिए रहते हैं, बल्कि संजीवनी से दोनों दृष्टिकोणों अथवा भावों का संतुलन करते हुए वे जमकर काम भी करते हैं, चैन से सोते भी हैं और निश्चिंत होकर भोजन भी करते हैं, और फिर ताजा दम होकर काम भी करते हैं और खुश भी रहते हैं। वे न अपनी खुशी को कम होने देते हैं, न काम में कमी होने देते हैं, बल्कि संतुलन से चलते हैं।

0: रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मनुष्य ने अपने मन में बहुत से गलत बातों को धारण किया हुआ है। उसने बुरी आदतों को ऐसा संग्रह किया हुआ है जैसे कि वो कोई अनमोल निधि हो। पुराने संस्कार जो कबाड़े से भी खराब हैं, उनका भी उसने संचय किया हुआ है। वो न उन्हें छोड़ता है न स्वयं उनसे छूटता है। कितने ही व्यसन हैं जिनका मनुष्य त्याग नहीं करता, हालांकि इन व्यसनों से उसका अपना ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, धन का अपव्यय होता है और दिनों दिन वो व्यसन उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। वे उससे ऐसी लपेट में ले लेते हैं कि फिर उनसे छूटना ही मुश्किल होता है। तो आज हम जानेंगे कि छोड़ना अथवा त्याग करना, इस कला को कैसे हम अपने जीवन में उतारें जिससे कि हम इन सब बुराइयों से छूट सकें। वास्तव में काम क्रोध आदि विकारों का त्याग करना ही पवित्र बनने की कला है, अथवा यूं कहें कि जिन आदतों को हमने पकड़ रखा है उनको छोड़ना ही परिवर्तन की कला है। इसके बिना व्यक्ति महान नहीं बन सकता, वो परम पवित्र परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता, वो योग के आनंद से सराबोर नहीं हो सकता और जीवन मुक्ति के उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकता, स्वर्ग का सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अतः ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला है, छोड़ना अथवा त्यागना। इसके बिना न दिव्य गुण धारण हो सकते हैं, न सफलता पूर्वक सेवा हो सकती है और न ही ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनुष्य की बुद्धि में पूर्ण प्रकाश हो सकता है। मनुष्य के पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधाएं तो उसके गलत विश्वास अथवा उसकी विवेक विरुद्ध आस्थाएं हैं। जब तक उसकी चेतना में गलत लक्ष्य और गलत सिद्धांत भरे रहते हैं, तब तक उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। अतः जीवन पद्धति में समूल परिवर्तन लाने के लिए पुरानी मान्यताओं का त्याग जरूरी है। ऐसी पुरानी मान्यताओं जिनसे कि जीवन में गिरावट आई है, उनको छोड़ना ही आध्यात्मिक अनुभवों की ओर पहला कदम है। उनको त्यागने के बाद ही देह अभिमान और विकारों का त्याग संभव होता है। उस त्याग से घबराना या उन बुराइयों को छोड़ने में बहाना बनाना गोया स्वयं को ही धोखे में रखना है। जो व्यक्ति जितना जल्दी और सहज रूप से बुराइयों को छोड़ने में सक्षम होता है, उतना ही वो त्याग की कला में निपुण होता है, और जो उस कला में निपुण होता है वो उतना जल्दी ही अपनी बुराइयों से छुटकारा पाकर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मनुष्य इच्छाओं, तृष्णाओं, मनोविकारों और देह अभिमान का त्याग तभी करता है जब उसमें वैराग्य की भावना जागृत होती है। उसमें वैराग्य तभी आता है जब वो इनसे होने वाली हानि को समझता है और सांसारिक पदार्थों की नश्वरता, क्षणभंगुरता, अस्थिरता आदि को भली भांति समझ जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे कि जिससे उसके मन से पुरानी मान्यताएं मिटकर नई मान्यताओं को स्थान दें और सांसारिक पदार्थों से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाए और इच्छाएं और तृष्णाएं शांत हो जाएं, उसका देह अभिमान क्षीण होते होते मिट जाए। इस प्रकार उसमें बुराइयों को छोड़ने या त्यागने की कला विकसित होती है। कहने का भाव यही है कि जितना हम अपने में छिपी हुई बुराइयों को, बुरी आदतों को, बुरे संस्कारों को छोड़ना या त्याग करना सीख जाएंगे, उतना ही हम अपनी उन्नति कर पाएंगे, अपने में अच्छी बातें धारण कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदारी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की मंगल कामना हर कोई करते आए हैं, हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं भी करते आए हैं। और तो और, भारतीय संस्कृति में हम ये देखते हैं कि हम अपने आरोग्य के लिए एक अलग से देवता भी देखते हैं। कहीं हम वेदों के समय में अश्विनी कुमारों की बात करते हैं तो फिर बाद की कथा परंपराओं में हम आरोग्य के देवता के रूप में भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं। ऐसे में जब आरोग्य की बात कही जाती है तो ये कोई नई चीज नहीं है कि व्यक्ति आरोग्य की कामना करते आ रहा है, मगर आरोग्य की कामना करते हुए भी समय समय पर हम अपने आरोग्य के क्षेत्र में बदलाव देखते आ रहे हैं। आज समय बीतते बीतते हम ये मानते आए हैं कि पहले जो बीमारियां नहीं थी, आज वो बीमारियां बहुतायत में होती जा रही हैं, या ऐसी बीमारियां जिससे लोग पहले कम बीमार होते थे, आज अधिक से अधिक लोग उन बीमारियों के ग्रास में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करने की जरूरत है या सिर्फ प्रार्थनाओं से काम चलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी ही उन्नतियां होती आई हैं, नई नई खोजें नई नई चीजों के बारे में हमें ज्ञान बढ़ाती हुई आ रही हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े के ऐसे एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में हमें मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो हम इस बात को समझें कि हम प्राचीन काल से स्वास्थ्य की प्रार्थना करते आए हैं डॉक्टर साहब, और सिर्फ प्रार्थनाओं से काम नहीं होता, ये भी हमने चीज समझी है कि हमें भी कुछ चीजों को करने की जरूरत है, और इसी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में कई उन्नतियां होती हुई हम देखते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे साथ ही साथ जितने चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों की बीमारियां भी बदलती जा रही हैं, या यूं कहें कि ज्यादा संख्या में लोग बीमार भी होते हुए जा रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों में पूरे देश में हम देखते हैं कि डायबिटीज की मरीज तो ऐसे आम जनता के रूप में कहते हैं, हाँ इनको तो डायबिटीज है, ये तो स्वाभाविक बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप इस स्वास्थ्य के बदलते परिवेश पर क्या कहते हैं?
1: श्री भैया, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि आपने कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना निश्चित रूप से कठिन समय में लोगों की मदद करती है, वो मानसिक शांति देती है, सकारात्मकता देती है और शक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई उसको बीमारी ग्रसित करती है और उसको एकाएक लगता है कि उसका कठिन समय शुरू हो गया है, अगर आपको ये भी मुझे बोलने में कोई भी परहेज नहीं होगा कि कुछ लोग जो बहुत सीरियस होते हैं या जो बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं, वो तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं अचेत अवस्था में, उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत कठिन समय होता है और वो हर तरफ भगवान को याद करते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ भी हैं जो लोगों की चिरायु के लिए कराए जाते हैं, एवं या जो लोगों को बहुत बीमार होते हैं उनके लिए लोग ये पूजा पाठ करा कहते ना, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है तब हम भगवान की शरण में आते हैं। मैंने माउंट आबू में डॉक्टर्स का कॉन्क्लेव अटेंड किया है, वहां लोगों ने अपने साक्षात्कार साझा किए थे। उन्होंने बोला था कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने सिर्फ ब्रह्मा बाबा की तरफ देखा, प्रणाम किया और ये सोचा कि अब आपने स्थिति में डाला है तो आप ही स्थिति से हमें बाहर निकालें। प्रार्थना बहुत विश्वास देती है। जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को होती है तो जैसा मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है कि एक ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप स्वस्थ रहें, आप अपने शरीर के बारे में कुछ अच्छा सोचें। क्यों लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है, हमारा भोजन दूषित हो रहा है और हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कम होता चला जा रहा है। हम शरीर से ज्यादा अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और हमारे सभी मित्र बहन भाई जो हमें सुन रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि अब हम आपस में बात करना कम कर चुके हैं, बनस्पत हम एक मोबाइल के पीछे पागल हो चुके हैं। वो मोबाइल हमारी सोचने की शक्ति को छीन कर रहा है, हमारी समझने की शक्ति को छीन कर रहा है और हमें एक ऐसे वायुमंडल में डाल रखा है हम जिसको सच मान बैठे हैं। उसकी एक और कमी है कि हम जो भी उसमें कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है हम सोचे समझे उसको अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने श्रोता भाई बहने जो भी सुन रहे हैं, आरोग्य की कुंजी सिर्फ मिताहार मतलब कम खाने में, दूसरा शारीरिक श्रम करने में और अच्छे से 6 से 7 घंटा सोने में और 3 से 4 लीटर पानी पीने में है। थोड़ी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा अपने मन के लिए भी सोचिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करिए। आप देखिए ब्रह्म कुमारी आप ये चैनल सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि सब लोग एक सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, उससे कितनी मानसिक शांति प्रतीत होती है। तो कृपा करके अपने शरीर और मन दोनों को शांत रखिए। आपको कोई भी बीमारी हो गई हो उसका उपचार ढूंढने से जरूर मिलेगा, और कोई भी बीमारी अगर क्रॉनिक डिजीज है आपको तो उसका उपचार एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड डाइट एंड गुड मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन में है।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम अपने ही आरोग्य के बारे में इतने स्पष्ट रीति से जानकारी नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अस्पतालों में जाएंगे तो आरोग्य वहां मिलेगा, और अपने दिनचर्या पर, अपने भोजन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम न रखने के कारण हम ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस स्वास्थ्य की कुंजी की आपने बात की, ये बात कितनी सहज और सरल है ये बात स्पष्ट होती है। आज एक और विषय पर जो हमारे दोस्त पिछले कई दिनों से चर्चा में सुन रहे हैं उस पर मैं प्रश्न करना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की समस्या हो गई है, डायबिटीज की बीमारी है। तो अक्सर हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई उनको खाने पीने पे ध्यान रखना होता है कि भाई डायबिटीज है आपको खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, इतना बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि भाई आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और पिछले दिनों हमने अनेक ऐसे विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो आम भोजन करता है, जो हर दिन जिसकी भोजन का रूटीन है, उसके भोजन की थाली में क्या क्या चीजें होती हैं, वैसे प्रश्न उठता है कि एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको डायबिटीज की बीमारी है उसके भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, क्या उसके लिए नॉर्मल खाना है, ये आप बताएं।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। अगर हम अपने थाली को देखें और सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो करीब आधा भोजन जो है हमारा वो फल और सब्जियों से बनना चाहिए। मतलब हमको किसी भी तरीके से ऐसी सब्जियां और ऐसा फल जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो या ना हो, जैसे इंग्लिश में जैसे बोलते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, से पहले हमको आधा अपना भोजन ये करना चाहिए। 25% भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी अनाज हम खा रहे हैं या जिन भी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 25%, और 25% हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए। जैसा हम लोग ने पुराने एपिसोड में बात किया कि बैलेंस डाइट में आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड फाइबर्स, मिनरल, विटामिन, ये सब होने चाहिए। तो हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पूरी जो भोजन की प्लेट है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 25% प्रोटीन होना चाहिए। इतना करने से हमारा जो पूरा भोजन है वो ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए कि जब हमें डायबिटीज हो रहा है तो हमारे शरीर में जो शक्करा है, जो चीनी है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो हमें वो भोजन करना चाहिए जिससे ये मात्रा जो है वो जल्दी ना बढ़े। हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में ये भी बात किया था कि हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या जो भोजन में जितनी शक्कर की मात्रा है उस हिसाब से भी हम अपना डायबिटीज का या अपना डाइट जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो हमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, मतलब जितने भी प्रोसेस फूड्स हुए, मैदा से बनी हुई चीजें हुई, मिठाइयां हुई, चॉकलेट्स हुई, ये सारी की सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसे हम पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा हमें सजग होना पड़ेगा कि हम अपने भोजन में फाइबर जो है उसकी मात्रा एकदम ठीक रखें। और इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है कि अगर आपको संतरा बहुत पसंद है तो संतरे की फाक को खाइए, न कि उसका जूस निकाल के पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फाइबर कंपोनेंट है वो भी सही रहेगा और आपका जो शुगर कंपोनेंट है वो बढ़ेगा नहीं। फल जैसे आपके अमरूद हुए, आपका सेब हुआ, आप जितनी भी आपकी बेरीज हैं या आपका पपीता हुआ, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आपको सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करना चाहिए, मतलब आपको जो फल पसंद हो वो फल खाइए और करीब 200 से 250 ग्राम वो फल खाइए। अगर आप अपने सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करेंगे और जिसमें फल जैसे कि अमरूद हुआ, सेब हुआ, पपीता हुआ, ये सारे फल अगर आप सवेरे अपने नाश्ते में इनका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो शुगर है वो एकाएक बढ़ेगी नहीं। मैं एक अपने श्रोताओं की बात बोलना चाहूंगा कि सवेरे खाली पेट कोई भी चीनी से बनी पदार्थ का सेवन मत करिए। कोई भी सवेरे उठते ही, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि हम पूजा करके प्रसाद खा के अपना दिनचर्या शुरू करेंगे, मैं उन सभी भाई बहनों को बोलना चाहूंगा कि सवेरे उठते ही प्रभु को अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कृपा करके कोई फल का प्रसाद चढ़ाइए और उससे अपने दिन की शुरुआत करिए। चबा चबा के भोजन करिए, सवेरे फल करिए, दोपहर के भोजन में आधा भोजन आपका सलाद और सब्जियों से होना चाहिए, आपका 25% भोजन जो है वो प्रोटीन से होना चाहिए और 25% में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जो भी अनाज आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। यही चीज आपको शाम को करनी चाहिए कि आप 3-4 बजे 250 ग्राम फल ले लें आप, और रात के समय फिर यही चीज पे आप कोशिश करें कि आप सब्जी, सलाद, सूप इसको ले लें। इससे आपका जो डायबिटीज है वो पूरा कंट्रोल में रहेगा।
0: ये बात समझ में आती है कि हम अपने भोजन पर अगर ध्यान देते हैं, भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात्रि के भोजन, इन सभी चीजों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये सब कुछ सरल हो सकता है। प्रायः जब आप ये बात कहते हैं कि सुबह का नाश्ता 250 ग्राम जितने फल होने चाहिए, कच्चा होना चाहिए, कई लोग फलों के मामले में भी लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये चबाने में हमको तकलीफ होती है, जैसे अगर हम किसी को सलाद खाने के लिए कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये चबाना पड़ता है बहुत, और खासकर उस उम्र में जब लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं तो कई लोग अपनी बड़ी उम्र में या उम्र के बढ़ते हुए फेज में होते हैं तो वहां पर वो उन चीजों को करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लोग ये कहते हैं, कई लोग ये बात कह देते हैं कि अरे जिंदगी भर तो हमने नहीं खाया, अब खाने से क्या होगा, ये भी चीज कह देते हैं। तो दो प्रश्न हैं, पहले तो जो लोग इन चीजों को चबाकर खाने वाली कच्ची चीजों को लेकर जो इश्यूज कहते हैं उसके बारे में क्या किया जाए, और क्या उम्र के एक बढ़ते पड़ाव में जब व्यक्ति 50-60 की उम्र के बाद डायबिटीज से ग्रस्त हो रहा है और उस समय पर उसे ये बदलाव करने पड़ेंगे तो क्या उससे उसको उतना फायदा होता है।
1: जिस दिन हमें मालूम चलता है कि हमको डायबिटीज हो गई है, वो उम्र कोई भी हो, उस दिन से हमें अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। आपको घूमना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो प्लीज कुर्सी पे बैठ के, बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसमें अपना हाथ हिलाना है, अपने कंधे हिलाना है, अपनी कोहनियां हिलानी है, अपने पैर की उंगलियों पे हिलाना है, एड़ी हिलाना है, आगे पीछे चलना है। आप कुर्सी पे बैठ के बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं। मैं सबको एक राय देता हूं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सामने के आपके घर में कोई भी दरवाजे का कुंडा है उसमें अपनी चुन्नी या कोई रस्सी फंसाइए और पुराने जमाने में जिस तरह से दही मथा जाता था अपना हाथ आगे पीछे करके खींचिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप 50 साल 60 साल के हैं और आपको तब मालूम चलता है कि आपको डायबिटीज हुई है तो आपको सजग रहने की उतनी ही जरूरत है जितना एक 30 साल या 20 साल के बच्चे को होगी। अगर आप 60 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा कमजोर हो सकती है, इसीलिए आपको सजग होने की पूरी जरूरत है। आपका दूसरा सवाल था श्री भैया कि जो लोग कहते हैं कि हम सलाद नहीं खा सकते या फल हम नहीं खा सकते, उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि आप फल को या तो थोड़ी सी दही डाल के या थोड़ा सा पानी डाल के उसको चला लीजिए मिक्सी में और वो एक सूदी टाइप बन जाएगा, उसको खाना शुरू करिए। आप अगर किसी चीज को मिक्सी में चला लेते हैं, आप गाजर को ही मिक्सी में चला लीजिए, तो आप देखिएगा कि उसका थोड़ा सा रस निकलेगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। आप देखिए जब हम गाजर का रस निकालते हैं तो रस पूरा एक तरफ आ जाता है और उसका जो खुज्जा है वो अपने आप बाहर फेंक दिया जाता है। पर हमें अगर डायबिटीज है तो उस खुज्जे की भी हमको जरूरत है। तो कोई भी आप फल खा रहे हो आप उसको मिक्सी में चला सकते हैं, आप बहुत थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दही डाल के उसको चला सकते हैं और ये उसमें आपको क्या होगा कि वो जो मेहनत आपके दांतों को करनी है उसको चबाने के लिए वो मेहनत मिक्सी में चलाने के बाद हो जाएगी और वो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। आप देखिए श्री भैया, जो भी रस हमको चाहिए, किसी भी चीज का हम जूस अगर निकालते हैं तो बहुत सारा खुज्जा उसमें से बच जाता है। हमको डायबिटीज में खुज्जा चाहिए अपने शरीर के लिए क्योंकि वो फाइबर है, वो हमारे शरीर को ताकत देगा। बहुत सारे लोग सुबेरे नाश्ते में टमाटर और दही का भी प्रयोग करते हैं, वो टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और दही में मिला के उसको हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आप मतलब उस फल को आप अपने चाकू से छोटा छोटा काट के भी खा सकते हैं, मगर आप ये चाहिए कि आप प्रोसेस्ड फूड खाएं, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स खाएं, व्हाइट ब्रेड खाएं, आप बिस्किट्स जो हैं वो खाएं, वो सारी चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी। तो अगर आपको शुगर हुआ है और जो भी डायबिटीज रिवर्सल की बात करता है, डायबिटीज रिवर्सल में यही बात की जाती है कि आप फाइबर रिच फूड खाइए और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा को जीरो कर लीजिए। आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भोजन ही आपका डॉक्टर बन जाएगा। कहा जाता है ना, मेक दाय फूड दाय मेडिसिन, वो आपका भोजन ही आपकी दवा बन जाएगी और आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे।
0: आज ये बात समझ में आ रही है कि आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप किसी भी उम्र में डायबिटीज के मरीज क्यों ना बन रहे हो, आप उस डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ आपको अपने भोजन ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इन चीजों से ये चीज समझ में आती है। देखते देखते वक्त ये कह रहा है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज जो बातें हमने आपसे सुनी मैं समझता हूँ उन चीजों में सबसे पहले तो अपने आहार पर, हर दिन के हमारे भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप डायबिटीज के मरीज किस उम्र में बनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी उम्र में डायबिटिक बने तुरंत आपके लिए वो एक सुनहरा मौका है अपने जीवन में सुधार लाने का, कि आप अपने सुबह के नाश्ते को कच्चा करें, यानी फ्रूट्स खाएं, 250 ग्राम जितने फल खाएं उन फलों को खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा हो, और साथ ही साथ अपने भोजन के समय पर भी किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये चीज आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुनी। भोजन के साथ साथ अपने व्यायाम पर भी हाथ पैर हिलाने, अपने श्रम के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और कितना सरल उपाय आज हम सब लोगों के लिए ये पता चला कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप किसी कपड़े को अपने दरवाजे के खूंटे पे बांध कर अगर उसे हिलाने का भी अभ्यास शुरू करें तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका दैनंदिन अभ्यास शुरू होगा। अच्छी आदतों को लाने से हम अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी वापस पा सकते हैं दोस्तों। और आज की चर्चा से ये बात बहुत ही सरल रीति से स्पष्ट होती है कि डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ जिंदगी भर दवाई लेते हुए रहना ही नहीं, मगर हम बदलाव करते हैं तो बदलाव संभव है। आज हम सभी श्रोता मित्रों के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी ने ये मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार और अपने साथियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करें, इससे उनके जीवन को स्वस्थ बनाने का तोहफा आप दे सकते हैं। आज रेडियो मधुबन पर सहज स्वास्थ्य में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिशार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

0: Namaskar, and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Who am I? ये सवाल कब से हमें परेशान कर रहा था और हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे. लगता था कि कितना मुश्किल जवाब होगा, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे सफर में हमने ये जाना कि जवाब इतना मुश्किल नहीं था, एक सिंपल सा आंसर था. और अभी भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे राज हैं जो खुलते जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान, इतना साधारण, इतना सादा है आंसर कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक नाम नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ. वो आत्मा जो तीन प्रारूप है, जिसके एक एनर्जी है जो तीन रूपों में काम करती है. जब वो कोई थॉट जनरेट करती है तो वो माइंड होती है, जब डिसीजन लेती है तो वो बुद्धि या इंटेलेक्ट होती है, और जब कोई कर्म होता है, वो जो थॉट जनरेट होने के बाद डिसीजन लिया और कर्म हुआ, तो उसका इम्प्रेशन उसी आत्मा में स्टोर होता है और संस्कार बनता है. यहाँ तक हमारा सफर पहुँचा है. अभी इन तीनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में और बात करना ज़रूरी है, और इस पर बातचीत करने के लिए इस पूरे सफर की हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: ये बात क्लियर होती जा रही है, और सबसे बड़ी बात हमने शुरू में ही कही थी कि इंटेलेक्चुअली समझ लेना,
1: राइट,
0: लॉजिकली समझ लेना आसान होता है. जब तक अनुभव नहीं करेंगे, उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम उसे मानने को तैयार नहीं होंगे. आज हम मन को, हम बुद्धि को, जैसा कि आपने कहा था, और संस्कारों को मानते हैं, स्वीकारते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं,
1: राइट,
0: तो सोल को भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि यही तो वो है. हमने उस सबको, अगर आपने देखा आज तक हम जहां भी पढ़ते या सुनते थे, माइंड बॉडी सोल, यू नो, एवरी कॉन्फ्रेंस वी अटेंडेड इट यूज्ड टू बी माइंड बॉडी सोल. तो हर जगह इनग्रेन्ड कर दिया था, बाहर बाहर जैसे एक वो इम्प्रेशन फीड कर दिया था, माइंड सेपरेट सोल सेपरेट. तो देन वो कन्फ्यूजन बढ़ता गया कि आखिर मन क्या है, आखिर आत्मा क्या है, और उस सब प्रोसेस में मैं कौन हूँ वो फिर से फॉरगॉटन था. वो तो पहुंचा ही नहीं. तो राजयोग में सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ये सिंपल आंसर मिल जाता है कि ये बहुत कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री नहीं है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है. मैं एक एनर्जी हूँ, द पावर विच रन्स दिस बॉडी, द पावर विच मूव्स थ्रू दिस बॉडी, द पावर विच एक्सप्रेसेस थ्रू दिस बॉडी, ये मैं आत्मा हूँ. मैं ये सारा दिन ये काम कर रही हूँ कि इट्स द लाइफ फोर्स. यू नो, हम कहते हैं ह्यूमन बींग, जीव आत्मा, तो ह्यूमन प्लस बींग, ह्यूमन, ह्यूमस शब्द से निकलता है मिट्टी,
0: तो पांच तत्वों का,
1: पांच तत्वों का शरीर, तो ह्यूमन बॉडी प्लस बींग दैट एनर्जी. तो मैं ये दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन हूँ, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते.
0: हाँ, यहाँ हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात बहुत जरूरी हो जाती है कि चाहे हम माइंड कहें, चाहे हम बुद्धि कहें, चाहे हम संस्कार कहें, अगर ये शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है. मतलब
1: आत्मा है, लेकिन आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते.
0: बिल्कुल.
1: हाँ, तो लाइक ड्राइवर है, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी चला नहीं सकता है. इट्स लाइक दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, और मैं आत्मा वो म्यूजिशियन हूँ. तो चाहे मैं कितना भी अच्छा म्यूजिशियन हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बिना आई कांट प्ले. एंड चाहे मैं कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ, म्यूजिशियन के बिना आई कैन नॉट प्ले. सो इट्स टू थिंग्स वर्किंग टूगेदर. तो मैं आत्मा हूँ ये हमने देखा कि, और सारा दिन सिर्फ ये समझना नहीं है लेकिन इस स्मृति से चलना है कि मैं शक्ति हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ, और मेरा रहने का स्थान, वी सो वेयर आई स्टे, बिकॉज आई नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ. नाउ मुझे आत्मा के बारे में सब नॉलेज चाहिए मुझे, क्योंकि इस बारे में भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि आत्मा आखिर
0: है कहाँ,
1: है कहाँ.
0: नो, यू आपने बहुत क्लैरिटी से हमें बताया था. कैन वी हैव इट अगेन, एक रीकैप करते
1: हैं. द सीट ऑफ द सोल, अगर हम यहाँ से सेंटर में एक लाइन डालें, ऊपर से एक लाइन डालें, वेयर दे बोथ इंटरसेक्ट, इट्स द फंक्शन ऑफ द सोल इज बिटवीन दिस रीजन, बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ये चार के बीच में एक छोटा सा रीजन है जिसको सीट ऑफ द सोल कहते हैं. एंड मैं आत्मा वहां पर विराजमान हूँ, और वहां से मैं थॉट एनर्जी के द्वारा ब्रेन से कनेक्ट करती हूँ. आई सेंड द थॉट टू द ब्रेन, सो दैट्स द इम्पल्स, जैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है. तो माई सो द सोल सेंड्स अ थॉट, सो दैट इज एन इम्पल्स विच इज सेंड टू द ब्रेन. बाकी सारा काम फिर उसके बाद हो जाता है कि ब्रेन उसको प्रोसेस कर देगा एंड सेंड्स अ सिग्नल टू द बॉडी,
0: और एक्शन होगा. यहाँ एक बात मैं ये जानना चाहूंगी कि जब थॉट जनरेट हुआ, दैट्स एन इंपल्स यू सेड, वो एक इलेक्ट्रिकल, अगर वो थॉट जो भी एक पावर,
1: इलेक्ट्रिकल नहीं, आई वाज कंपेयरिंग इट कि जैसे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स,
0: एक इंपल्स गई वहां पे ब्रेन तक, उसके बीच में जो बुद्धि का काम था डिसीजन लेना कि कौन सा थॉट जाएगा,
1: राइट,
0: उसके बाद उसे उसके होते हुए वो जा पहुंचे,
1: तो बुद्धि एक फिल्टर की तरह बन जाती है.
0: हाँ, ओके.
1: यू नो, बुद्धि इज लाइक अ फिल्टर. जैसे हमने पिछली बार देखा कि तीन फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार. मन थिंकिंग फैकल्टी, सोचने का काम करती है, कुछ भी सोच सकती है, बहुत दूर तक जा सकती है, पिछले कुछ अनुभव है उनको सोच सकती है, भविष्य के बारे में भी सोच सकती है, यहाँ बैठे चांद के बारे में सोच सकती है, समुद्र की गहराई में जा सकती है, एवरीवेयर, पावर ऑफ द माइंड. सो दैट इज द थिंकिंग फैकल्टी. दूसरी फैकल्टी बुद्धि, परखना, निर्णय लेना, समझना, समझकर फिर कर्म में लाना. तो इसलिए हम कहते हैं सोच समझ कर फिर करना. माइंड क्रिएट्स द थॉट, इंटेलेक्ट डिसाइड्स एंड देन कम्स इनटू एक्शन. थर्ड फैकल्टी संस्कार्स, कि जो हम कर्म करते हैं उसका इम्प्रेशन बनता है, और जो सारी इंफॉर्मेशन सारा दिन हमें बाहर से मिल रही है सारे कर्म इंद्रियों द्वारा, वो भी अंदर जाकर स्टोर होती रहती है. तो वो हर एक इंफॉर्मेशन जो अंदर फीड हो रही है वो एक इम्प्रेशन के रूप में स्टोर होती जाती है, होती जाती है. तो द संस्कार्स, दैट इज द सोल, इज एन आर्काइव ऑफ ऑल द इम्प्रेशंस, यू नो, ऑल द इम्प्रेशंस दैट आई एम कैरिंग. सो बेसिकली दैट्स द पर्सनैलिटी आई एम, मैं इस तरह का इंसान हूँ. यू नो, इट्स एन आर, इट्स अ टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द इंप्रेशंस जो सारे मेरे ऊपर बनते हैं. उसी में
0: हैबिट फॉर्मिंग की जो बात थी,
1: हैबिट, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, पर्सनालिटी ट्रेट्स,
0: अगेन यू नो, उन्हीं से हमारे, क्योंकि हमने कहा था कि थॉट जो जनरेट होता है वो बिलीफ से.
1: एब्सोल्युटली. तो हर इंप्रेशन जो जाएगा उसके ऊपर, तो वो या तो मेरे पुराने संस्कार को और पक्का कर देगा या वो एक नया संस्कार क्रिएट करता जाएगा. तो ये एक साइकिल में काम करता जाता है. अब क्या होगा, जो संस्कार बना हुआ होगा, इम्प्रेशन होगा, उसके आधार से थॉट्स क्रिएट होंगे, राइट. फिर बुद्धि उसको इवैल्यूएट करेगी, वो कर्म में आएगा, फिर एक इम्प्रेशन बनेगा. अब वो इम्प्रेशन क्या करेगा, या तो नया संस्कार क्रिएट कर देगा, या पुराने हुए बने हुए संस्कार को और पक्का कर देगा, या फिर पुराने संस्कार को खत्म कर देगा,
0: निगेट कर देगा.
1: यू नो, आई क्रिएट अ न्यू संस्कार दिस टाइम, तो इट कैन फिनिश ऑफ वन ऑफ माय ओल्ड संस्कार,
0: वो डिलीट हो जाएगा
1: धीरे धीरे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इम्प्रेशन ही तो है ना सारे. तो जब नए इम्प्रेशन बनते जाएंगे तो पुराने इम्प्रेशन हटते जाएंगे. जैसे कई बार होता है, ओरिजिनली आई वॉज वेरी पीसफुल, लेकिन कई बार जैसे लोग कहते हैं वातावरण ऐसा बना, परिस्थितियां ऐसे बनी, गुस्सा करते गए करते गए करते गए. हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं. हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं,
0: जो इंप्रेशंस पड़ रहे हैं,
1: इंप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्रेशन,
0: कैटेगरी, कैटेगराइज,
1: या ब्रॉडली. एक जो कई संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक, यू नो, इनके घर में ये आदत है, ये इनकी आदत बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह. तो कुछ आदतें हमें जेनेटिकली मिल जाती, कुछ संस्कार हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यू नो, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डेथ मीन्स कि ये शरीर फिनिश हो गया, आत्मा तो यही है, आत्मा नहीं फिनिश, ना जली, ना मरी, ना दबाया, ना दफनाया, अब ये क्या करेगी. तो ये आत्मा अपना नया शरीर धारण कर लेती है, दैट मीन्स इस शरीर से निकली, नया शरीर धारण किया. जब इस शरीर में थी, संस्कार बने, इंप्रेशंस रिकॉर्ड हो गए, अब टाइम आया इस शरीर को छोड़ने का, यहाँ से निकली, नेक्स्ट शरीर ऑलरेडी उसके लिए रेडी है. तो जब बच्चा माँ के गर्भ में जब वो शरीर होता है, तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर लेती है, एंड दैट इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स. तो जो इम्प्रेशंस मैंने यहाँ कैरी किए, वो ऑटोमेटिकली उस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो गए. और ये एक बहुत डोमिनेंट पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ आवर संस्कार्स आर व्हाट वी कैरी फ्रॉम आवर पास्ट बर्थ.
0: वी कंटिन्यू टू कैरी
1: बर्थ आफ्टर बर्थ.
0: हां,
1: यस.
0: All the impressions which we, okay.
1: Everything. It's just that कि वो submerged होते जाते हैं, लेकिन वो है. वो है। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं एकदम से पता नहीं कैसे ये थॉट आ गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, या सपने में पता नहीं वो कैसे थॉट्स आ रहे थे। दोज थॉट्स आर ऑल विच कम आउट ऑफ दीज इम्प्रेशंस जो सारे रिकॉर्डेड है। तो पास्ट बर्थ संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक घर में देखे दो बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, सेम पेरेंट्स, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोनों जिस बैकग्राउंड से आए हैं वो दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए। तीसरे प्रकार के संस्कार हैं एनवायरमेंट, यू नो, हम जिस माहौल में पैदा होते हैं, जिस तरह के स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स, एज द फ्रेंड्स सो विल बी यू नो द पर्सनालिटी, तो एनवायरमेंट। फोर्थ टाइप ऑफ संस्कार विल पावर, अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार। कोई हमारा बहुत कड़ा संस्कार है, लेट्स से झूठ बोलने का संस्कार है, इट कुड बी जेनेटिक और इट कुड बी फ्रॉम द पास्ट बर्थ, बट इफ इट इज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ पेन एवरी टाइम एंड आई से चाहे कुछ भी हो जाए आज से झूठ नहीं।
2: पेन किसको हो रहा है? अगेन यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट सोल,
1: पेन दिस इज
2: बॉडी,
1: दर्द एंड दुख।
2: हाँ, तो दुख जो है वो सोल एहसास कर,
1: फीलिंग ना, दैट्स व्हाट वी सेड, फीलिंग, डिजायर्स, इमोशंस, थॉट्स।
2: अगेन दैट्स अ थॉट, दैट्स अ थॉट,
1: एब्सोल्युटली दैट्स थॉट्स,
2: ओके,
1: यस। सो इट्स नॉट फिजिकल, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपीरियंसिंग पेन, इट्स नॉट फिजिकल।
2: एंड नाउ व्हाट इज विल पावर, यू नो, अगेन दैट्स एन एनर्जी,
1: राइट। तो विल पावर से क्या होगा, अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए आज से झूठ नहीं बोलना, कैन यू डू इट?
2: My decision, yeah.
1: Will power, yeah, right? Can, yeah. तो क्या होगा, झूठ बोलने का संस्कार था लेकिन आज से सच बोलने का संस्कार क्रिएट कर दिया।
2: ये मैंने अपने इंटेलेक्ट से किया,
1: will decision making. Yes, I have decided कि चाहे कुछ भी हो जाए आज से झूठ नहीं बोलना है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक नया थॉट क्रिएट करके एक नई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंटेलेक्ट को अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है, हम उसको समझ लेते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि अब मुझे

0: पास्ट बर्थ हो गया, जेनेटिक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, विल पावर हो गया, माता पिता से मिले, पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड किए, वायुमंडल से बने और अपनी विल पावर से क्रिएट किया, एंड फिफ्थ ओरिजिनल, मुझ आत्मा की सही पहचान, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या। मतलब ये सब चारों प्रकार के संस्कार तो बने ना, कर्म करने से बने, माता पिता से मिले, स्कूल से मिले, एनवायरमेंट से बने, लेकिन व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हेन ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी, व्हाट वाज दैट। तो वो अगर हम अपने आप से पूछे, हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तो क्या आंसर निकलता
1: है? हैप्पीनेस।
0: हैप्पीनेस हर एक को चाहिए। और क्या चाहिए?
1: पीस।
0: पीस, एवरीबॉडी वांट्स दिस लव। व्हाई डू वी वांट दिस? बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल। पीस इज माय ओरिजिनल नेचर, लव इज माय ओरिजिनल नेचर, एंड दैट्स व्हाई आई एम, you know, because I can't find it today in my expression, I'm looking for it. But what I have started doing, I've started looking for it outside. You know, hai wo meri apni cheez, meri apni property, aur main usko bahar dhoondna shuru kar diya hai. To sabse pehle hum apne aap se poochhein ki mere original sanskar kya hai, to humne apne anubhav mein dekha ki saat original sanskar atma ke aate hain, shanti, sukh, कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता। सिंपल टेस्ट तो यही है कि मुझे कंफर्टेबल क्या लगता है।
1: एक्चुअली आई डोंट लाइक,
0: कितना भी गुस्सा कर लो सारा दिन, शांति चाहिए। तो शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मुझे हर एक से प्यार चाहिए, चाहिए हर एक से, लेकिन चाहिए क्या? प्यार चाहिए। तो प्रेम मेरा ओरिजिनल संस्कार है। शक्ति, विल पावर, यू नो, शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमजोर आत्मा नहीं हूँ। तो शक्ति मेरा संस्कार है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऑफ हु एम आई, इसीलिए वी आर ऑल आस्किंग दैट के हु एम आई, हु एम आई, बिकॉज दैट आंसर आई वाज नॉट गेटिंग। तो मैं बार बार अपने आप से पूछती हूँ, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर,
1: इट मींस आंसर इज समवेयर डीप बिकॉज ऑफ संस्कार,
0: इट इज। इसीलिए हमें आज दिन तक कहा ना कि अपने आप सोचो, अपने आप आंसर निकल आए,
1: तलाशो अंदर, तलाशो।
0: लेकिन वो ऊपर के इतने सारे लेयर्स थे इम्प्रेशंस के, कि वो नीचे से जो ओरिजिनल था उसको निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था। लेकिन ज्ञान मेरा अपना संस्कार है। प्योरिटी, पवित्रता, आई एम अ प्योर सोल, एब्सोल्युटली प्योर, स्पॉटलेस कॉन्शियसनेस, एंड आनंद, ब्लिस, ब्लिस जो कि हमने शायद बहुत समय से एक्सपीरियंस भी नहीं किया है। इट्स ब्लिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। इस इंद्रियों का सुख नहीं, एक आंतरिक जो सुख है, तो ब्लिस। तो शांति, हर एक जैसे जैसे हम कहते जाते हैं इन शब्दों को, हम उसको महसूस करने की कोशिश करें। जैसे हम एक बार सिर्फ सोचते भी है ना, तो आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो द थॉट इटसेल्फ
1: इज गुड।
0: मैं गुस्से वाला हूँ,
1: नो, I don't want that, you know, I'm not even interested.
0: You see, the thought itself makes me feel different, because we know thought leads to feeling. So the right kind of thought will create the right kind of feeling.
1: You know, even if when we say that, you know, mujhe bahut gussa aata hai, ya main bahut gusse wala hu, andar somewhere we are ashamed about it.
0: Yes, we know, because we are not comfortable. See, it's not about ke dusre kya kehte hain ki ye right hai ya wrong hai. Chahe hum samne bahar walon ke liye justify kar dein ki nahi mujhe gussa karna chahiye tha, andar I'm not comfortable. It creates a whole lot of uneasiness inside, because energy gets disturbed. You know, वो जो इक्विलिब्रियम, जो नेचुरल स्टेट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं एक शुद्ध पवित्र कॉन्शियंट एनर्जी, नाउ दिस इज नॉलेज, ये मेरी असली पहचान है। सिर्फ मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ। जब मुझे ये याद रहेगा कि मैं कैसी आत्मा हूँ, तो मेरा बिहेवियर वैसा ऑटोमेटिकली होता चलेगा। जो हम एक दूसरे को ग्रीट भी यहाँ करते हैं, हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति इज नॉट अ मंत्र, इट्स अ मीनिंग। ओम, अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो एवरी टाइम वी आर सेइंग ओम शांति टू ईच अदर, इट्स रिमाइंडिंग माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन, आई एम अ पीसफुल सोल,
1: एंड यू आर ऑल्सो पीसफुल सोल।
0: यस, so it's more first about reminding myself and automatically then that vibe

0: vibration will get transmitted to you. So whenever we say Om Shanti, it should not be just Om Shanti like a word, but uska embodiment. कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बिकॉज हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में है, इतना वो बाहर के लेबल्स में हम छिपे हुए हैं कि वो भूल जाता है. तो ये ग्रीटिंग भी हमें बार बार याद दिलाता है. तो फाइव टाइप ऑफ संस्कार, जेनेटिक, पास्ट बर्थ, एनवायरमेंट, विल पावर, ओरिजिनल संस्कार. अब जो संस्कार डोमिनेटिंग होगा वो थॉट क्रिएट करेगा, वो इंटेलेक्ट उस पर डिसीशन देगी, वो कर्म में आ जाएगा.
1: यहाँ एक बात आपने कही कि जो ओरिजिनल संस्कार है वो सात तरह के हैं. अवेयरनेस क्रिएट्स ब्लिस,
0: राइट,
1: ये हम सुनते आ रहे हैं आई थिंक, बट इट बिकम्स वेरी क्लियर नाउ कि
0: मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे शांति बाहर नहीं चाहिए. यू नो आयरोनिकली वी केप्ट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी स्पेंट लॉट ऑफ मनी, हमने कॉन्फ्रेंसेस कर दी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस के पीस कैसे हो, एंड इट्स जस्ट दैट आई एम अ पीसफुल सोल, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड के हैप्पीनेस, यू नो ऑल दैट वी बीन डिस्कसिंग टिल नाउ, हैप्पीनेस, पीस, ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये मेरी अपनी ओरिजिनल नेचर है विच आई हैव फॉरगॉटन.
1: यहाँ मैं जानना चाहती हूँ जो ओरिजिनल हमारे संस्कार है, जो जो सेवन संस्कार की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो जो और संस्कार या और इम्प्रेशन बन रहे हैं वो उन ओरिजिनल संस्कारों को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं?
0: डिलीट नहीं कर सकते, उनको, हाँ, वो सब है. इट इज लाइक लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स. जो फर्स्ट जन्म मुझ आत्मा ने लिया, जब फर्स्ट कॉस्ट्यूम लिया, तो इट वॉज ओनली ओरिजिनल संस्कार, ओनली ओरिजिनल संस्कार. लेकिन वही करते करते चॉइस थी ऐसा करूं या ऐसा करूं, तो कई बार बुद्धि ने दूसरा वाला डिसीजन लिया.
1: चॉइस हमें दी क्यों?
0: इट्स लाइक योर चिल्ड्रन, आप उनको सब कुछ दे सकते हो, फाइनली चॉइस आप उनको देते हो कि उन्हें क्या करना है. तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, समझ भी दी, लेकिन हमारा कर्म हम खुद चूज करते हैं, तो फिर ये हमारा संस्कार फिर मॉडिफाई होता जाएगा. तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जिससे ये ओरिजिनल संस्कार, मेडिटेशन हम कहते हैं ना, आत्मा को कैसे शक्तिशाली बनाती है. एक तो माइंड, माइंड थॉट्स क्रिएट करता है. आजकल हमारा मन नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करता है, मेडिटेशन से हम पॉजिटिव थॉट्स शुरू कर देते हैं. बुद्धि कमज़ोर हो गई है, राइट और रॉन्ग के बीच डिसाइड नहीं कर पाती, मेडिटेशन बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, विल पावर को बढ़ा देता है. और संस्कार्स जो ओरिजिनल संस्कार है, जो मर्ज हो चुके हैं, डिलीट नहीं हुए हैं, मर्ज हो चुके हैं, उसको वापस इमर्ज करता जाता है.
1: मेडिटेशन का जो प्रोसेस है, हाउ डज इट रियली वर्क ऑन ऑल दीज थ्री फैकल्टीज,
0: राइट,
1: एक्चुअल सेंस में कैसे काम करते
0: हैं? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये तीनों फैकल्टीज पर काम करते हैं. मन संकल्प करता है, बुद्धि समझ लेती है उसको, और उसका चित्र भी बनाती है, विजुअलाइजेशन पावर. जैसे अगर हमने अभी संकल्प किया घर, तो तुरंत आपको अपना घर दिखाई देगा. इसी तरह जब हम कहते हैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति, अब वो शक्ति है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हम कहते हैं यहाँ ब्रिकुटी के बीच सेंटर ऑफ द फोरहेड ज्योति स्वरूप, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट आई कैन गिव, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, एंड देन आई एक्सपीरियंस इट. जैसे आपने कहा घर, अगर हमने सोचा, मन ने संकल्प किया घर, बुद्धि ने उसका चित्र देखा, एंड बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी कंफर्टेबल, इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द कंफर्ट सिटिंग हियर. तो अभी हम इसको करके देखते हैं कि हम कुछ संकल्पों को लेते जाएंगे, आप ध्यान से उसको सुनते जाएंगे, रिपीट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको सुनते सुनते उसका चित्र साथ साथ बनाएंगे, विजुअलाइज करते और फिर उसको अनुभव करने की कोशिश करेंगे, और इसको फिर हर रोज सुबह शाम दो बार कम से कम प्रैक्टिस करें, और फिर सारा दिन में उसको याद रख के अपने स्वरूप में लाएं. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि क्रॉस लेग बैठना है, आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे, आईज कैन बी ओपन कैन बी क्लोज्ड. राजयोग मेडिटेशन में हम आंखें खोल कर ही बैठते हैं, क्योंकि ये हमें सारा दिन करना है, एंड इट्स नथिंग टू डू विद दीज आईज, ये आंखें कोई काम नहीं कर रही है, ये एक आंतरिक यात्रा है, इंटरनल जर्नी, तो उसके लिए ये आंखों को बंद करना जरूरी नहीं है। खुले रख कर अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर चलते फिरते, काम करते, जॉब करते, सब कुछ करते हुए ये इंटरनल जर्नी साथ साथ अंदर चलती रहे। सो वी जस्ट प्रैक्टिस टू डू इट विद आर आईज ओपन, बट वट एवर इज कम्फर्टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो आंखें खोल कर भी करना बहुत
1: ईजी।
0: वी शुड स्टार्ट, बिकॉज अगर हम स्टार्ट ही नहीं करते तो वो प्रैक्टिस नहीं बनती है। कुछ क्षणों के लिए बाह्य सभी बातों से भूलते हुए आसपास की जितनी भी आवाजें हैं सबसे ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर आ जाइए। जैसे कि बस सिर्फ आप ही हैं आपके चारों ओर और कुछ भी नहीं है। शरीर के एक एक अंग से ध्यान को हटाते हुए धीरे धीरे धीरे भ्रुकुटि के बीच आ जाइए, सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज, और अपने आप को देखिए, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान, इस शरीर की मालिक हूं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। एक क्षण के लिए अपने आप को अपने ऑफिस में ले जाइए, या अपने घर में उन लोगों के सामने ले जाइए जिनके साथ काम करते हुए आपको कभी कभी पहले गुस्सा या चिड़चिड़ापन आ जाता था, पहले आता था, अब नहीं आएगा। उनके सामने जाकर खड़े हो जाइए, देखे उनको, वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन आप बदल चुके हैं। आप इस स्मृति में खड़े हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखिए आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। शांति के वाइब्रेशंस आपसे निकलकर उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं। ओम शांति,
1: ओम शांति। Now, it's so easy to say Om Shanti with awareness. Wonderful. I think this is one of the most enlightening experiences mujhmein ya hamare sare darshak jo hain wo mehsoos kar rahe hain, kyunki ye pehli baar aisa lag raha hai Sister Shivani ki with full logics hum anubhav kar pa rahe hain jis sachchai ko hum talash rahe the, jise hum abhi tak sirf kitabon mein logon se sunte aa rahe the, aaj hum ise swikarne ko taiyar hain ki I the soul, I am a soul, मैं एक आत्मा. लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं. अगर हम विज्ञान की तरफ जाते हैं, या आपने कहा कि पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं कुछ संस्कार ऐसे हैं, उसको थोड़ा सा और खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफी हद तक हमारे सामने हैं बातें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. ओम शांति. अब हम ये कितनी आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद समझ रहे हैं कि मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ. आई एम अ पीसफुल सोल. इट इज सो पीसफुल टू से दैट. एक्चुअली अगर आप भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आप महसूस कर रहे हैं उन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, या कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर हैं 9999 3 4 4 6 6 9 8 7 3 6 6 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन हर बार की तरह यही आपसे वादा करते हैं और यही दुआ भी करते हैं कि जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, जो तलाश हमारी खत्म होती नजर आ रही है, उसे यूँ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अल्टीमेटली एंड तक जरूर पहुंचेंगे. आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा. अगली कड़ी में फिर करेंगे आपसे मुलाकात. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आज सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो आप सभी को इस पूरे हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सोमवार वैसे ही सर्वशक्तिमान शिव जी का दिन कहा जाता है, तो आज शिव जी को याद करते हुए अपने जीवन को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सोमवार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएं करते हुए हर हर महादेव की तरफ चलते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: आप सुन रहे रेडियो 101, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
2: रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। हफ्ते की शुरुआत सोमवार का दिन है और निश्चित तौर पे आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम लोग एक बहुत ही सुंदर क्रम के साथ जीवन चलता है हमारा, और इस क्रम को अगर ठीक से समझ लें तो जीवन और बेहतर हो जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, नमस्कार।
1: नमस्कार गोड़ीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप?
2: तेरा भक्त पुकारे सुन ले पुकार प्रभु, ये भजन मेरा भी सुना देना सर। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, धन्यवाद सबको।
1: चलिए गुड़ीलाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बड़े प्यारे प्यारे भजन आप याद करते हैं और हमें दिलाते भी है याद, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भक्त तेरा पुकारे ये भजन आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो खुशी भी साथ में बनी रहती है, इसीलिए हमेशा ये सोचिए कि एक बार फिर से नई कोशिश। और इस तरह से आप अपने आप को, कोई भी मुश्किल काम है उसे जब आप करते हैं, अगर मुश्किल लग रहा है तो उसको बार बार करना चाहिए ताकि वो आसान हो जाए, और एक बार आसान हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। जैसे किसी बिजनेस में आपने सफलता पाने की कोशिश की, लेकिन लगातार कोशिश के बाद ही सफलता मिलती है। कई बार हम दो तीन बार में ही सोचते हैं कि एक हफ्ता हुआ दुकान खोले, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, चलो दूसरा सोचते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 365 दिन, हज़ार दिन गुजराती में एक कहावत है, अगर हज़ार दिन किसी बिजनेस को आपने एक्सटेंड कर दिया, मैंने कंटिन्यू किया, तो निश्चित तौर पे आपका एवरेज बिजनेस बन जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो 1000 दिनों तक किसी बिजनेस को

करना चाहिए। तो 1000 दिन की जो मेहनत है वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो आइए आज हम लोग कुछ खास एकादशी है, इंदिरा एकादशी, जिसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा गया है इंदिरा एकादशी। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। भटकते हुए पितरों को गति देने वाली पितृपक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। विधि ये है कि इस एकादशी के व्रत और पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर केवल ये है कि इस दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान शालिग्राम को पंचामृत के स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए तथा पूजा कर आरती करनी चाहिए। फिर पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का, तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो ये विशेष विधि है। कहानी की बात करें तो प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा हुआ करता था। उनके माता पिता दिवंगत हो चुके थे और अकस्मात एक रात उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता यमलोक नरक में पड़े हुए अपार कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत विचलित हुए, चिंतित हुए। उन्होंने सोचा अब इस प्रकार का यम यातना से पितरों को मुक्ति कैसे दिला जाए। इस विषय पर उन्होंने फिर सलाह ली अपने यजमानों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से और फिर मंत्रियों को बुलाकर वो सारी बात उन्होंने बता दी। ब्राह्मणों ने कहा, ये राजन, यदि आप स्वप्निक इंदिरा एकादशी, जो आने वाला एकादशी जैसे उनको बताया कि इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन आप शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाकर 51 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उसका आशीर्वाद ले। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजन उनकी बात मानी और विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे मंदिर में सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितर स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महत्वता बढ़ गई और लोग इसे करने लगे हैं। तो ये थी कुछ खास बातें इंदिरा एकादशी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 8:55 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इतिहास की बातें हम सुन रहे थे, इंदिरा एकादशी की बातें आपको बता रहा था मैं। और आज विशेष गोपीनाथ कविराज का जन्मदिन है। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे। इनके पिताजी का नाम वैकुंठनाथ बागची था और योग और तंत्र के प्रखंड विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज का जन्म आज ही के दिन 1887 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था, एक छोटे से गांव में। बचपन ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण का पालन पोषण मामा ने किया और उनकी शिक्षा दीक्षा ढाका, कोलकाता, जयपुर और वाराणसी में हुई। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही और वाराणसी के किंग्स कॉलेज के संस्कृत में एमए का अध्ययन करते समय उनका आचार्य नरेंद्र देव से परिचय हुआ था और संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि आरंभ से ही थी। जयपुर के प्रवास काल में उन्होंने कहा वहाँ के समृद्ध पुस्तकालयों का भरपूर लाभ उठाया था और एमए में प्रथम आने पर कविराज को लाहौर और अजमेर में अध्यापक का कार्य मिल रहा था, किंतु उनकी योग्यता से प्रभावित किंग्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेनिस ने उन्हें वाराणसी से रोककर कॉलेज के सरस्वती भवन पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। इस पुस्तकालय को वर्तमान समृद्ध रूप प्रदान करने का मुख्य श्रेय कविराज जी को है। 1924 में वे किंग्स कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए गए और 1937 तक इस पद पर आसीन रहे। तो गोपीनाथ कविराज जी की मुख्य प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है, विशुद्धानंद प्रचखंड और विशुद्धानंद वाणी सात खंड में उपयोग किया गया था और वो उपलब्ध है। अखंड महायोग ये भी उनका एक कलेक्शन है। भारतीय संस्कृति की साधना इस विषय पर उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा। तांत्रिक वर्णमय में सशक्त दृष्टि के ऊपर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तांत्रिक साहित्य पर भी पुस्तकें लिखी। काशी की सरस्वत इस पर भी उन्होंने बुक लिखी। इसके साथ ही गोपीनाथ कविराज सेवानिवृत्त के पश्चात अपना समय प्राचीन ज्ञान विज्ञान अध्यात्म आदि पर चर्चा और तांत्रिक साधना में ही बिताते रहे। 1934 में सरकार ने उन्हें महाउपाध्याय का उपाधि प्रदान किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो विशेष इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार प्राप्त किया, विश्व भारती द्वारा देश उन्नति 1976 में उनको मिला और काशी विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि 1956 में प्राप्त हुई थी। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष गोपीनाथ कविराज जी के बारे में। और 12 जून 1976 को वाराणसी में ही इनका देहांत हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें गोपीनाथ कविराज जी के बारे में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ समाचारों की तरफ। दिल्ली, सुनते हैं समाचार अभी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
2: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
3: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव।

0: होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
2: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
3: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
4: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: प्यारे,
1: खुला आसमान है और धूप पड़ रही है और थोड़ी सी हवा भी चल रही है।
2: अच्छा।
1: और डालियां जगमगा रही है।
2: क्या बात है
1: जी। यार बड़ा अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, डालियां खुश है, हम कार्य कर रहे हैं, इधर उधर सब नए नए विचार हो रहे हैं और संकल्प बहुत चलते हैं। तो संकल्पों को और समय को बचा के रखना बहुत जरूरी। ये कल बाबे ने बोल दिया सही, बिल्कुल एकदम सभी जगह यही चल रही, क्या करूं, कैसे करूं, क्या है, कैसे होगा, ये सब नहीं, बस करना ही है, चलता ही रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आपको नमस्कार करते हैं, नवी किरण को, रमेश जी को और हमारे सभी शो को सुबह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं और अच्छा लगते रहेंगे और लगे हैं और लगते रहेंगे। और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति। और बस हम भी बनारस के लिए टिकट कटा रहे हैं परवा 4-5 दिन के लिए। जी हाँ, काई के पान बनारस वाले के बाद। और भी बहुत गाने हैं, जब मैं निकलूंगा, जब सबको बोलूंगा भाई बनारस जाना है तो बनारस का गाना गाना पड़ेगा, तो सभी बोलते हैं भाई काई के पान बनारस वाला। मैंने बोला दूसरा गाना, के दूसरा तो याद नहीं है, तो मैं वो गा के हम सुना दे, भले भी हम पूरे भी हम समझियो ना किसी से कम,

0: तो ये गाना हमको बनारस का जाने का हुआ, जब ये गाना हमको याद आ रहा है। उनसे बहुत सारे गाने हैं पान के ऊपर, और आपको नमस्कार करते हैं। और बस अब और भी जिनका भी जन्मदिन है, इन सभी को जहाँ गांव शहर राज्य सभी को नमस्कार, ओम शांति, और उनके परिवार को और आपको बहुत बहुत नमस्कार। चलते हैं सर, ओम शांति।
1: ओम शांति मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, 2:32 हो रहे हैं। आप हो मेरे साथ, आइए बातें करते हैं इला रमेश भट्ट जी के बारे में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों की एक सम्मानित नेता है, जिन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन की संस्थापक है, जिसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह संस्था लघु त्राण देने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा और बच्चों की देख बाल के कामों में संलग्न है। SEWA 100 से अधिक सहकारी समितियों की देखरेख में चलती है, जिन्हें महिलाएं संचालित करती हैं। जनवरी 2010 में SIEW की सदस्य संख्या 13 लाख तक पहुंच गई है। तो आइए इस पर बात करते हैं इला रमेश भट्ट के बारे में। इनका जन्म आज के दिन 1933 को 7 सितंबर को अहमदाबाद में हुआ था। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार
2: जी। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सुरेश जी, बोलिए कैसे हैं आप?
2: बस अच्छे सर, आप कैसे हो
1: जी?
2: हेलो, आप कैसे हो?
1: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
2: बस अच्छे है। अभी अभी हमारे मदन लाल जी ने एक बात बहुत बताई, पैसा तो हम बचाते रखते हैं, लेकिन समय कैसे बचाते रखेंगे। हमारा मदन लाल जी बोल रहे थे कि पैसा तो हम बचा के रखे, चलो भाई, पर हम समय कैसे बचाते रखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो कई सारी बातें हुई, मदन लाल जी ने बताई। मदन लाल को भी हमारा नमस्ते। और सोमवार है, शुरुआत है, फिर लास्ट सोमवार है हमारे जरा। आज अभी अभी हम जो हमारे थोड़ी सी दूरी पर 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम जाके आए, जो हमारे महादेव जी हैं, बड़ा महादेव जी है, उसको मसीहा महादेव बोलते हैं। हाँ, मसीहा महादेव बोलते हैं उसको, जिसको सर कोई मस हुआ है, मस का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी मन्नत मानते हैं, तो ये मस बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अभी अभी हम वहाँ जाके आए, ट्रेन में गए, ट्रेन में वापस आए, दर्शन करके गए, गन्ने के लिए गए थे। तो बस लास्ट सोमवार है आज, इस सोमवार के बाद कोई सोमवार नहीं आएगा, आएगा तो और महीना का आएगा। आपके वहाँ तो भद्रवा चालू हो गया है। सोमवार की शुभकामना। सोमवार का गाना बहुत दिनों से नहीं सुना, कड़बम वाला सुना देना। ठीक है सर। हेलो,
1: हाँ जी,
2: सुना देना गाना कड़बम वाला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: बस हमारा प्रिय गाना है वो कड़बम।
1: ठीक है ठीक है, चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। 9:34 हो रहे हैं और इला रमेश भट्ट के बारे में बातें हो रही थी, और अधिकांश समय इनका जो है सूरत में व्यतीत हुआ। उनके पिता का नाम सुमंत राय भट्ट था, जो कानून के जानकार थे। माता वना लीला व्यास महिलाओं के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनी रही। 1940 से लेकर 48 यानी 8 वर्ष तक सार्वजनिक गर्ल्स हाई स्कूल सूरत में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की, और 1952 में अपनी डिग्री पूरा करके MTB कॉलेज सूरत से प्राप्त की। इसके बाद इला ने अहमदाबाद के सर एल शाह लॉ कॉलेज में प्रवेश किया, और वहाँ उन्होंने 1954 में अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की, और हिंदू कानून में किए गए अनेक सराहनीय कार्य के लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो इला जैसे कि वकालत करने के बाद समाज सेवा में संलग्न रही, और समाज सेवा करते करते बतौर वकील अपना काम तो शुरू किया था। गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुई और इसलिए गांधीवादी महिला बनकर प्रसिद्ध हुई, और स्त्रियों की आत्मनिर्भरता के लिए उनके हित में उनके लिए अपना ध्यान केंद्रित किया, और कुछ समय श्रीमती नाती भाई दामोदर ठाकरे वुमन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाने के बाद 1955 में वो अहमदाबाद की एक इकाई की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में लॉ विभाग में आ गई, और वहीं से उनमें ये चेतना उभरी कि उन्हें कामकाजी महिलाओं के हित में काम करना है, उन्हें आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसीलिए उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन का गठन किया, जिसके ज़रिए स्वयं रोजगार में लगी महिलाओं को जानकारी देना, उनको गाइड करना, इस तरह से काम वो करने लगी। और 1979 में इन्होंने वुमन वर्ल्ड बैंकिंग की स्थापना की, जहाँ पर 1980 और 88 तक अध्यक्ष भी रही उसकी। और फिर 1977 में इला रमेश भट्ट को समुदाय नेतृत्व श्रेणी में मैग्सेसे पुरस्कार, 1984 में स्वीडन पार्लियामेंट द्वारा राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला, और इला रमेश भट्ट को भारत सरकार द्वारा 1985 में पद्मश्री की उपाधि मिली। अगले ही वर्ष 1986 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया, और 2001 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें अनरेरी डायरेक्टरेट की डिग्री प्रदान की। जापान द्वारा सम्मान प्रसिद्ध समाज सेविका इला रमेश भट्ट को 2010 के जापान के प्रतिष्ठित निवानो शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इला को ये पुरस्कार भारत में 30 वर्षों से अधिक समय से गरीब महिलाओं के विकास और उत्थान के कार्यों व महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पालन करने के लिए दिया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें इला रमेश भट्ट के बारे में। आशा करूँगा आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मिस करना आते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी खुशियों का जो है आपको शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आप जब इस तरह के खूबसूरत गाने सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, और इस आनंद को और बढ़ाने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और शख्सियत के बारे में बातें करेंगे, मामूठी। ये जो है एक विशेष व्यक्ति रहे हैं, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे और सबसे लोकप्रिय मलयाली के एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण में मोहनलाल और रसिल पुट्टी को पीछे छोड़ दिया है। टेलीविज़न अवार्ड 2010 द्वारा कराए गए सर्वे में सबसे लोकप्रिय मलयाली मम्मूटी को घोषित किया गया। मम्मूटी ने कहा कि मुझे मलयाली होने पर गर्व है। केरल के वाइकोम इलाके में चेम्पू गांव में किसान परिवार में पैदा हुए मम्मूटी की आरंभिक शिक्षा कोच्चि और कर्नाकुलम में हुई। कर्नाकुलम में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल इस पेशे में दिल लगाया, लेकिन वे जम नहीं पाए। दरअसल कॉलेज के दिनों में उन्हें फिल्मों का शौक हो गया था। इस शौक को पूरा करने के लिए वो फिल्मों में काम के लिए दर दर भटकते लगे, और हुआ

मनी का मानी जाती है। इसके पहले की सारी फिल्में वे अपनी प्रतिभा के बावजूद पहचान में नहीं आ सके। फिर बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने चंद सालों में ही 150 फिल्मों में काम किया और 1986 से ले उनकी जो 35 फिल्में आई थी, हिंदी फिल्मों के स्टारर एक साल में इतनी फिल्मों की कल्पना नहीं कर पाते। मामूटी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती की मलयाली के सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने वहाँ की कला सिनेमा को भी दिया एक टक्कर दी। अंडूर गोपाल कृष्ण समेत सभी संवेदनशील डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। हिंदी फिल्म प्रेमियों ने शायद मणिरत्नम की दलपति और राजीव मेनन की कोट्टू कोंदन का नाम सुना होगा। मामूटी का महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान बाबा साहेब अम्बेडकर है। 1999 में आई इस फिल्म ने उन्होंने अम्बेडकर की विशेष भूमिका निभाई और विशेष मेकअप से उन्होंने अंबेडकर का रूप ग्रहण किया था। फिल्म में वे अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं से जाहिर करते थे कि वे अंबेडकर ही हैं, क्योंकि हम अंबेडकर की चलती फिरती और स्थिर छवियों से बखूबी परिचित हैं। तो ये उनकी जो है विशेष कलाकारी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं एक और फिल्म की तरफ, बहुत ही प्यारा सा शिव भजन की तरफ जो सुरेश जी ने याद किया था, अखंड बम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अकड़ बम ये गीत आप सुन रहे थे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ममेटी के बारे में और उन्हें अंबेडकर फिल्म में एक विशेष भूमिका निभाकर अपने आप को जो है एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बन गए। और ममेटी को बाबा साहेब अम्बेडकर का किरदार निभाते हुए दूसरे पॉपुलर स्टारों की तरह हिंदी में ज़्यादा फिल्में नहीं की। हिंदी फिल्मों में धरती पुत्र में काम किया था। उनके एक दो और हिंदी फिल्म का जिक्र होता है, लेकिन वे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे हिंदी में। लेकिन केरल में उन्होंने काफ़ी काम किया, उनको काफ़ी सम्मान मिला और राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ केरल सरकार के 7 पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड 11 पुरस्कार हासिल उनको है। इसके बावजूद उनकी विनम्रता प्रभावित करती रही। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ख्याति प्राप्त अभिनेता ममटी 360 फिल्मों में काम कर चुके हैं और ममटी 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं, जो कमल हसन और अमिताभ बच्चन के बराबर है। इसके अलावा ममटी को केरल स्टेट फिल्म अवार्ड, 11 साउथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार ममटी को आज़ादी के सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल और प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब के साथ कालीकट विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से नवाजा गया और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं केरल के राज्यपाल और आरएस गवाई के ने एक समारोह में ये उपाधि प्रदान की। और समारोह के को संबोधित करते हुए श्री ममटी के सम्मान के लिए आभार भी व्यक्त किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: भुराराम बोल रहा, रमेश भाई। हेलो,
0: बहुत स्वागत है। भुराराम जी बोलिए।
1: अच्छा, आपको मेरा और मधुबन भाइयों को सबको मेरा राम राम है। साहब
0: राम राम आपको भी रेडियो मधुबन के भाइयों की तरफ से।
1: और वो भजन भी अच्छा सुना है, बाजे डमरू बोले शंकर भगवान का सुन रहा था और अभी आके सुना। और मैं बोला मैं भी फोन लगा के रमेश भाई नाराज हो जाएंगे, मैं करके राम राम तो कर दू।
0: शुक्रिया शुक्रिया आपका।
1: ओके सर। और अच्छा, और एक शंकर भगवान का और अच्छा वाला गुजराती में रहेंगे तो सुनेंगे तो अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ओके सर, ओके
0: ओके। भुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ। खूबसूरत भजन जैसे जैसे सवेरे हम लोग सुनते रहते हैं तो एक मन जो है हमारा खुशी से भर जाता है। और आइए आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो बात करते हैं 7 सितंबर को जन्मे उन लोगों की। बात अगर कहूँ तो मैं सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बंगाल साहित्यकार सुनील गंगोपाध्याय का जन्मदिन भी आज ही के दिन हुआ था 1934 को। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता महिलाओं और लघु वित्त आंदोलन की सम्मानित नेता इला रमेश भट्ट, इनका भी जन्मदिन आज है। तो 1933 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक रहे सुरेंद्र वर्मा, इनका भी जन्मदिन आज है और ये 1941 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मलयालम फिल्म अभिनेता ममटी, जिनके बारे में हमने बातें की, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1948 को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक और नाट्य निर्माता निर्देशक अनिल चौधरी का जन्मदिन भी आज है। 1950 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक आलोक मेहता जी का भी जन्मदिन आज 1952 में हुआ था इनका जन्म। भारतीय लेखक, फिल्म इतिहासकार और आलोचक भावना सोमैया का जन्मदिन भी आज है, 1950 में इनका जन्म हुआ था। और गोपीनाथ कविराज, संस्कृत के विद्वान, महान दार्शनिक, 1887 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बी आर इशारा, 1934 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका नीरज बानोट, 1963 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक पी भानुमति, 1925 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भानु जहांगीर कलजाई, भारतीय परिवार नियोजन विशेषज्ञ, 1917 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज हुआ है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। आशा करूँगा आप सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और आप भी अगर किसी का जन्मदिन पे विश करना चाहते हैं तो हमें बताइए कि आप किन को विश करना चाहते हैं। तो आशा करूँगा कि आप सभी को, जैसे हम लोग कुछ बातें सुनाते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो शायद आपको भी याद तो आता ही होगा कि हाँ इनका जन्मदिन है आज, तो इनके बारे में आप कुछ बातें सुने होंगे या समझे होंगे, तो वो पुरानी सारी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती होगी, है ना। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जाते जाते एक और खूबसूरत भजन आपको सुनाएंगे और ये भजन भी साधना सरगम जी का आपको छोड़े जा रहा हूँ। और आशा करूँगा कि जब नए दिन की शुरुआत हो, सुनते रहो मुस्कुराते।

ये आज है अजा एकादशी, तो इस एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वही रिश्ते कभी बुढ़े नहीं होते। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय आप सभी को देने वाली हूँ। रेसिपी भला कैसे भूल सकते, आज एकादशी है तो मैं आपको फराली रेसिपी ही सिखाऊंगी। खुशनुमा जीवन की भी ढेर सारी बातें करेंगे और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वहां रिश्ते कभी बुढ़े नहीं होते। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी, तो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत ही सुंदर जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। बहू, इस घर की चाबी तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। सास ने इस तरह की शर्त रखी। नई नवेली दुल्हन काव्या ने चौंक करके अपनी सास कमला देवी की ओर देखा। उसने सोचा शायद माँ जी घर के नियम बताएगी, सुबह 4 बजे उठना होगा, सिर पर पल्लू रखना होगा या किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी होगी। काव्या ने धीरे से कहा, जी माँ जी, आपकी हर बात मानूंगी। कमला देवी अलमारी से चाबियों का बड़ा गुच्छा लेकर के आई। उन्होंने उसे काव्या की हथेली पर रखते हुए कहा, ये घर की चाबियां है, लेकिन मेरी शर्त सिर्फ एक है। क्या शर्त है माँ जी? कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में कभी किसी की गलती का फैसला उसी दिन मत करना। काव्या को बात समझ नहीं आई। मतलब? कमला देवी मुस्कुराई। गुस्से में इंसान गलती नहीं देखता, सिर्फ दोषी ढूंढता है। इसलिए इस घर में 24 घंटे का नियम है, कोई भी नाराजगी हो फैसला अगले दिन होगा। काव्या को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह हड़कंप मच गया। ससुर जी की दवा की शीशी फर्श पर टूट गई थी। वह दवा बहुत महंगी थी और उसी दिन लानी थी। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, घर में मतलब उसी दिन लाए थे, तो कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। घर में काम करने वाली बाई घबरा कर बोली, मालकिन मुझसे गलती हो गई। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आज इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसे लगा इतनी बड़ी गलती पर भी डांट नहीं। काव्या बड़ी हैरान हो गई, आश्चर्य हुआ उसको। अगले दिन कमला देवी ने बाई को बुलाया, कल तुम बहुत डर गई थी ना? बाई रोने लगी, हाँ मालकिन, रात भर नींद नहीं आई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, गलती दो तरह की होती है, एक लापरवाही की, दूसरी इंसान होने की। तुमने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा था, आगे ध्यान रखना, ठीक है? बाई रोते रोते उनके पैर छूने लगी। काव्या ये सब देख रही थी। एक सप्ताह बाद खुद काव्या से बड़ी भूल हो गई। उसने जल्दी में वॉशिंग मशीन में ससुर जी की ऊनी शोल डाल दी थी। शोल सिकुड़ गई, उसकी कीमत भी बहुत थी और वह ससुर जी को उनके पिता की निशानी के रूप में मिली थी। काव्या के हाथ कांपने लगे। अब तो माँ जी बहुत नाराज होगी, लेकिन कमला देवी ने वही कहा, आज कुछ नहीं बोलेंगे। उस रात काव्या रोती रही, उसे अपनी गलती बार बार याद आती रही। अगले दिन उसने खुद सास के सामने जाकर कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। देखा बहू, अगर मैं कल ही डांट देती तो तुम सिर्फ मेरी डांट याद रखती, लेकिन एक रात सोचने के बाद तुम्हें अपनी गलती खुद समझ आ गई। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी बोली, डर इंसान को कुछ समय के लिए बदलता है, लेकिन समझ पूरी जिंदगी के लिए। समय बीतता गया, काव्या अब इस नियम को समझने लगी थी। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो बहुत चिड़चिड़ा था। उन्होंने बिना बात किए खाना खाया और कमरे में चला गया। काव्या को बड़ा बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि आज वह भी उनसे बात नहीं करेगी। इतने में कमला देवी उसके पास आई। क्या हुआ? माँ जी, इन्होंने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। कमला देवी मुस्कुराई, फैसला आज करोगी या कल? काव्या चुप हो गई। अगली सुबह अमित खुद उसके पास आया। माफ़ करना, कल दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। काव्या को अपनी सास की सीख याद आ गई। अगर उसने उसी रात झगड़ा कर लिया होता तो बात बढ़ जाती। उसने मुस्करा कर कहा, आप चाय पीजिए, बाकी बातें बाद में। कुछ महीनों बाद पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। पूरा मोहल्ला उस बेटे को कोस रहा था। काव्या भी बोली, कैसा बेटा है। लेकिन कमला देवी ने कहा, पूरी कहानी जाने बिना किसी पर फैसला मत करो। 2 दिन बाद पता चला कि बेटा खुद कैंसर से जूझ रहा था और इलाज के लिए दूसरे शहर जा रहा था। उसने माँ को अकेला छोड़ने के बजाय ऐसी जगह रखा था जहाँ उनकी देखभाल हो सके। काव्या का सिर झुक गया। कमला देवी ने कहा, बहू, आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। उस दिन के बाद काव्या ने लोगों पर तुरंत राय बनाना छोड़ दिया। साल बीत गए, कमला देवी बुढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने वही चाबियों का गुच्छा फिर से काव्या के हाथ में रखा। आज से ये घर पूरी तरह तुम्हारा है। काव्या की आंखें भर आई, माँ जी आपने मुझे चाबियां तो पहले ही दे दी थी। कमला देवी मुस्कुराई, नहीं बहू, उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ लोहे की चाबियां दी थी, आज मैं तुम्हें इस घर के रिश्तों की चाबी दे रही हूँ। वे कौन सी? कमला देवी ने धीमे से कहा, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वही रिश्ते कभी बूढ़े नहीं होते। कुछ वर्षों बाद जब काव्या खुद सास बनी, उसकी बहू से गलती से उसकी सबसे प्रिय चाय की केटली टूट गई। बहू डर के मारे रोने लगी। काव्या ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटी आज नहीं, इस घर में किसी की गलती का फैसला अगले दिन होता है। बहू हैरान होकर उसे देखने लगी। काव्या की आंखों में अपनी सास की छवि तैर रही थी। उसे समझ आ गया था कि घर दीवारों से नहीं बल्कि उन नियमों से बनते हैं जो रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। उस दिन से उस घर में एक परंपरा शुरू हो गई, गुस्से में कभी फैसला नहीं होगा, पहले एक रात गुजरेगी फिर बात होगी। और शायद यही वजह थी कि उस घर में बर्तन कभी कभी टूटते थे लेकिन रिश्ते कभी नहीं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह हर एक के लिए है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुरंत फैसला नहीं लेना है। जोश में अक्सर हम होश गवा बैठते हैं, इसलिए तुरंत फैसला नहीं लेवे, कम से कम 24 घंटे के ऊपर डाल देवे। तो हो सकता है कि एक घर में नहीं, हर घर का रिश्ता बुढ़ा नहीं होगा और मजबूत होगा, सभी खुश रहेंगे। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो क्या करेंगे? मंदाग्नि देखिए किसे कहते हैं, आपको पता है? पेट और पाचन की समस्या होती है ना, तो उसको मंदाग्नि की तकलीफ कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो देखिए, पहले आधा किलो अदरक अच्छी तरह से उबाल लीजिए, फिर उसे छील करके पीस लीजिए, और उसमें 100 ग्राम हल्दी मिला दीजिए, ठीक है? पीस करके, मतलब हल्दी पाउडर मिलाना है। इसके बाद इसमें शेर भर पुराना गुड़ मिलाकर रख दीजिए। इस औषधि को रोज आप 3-3 ग्राम की मात्रा में लीजिएगा। इससे अग्नि दीप्त होती है और पाचन शक्ति बढ़ाती है, और साथ ही साथ खांसी भी दूर हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो पहले आधा किलो अदरक अच्छी तरह से उबाल लीजिए, फिर उसे छील करके पीस लीजिए, और उसमें 100 ग्राम हल्दी पाउडर मिला दीजिए। इसके बाद, मतलब हल्दी पाउडर, अगर कच्ची हल्दी है तो अच्छी बात है, उसके पेस्ट करके मिला दीजिए, ठीक है? फिर आप पुराना जो गुड़ है वो शेर भर लीजिए, मतलब शेर बोले तो आधा किलो, ठीक है, इसमें मिला दीजिए, और इस औषधि को 3-3 ग्राम की मात्रा में रोज लीजिएगा। इससे अग्नि दीप्त होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है, और साथ ही साथ खांसी भी दूर होती है। अब मैं दूसरा और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। भूख कम लगने पर पेट की गैस, भोजन के प्रति अरुचि, भूख कम लगना, कब्ज, जीभ व गले में बलगम चिपटना, ऐसी स्थिति में लगभग 5 ग्राम अदरक महीन काट करके आवश्यकता के अनुसार इसमें नमक डाल करके 1-1.5 सप्ताह रोज आप इसको खाइए, तो ये सारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर भूख कम लगती हो, पेट की गैस हो, भोजन के प्रति अरुचि हो, कब्जियत की शिकायत हो, जीभ व गले में बलगम चिपटता हो, तो ऐसी स्थिति में लगभग 5 ग्राम अदरक बारीक काट करके आवश्यकता के अनुसार उस पर नमक डाल करके 1-1.5 सप्ताह तक रोज आप खाइएगा, इसका सेवन करिएगा, तो इन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर चोट लग गई हो तो क्या करेंगे? अदरक पीस करके गर्म कर लीजिए, इसके दर्द वाले स्थान पर लगभग आधा इंच, मतलब मोटा ही, ठीक है, इतना मोटा रखना है, लेप करिए और पट्टी बांध दीजिए। लगभग 2 घंटे बाद लेप को हटाइए और सरसों का तेल लगा करके सेक कर लीजिए। इस प्रक्रिया को लाभ होने तक, मतलब आप रोज करिए। अगर चोट लग गई हो तो अदरक पीस करके गर्म कर लीजिए, फिर इसके दर्द वाले स्थान पर लगाइएगा, थोड़ा सा आधा इंच मोटी ऐसे लगाना है, ठीक है, फिर पट्टी बांध लेना है। लगभग 2 घंटे बाद लेप को हटा करके सरसों का तेल लगा करके इसका हल्का सा सेक कर लीजिए, ठीक है, तो इस तरह चोट वाला स्थान भी ठीक हो जाएगा। अपच की समस्या है तो भोजन के उपरांत अदरक और नींबू के रस में सेंधा नमक मिलाकर सुबह सुबह पीते रहिए, तो अपच की समस्या दूर होगी और भूख बढ़ेगी। कान का दर्द है तो अदरक का रस किंचित गर्म करके कान में डालिएगा, कान का दर्द तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। कान का दर्द है तो आप अदरक का रस हल्का सा गर्म करके कान में डालिएगा, इससे 1-2 बूंदी डालनी, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो कान का दर्द में तुरंत ही राहत मिलेगी। दंत शूल है, मतलब दांतों में दर्द है, तो अदरक के टुकड़े दांतों के बीच में चबा कर रखिएगा, इससे दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। दांत का दर्द है तो अदरक के टुकड़े दांतों के बीच में दबा कर रखिए, इससे दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, निमोनिया है तो अदरक के रस में 2-1 वर्ष पुराना घृत और कपूर मिलाकर गर्म करिए और लेप करिए, इससे तुरंत ही लाभ मिलेगा। अदरक के रस में 1-2 साल पुराना घृत बोले तो घी और कपूर मिला करके गर्म करके लेप करिए, इससे निमोनिया में काफ़ी राहत मिलेगी। तो सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या था? श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या है? तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदवंतहीन सी आशा हूं जो सबसे सुंदर काव्य रचे। मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, बात करेंगे। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो,
0: कैसे हैं आप?
1: आवाज आ रहा है
0: जी,
1: आवाज आ रहा है। हेलो,
0: तो अच्छी बात है ना, आपको सुनाई दे रहा है?
1: हाँ, आपको सुनाई दे रहा क्या?
0: हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ।
1: लाइव है क्या, ऑन एयर है या ऑफ एयर?
0: अभी ऑन एयर बात कर रहे हैं आप, और आज का प्रश्न है श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम बताना है। विषय है, ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान के रूप में वो हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: तो सबसे पहले आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से नमस्कार, और सभी का स्वागत और सुविचार और विषय बहुत अच्छा है। मैं थोड़े में विषय के बारे में बोलता हूँ और सवाल का जवाब तो आप एयर दूंगा। देखो, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, हम उससे ध्यान योग लगा सकते हैं, उससे मिलन भी कर सकते हैं। आत्मा आत्मा अभिमानी रूप में उनसे मिलन भी कर सकते हैं, शक्तियां ज्ञान गुण ले सकते हैं, लेकिन वो हमको दिखा नहीं है। तो वो अगर हम ईश्वर के प्रति आस्था, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा रखेंगे तो हमें शक्ति तो देता ही है, और किसी न किसी रूप में कोई निमित्त बनाकर संकट में हमें कोई भी व्यक्ति आके, ईश्वर जैसा आके वो हमको साथ दे देता है। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो और ईश्वर से ध्यान योग करो, तो वो निमित्त बनाकर किसी ना किसी को जरूर भेजता है और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। और सभी को नमस्कार, ओम शांति दीदी।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, विषय भी बहुत ही सुंदर है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। आज का प्रश्न है श्री कृष्ण जी के धनुष का और चक्र का नाम आपको बताना है, और विषय बहुत ही सुंदर है कि देखिए, ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान लाते रहते हैं। हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ चट्टाना से, कैसे हैं दीदी?
0: हाँ जी, नमस्कार सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: और बताओ, तो आज हमारे गुजरात में आज लास्ट सोमवार है सावन महीना का।
0: जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि आज एकादशी हो गई है।
2: हाँ, सोमवार भी है और ग्यारह भी, दोनों साथ में है एकादशी। और
0: जी,
2: तो हेलो दोनों की शुभकामनाएं सबको, और बहुत अच्छा विषय तो हमारे सुभाष भाई ने कई सारी बातें बता दी हैं। तो बस मैं भी यही दीदी कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ न कुछ तो रूप में हमारे पास आ ही जाता है। और कोई भी हमारा काम, कोई हम कोई काम में अटक गए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, तो कुछ न कुछ तो लोग भगवान के रूप में आ ही जाते हैं। तो इसे हम भगवान ही मानते हैं कि भाई चलो, हम कोई भी मदद आ जाती है तो हम मानते हैं चलो भाई भगवान ने हमारा काम कर दिया
0: जी,
2: तो हम इसे भगवान ही मान लेते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो ईश्वर तो दिखाई चाहे कुछ भी ना दे, लेकिन हमारे साथ ही रहता है। कोई भी संकट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो बस इसका ईश्वर का कोई भी काम हो तो ईश्वर का धन्यवाद मान ही लेना, क्योंकि ईश्वर का धन्यवाद मानने से भगवान भी खुश हो जाता है कि चलो भाई हमारा भक्त हमको याद तो कर रहा है किसी न किसी बात में
0: जी।
2: तो बस हम तो दीदी एक ही कहना चाहे कि परमात्मा के साथ रखिए, परमात्मा से ही जुड़ते रहिए, तो परमात्मा आपका हर काम अच्छी नीति से रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ रहेगा
0: जी।
2: नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी अपने बात को रखी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय प्रैक्टिकल है और हर एक के जीवन में अनुभव होता ही होगा, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी कि बस अब तो हम चारों खाने चित्त हो गए, फिर एक प्रकाश की किरण आती है, कोई ना कोई बंदा हमारे लिए तैयार रहता है कि आप क्यों घबराते हो, ये ऐसा करो, ऐसा करने से आपका ऐसा हो जाएगा, और सचमुच में वैसा हो जाता है, खुशियाँ लौट आती है, ऐसा होता है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसी तबीयत है आपकी अब?
3: बस बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ऐसे बीच में दो चार दिन पथरी की बहुत तकलीफ हुई थी, तो अभी दवाई वगैरह ली तो ठीक है, और बिल्कुल आज प्रोग्राम सुन रहे है, विषय भी बहुत अच्छा आपने रखा है दीदी। बिल्कुल, जैसे कि हम किसी वृक्ष के हड़ में नीचे पानी डालते हैं तो पान तक और फल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम निस्वार्थ सेवा भाव रखे ना तो भगवान तक पहुंच ही जाती है और वो अच्छे फल देते हैं
0: जी।
3: और देखो ना, जो नेपाल में इतनी बड़ी बाढ़ आई और हजारों लोग हताहत हो गए, तो कई लोग ऐसे निस्वार्थ थे तो सेवाएं की और कर भी रहे हैं, और जो वीडियो में देखा तो कई कई लोग तो 9-9 दिन से बाहर निकले, 9 दिन तक भूखे प्यासे रहे फिर भी जिंदा बाहर
0: जीवित है निकले। सही है।
3: तो ऐसा है कि कहते हैं ना कि हम जीवन में अकेले ही आएंगे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन साथ में क्या लेके जाएंगे हम
0: जी।
3: कोई पैसा धन जो भी हम बीच में कमाते हैं वो आखिर में लेके तो नहीं जा सकते
0: जी। बिल्कुल।
3: तो कुछ कुछ ऐसा जो कार्य करे और कुछ सेवा भाव दया भाव रखे ना दीदी, तो बिल्कुल भगवान भी हमारे पर प्रसन्न रहेंगे
0: जी।
3: और बस ये बात है दीदी,
0: इस तरह ऐसे विकट परिस्थिति में हम लोगों की मदद करके भी दुआएं कमा सकते हैं निस्वार्थ भाव से।
3: मेरा भी यही कहने का मतलब है
0: जी।
3: और कई लोग क्या करते हैं कि सेवा के नाम पर जो स्वार्थ ढूंढते हैं, और दीदी पहले मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या तो एक रुपया भी कम नहीं लेते, और ज्यादा से ज्यादा लूटने की कोशिश करते हैं, और वही लोग दान धर्म पुण्य करने की ये करते हैं, तो फिर क्या फायदा दीदी। एक तरफ तो हम किसी से लेके ये वो कुछ देखते ही नहीं, और फिर दान धर्म पुण्य करके ही कोई फायदा नहीं, एक तो ये भी बात है दीदी
0: जी।
3: ये आप क्या कहेंगे इस बारे में?
0: बिल्कुल कोई ठीक है, जैसे हाँ पैसे भरे लोग खरीदने आ रहे हैं उनका आप कम नहीं करो चलेगा, लेकिन गरीब है, गरीब की स्थिति वैसे ही पता चल जाते हैं कि ये गरीब है या मध्यम है या पैसे वाले हैं, तो गरीब के ऊपर तो हम करना ही चाहिए कि चलो कोई बात नहीं 2 रुपए कम कर दो।
3: सही बात है। वैसे ही अगर उनके मन में दान धर्म पुण्य का जो भाव है तो फिर थोड़ा सा देखना लोगों की परिस्थिति भी देखकर मदद करनी
0: चाहिए। बाकी
3: क्या
0: है, बहुत जनों की आदत है फिक्स रेट की, तो वो अच्छा है, वो मिनिमम कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसमें वो धोखाधड़ी नहीं करते जो फिक्स रेट वाले कि भाई बस इतने लेने हैं तो इतने ही लेने हैं, ठीक है। बहुत जने क्या है कि 4 गुने बता करके फिर थोड़ा कम कर देते तो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा कम कर दिया, वो भी बात सामने आ जाती, पता चल जाता है वो भी।
3: हाँ वही तो
0: जी।
3: तो चलो ये बात है तो दीदी, और भी बहुत अच्छा विषय है, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों और भी जुड़े और अपने भी प्रतिक्रिया भाव व्यक्त करें मेरी।
0: जी जी, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा।
3: जी जी जी, जरूर
0: जरूर
3: जी जी, नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी आज के विषय में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम आपको बताना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आप दोनों में जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। तो आइए यहाँ पर हम एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम आपको बताना है। विषय बहुत ही सुंदर है। ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान लाते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकल विषय है, हर एक का अनुभव होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर आया होगा, तब आपने आशा छोड़ दी होगी कि अब तो ये काम होने वाला नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं और कौन करेगा मेरी मदद। हम हताश हो जाते, निराश हो जाते। उस समय अचानक कोई आ करके हमें कह देता है कि क्या हुआ, अरे इतना सा काम है, क्यों घबरा रहे हो, हम कर लेंगे। और हमारी खोई हुई खुशियाँ लौट आती कि अच्छा आप कर लोगे, कैसे कर लोगे, अरे आप चिंता मत करिए हम कर लेंगे, ऐसे नहीं इसको ऐसे करिए तो हो जाएगा। अरे रास्ता बता देते वो भी बहुत बड़ी बात है। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें इस कार्य को कैसे हम पूरा करेंगे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी फिरोज भाई नमस्कार, ओम शांति, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे है, और आज का प्रोग्राम भी अच्छा है। कृष्ण भगवान का कोई प्रश्न पूछे आपने?
1: जी प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या है?
2: वो तो मेरे को मालूम है
1: जी।
2: टाइम नहीं हो तो अभी बोल देता हूँ।
1: टाइम तो है, आप चाहे तो फिर सुना सकते हैं।
2: बराबर,
1: हाँ नहीं तो आप ऐसा गीत बना दीजिए उसमें दोनों ही जवाब आ जाए। हाँ तो तुरंत ही बना देते।
2: बना देता।
1: हाँ जी।
2: तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, सारंग हाथ लेके सुदर्शन चक्र साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
1: क्या बात है। चले बहुत अच्छा। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
2: विषय के बारे में के मालिक ईश्वर अल्लाह से अपने को श्रद्धा रखनी है, और कोई भी काम हो तो मालिक को ध्यान, ईश्वर को अल्लाह को ध्यान में रख के अपन कोई भी काम करेंगे तो अपन निष्फल नहीं जाएंगे, अपना सफल ही काम होगा।
1: नहीं देखिए, विषय से थोड़ा सा आप अलग जा रहे हैं। ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते जो हमारे जीवन में खुशी या सुख या समाधान का मतलब लाते रहते हैं।
2: सही बात है आपकी, तो ईश्वर अल्लाह है ना कोई तो अपना काम में जरिया बना देता है।
1: जी
2: जी, किसी के कोई इंसान के रूप में, कोई अपने भाई के रूप में, कोई अपने पड़ोसी भाई के रूप में, कोई अपना मित्र के रूप में है, कोई ना कोई काम में रुकावट अपने को नहीं आती। जी
1: जी जी जी बिल्कुल।
2: तो ये जरिया बना देता है कोई ना कोई तो।
1: जी, जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई
2: जी।
1: हाँ जी,
2: ओम शांति, ओम शांति,
1: ओम शांति। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। तो विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है कि कोई भी कार्य रहता नहीं है किसी के बिना, है ना। मैं नाराज होकर के चली भी जाऊंगी तो भी मेरी जगह कोई दूसरा ले लेगा, लेकिन वो काम रुका नहीं रहेगा। तो ऐसा ही होता है। और देखिए कभी कभी हम सोचते ही रहते हैं कि अब क्या होगा, ये कार्य मुझे नहीं आता है, अब कौन करेगा, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल जाता है। हेलो।
3: हाँ जी दीदी, ओम शांति।
1: हाँ जी सगुना बहन नमस्ते, कैसे हो आप?
3: नमस्ते, बहुत अच्छे हैं
1: जी।
3: आज का विषय भी बहुत अच्छा है, परमात्मा किसी न किसी रूप से हमारी मदद करते ही है
1: जी।
3: हमारे तो बहुत अनुभव है दीदी। हाँ, एक अनुभव है, जब भी हम हमारे रेडीमेड कपड़े का धंधा था
1: जी।
3: हाँ, तो अहमदाबाद से हम माल लेके आते थे
1: जी।
3: और 30-40 किलोमीटर जितना होगा हमारे गांव से, वो बासरिया गांव बोलते, हाँ वहां पर आए और हमारी गाड़ी खराब हुई दीदी।
1: अच्छा।
3: तो मेरे को वो उन्होंने बोला कि आप है ना गाड़ी पहले खराब हुई, आप दूसरी रिक्शा में चले जाओ माल लेके और मैं आता हूँ। जब कोरोना का समय चलता था दीदी
1: जी।
3: हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ, मैं तो गई रिक्शा में माल लेके, फिर मेरे को टेंशन आ गया, मैं अभी अकेले कैसे आएंगे, गाड़ी खराब हो गई है और कैसे आएंगे। तो मैं रिक्शा में गई और 10-15 मिनट हुई और वो आ गए
1: जी।
3: मैं बोला इतने जल्दी कैसे आ गए, तो एक भाई थे
1: जी।
3: तो भाई ने उन्होंने उनको मदद की और मुंह ऐसे बांधेला पूरा और दर्द लगे ऐसा भाई था, तो भी उनको बोला कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है भाई जी। तो बोले कहाँ जाना है, तो बोलते कि मेरे को जुटाना जाना है, तो बोले क्यों चिंता करते हैं मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो भाई ने छोड़ दिया यहाँ पर आके, फिर हमने उनको चाय नाश्ता कराया। भाई बोलते नहीं नहीं मैं जाऊँ नहीं, मैं बोला चाय नाश्ता करके जाऊँ, आपने बहुत मदद की है, जैसे हमारी मदद की ऐसी परमात्मा आपकी करेंगे मदद। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो एक दूसरे के काम आना जरूरी है
1: जी।
3: फिर ऐसे बात निकली तो हमारे जाके थे और बहुत हमारे, मैं बोलती हूँ कि बाबा के ऐसे कितने अनुभव हुए मेरे
1: जी,
3: बहुत अनुभव हुए ऐसे
1: जी,
3: बाबा
1: जी, जी।
3: मदद तो करते ही है हमको
1: बिल्कुल।
3: तो गांव में हमारे देखो पाठशाला भी चल रही है, हम तो जाते हैं कभी कभी, नहीं कभी जाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर नीचे स्थिति होती है पाठशाला में
1: जी।
3: हाँ एक दीदी है तो बोल तो हर रोज मुरली चलाते हैं, तो हम बोलते हैं कि कभी कभी किसी को दिया करो
1: जी,
3: तो मुरली चलाना। बाबा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी पहले सबको आगे रखा है
1: जी।
3: हाँ तो हम बोलते हैं कि भाई आप दूसरे को भी दे दो, हम भी कभी मुरली चला लेंगे। तो बोलते है कि नहीं अरे कोई बात नहीं, तो हम तो बोलते है कि बाबा तुम सबको आगे रखते
1: जी, जी,
3: ये सब चल रहा है, फिर भी हम जाते इससे नहीं नहीं जाते, लेकिन उसकी याद तो हमेशा रखनी चाहिए भगवान की याद। देखो जीवन में एकदम अंधेरा है, मैं तो यही सबको बोलती हूँ कि सदा परमात्मा को याद करिए, उसको साथी बनाइए, बहुत हमारा अच्छा ही होता है। ओम शांति
1: जी, बहुत बहुत आभार। ओम शांति सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, बहुत अच्छी बात बताई है, प्रैक्टिकल अपनी ही बात बताई है, तो बिल्कुल सही है। हर एक के साथ का अनुभव होगा, ऐसे नहीं कि किसी के साथ अनुभव नहीं हुआ होगा। चलिए मैं अपना ही सुना देती हूँ कि एक बार मुझे ट्रेन से कहीं जाना था और घर से ही लेट हो गई, मैंने कहा आज तो ट्रेन मिस हो जानी है। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो।
4: हाँ दीदी, तो आप जो बात कर रही थी तो मेरा भी एक बहुत बड़ा कष्ट जो याद आ रहा है अनुभव,
1: कि
4: जगदीश मेरा जो बड़ा बेटा है ना, तो वो जब पैदा हुआ था कुछ दिन ही हुए थे, तो बहुत बीमार हो गए, तो हम अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया कि चलो अब तो ये वो हो गया है तो आप घर पर सीधे चले जाइए।
1: अच्छा।
4: तो हम दवा खाने से बाहर आकर बैठे, हताश निराश, आंखों में भी आंसू थे वो, तो अचानक एक भगवान के रूप में रिक्शा वाला आया और कहा कि चलो आप रिक्शा में बैठो, मैं एक अच्छा दवा खाने में ले जाता हूँ। तो हम बैठ गए, कुछ सूझ भी नहीं रहा था, तो दवा खाने में उतारा, पैसा भी नहीं लिया और जल्दी इमरजेंसी में दाखिल किया, तो बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद ठीक हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। अगर शायद मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो रिक्शा वाला भगवान के रूप में न आता, हमें उस अस्पताल पर न जाता तो क्या होता। तो एक तो ये बिल्कुल आपने जो विषय है ना, भगवान के रूप में कोई भी अगर हम भी कुछ ऐसे मदद करे जो भगवान के जरिए, तो भगवान भी किसी न किसी को भेजेगा जरूर। दीदी
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने
4: जी, जी जी,
1: बहुत सुंदर आपका भी अनुभव है। हर एक का ऐसा कोई ना कोई अनुभव होगा, तो जैसे मैंने भी ट्रेन का कह रही हूँ कि अब तो आज तो ट्रेन मिलनी नहीं है और जाना बहुत ज़रूरी था, मैंने कहा जाने दो भगवान है, ईश्वर करेगा सो सही, निकलो तो सही घर से निकले। और सचमुच ट्रेन में 10 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन ऑलरेडी ट्रेन 5 मिनट लेट थी, फिर कुछ कारण हो गया कि वो ट्रेन रुकी हुई थी और जैसे ही ट्रेन में बैठी और ट्रेन रवाना, तो आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, आप कैसे मदद करते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे मतलब कितनी खुशी होती है कि अब ये चीज़ हो ही नहीं सकती और वो हो जाती है, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो आपके हमारे सभी के होंगे। हेलो,
5: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम।
5: अच्छा, वो उसका ये चक्र का तो बताया था
1: जी,
5: और इनके जो धनुष का नाम है सारंग।
1: अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ, है ना।
5: तो
1: और
5: मैं कोई भूल, हाँ वो भूल बोलते बोलते भूल गया था मैं।
1: कोई बात नहीं, और विषय के बारे में आप कुछ कहेंगे?
5: विषय के बारे में तो अभी बतावे कि ईश्वर तो अपने बोले तो जो भी अपन करते हैं, काम करते हैं, उसमें ईश्वर का ही साथ रहता है। लेकिन ईश्वर के ऊपर ही भरोसा रखो, सब कुछ करने वाला तो वही है। और जब काम भी ये ईश्वर कोई भी वाले से अपने कोई भी तकलीफ में मदद करता तो ईश्वर ही करता, तो ईश्वर को प्रति जागरूक और ये और अच्छे भगवान में विश्वास रखो तो सब कुछ है होता है। मैं आगे तो क्या बोलूँ मैं।
1: जी जी जी,
5: ओके सर,
1: बहुत बहुत आभार आपका बुरा राम जी। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, ईश्वर में विश्वास होगा तो किसी न किसी को निमित्त बना देंगे, और हमें पता ही नहीं चलने देगा कि कौन निमित्त बन के हमारी मदद कर रहा है। तो ऐसा होता है, एक बहन का फोन आया था, वो बता रहे थे कि वो चलते चलते रास्ते में गिर गए, ठीक है, और जैसे ही गिरे उनके भी फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तो उठने की ताकत नहीं रहती, अब करे तो क्या करे। जितने पहचान वाले देखे तो सोचा कि पहचान वाले आएंगे पास में, लेकिन उन्होंने देखा अनदेखा कर दिया, और कुछ गांव के ही लोग दौड़ के आए और उनको मतलब खड़ा भी किया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो बोल रहे कि मेरे लिए तो वही भगवान है जिन्होंने समय पर मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर तो घर वालों को फ़ोन करके सभी आ गए। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई काम आता है तो उनको कभी भूल नहीं पाते हैं, और ईश्वर को तो खैर कभी नहीं भूल पाते हैं। धन्यवाद तो ईश्वर का ही देते हैं कि भगवान आपने ऐसे समय में इनको भेजा कि सचमुच मेरे को एक नया जीवन मिल गया, ऐसे फीलिंग आती है ना। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा बहुत जनों के साथ होता होगा। कभी काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, आता ही नहीं है कैसे करे क्या करे, और कोई ना कोई निमित्त बन जाता है कि चलो आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम किस लिए, हम आपको सिखा देते हैं, और वो काम इम्पोर्टेंट होता है और वो हो जाता है। तो हर एक का अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह समस्याओं से गिर जाते हैं और कोई समस्याओं के बीच समाधान ले आता है तो उसको हम कभी नहीं भूल पाते हैं, और भूलना भी नहीं चाहिए, और उस समय हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते और देना भी चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, और हर एक के होंगे अनुभव। तो सभी के जीवन में कहते हैं ना, अनुभव से ही परिपक्व बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस जैसे बेवक्त कोई हमारी मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए। प्रेरणाएं तो ऐसे ही मिलती है ना, हमें भी प्रेरणा ले करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वो भी विपत्त घड़ी में। तो इंसान ही इंसान के काम आता है, तो बस एक गांठ बांध दीजिए कि हमें भी इंसान की मदद करनी ही है। लेकिन आजकल तो सोच समझ करके करना है, आजकल बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं कि गए मदद करने और कुछ हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है। वो भी खैर सिचुएशन से पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है, कोई जानबूझ करके परेशान करता है तो वो मदद नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें भी आजकल परख शक्ति की आवश्यकता है, बाकी मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर का मदद करने वालों के लिए धन्यवाद दो उतना कम है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 105।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में, आज आपको फराली आइटम सिखाएंगे क्योंकि आज है अजा एकादशी। एकादशी का उपवास तो रखते ही हैं माताएं बहनें, तो चलिए आपको फराली आइटम सिखाते हैं, फराली हांडवा। ठीक है, आजकल तो व्रत उपवास इतने इजी हो गए कि पूछे मत, जो फराल लेते हैं उनके लिए, कोई तो निराहार भी रहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जो फराल खाते हैं वो सोचते हैं कि अरे आज क्या बनावे क्या नहीं। तो आजकल तो बहुत ऑप्शंस है, आप फराली इडली बना सकते हैं, फराली हांडवा बना सकते हैं, फराली चीला बना सकते हैं, फराली पकौड़े बना सकते हैं, फराली आलू बड़े बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हांडवा सिखा देते हैं, कभी इडली भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हांडवा के लिए आप सामग्री ले लीजिएगा कुट्टू का आटा, कुट्टू जिसको राजगिरा कहते हैं, ठीक है, राजस्थान में तो कांगनी भी कहते हैं इसको। तो राजगिरा का आटा ले लीजिए, फिर आप थोड़ा सा लीजिए सिंगाड़े का आटा, ठीक है, फिर थोड़ा सा आप लीजिएगा मोरैया, तो मोरैया को भी पीस करके इसका आटा कर लेना है, तो मोरैया का आटा। फिर आप लीजिएगा लौकी, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, तेल, नमक, अदरक ले सकते हैं आप, दही लीजिएगा, हल्के से शक्कर भी लीजिएगा, तो तिल लेना है आपको, सिंगदाने लेना है। ठीक है, फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लीजिए राजगिरे का आटा, थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा, आप लीजिए ये जिसको मोरैया बोलते हैं, मोरैया का आटा लीजिए, लौकी लीजिए, लौकी जिसको गुजराती में दूधी कहते हैं, फिर आप लीजिएगा सिंगदाने, तिल, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, फराली जो सेंधा नमक आता है वो लीजिएगा, तिल और सिंगदाने लेना है, तेल लेना है। ठीक है, अब बना, हाँ, और दही और मिठास दोनों ही। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ये तीनों ही प्रकार के आटे को छान करके मिक्स कर दीजिए, और इसमें दही डाल करके और थोड़े से शक्कर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसको घंटों भर भिगो के रख दीजिए। ठीक है, अब आप इधर काम कर लीजिए, लौकी की धुलाई करके, लौकी के छिलके निकाल कर कद्दूकस करके फिर इस मिश्रण में डाल दीजिए, हरी मिर्च की धुलाई कर दीजिए, धनिया साफ कर लीजिए, धुलाई कर लीजिए, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट बना लीजिए, और अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगा दीजिए, थोड़ा सा जीरा डालना है, फिर आप तिल डाल दीजिए, सिंगदाने डाल दीजिए, ठीक है, और मीठा नीम तो आप डाल ही सकते हैं। तो ये सब डाल करके इस छोक को आप इस मिश्रण में डालिए, जो आपने आटा भिगो रखा है उस पर खटास मिठास भी डाल देना है, नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, बाकी का अदरक हरी मिर्च की पेस्ट आप वगार में डाल दीजिए छोक में, ठीक है, और यह तड़का इसमें डाल दीजिए आटे में, और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, और इस कढ़ाई को वापस गैस पर रखिए, गैस बंद मत करिए, धीमे आंच कर लीजिए, और इसको जल्दी से आप हिला दीजिए, इसमें कद्दूकस की हुई लौकी भी डाल दीजिए, मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए, ठीक है, और फटाफट हिलाइए। हिलाने के बाद आपको ऐसा रखना है, देखिए हांडवे का कैसा रखते हैं, जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं ना ऐसा गोल रखते हैं, ऐसा गोल आपको रखना है, ठीक है, तो आप जो साइज पसंद करते हैं उस साइज के अनुसार आप चम्मच भर के कढ़ाई में छोड़ दीजिए, और फिर ऊपर से थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और झाली वाला ढक्कन ढक दीजिए, क्योंकि इसमें भाप नहीं बननी चाहिए, थाली ढकेंगे तो भाप बनेगी, भाप बनेगी तो पानी की बूंदे अंदर गिरेगी तो हांडवा नीचे से भी चिपक जाएगा और वो कड़कपन नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए आप झाली वाला ढक्कन लगाइए, फिर आप देखिए 5-7 मिनट में धीमी आंच पर ही इसको रहने दीजिए, 5-7 मिनट 10 मिनट बाद आप देखिए एक खुरपी की मदद से आप उसको निकालने की कोशिश करिएगा, अगर वो चिपका हुआ है इसका मतलब कच्चा से, तो फिर से उसको थोड़ा सा सीजने दीजिए, फिर आप हल्के से खुरपी को चारों तरफ तीखी धार से थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश करिए, अगर वो
नीचे से पक गया है तो हट जाएगा, ठीक है। आसानी से उसकी पलटी मार दीजिए। पलटी मारने के बाद थोड़ा से तेल की बूंदे चारों तरफ डाल दीजिए और फिर से ये थाल भी अच्छी तरह होने दीजिए, और जब अच्छी तरह हो जाए तो निकाल दीजिए और दूसरा हांडवा डाल दीजिए, दूसरे हांडवे का डंगेला, ठीक है। इसी तरह चम्मच भर भर के आपको डालना है। तो ये स्वादिष्ट हांडवा बन गया है। हरा धनिया भी आपको मिश्रण में ही डाल देना है, ठीक है। सारा मसाला मिश्रण में डालने के बाद इस तरह आपको करना है, जो आपने तड़का लगाया वो तड़का भी पतीली में ही डालना है, अच्छी तरह हिलाना है। फिर आप थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में तेल डालते जाइए और एक दो चम्मच जो साइज पसंद करते हैं वो डंगेला आप डालते जाइए कढ़ाई में। तो ये बन गया हांडवा, बहुत ही स्वादिष्ट फराली हांडवा है। तो आप अगर बोर हो गए हैं कि कौन रोज़ रोज़ साबूदाना की खिचड़ी बनावे, कौन रोज़ मोरैया बनावे, कौन रोज़ आलू टमाटर की सब्जी और राजगीरा की पूरी बनावे, क्योंकि ये सारे कॉमन हो गए हैं, तो ये नई नई चीज़ें भी आप बना सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही खाना है, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण जी का धनुष और उनके चक्र का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और यही पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम था, आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको हांडवा बनाना सिखाया है, गुजराती हांडवा ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या था। तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम सुनाना चाहूँगी। सगुना बहन सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से और सुरेश भाई धानेराव से, भूरा राम जी ओर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दीपा जी कप्पासन से, अलका जी कप्पासन से, ममता जी सूरत से। अभय सिंह जी ने आधा जवाब सही दिया है, आधा गलत है। और किरण जी जयपुर से, इनका भी आधा जवाब सही है आधा गलत है। इन दोनों ने आधा जवाब तो सही दिया है, चक्र का नाम सुदर्शन, लेकिन धनुष का नाम इन्होंने गांडीव कहा है। गांडीव तो अर्जुन के धनुष का नाम था, श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम था सारंग, और चक्र है सुदर्शन। तो आप सभी ने सही जवाब दिया जिन्होंने, उनके लिए मैं ढेर सारी तालियां बजाना चाहूँगी। और आप जो भी विषय में जुड़े उसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, हमारा सबसे अच्छा मित्र वही है जो हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमारे अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को ही देखता है, वही सच्चा मित्र है। अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

के चार बरुज है बतर बना कंगूरा, 360 चिनावन ला गया जब से हुआ चौफेरा, बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले।

0: नारायण देखे सुरत राम से ठागे, कहत कबीर सुनो भाई साधु दिल की दुविधा भागे। बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले, हो बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले।
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
2: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ।
1: सोनोग्राफी वो किस लिए?
2: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है, वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
2: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
2: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हो या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी, देखो आज के अखबार में क्या छपा है, मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है। उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी, आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
5: मास्टर दा, प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
6: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
5: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
6: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलोसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहाँ भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
5: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
6: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
7: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
5: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
7: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
5: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
6: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
5: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक न रह जाए।
5: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू कर देना।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था। तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
3: मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
3: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
3: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है

0: जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
1: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
0: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
2: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
3: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
2: क्या लिखा है इसमें?
3: सर जी, इसमें लिखा है,
4: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
2: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
0: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
5: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
6: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
7: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
8: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
0: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
7: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
8: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीतिलता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीतिलता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
9: दादा, जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी।

0: जो लीला नाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा, जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
2: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
3: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
2: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
4: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेश वाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
3: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
4: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
2: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
3: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
4: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
3: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
2: क्या क्या किया था उन्होंने?
3: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
2: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनकी कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
0: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
5: कैसे दादा?
0: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा, उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
4: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
2: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
1: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रीति को घर में नजरबंद कर दिया गया।
6: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
4: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
6: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
1: प्रीति लता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम हैं, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती है? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए। और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया। और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे. और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी है तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी अच्छा. कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ 6-7 साल की थी जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर, जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है, कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है. इसी तरह से ना परिवारों में भी कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए. और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया. तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा. और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था.
2: क्या बात है
1: जी.
2: क्या बात.
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं. तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे. तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई. तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी. तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है. तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई. और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते. खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है. फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है. उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी. तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं. तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए. जो समझ सकता है, जैसे आपको अच्छा लगा, अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता.
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा. तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है. तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में, कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं. तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए.
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं. मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें.
2: जी जी जी.
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा. तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो फार्म मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे. तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई. उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना. इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा. अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना. अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा.
2: अच्छा.
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे, तो अमसा बोलते थे. तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए. जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती है ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
3: नजर और नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
3: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखन की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हुई?
1: क्या हुआ था ऋषि जी, कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लाइट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगातार डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
3: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते. इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया. मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
1: जी.
3: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लिखता लगता है मुझे. मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती हैं. उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ. ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है. मुक्ति बोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है. तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं. इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी. तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है. कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है. तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं. तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा. तो ये होता है. और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगे तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी.
3: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा.
1: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बताया जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप. तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए. तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा. तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए. बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ. क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए.
3: वाह वाह वाह.
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है. तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी. अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है ना तो माँ बोलती है मुझे. और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है. और मैं आपको दो कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे.
3: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी. तो क्या सपने बन गए बोनसाई. कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा. मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने. बन जाते हैं क्या बोनसाई. बन जाते हैं बोनसाई. सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके क्या ये सच उसका भी है. क्या ये सच उसका भी है. हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना. बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई. विचार मंथन चल पड़ा अंतस में. अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका. उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया. अरे वो तो वहाँ है मतलब उसका वजूद तो वहाँ है. बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका. एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी. तो क्या छद्म है उसके बौद्धिकता. लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा. तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है. तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है. पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है. तो फिर शायद जायज है समझौते भी. यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है. अपने वजूद से पहचानी जाती है. यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना. जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से. तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी. एक बार 5 साल की थी तब. वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी. मैं उसको देख रही थी. अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली. क्या बोला था इसमें आएगा. सुबह की सुहानी बयार सी है वो. अल सुबह की शीतल ओस सी है वो. उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे। उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं। चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में। एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भरकर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनाज नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटिया जैसे। कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति। बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा।
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार मुझे लगता है, और मैं अभी उसको बोलने देती हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी नाजुक सी है और अच्छा लिखती है और लॉ कर रही है। और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं, तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
1: ठीक है
2: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
1: तो मुझे कहते कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम से,
1: है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा उसमें एक दो शब्द बदल के
1: और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है, उन्होंने फिर एक और तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया. तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए. तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी. अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को. हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को. एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती अच्छा, थी
2: जी.
1: तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो.
2: बिल्कुल.
1: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था. लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था. वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में. अब मैं सीरियल का नाम ही पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते. तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी. तो
2: अच्छा.
1: खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ. पर ठीक है, क्या किया जा सकता है. तो बहुत कुछ होता है. लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो.
2: जरूर जरूर. और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके. हाँ. तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे. अगर आप कोई,
1: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा. तो ये एक तो है. लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना. कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए, जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में. तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है. कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कैसे होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे. तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी के शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं. और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और ये जो आपने कहा कि, मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है. तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं. तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे. तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना. और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है, मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की. कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना. तो आपने जैसे कहा, तो मेरी एक कहानी थी बेटी
2: जी.
1: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती, और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा. तो बेटी को फिर बताने लगती है, देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा. और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है. शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती है. तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है. बहुत सारी जो चीजें,
2: राजकुमार आएगा,
1: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है. तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं. फिर वो उसको दूसरी तरह से, कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है.
2: अच्छा.
1: आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है. और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो के आएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था. तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं. तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है. तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ. बहुत बदलना पड़ता है. तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा है? मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती
2: हैं. सभी सोचते.
1: तो मैंने भी सोचा था. बोले अच्छा. तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए. बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है.
2: और इससे पहले शायद वो
1: हाँ वो, तो वो
2: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे.
1: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितने अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: उनके सपने क्या है,
1: सपने लेकर आई है ना. और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा रही.
1: वही वाली बात. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
2: बदलाव कितना
1: उसको समझना चालू कर दिया. तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया. और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे. हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला.
1: हाँ लड़का अच्छा. लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलजन की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
2: अच्छा कि हाँ. बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिले.
1: हाँ
2: की.
1: तो उन्होंने हाँ कहा. और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात.
2: हाँ,
1: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी, छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही. दीदी लोगों ने भी तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
2: क्या
1: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
2: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए. क्या बात है. मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है. तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां. तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे.
1: बिल्कुल सही बात है जी.
2: ये पढ़ना चाहिए. और
1: बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं और खास करके बच्चों के माता पिता जाते. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं. और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है
2: जो
1: तो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
2: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
1: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का, क्योंकि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, बट जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं, तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है

0: कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शेली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक, जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको, उन्होंने
1: अच्छा
0: लिखी।
1: जी
0: हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए। तो हनुमान जी की रामायण पता है कहाँ लिखी थी, एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। तो हनुमान जी बोले, क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले, नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आप, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया, पत्तों को। बोले, क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले, मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है, वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए, ये डिजिटल जमाना है, आप
1: बिल्कुल
0: AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: आप डाउनलोड
0: लेकिन
1: कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
0: जी
1: ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत
0: ऑनलाइन।
1: सारे नॉवेल्स
0: सबसे
1: भी,
0: अच्छी बात ये
1: उपन्यास
0: कि
1: भी।
0: देखिए, हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ, बड़ी बन, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें, 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके एक क्लिक में अवेलेबल है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है, जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है।
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है। तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा कुछ
0: हैं,
1: पढ़िए।
0: एक कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
1: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये
0: बिल्कुल। मैं एक छोटी
1: दूसरे
0: सी
1: को।
0: लघु कथा आपको बता देती हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अभी हाल ही में जैसे
1: जरूर।
0: क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहां गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का। फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का से हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के, वैसे सब तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता। तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती है कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती। थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती है अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए? तो वो बोलता है नहीं, वो चलो सॉरी, चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है। मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना, कि मतलब एक एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए। तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर, वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं ये।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना, कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है, कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद

0: थी। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है। जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों, मैं क्यों, वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब वो लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब हैं। देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
1: okay.
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना। तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है। और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दरख्त पर

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है, चोरी

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया, तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, तो वो कुछ ऐसा है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख कर भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: थैंक यू सो मच अलका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे लिए.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: दुनिया रा हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा गाना गाना राम राम गणी खम्मा न जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुवान कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे माय फैली कुरुतियों वे है मैंने बारा में समाज रा लोगों की बात कर रहा हूँ। समाज रे माय जागृति लवारी एक कोशिश रेडियो मधुबन रही है। अन्य अलावा अपने भारत देश में कई जातियों वे है उन्होंने का रीति रिवाज वे है जो आज नवी पीढ़ी है उन्होंने खबर नहीं है कि अपने समाज रा रीति रिवाज का है। तो अन वास्ते अपने रेडियो मधुबन री एक कोशिश है कि ये रीति रिवाज रेडियो मधुबन रे मार्फत समाज रा लोगों तक प्रसारित वे और उन्होंने जानकारी मिले अपने रीति रिवाज का है। अन्य अलावा अपने समाज रे में कई समाज सेवी वे उन्होंने का समाज सेवा रा कार्य है वन्य बारे में भी अपो समाज रा लोगों की बात कर हूँ। और एक टॉपिक है तजुर्बा डोकरा मिनखोरा अण में अपने समाज में जो बूढ़ा मानस वे है उनोरा का तजुर्बा वे है उनोरा जीवन रा पड़ाव वन्य बारे में आपो वनोती बात करो हूँ। जनती अपने हिकवन मिले कि अपना जो बड़ा बुजुर्ग है कण कण पड़ाव माते रहन अपने समाज में अपने जिंदगी में अच्छा कार्य किया है। तो हमें आपो आज एक जाति है वैष्णव वैरागी चतुर्थ संप्रदाय वन्य बारा में आज आपो अपने समाज रा दो बंधु है वैष्णव समाज रा उनोती बात करो ला। तो एक बंधु है रमेश जी वैष्णव और बीजा समाज रा बंधु है जगदीश जी वैष्णव। आज तो अनोती अनोर समाज रा रीति रिवाज का है अन्य बारा में आपो बात करियो पन वनती पहला अनोरो रेडियो मधुबन में स्वागत करो हूँ। तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान पहला मेहमान है रमेश जी वैष्णव है। तो रमेश जी रो रेडियो मधुबन में स्वागत करो। रमेश जी आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत हैं।
1: जी शाह राम राम शाह।
0: रमेश जी आपने सबने रोम रोम किया है। अपने बीजा मेहमान है जगदीश जी वैष्णव। तो जगदीश जी वैष्णव ने आप कहो कि आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत हैं।
2: सभी श्रोतरा बंधुओं जगदीश प्रसाद वैष्णव रा हाथ जोड़ जय श्री राम जय सियाराम।
0: चलो जगदीश जी भी आपने राम राम किया है जय सियाराम किया तो उन्होंने भी अपने तृप्ति और आप श्रोता बंधु जितरा है उन्होंने तृप्ति भी उन्होंने बेई बंधुओं ने राम राम है। तो हमें उन्होंने परिचय लो हों तो सबसे पहला जो समाज रा उन्होंने बुजुर्ग मानस है जगदीश जी वैष्णव। तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान जगदीश जी वैष्णव रो हमें परिचय लो हों। तो जगदीश जी मैं आपने पूछू हूँ कि आप आबू रोड में कतरा साल से अटे रह रिया हो।
2: मन करीब 30 साल बे गया मैं आबू रोड में हूँ। अरे
0: आबू रोड में कौन एरिया में रहो आप?
2: रेलवे क्रॉसिंग रोड साइड में एरिया है गांधीनगर बटे रहो सर।
0: आज आप आबू रोड में अतरा साल से रह रिया तो बनते पहले आपके पिताजी अटाया था कि आप प्रॉपर आर्टिस्ट रह रिया हो?
2: नहीं मैं खुद आया तो मेरे पिताजी आया को नहीं।
0: तो मतलब आप जो खास रेवास स्थान कटे है मतलब?
2: मारा रेवा स्थान है शुरूगंज 11 किलोमीटर दूर वाटेरा करीने एक छोटो गांव है वाटेरा उस समय।
0: मतलब आप वाटेरा गोमरा निवासी हो और हमें आप मोदीनगर में आप निवास करो रहा हो। तो मैं आपने पूछू कटे आप करो कार्य हो का धंधो करो अपने बारे में बताओ।
2: मैं अकाउंट रो काम करूँ अबार जैन धर्मशाला मैनेजर हूँ 24 साल थी जैन धर्मशाला में हूँ। अनु पहला बाजार में मैं अकाउंट का काम करता हूँ मैंने जब अलग अलग फर्म है बटे मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। बटा बस पोस्ट साल अचलगढ़ जैन मंदिर में मैनेजर रही हूँ मैं और बटा बस फिर 24 साल थी आबू रोड जैन धर्मशाला में हूँ।
0: आबू रोड में जैन श्वेतांबर धर्मशाला में रहो?
2: हाँ सर। अरे रेवा मकान अलग है अरे सर्विस करूँ तो सुबह अटे आओ फिर शाम ड्यूटी करने शाम घर जाओ सर रेवा।
0: चलो ठीक है आप बताए अकाउंट्स को काम करो ठीक है। तो आप बताता कि आप वाटेरा गांव रहने वाला तो आपके पिताजी का धंधो करता?
2: मेरे पिताजी भी जॉब करता नौकरी करता वे बंगाल में रानीगंज के गांव तो बटे काम करता। मैं सब भाई बारे से सर्विस में था ठेठ थी तो बने सब्जी में फादर बटे गया तो मैं बड़े दूर जाता तो बने सब्जी में कि चलो वो नजदीक में कोई भेजा है तो आबू रोड अच्छो सेंटर तो अरे व्यवस्था रेलगाड़ी रही मेडिकल रही एजुकेशन रही सब व्यवस्था अच्छी थी बने हिसाब की वजह से आबू रोड सेट कर दिया।
0: तो आप सब तो बाहर रहता तो आपको अकाउंट्स धंधो की कन चॉइस की था?
2: ठेठ दिन पहला ही जरे स्टार्टिंग में कोई लाइन मिल गई कॉमर्स इंग्लिश गणित मारे गणित रो सब्जेक्ट मारो बहुत अच्छो तो क्लास में टॉपर रहता हूँ मैं हिसाब किताब में बढ़िया था तो मेरा गाँव में रस कोई जैन बंधु था मैंने पैसे मन एक जगह लगा दियो बड़ा बस बड़ा थोड़ा जॉब की दो पैसे पास हटे हटे सर्विस में आए।
0: चलो अच्छी बात है। जगदीश जी अपन बता है कि टोपड़ा रो जो अकाउंट्स रो काम करे है और कई साल ती करे रिया है आबरूड में जैन मंदिर में की दो और आबरूड में भी आज मतलब कई व्यापारी और काम खुद करता है। आज ये जो जैन सितंबर मंदिर में उस काम है मुनिम रो काम है तो हमें आपने पूछूं कि चलो आपने परिवार में मेंबर कतरा है?
2: हमारे परिवार में दो बच्चा है, दो में और चार जना है। और
0: बच्चा का ही करे मतलब और उन्हें का नाम है?
2: बच्चा बड़ा बच्चा नाम प्रवीण कुमार है वन्ने कॉस्मेटिक की दुकान है अटे। छोटो बच्चा योगेश कुमार है वन्ने कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस की दुकान है अटे।
0: कंट कोने दुकान है आपरे बच्चा री?
2: अरे अपने आजाद मैदान में जाए अटे गोपाल जी मंदिर हामी जाए जैन धर्मशाला पाड़ी से मोर पाड़ी से।
0: तो श्रोता बंधुओं अपने जगदीश जी रो परिचय हुआ है। हमें अपने एक मेहमान है समाज रा जो वैष्णव वैरागी चतुर्थ संप्रदाय रा मनोरोनोम है रमेश जी। वैष्णव रमेश जी आपने पूछू हूँ आप अबरूड में कतरा साल ती अटे रो रिया हो?
1: मु तो साहब जन्म तीस बारह 40 साल वे गया मतलब ये 39 साल
0: जी
1: 40 साल मतलब 49 एज है मारी जन्म है अबरूडो से।
0: मतलब आप जन्म भी अबरूडो से तो अटे जो आप जो पिताजी अटे रहता है या आप बार घूमते अटे आया?
1: मारा पिताजी तो खास मूल तो अबरूड पाड़े भारजा गांव है बड़ा राव में
0: जी।
1: लेकिन अटे आया बाद में मारा जन्म अबरूड में भी हो।
0: ठीक है तो आपरे पिताजी अरे भारजा में क्या करता भारजा थी अटे की कण आया? मतलब
1: मारा पिताजी मूल तो भारजा थी था लेकिन पिताजी बॉम्बे जॉब करता ने वन्ने बाद में पस धीरे धीरे अटे अबरूड में सेटल हुआ ने अटे सेटल हुआ बाद में मारे मतलब एक दुकान ली थी किराया माते ने वहाँ चाय की दुकान थी। आज चाय की दुकान लावता लावता आज पसे मैं अटे सेट हुआ। तीन बहनों है ने एक भाई है मैं।
0: आप तीन भाई बहन हो तो बहन मोटी है छोटी है?
1: मतलब तीन बहन है ने मु एक चौथो भाई।
0: मतलब तीन बहन चार भाई बहन हो? ठीक है तो चार ही भाई बहन बढ़िया या वन में
1: पढ़ाई की थी?
0: चारे भाई बहनों ने अपना पिताजी कतरा खुदी बनाया?
1: कोई दसवीं बढ़िया कोई आठवीं बढ़िया सिस्टर मैं टेंथ की दी थी।
0: और हमें आप क्या करो रिया वर्तमान में? आप
1: वर्तमान में मारे तो पहला फादर की डेथ हो गई है 10 साल पहला ने अबे वन्ने बाद में चार ही दुकान मारे मई दुकान लाई ने अबे मारे दो बच्चा है सबसे मोटा बच्चा नाम कुणाल है।
0: अच्छा।
1: वो मोबाइल सेल्स एंड सर्विस कॉम जो है दुकान है अपने मेन मार्केट में ने दूसरो सेकंड नंबर बच्चा है वो है हार्दिक।
0: अच्छा।
1: वो टीवी मैकेनिकल है।
0: अच्छा।
1: वो टीवी रो काम करे
0: अबरूड में करे?
1: हाँ अबरूड में करे।
0: चलो और परिचय वो रमेश जी रो भी हमें आप अपने टॉपिक ऊपर आओ हूँ कि उन्होंने समाज रहा जो वैष्णव वैरागी समाज है वैष्णव वैरागी चतुर्थ संप्रदाय अन समाज रहा रीति रिवाज रहा बारे में आपको बात करता था। हमें तो सबसे पहला अन समाज रहा रीति रिवाज तो है पर वैष्णव वैरागी चतुर्थ संप्रदाय तो वैष्णव वैरागी रो जो इतिहास है वन बारे में अपने जो समाज रहा बंधु है पहला मेहमान है जगदीश जी वैष्णव उन्होंने पूछू हूँ कि आप बताओ वैष्णव वैरागी समाज अन्न बारे में आप जानकारी दो।
2: जय श्री राम। अनादिकाल थी जरे चार संप्रदाय बनी मोरे वन थी पहला एक ही संप्रदाय थी वणिम वैष्णव वैष्णव वैरागी जो शादी नहीं था करता और यूं मतलब प्रभु की सेवा हर गोम में राजा महाराजा के टाइम में एक ठाकुर मंदिर वे तो और ठाकुर मंदिर की सेवा खाली वैष्णव करता और वैष्णव करता ठाकुर बनो रे भी यो नियम तो के भाई ठाकुर जी रे बटे शरणामृत तुलसी चंदन रो टीको ने चंद्रामृत नहीं करता वे भोजन देता लेता तो अने वास्ते हर गांव में एक द्वारो स्थापित की जाता वने द्वारा में हर ठाकुर मतलब उस नियम तो जो राजा महाराजा या जो भी था वन टाइम में पीला तो वन में मतलब मोर ही रहो तो वन में पहला मारे शादी नहीं था करता वैरागी वैरागी नहीं वेरा कारण मतलब वेरो के शादी नहीं था करता।
0: अच्छा।
2: हर घर में एक आदमी मतलब के अपने एक परिवार में एक आदमी मतलब सन्यासी बनावता वह ठाकुर जी सेवा करता पूजा करता गांव रो वो जो चलन पूजन भरण पोषण गांव भरज करता वे वो करता अन टाइम में पसे अनाज घना समय रे बाद में जरे भी मुसलमान लोग आक्रमण की दो ने अने में हार ये मतलब बहुत जबरदस्त अपने धर्म रो विनाश विवाह डूगो जरे आदि गुरु शंकराचार्य जी चार मठ स्थापित की दा चार मतलब द्वारा स्थापित किया, चार द्वारा मैंने चार द्वारा में चार मोरे, चार द्वारा यानी चार संप्रदाय हुई मोरी। अरे मैं रामानंद संप्रदाय में 52 द्वारा है, निम्बार्क संप्रदाय में 9 द्वारा है, माधवाचार्य में 4 द्वारा है, 3 द्वारा वल्लभा आचार्य है, इवन 4 द्वारा है, तो चार और मतलब यू टोटली 52 द्वारा है मोरा। तो पूरो ये भारत वर्ष माते मुसलमान आक्रमण थी उन्होंने बचाव वास्ते हिंदू धर्म रक्षा वास्ते एक मतलब बीड़ो उठायो और गुरु शंकराचार्य जी सन्निध्य में चार मठ स्थापित किए और द्वारा स्थापित कर नैन टाइप थी मतलब समाज रही पूरा हिंदू धर्म रक्षा की थी। अरे मैं मोरे में भी एक मतलब वैष्णव और सेना थी एक, तो वह आधारित मतलब रक्षा करती जो वैन टाइप थी सेवा पूजा करता कोई कोई करता, तो एक संप्रदाय रही थी जो बण में मतलब लड़ाई करता बनवा लड़ाई करवा वास्ते भी मतलब सब मल युद्ध करता सब बनो कहना शस्त्र रहता अन टाइप थी एक मतलब अपने हिंदू धर्म रक्षा करने वास्ते एक संप्रदाय हुई बड़ा बात धीरे धीरे धीरे मतलब जो परिवार बढ़ता गया तो अपने हिसाब थी वह जो कह शादी नहीं करनी कहीं परिवार में एक इस बच्चों में शादी नहीं था करता तो वो परिवार आगे नहीं तो बढ़तो आने वास्ते मतलब एक सब राजा महाराजा रा आग्रह थी मोरे संप्रदाय में आगे तेरह विचार की दो कि भाई अपने परिवार भी आगे बढ़ना चाहिए समाज भी बढ़ना चाहिए मन वास्ते पसे परिवार में शादी करवा लगा शादी करने अलग अलग अपने विवाह न्याय में पसे बार मोरे आज की तारीख में 52 द्वारा है 52 जगह जगह सब पसे अलग अलग डिवाइड कर दिया है हर एक द्वारा जो कि मोटा मोटा द्वारा है अलग अलग जगह स्थापित किया है। तो निम्बार्को रे बड़ो द्वारो सलीमाबाद है जी जी रामावतो रे बड़ो द्वारो गलता जी में जयपुर में गलता जी बटे है यूएन टाइप पूरा इंडिया में पूरा भारत में चार जगह अपने स्थापित कर ने पूरा भारत रे मतलब सर भाग में मतलब पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर सब में मतलब सब वैष्णव रो मतलब एन टाइप से बनी हुआ है ने आज भी समाज रो बहुत बढ़िया ढांचो चल रही है मेरे हिसाब से सब व्यवस्था भी रही है बड़ा बड़ा द्वारा है गुरु मंत्र है।
0: आप बताओगे आप चार बताया संप्रदाय में तो रामानंद संप्रदाय अन्य बारे में आप जानकारी दो जो मैं आपको निम्बार्क रामानंद सब चार चीज बताई रामानंद के बारे में बताओ थोड़ा सा।
2: रामानंद जी गुरु रामानंद जी चार बनोरे जो शिष्य था वे सब रामानंदी भी है उन्होंने रामानंद जी रो कार्यक्षेत्र बहुत बड़ो तो उन्होंने पूरा भारत में 32 द्वारा 32 जगह अपनो मतलब द्वारा बनाया शिष्य बनाना हर जगह को एक आदमी पहुंच नहीं सके अन वास्ते भारत में 32 जगह बनोरो रामानंद जी रो जटे रामानंद जी रा शिष्य था वन सब जगह अलग अलग बिल्डिंग अलग द्वारा बना दिया मोरे वे द्वारा हिसाब से मोरे कंटी वे तो भाई वे द्वारा कंटी है और वे कंटी द्वारा में 25 गाँव में 50 गाँव में इसे तो वे सब बटे हुए था पसे निम्बार्काचार्य जी बनोरो 9 द्वारा बनाया तो वे में निम्बार्काचार्य जी तो अन टाइप थी पूरा भारत में 52 द्वारा बनाए हूँ।
0: ओ आप कह रहे हैं रामानंद चार्य रो जो वैरागी समाज तो अन में ये बताओ कि अनोरो कौम का तो
2: रामानंद जी रो काम तो मैं मोरे तो वैष्णव रो रामानंद जी रो का मोरो भी वही कौम है धर्म रो प्रचार करनो भगवान की सेवा पूजा करनी और अच्छो व्यवहार रखनो सब संपर्क भाईचारो करनो और रामानंद जी पूरा इंडियान जोड़वा वास्ते पूरा भारत ने एक जगह बनावना वास्ते हिंदू धर्म रक्षा करवा वास्ते वने वे धर्म रो प्रचार करता अधर्म रो नाश भी तो वने अधर्म ने किन शांत वे वन तभी वा व्यवस्था करता नैन टाइप थी व्यवस्था की थी
0: रामानंद जी रो खास मठ कटे
2: गलता जी मोटो द्वारो गलता जी
0: पहलो मठ बटे जी
2: मोरे रामानंद जी रो बड़ो द्वारो गलता जी में है पूरा भारत रो सब वही है।
0: चलो निम्बार्क संप्रदाय वनरो बारे में थोड़ी जानकारी और वनरो मठ कटे गन बात
2: निम्बार्क संप्रदाय में अनो में मतलब नागा साधु था अच्छा। जो निर्वस्त्र रहता और जगह जगह कड़ी लड़ाई करनी झगड़ो करनो साधु संतों में कोई जटे इंडिया में कहीं भी भारत रे भाग में कड़े भी अशांति भेजती तो निम्बार्क संप्रदाय रहा शिष्यों ने भेजता तो निम्बार्काचार्य जी वो करता अनोरो मोटो द्वारो सलीमाबाद में अजमेर का जी
0: अजमेर पास में पड़े
2: वही अजमेर का सलीमाबाद जी
0: तो खास मठवटी जी। हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान रमेश जी वैष्णव और जगदीश जी वैष्णव है जो अपने समाज रा रीति रिवाज बता रहा था पर आप एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक रे बाद में फिर आप और समाज रीति रिवाज जानोला आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे, सुनाते रहे, जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: देख रहे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रे स्वागत है। अने अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है उन्होंने भी स्वागत है। तो श्रोता बंधु, अपने चार संप्रदाय माती, उन्होंने दो संप्रदाय की जानकारी है और अपन बताए है रामानंद जी और निम्बार्क आचार्य, उन्होंने बारे में अपन बताया है। और हमें अपने मेहमान ने आपको पूछो हों कि जो आप कह रहे वैष्णव वैरागी, तो वैरागी जो बनावता है पहला, तो अनु मुख्य कारण कार्य मतलब
2: वैरागी मतलब प्रभु रे प्रति वैराग, ईश्वर रे प्रति भक्ति और अच्छा कर्म, आज बात है तो बने वास्ते मतलब जितरा रा महाराज राजा महाराज जो जो हर गांव में अपने रक्षा वास्ते एक ठाकुर जी मंदिर थो और बने ठाकुर जी रे सेवा पूजा मोर समाज द्वारा करता, तो वह वैरागी था। और वैरागी बने हिसाब थी सुनो नाम वैरागी पड़ी हो बनो बीजो कोई परिवार तो नहीं, तो वैराग थी बनते था बने हिसाब थी बनो नाम वैरागी संत पड़े।
1: चलो आपने समाज जो वैष्णव वैरागी है चार संप्रदाय आपका और हो, तो अनोरा आराध्य देव मतलब ठाकुर जी था या अनला और भी था?
2: मोरे वैष्णव और उत्पत्ति विष्णु भगवान थी हुई है, तो विष्णु भगवान थी मोरे विष्णु भगवान रे चार संप्रदाय में आधा मतलब के रामानंद जी वाला रामचंद्र जी ने माने, निम्बार्काचार्य वाला मोरे कृष्ण भगवान ने माने, माधवाचार्य जी आखिर विष्णु भगवान ने माने, विष्णु प्रभु थी सब उत्पत्ति हुई है, तो बनती वैष्णव वैरागी संप्रदाय।
1: मतलब आपका जो मेन देवता है आराध्य देव भगवान विष्णु है, अंति आप वैष्णव कहवाया है। हमें आपरे जो समाज रमाए कतरी गोत्र है मतलब वैष्णव समाज जीवन, आप क्या समाज मतलब रामानंद में आओ या निम्बार्क में आओ कण में आओ?
2: मेरे वैष्णव कुल 52 गोत्र है, हाँ, तो मैं निम्बार्क संप्रदाय हूँ, मेरा सुभावत गोत्र है जी, बड़ो द्वारा सलीमाबाद है,
1: सलीमाबाद
2: जी, अजमेर का है, अजमेर का।
1: तो आज अब्रोड में आपरा जो वैष्णव समाज रा कतराक परिवार अटे रे?
2: मोरे 47 47 परिवार है अटे जी।
1: तो सब चार संप्रदाय रा बेला है या अलग अलग या एक ही संप्रदाय रा अटे लोग है?
2: मस्त सब संप्रदाय रा है, अच्छा। चारों संप्रदाय में सब है,
1: सब बेला
2: जी
1: है।
2: जी
1: तो नहीं तो कोई रिश्ता रिश्ता करो तो कोई अटकाव आवे चार संप्रदाय तो रामानंद वालो रामानंद करे रिम्बार्क वालो रिम्बार्क?
2: मोरा साहब हेरो है कि जो के रामानंद चारी जी था या निम्बार्क आचार्य जी माधवाचार्य जी वल्लभ जी था, तो उन्होंने अलग अलग गोत्र बनाया, मोरे टोटली 52 गोत्र है। 52 गोत्र में कंटी मतलब गोत्र मतलब जने द्वारा दी में उत्पन्न हुआ बटारे कंटी बंदी जे कभी कंटी कटारा कंटी द्वारो कटारो तो मोरे पालड़ी रो है, तो बटा मोरे कंटी द्वारा में संबंध नहीं वे, अच्छा। भाई अटा सोड़े निम्बार्क निम्बार्क में वे है के खाली एक गोत्र छूटे, मैं स्वभावत हो तो स्वभावत में नहीं वे सके, स्वभावत बीजू निम्बार्क वे तो वे सके, बाकी मैंने स्वभावती स्वभावत नहीं वे सकते, अथवा रोमावती रोमावत वे सके, पर रोमावत रो कोई अग्रावत गोत्र तो अग्रावत रो अग्रावत में नहीं वे, या दिवाकर है तो दिवाकर रो दिवाकर में नहीं वे, अन टाइप थी गोत्र में जो संबंध नहीं वे रही है, बाकी गोत्र छोड़े मतलब जो कि 32 द्वारा रामावत हो रहा है तो 32 द्वारा में संबंध नहीं करे तो कोई संबंध भी नहीं वे, अरे वास्ते खाली जटारो कंटी और द्वारो है वो और गोत्र, गोत्र छोड़े बीजा गोत्र में कोई भी संबंध जीव के हर समाज में वन टाइप थी मोरे भी गोत्र छोड़े कोई भी संबंध ले सके।
1: कंटी और द्वारो अन्नो अर्थ का है?
2: मतलब मोरे रामानंद जी था तो वने पूरा भारत माते आधा भारत माते रामानंद जी रो कंट्रोल, तो आधा भारत माते एक आदमी बेटा तक मेंटेन नहीं करे, एक तो सब व्यवस्था एक आदमी नहीं करे, तो बने वनोरा जितना शिष्य था वन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की था, डिस्ट्रीब्यूट कर कोई गुजरात में भेजिया, कोई महाराष्ट्र में, कोई राजस्थान में, राजस्थान में जोधपुर, कोई जयपुर अन टाइप से भेजिया, तो बटे भेजिया तो बने जने जो जयपुर में एक कोई आदमी आ गयो रामावत संप्रदाय जयपुर में आया, एक मेहनत जी बैठ गया बटे, तो बटे मोरे एक द्वारा भी तो मतलब जटे भगवान ठाकुर जी रो मंदिर हुए तो बड़ो द्वारो मोरे जो मंदिर हुए तो मोटो बने द्वारो कहता, जन्ने नीचे जमीन वेती जागीरी वेती सब अन टाइप थी वेती, तो वने द्वारा रो संपर्क जो के वने द्वारा थी जितना शिष्य ही वन्य आड़े पाड़े जितना गांव में, तो मोरे मतलब पहला भी वैष्णव में कोई अगे मोरे समाज रहा तो ताज था, वन्य समय वैष्णव एक ऐसा धर्म है कि आज कोई भी जात आप भी चाहो कंटे बदाओ आप भी वैष्णव बन जाओ, एक संप्रदाय में तो वन में जन द्वारा थी जने कंटी बधाई, मतलब जिस द्वारे पे जाके उसने किया मोरे जयपुर में है तो बने जयपुर वो बने गोत्र हुई क्योंकि जयपुर में अग्रावत है तो बनो गोत्र अग्रावत हुई गयो। हमें जयपुर जने द्वारा थी जितनी कंटी बोधी है जितना जितना संपर्क की दो वटे वनो संबंध नहीं वे सके।
3: जना शिष्य बनिया है जो भी वन गुरुरा जो भी वन्ना शिष्य है मतलब वन्ना जो भी परिवार मनक है हम जो तो वनोरे जो भी है वे मतलब एक दिन बीजा भाई हुआ
4: पूरा परिवार
3: ठीक है। तो वन गुरुरा जो भी परिवार लोग है एक एरिया में शादी नहीं करेगता रिश्तों नहीं करेगता। बीजा जो गुरुरा जो भी शिष्य है वन परगना में मतलब है शादी करे के वाला मतलब है अगर एक गुरुरा जतरा भी चेला है तो एक एरिया रा परगना रा मालिक हुआ वे तो बीजा गुरुजी बीजा परगना रा मालिक हुआ तो एक परगना थी बीजा परगना में आप वन संप्रदाय में शादी करे को वन परगना में पर सेम परगना में सेम गुरुरा शिष्य वे तो वे शादी नहीं करे सकता मतलब रिश्ता आपने नहीं बेता ठीक है। चलो श्रोता बंधुओं आज अपन एक अच्छी बात बताई है कि भाई एक वैष्णव वैरागी समाज जो ब्राह्मण है एक ब्राह्मण कुली से पचे अन्य भी अनोरे चार संप्रदाय है और चार संप्रदाय में मेन ज्यादातर अबुड़ एरिया में निम्बार्क और रामावत रामानंद जी जो वनोरा परिवार जो सदस्य हैं दो संप्रदाय लोग अटे ज्यादा रहे और 50-60 परिवार अटे रह रिया है। और अनोरे कहना है कि अगर कोई बीजा समाज रो भी आदमी अगर रामानंद जी रा या निम्बार्काचार्य जी रा वन गुरु रा जान दीक्षा एक्षा ले लो या कंठी बंधावर और एक रिवाज है तो वन में वे वन शिष्य बने हैं के और वन समाज में जाए के। तो अनोरा कहना है कि जो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़ना चाहे एरो एक अनोर रिवाज है हमें तो नहीं है पुराना जमाना में था कि भाई कोई वनोरा शिष्य बन जाता और वह कंटी बंदा देता तो वे भी वैष्णव समाज में आता जिकन जैन समाज में भी 13 पंथी एरा जो कई एरा वे जो वे वनोर गुरु बना ले महात्मा जी ने तो वे भी जैन में आ जाए।
1: हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान रमेश जी वैष्णव और जगदीश जी वैष्णव है जो अपने समाज रा रीति रिवाज बता रहा था पर आप एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक के बाद में फिर आप वनोरा समाज रा रीति रिवाज जोड़ो ला आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 मुस्कुराता रहो।

0: डुंडे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ब्रेक रे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रे स्वागत है। अने अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है उन्होंने भी स्वागत है। तो रमेश जी ने पूछो हो कि आप रे समाज रे मैं कोई बच्चा रो जन्म हुए तो केरा रिवाज करो।
2: मोरेटे समाज में बच्चा हो या बच्ची हो सर्व समान है, और वनो जन्म वे वन टाइम में जो भी मतलब प्रक्रिया हर समाज में वे भाई खुशियां मनावे, मिठाई बांटे वगैरह बांटे, पसे वन्य बाद में वन्य जब होली आवे
3: जी।
2: तो होली माता ढूंढ रो मौसम मनाओ
3: जी।
2: वन टाइम में सब वन्य पीर पक्ष थी मतलब जन बच्चे बच्चा रहे जो मोमाड़ी आवे वगैरह आवे सब ढूंढ लेने आवे
3: जी।
2: एक मतलब बहुत होली महोत्सव रे मैं मतलब ढूंढ रहे ढूंढावो लेकिन मोरा मतलब होली में बैठा नहीं जाता। मोरे ठाकुर जी रे पगे मतलब विष्णु भगवान ने मंदिर में जाए मन्ने पगे लगाड़ो।
1: आप रो कहना है कि भाई के जिकन हर समाज में वे जिकन डिलीवरी वे तो डिलीवरी तो वे सब करो आपको और या पर मुँह आपने पूछूँ कि जिकन हर समाज में नहीं वे तो के हाथवा महीना में पहली डिलीवरी हुए तो वरने पीर में ले जाए तो आप रे एरा कोई रिवाज है
2: ना ले जाए पहली डिलीवरी हो या कोई दो भी दे कोई तीन भी दे वो बनो रही इच्छा माते है कोई नहीं भी ले जाता मतलब हाथवा महीना में वनी या नवा महीना में वे पीयर पक्ष वाला अपनी बेटी ने पीयर में ले जाए ना वनी डिलीवरी बैठे करावे वरने बाद में पसे पासा मोरे हटाती वरने जब बच्चों हो या बच्ची वे वनो ओणो वे अपने जाया ओणो वे पसे मोरे परिवार अपने जनी घर में बच्चा रहे जो परिवार वे लोग बड़े जाए बच्चा या बच्ची जो भी वे लेन आवे ने इन तरीका जो कार्य मौसम मनावे।
1: आप क्यों जाए ओणो लेवा जाओ तो जाए ओणो लेवा जाओ तो किकन मतलब जो परिवार मेंबर सब मलिन जाओ भाई बन जाओ तो वटे भी कोई रिवाज करो
2: वटे मतलब मोरे सब भाई परिवार मलिन जाओ वटे वरने बाद में वटे जन घरे जो अपने ओणो लेवा जाओ बटे वे लोग ऊपर ओडोमनी करे पास ही
1: ओडोमनी करावे
2: बनोरे मतलब जो भी बनने श्रद्धा आवे जो कोई करे नहीं कोई नहीं भी करता को बार मतलब वो नहीं है पर जिन्नी बनने श्रद्धा हिसाब से जो भी वे वो बनने वो करे
1: तो जाए होना तो लेवा गया। पर एक बात हो रहे डिलीवरी वो पूटे कोई समाज में जलवा पूजन करे कोई फंक्शन करे आपरे समाज में ऐसा कोई रिवाज है?
2: जलवा पूजन अग्रवालों में बीजी जातियों में वगैरह करे लेकिन मोरे समाज में जलवा पूजन नहीं करता। दसवा या बारहवा दिन वह पीर में कुआ पूजन कुआ मतलब सूरज पूजा आवे सूरज पूजा करे दसवें दिन दो मार धोए के वन्य बाद वो करे ने वन्य बाद होली माते मेन जो भी फंक्शन वे वो होली माते करे
1: जो भी पहलो होली आवेला वन माते मोटो एक फंक्शन करे वन में सब मेहमान घरे आपता भाई और सब मिलन अन फंक्शन न करे ठीक है। तो एक तरह आपको होली थोने नहीं लेन जाता पगे लगावा तो आपने ठाकुर जी द्वारा लेन जाओ तो एरो क्यों हर मनक तो जो होली माता है ढूंढ करे जे रे यू करे भाई एक विवाह करे या बच्चा रहो तो आपने सिर्फ ठाकुर जी द्वारा लेन जाओ तो होली रे रात्रा लेन जाओ या होली रे बीजे दिन
2: धुलंडी वाला दिन होली रे दूसरे दिन दोपहर बाद में होली जब खेले फिरी वरने बाद में सब पसे नहाए धोए फ्रेश वेपन तैयार वेन सोम टाइम में अपने बटे मतलब ठाकुर जी ने मंदिर जाए ने बटे प्रसाद वरसाद चढ़ाए बच्चा बटे धोक लगाड़ी पगे लगाड़ी ने बने मत पसे पासा घरे आओ घरे आने पसे कोई भोंग बनावे या कोई मतलब जो भी है एक फंक्शन बनावे होली मतलब घर मेहमान आए बनो सब खानो वानो बनावे भोजन वोजन बनाए बढ़िया फंक्शन बनावे।
1: तो आपको होली माते जो फंक्शन तो करो तो ढूंढ करे तो मनक जी कारण घनी टुकड़े घेरिया आवे और धुलेटी दन लकड़ी लेने आवे पे ढूंढे तो आपरे समाज रा वेला मल ढूंढे या नहीं ढूंढे
2: ना मोरे नहीं ढूंढता मोरे यू नहीं

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: देख रहे बाद में ऊपर समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन में सुनो वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है। अने अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है उनरो भी स्वागत है।
3: हमें आप बताओ आपरे समाज रे में कोई बच्चा रो रिश्तो करो तो क्या रिवाज करो?
4: रिश्ता में मोरे दस्तूर रिवाज है के भाई बच्ची लड़को ऊपर है बनने संबंध करना है तो वे गिनात आवे तो आदर सत्कार करो बड़ा बाद अपने रुपयो नारियल जो भी अपने वे वो दस्तूरी करे बटे बड़ा बाद बच्ची वाला अटे जाए तो बटे जाए वे जाए तो उन्होंने सब कपड़ा उड़ोमनी बीजी करे बच्ची को अपने लड़का वाला बटे जाए तो सब दागिना लीन जाए सब दागिना चढ़ावे तो उन्होंने पासा वे उड़ोमनी करे। अच्छा बच्ची वाला आवे अटे तो उन्होंने पास अपने तरप्ती करे दोनों तरप्ती मतलब दस्तूर एक सिस्टम है बने समाज रहा गांव रहा सब आदमी इकट्ठा वे ने बने में गांव में वे कि मोरे बच्ची रो संबंध की दो बच्चा रो संबंध की दो अंडपती अमल रो एक थोड़ा सिस्टम है तो गांव वाले इकट्ठा वे वन टाइप थी जो सामूहिक रूप से करे।
3: आपके बारे मतलब कि जैसे रिश्ता करो आपो तो जिकन लड़का वाला कोई गाँव में लड़की लेवा जा रही है ठीक है हगई करवा तो वन गाँव वाला भेड़ा कर पे कोई एरो अमल गाड़वा सिस्टम है पर सभी जात वाला या खाली समाज वाला ही
4: बस समाज रहा आते थे गांव रहा जो भाई जन है जो गांव छोटा गांव में तो कोई सब भाई जूस रहे हुए तो मैंने सब ने बुलाओ मैंने मतलब सब पूरा गांव ने मालूम पड़ेगा मोरे बच्ची रो रिश्तों भी हुए संडे हफ्ते सब गांव वाले इकट्ठा हुए अपने समाज रहा भाई बंधु जितना भी है वो भी इकट्ठा हुए ने मन टेम वो यू करे
3: मतलब गाँव भी साक्षी रह के और बच्ची रो रिश्तों वो है और अन गाँव में समाज रहा जो बंधु आए है वे अन बच्ची ने शादी कर ले जाइला ठीक है। ठीक आप बताओ कि रिश्ता तो आप करो पर आजकल डिमांड खूब है क्या न मारे छोरी तो के अत्री बनी छोरो मारे तो बीए पास की दी एक इंजीनियर बनी एक डॉक्टर बनी है तो के नेक लेवारे सिस्टम वे के तिलक देना पड़ी 50,000 एक 1,000,000 रुपये आप रे एरा को रिवाज है?
4: नहीं सर मोरे मो समाज में अभी तक वो चालू नहीं हुई है ने मो अच्छो प्रभु की कृपा गिणो के मतलब अजय समाज में एरो सिस्टम नहीं है रिवाज नहीं करने बच्ची तरफ से कोई ले पैसा या संबंध करना हो तो बच्चा वालों लिए बड़े कटे थे वो सिस्टम रिवाज नहीं है हमारे जी
3: मतलब कोई एरा कुरीति नहीं अपने समाज में जो कणों ने परेशानी वे के शादी करनी है बच्चों तो की कण करो ठीक है तो हमें आप बताओ कि सगाई तो करो तो दहेज वेजरी कोई डिमांड वे अपने
4: नहीं दहेज मोरे स्वैच्छिक है वरना बच्चे ने कोई भी देना तो दे सके नहीं दे तो भी कोई कंकु और कन्या भी दे तो मोरे स्वीकार करो बाकी ये प्रतिबंध कोई नहीं है कि आप तो देना ज पड़ी यात्री डिमांड करे मतलब 99% मोरे रिवाज है ही नहीं 1%

0: समाज रमाए, रिश्ता तो करो आप, पर गणित ठिकोने हाटा करना पड़े। तो आपरे समाज में एरा कोई रिवाज है हाटा रा, जो लड़को और लड़की, मतलब आप जरे मारे लड़की लेनी वे तो आपरे बटाती भी एक लड़की एवज में देनी पड़ी ला छोरा वास्ते, नहीं यू वे आपरे?
1: देखो सब पहला आदमी तो वे तो बाकी बार कोई है कि परिस्थिति रही है कि मतलब हर एक रही स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा। सब व्यवस्थित सक्षम नहीं है। अन्य वास्तव कोई गरीब परिवार भी है तो लोग गांवों में जानो पसंद नहीं करे।
0: अच्छा।
1: गांवों में बच्ची ला सके।
0: हाँ।
1: बच्ची देनो पसंद नहीं करे।
0: अच्छा।
1: तो आने हिसाब से बड़ा बड़ा संबंध रुक जाए।
0: अच्छा,
1: अच्छा योग्य लड़का लड़की हुए तो बड़ा संबंध रुक जाए। तो वो एक अमुक मोरा नहीं जालोर एरिया में थोड़ा एरो सिस्टम की बनी हुआ बार अपने सिरोही जिला में कोई ये प्रसंग बनियो नहीं कि हाटो करना पड़े, क्योंकि लगभग सब व्यवस्थित समाज है ने, कोई छोटो समाज रहने वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी दूजी एरिया में जालोर में बटे बटे भी इतना प्रॉपर नहीं है, कोई कोई रियर केस जटे के या तो गांव छोटो हुए जरे बच्चे कोई देवो पसंद नहीं करें तो बड़े बड़ा बच्ची ने रोके कि भाई चलो मारो बच्ची दे तो बच्चा और समझ भी जाए आने वास्ते रोके। बाकी रियर केस में कोई सिस्टम नहीं आ जाए।
0: हाटा मतलब क्यों करें आप बताओ कि हाटा आजकल हर समाज में मैं देख रही हूँ, कई समाज ऐसा है जिसे अगर उन्होंने पास हाटो देवान नहीं है तो उन्होंने बच्चे और रिश्ता नहीं बेता कि ओवरेज गया पर है, तो एक क्यों वेरिया हाटा, मतलब या तो लड़कियों की समाज में कमी हुई है, अन्य मुख्य कारण कार्य बताओ
1: आपको। सही बात है, बच्चों की कमी भी है
0: जी।
1: प्लस मानसिकता की कमी भी है कि पहला सब संबंध गाँव में बेता।
0: अच्छा।
1: मतलब सब शहर तो बहुत कम था, शहरों में कटे हुए था, तो गांव में भी था तो लोग गांव में बच्ची देवी पसंद करता।
0: अच्छा।
1: बड़ो परिवार देखता कि नहीं बहुत बड़ो परिवार है, अच्छो संपर्क है, खेती बाड़ी भी है, मवेशी भी है।
0: अच्छा।
1: अरे बच्ची बहुत सुखी रही हरवाती है। बाकी बार मन लोगों की मानसिकता थोड़ी खत्म हो गई है तो लोग सोचे मोरे बच्चे बटे जाए दुखी नहीं रहे, गांवों में सुविधा नहीं है, अरे वास्ते गांवों में कोई बच्ची देव पसंद नहीं करते। बाकी हाटा देवारी रुको तो वो रियर एंड वो फास्ट नहीं है। बाकी मोरे एरिया में सिरोही जिला में रो सिस्टम नहीं है।
0: मार के और मतलब आज समाज में हाटा वेरिया तो लड़कियों की कमी तो जरूर लाग रही है, अन कारण तीस हाटा वेरिया ना
1: जी, बच्ची और कमी है सब हर हर समाज में हो तो कमी वेगी है। बाकी कमी रहे आते थे सॉरी मानसिकता में भी फर्क पड़ गया।
0: मन करो होचवाए शक्ति भी मोनो रही हूँ मुँह, देखो मारू कुमार समाज है, गांची समाज है, बोंडा कुमार है, कई मतलब समाज है जेटे आज भी बच्चा कुंवारा बेटा है उन्होंने हाटा नहीं मलिया जनती, उन्होंने देवान लड़की नहीं है तो वनपा नहीं, अगर नहीं है लड़की तो बटे 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया मांगे एक बच्ची रहा। मारू कुमार समाज सातपुर में मैं इंटरव्यू ली दो वन टाइम बताया था मैंने, तो आज भी उन्होंने एरी कंडीशन है कि अब वह बच्चा कुंवारा बेटा है, तो सरकार कह रही है कि बेटियों ने अपने बचावनी है, तो क्योंकि बेटियों की कमी है अन कारण, तो अगर बेटियों अनुपात सही हुए तो हाटा देवा और लेवारी का जरूरत पड़ती।
1: सही सही बात है, आप सही कह रहे हो।
0: हाँ।
1: में अभी बच्चों की कमी रहते थी थोड़ी मानसिकता भी विकृत हुई है
0: के,
1: अच्छा पसे परिवार देखे स्थिति देखे मोरे बच्चे, और हर परिवार वो सोचे कि मोरे बच्चे सुखी हुए, और आने वजह सुखी व्यवहार कारण थी हर सोचे मोर शहर में वे अच्छी जगह वे व्यवस्थित गाँव वे बड़े सब सुविधा हुए आने वजह थी थोड़ा प्रॉब्लम।
0: चलो अपने बीजा मेहमान है रमेश जी, उन्होंने पूछो चलो हाटा पड़ता रहे बारे में थोड़ा सा जानकारी आप भी आपरा विचार दो।
2: ये ऐसा के हाटा रे बारे में जो अगर मान लो लोग रे थिंकिंग है थोड़ी सोचवा रही वहाँ बदलेगी है, अगर जिकन अबार आप चर्चा आली कि भाई ऊपर है मतलब गाँवों में लोग लड़की देनो नहीं चाहता। मो एक मारी थिंकिंग कह रही हो कि मारा एरा लोगों की विशेष अणी चैलेंज जरिए मो आपने सूचना देव चाह रही हो कि यदि आपनी सोच बदलो
0: जी।
2: तो गोमो रे मायने भी छोरा पड़ियोड़ा होशियार होनार, सिटी करता भी गोमो रा छोरा ज्यादा होनेस्ट है होशियार है ने बढ़िया है। वन परिवार ने मारो विशेष निवेदन है कि आप गोमो रा बच्चों ने ज्यादा महत्व दे वनस्पत सिटी रा, सिटी रा बच्चा थोड़ा मोयूनिक है तो करनी बुराई नहीं कर रही हो, होशियार वे ऑनेस्ट वे सब माँ बाप चाहे कि मारी बेटी खुशी वे सुखी वे, लेकिन गोमर माए बच्चा पढ़े रही है वे कोई गोमर माए आज बच्चों कोई MCA करे रही, कोई BBA करे रही, कोई MBA करे रही हो, जो अच्छी अच्छी शिक्षा करे ले रही हो, तो वह बच्चा गोमर जरूर है लेकिन जरी वे बारे पढ़े बारे जाई तो वह कोई बड़े गोमर थोड़ी रहना है, वह तो जाई तो बड़े वाली हाथी लेने जावा रहा है, तो थोड़ी बेटी तो आगे बढ़े जाए नहीं कि वरना हाथी, तो थे ये सोच क्यों रखो कि भाई मारी बेटी गोमो में है, गोमो में तो

0: को के शेयर करके भी गांवों में बच्ची सुरक्षित अच्छी बनी, मतलब मर्यादा में रहे, संस्कार मिले, अच्छो खान पान मिले, अच्छी बननी हर तरह की बनो देख रेख में बढ़िया बढ़िया संस्कार भी मिले। सिटी में 10 तरह का अलग अलग तरह का लोग रहे, अलग अलग उनका माहौल में आले। इससे हालांकि मैं खुद एक सिटी में रह रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मतलब वो है, लेकिन लोगों रही आज जो चैनल के जरिए मुझे क्यों चाह रही हो कि अपनी सोच बदलो, अपनी जो भावना है वहाँ बदलो। ले गोमरा में ऐसा मत सोचो कि गोमरा बच्चा गोमा माँ बच्ची की दो।
1: चलो श्रोता बंधुओ, आज अपन रमेश जी वैष्णव और जगदीश जी वैष्णव अपने समाज रा रीति रिवाज बता रिया है, और अनोर समाज में अन टाइप री कोई कुरुति नहीं है कि जनती माँ बाप मतलब लाचार वे जाए उन्होंने रिश्ता मतलब कहने दहेज देवा वास्ते, कि उन्होंने दहेज प्रथा बिल्कुल उन्होंने समाज में नहीं है, स्वैच्छिक है, जो भी देना चाहे दे के, और अच्छा रिवाज है। पर और भी रिवाज उन्होंने समाज रहा है, आपो अगला हफ्ते उन्होंने ले तो हमें अपने मेहमान रमेश जी और जगदीश जी रो आभार प्रकट करूँ हूँ कि अपना अमूल्य समय दीदो है, और हूँ कैसे जिनगर अपनी वाणी ने विराम देवाते पहला आपने बतावना चाहूँ कि वो जो अपनो समाज मारवाड़ी कार्यक्रम है वो आप रो अपनो है, और आप समाज रा जो भी बंधु है, जो भी आज रेडियो मधुबन रा लिसनर है, जो भी श्रोता बंधु होबले रिया है, मनोती एक अपील है कि आपरे मायती भी कोई आपरे समाज रा रीति रिवाज अपना अनुभव जो भी आप अन कार्यक्रम में प्रसारित करवारी मनसा राखो हो तो रेडियो रा नंबर माता है जरूर मैसेज करजो। रेडियो रा नंबर है 94-14-15-14-15। तो श्रोता बंधुओं हमें मुँह अपनी वाणी विराम देव हूँ, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज शहर से मेरे चाचा जी आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने। अरे वो देखो, रीना भी बिल्कुल मेरी तरह खुश है। चलो देखे तो रीना की खुशी का क्या कारण है।
1: ओ, ओ, मीना मीना मीना, पता है कल मौसमी दीदी आ रही है।
2: मौसमी दीदी?
1: हाँ मीना, मौसमी दीदी मेरी मौसी की बेटी। मौसमी दीदी मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी है, लेकिन वो मेरे साथ खूब खेलती है।
2: अच्छा?
1: हाँ, जब वो 3-4 साल पहले हमारे घर रहने आई थी तो हम दोनों पूरा दिन खेलते रहते थे।
2: क्या मौसमी दीदी हमारे साथ खो खो का मैच भी खेलेंगी?
1: बिल्कुल, अब मैं चलती हूँ मीना।
2: ठीक है रीना, मैं भी रानो, सुमी, चमेली, रीता, रोशनी, बेला सबको बोल के आती हूँ कि हम लोग रविवार को मौसमी दीदी के साथ खो खो का मैच खेलेंगे।
0: और अगले दिन जब मीना मौसमी से मिलने रीना के घर गई,
1: मौसमी दीदी, अच्छी इससे मिलिए, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली मीना।
3: प्यारी सहेली मीना, करे सफल ये जीना।
1: ये मिट्टू, मीना का प्यारा तोता।
3: प्यारा तोता, मिर्च खा के सोता।
2: मौसमी दीदी, रीना बता रही थी कि आपको उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है।
1: और क्या, मेरी मौसमी दीदी तो मेरे साथ खूब खेलेंगी। मौसमी दीदी ये देखो, मैं आपके लिए कितने सारे कंचे लाई हूँ, आओ खेले।
4: नहीं रीना, मैं बहुत थक गई हूँ।
1: लेकिन आपको तो कंचे बहुत अच्छे लगते हैं।
4: अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैं कंचे नहीं खेलती क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ।
1: ठीक है दीदी, अगर आपको कंचे नहीं खेलने तो कोई बात नहीं, हम कूदेंगे रस्सी।
3: कूदेंगे रस्सी, पिएंगे लस्सी।
4: रस्सी? नहीं नहीं, रस्सी कूदने से मेरी सांस फूल जाती है और मैं बहुत थक जाती हूँ।
1: लेकिन दीदी, आपको तो रस्सी कूदना बहुत अच्छा लगता है, आओ ना दीदी।
4: नहीं रीना, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ।
1: ठीक है दीदी। मीना, मौसमी दीदी तो हमारे साथ खेल ही नहीं रही और वो अभी तो सो के उठी है, फिर से सोने क्यों जा रही है?
2: मुझे लगता है मौसमी दीदी थोड़ा थक गई है, इसलिए वो आराम करने चली गई।
1: मुझे तो लगता है मौसमी दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, जब से आई है कुछ सुस्त और बीमार सी है।
5: रीना, रीना। अरे मीना भी आई हुई है।
2: नमस्ते चाची।
6: खुश रहो बेटी। रीना, याद है ना आज तुम्हें नरस बहन जी के पास जाना है।
2: क्या हुआ चाची, रीना की तबीयत तो ठीक है ना?
5: हाँ मीना बेटी, बस कुछ दिनों से जरा खांसी जुकाम हो रहा है इसे, ऐसे में नरस बहन जी की सलाह लेना ही ठीक है। तू ले जाएगी ना इसे नरस बहन जी के पास?
2: हाँ हाँ चाची, हम दोनों अभी जाते हैं, चलो रीना।
0: और फिर मीना और रीना नर्स बहन जी के पास पहुँचे। नर्स बहन जी ने रीना की जांच की और कहा,
7: रीना ये लो खांसी की दवाई, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पीना, याद से।
1: जी नर्स बहन जी।
7: शाबाश, तुम्हारी उम्र कितनी है रीना?
1: जी अगले महीने की 15 तारीख को 10 साल की हो जाऊंगी।
7: अरे वाह, फिर तुम एक काम करना, अपने जन्मदिन के बाद मेरे पास आना, मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है।
1: सच नर्स बहन जी?
7: हाँ।
0: मीना और रीना यही सोचते हुए वापस लौटी कि आखिर नर्स बहन जी रीना को क्या तोहफा देने वाली है। और अगले दिन मीना खो खो के मैच के लिए अपने घर से निकलने ही वाली थी कि रीना वहाँ आ गई।
1: मीना।
2: अरे रीना क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो?
1: मौसमी दीदी ने खो खो का मैच खेलने से मना कर दिया है।
2: क्यों?
1: कहती है कि मुझे थकावट हो रही है, मुझसे नहीं होती है भागा दौड़ी।
4: रीना, रीना,
1: रीना, वो देखो उधर, ये मौसमी दीदी यहाँ क्यों आ रही है?
4: रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ खोखो के खेल के लिए तुम्हारी सारी सहेलियाँ इंतजार कर रही है।
2: मौसमी दीदी, आप नहीं खेलेंगी हमारे साथ?
4: नहीं मीना, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी तेज चल के जो आई हूँ।
1: लेकिन दीदी, क्या आप हमारा खेल भी नहीं देखेंगी?
4: ठीक है रीना, तुम कहती हो तो देख लूंगी।
0: मीना, रीना और मौसमी तेजी से खेल के मैदान की तरफ चले, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहाँ पहुँचती, मौसमी को चक्कर आया और वो जमीन पे गिर पड़ी।
1: मौसमी दीदी, मौसमी दीदी, क्या हुआ? आंखें खोलिए मौसमी दीदी। मीना, अब क्या करें?
2: तुम फिक्र मत करो रीना, मैं भाग के नर्स बहन जी को बुला के लाती हूँ।
0: जब तक मीना नर्स बहन जी को बुला के ले आई, तब तक रीना की माँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी।
5: देखिए ना नर्स बहन जी, मौसमी को ये क्या हो गया?
7: मौसमी, क्या हुआ था?
4: नर्स बहन जी, एकदम से चक्कर आया और मैं गिर पड़ी।
7: पहले कभी हुआ है ऐसा?
4: जी, एक दो बार अपने स्कूल में भी ऐसे ही चक्कर आए थे और मैं गिर गई थी।
7: क्या तुम्हें अक्सर थकावट महसूस होती है?
1: हर समय नर्स बहन जी, मौसमी दीदी जब देखो कहती रहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ।
7: मौसमी, क्या तुम आयरन की गोलियाँ खाती हो?
4: जी वो नहीं।
7: वो क्यों?
4: क्योंकि मैं कभी बीमार पड़ी ही नहीं थी, फिर ये आयरन की गोलियाँ क्यों लूँ?
7: मौसमी, आयरन की गोलियाँ बीमारी के लिए नहीं, ताकत के लिए होती हैं। और हाँ, ये दवा नहीं बल्कि सिर्फ एक टॉनिक है। ताकत का टॉनिक 10 साल से ऊपर की हर लड़की को हफ्ते में एक बार आयरन की एक गोली जरूर खानी चाहिए। अब देखो, तुम्हारे चेहरे का रंग भी फीका है और तुम बार बार थक भी जाती हो। ये सब आयरन की कमी के कारण ही होता है। किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन की जरूरत होती है।
2: अब समझी बहन जी, आप रीना को आयरन की गोलियाँ तोहफे में देना चाहती है, क्योंकि अगले महीने ये भी तो 10 साल की हो रही है।
7: हाँ मीना।
1: नर्स बहन जी, जब अगली बार मौसमी दीदी यहाँ रहने आएंगी, तो क्या वो हमारे साथ खो-खो का मैच खेल सकेंगी?
7: बिल्कुल, अगर मौसमी हफ्ते में एक बार आयरन की एक गोली खाएगी तो जल्दी ही उसकी ये थकावट, चक्कर आना, कमजोरी, ये सब दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सब शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। अब से आयरन की गोली खाना भूलोगी तो नहीं मौसमी?
4: कभी नहीं भूलूंगी,
3: अभी नहीं भूलूंगी, उछलूंगी, खेलूंगी।
0: भाई वाह, मैंने कहा था ना, मीना से मिलकर हर बार एक नई बात पता चलती है। अब मैं भी घर जाके अपने चाचा जी को बताऊंगा कि वो भी अपनी बेटी को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली खिलाए। आखिर उनकी बेटी भी 10 साल की जो हो गई है। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता रची है।
2: जब हो लड़कियां 10 साल की याद उन्हें दिलवाएं,
3: हफ्ते में वो एक बार आयरन की गोली खाएं।
0: मीना और मिट्टू की कविता सुनके तो दिल बाग बाग हो जाता है। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
8: पहले खाना फिर गाना।
9: नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है
2: जी बहनी।
1: तो आज का शब्द है अतिथि। अतिथि का मतलब पता है बच्चों?
3: अतिथि का मतलब होता है मेहमान।
1: शाबाश रानो। चलो बच्चों अब अतिथि के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
4: बहन जी अतिथि का पहला अक्षर है अ और अ से होते हैं आम।
1: शाबाश दीपू। अब आम से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
3: आम के आम गुठलियों के दाम।
1: हाँ सुमी। और इस मुहावरे का मतलब?
3: बहन जी इस मुहावरे का मतलब होता है कुछ बेकार न जाना।
1: बिल्कुल ठीक सुमी। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
5: आ के बाद अतिथि में आता है त और त से होता है ताला।
1: सही जवाब कृष्णा। और मुहावरा?
5: अकल पे ताला पड़ना मतलब बात समझ में ना आना।
3: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ गोलू बताओ।
3: अ और त के बाद अतिथि में आता है थ और थ से होती है थैली।
1: शाबाश गोलू। और थैली से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
3: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना और इसका मतलब होता है एक समान होना।
1: शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना? फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

रखना, धर्म की रक्षा करने आएगा वो अब, धर्म की रक्षा करने।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। 11वां पाठ, पहाड़े और बंटवारे, पृष्ठ 120। श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे उगाए हैं। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। यहां पर एक बगीचा है जिसमें तीन तरह के फूल हैं, सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के। पहली पंक्ति में एक लाइन से 18 फूल सूरजमुखी के हैं। उसके बाद की 6 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति के 3-3 फूल गुलाब के हैं और सबसे अंतिम 2 पंक्तियों में 9-9 फूल गेंदे के हैं। इस बगीचे में पौधों की 3 क्यारियां हैं। यहां पर श्यामा का चित्र बना है। श्यामा कह रही है, देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है। देखो गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। 18 = 6×3, इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौधे। सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए गए हैं? 18 = (×), इस तरह रिक्त स्थान कतार हुई और उस कतार में रिक्त स्थान पौधे। 18 = (×), इस तरह रिक्त स्थान कतारें हुई और हर कतार में रिक्त स्थान पौधे। तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधों के लिए क्यारियां बनी हों, हर कतार में बराबर पौधे हों। शिक्षकों के लिए निर्देश, वस्तुओं को आयताकार संरचना में सजाने के साथ गुणा की अवधारणा का सीधा संबंध है। कक्षा में कुर्सियों की व्यवस्था, प्रार्थना सभा में बच्चों की व्यवस्था आदि संदर्भों पर आधारित सवालों पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है। पृष्ठ 121। अलमारी में जग। भीमा बढ़ई ने 30 जगों के लिए एक अलमारी बनाई। ये 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर बराबर जग हैं। यहां पर एक अलमारी दिखाई गई है। इस अलमारी के 2 खाने हैं। प्रत्येक खाने में 15 जग हैं। क्या तुम इन 30 जगों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ। बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे हैं, इसमें कितने खाने हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग अलग तरीकों से बनाया है? आसान तरीके। यहां पर 2 बच्चों के चित्र हैं, एक बंटी का और दूसरा गुड्डू का। बंटी कहता है, मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। गुड्डू कहती है, मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है। मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकती हूं। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चे बिना रटे नए नए पहाड़े बनाने का तरीका बहुत पसंद करेंगे। पृष्ठ 122। 2 का पहाड़ा। यहां पर 2 का पहाड़ा बनाकर दिखाया गया है। आइए अब इस पहाड़े को पढ़ते हैं। 2×1=2, 2×2=4, 2×3=6, 2×4=8, 2×5=10, 2×6=12, 2×7=14, 2×8=16, 2×9=18 और 2×10=20। 5 का पहाड़ा। यहां पर 5 का पहाड़ा बनाया गया है। आइए अब हम इसे पढ़ें। 5×1=5, 5×2=10, 5×3=15, 5×4=20, 5×5=25, 5×6=30, 5×7=35, 5×8=40, 5×9=45 और 5×10=50। और यहां पर 7 का पहाड़ा भी दिया गया है। सात का पहाड़ा। आइए अब हम दो और पांच के पहाड़ों के मदद से सात का पहाड़ा बनाएं। दो जमा पांच बराबर सात, चार जमा दस बराबर चौदह, छह जमा पंद्रह बराबर इक्कीस, आठ जमा बीस बराबर अट्ठाईस, दस जमा पच्चीस बराबर पैंतीस, बारह जमा तीस बराबर बयालीस, चौदह जमा पैंतीस बराबर उनचास, सोलह जमा चालीस बराबर छप्पन, अट्ठारह जमा पैंतालीस बराबर तिरसठ और बीस जमा पचास बराबर सत्तर। यहां पर दो बच्चों के चित्र दिए गए हैं। लड़की कहती है, देखो कैसे मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़कर सात का पहाड़ा बनाया। और लड़का कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, मैं तीन और चार के पहाड़ों से भी सात का पहाड़ा बना सकता हूं। चार और तीन के पहाड़े से सात का पहाड़ा बनाने में बंटी की मदद करो। चार का पहाड़ा, चार गुणा एक बराबर चार, चार गुणा दो बराबर आठ, चार गुणा तीन बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा चार बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा पांच बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा छह बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा सात बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा आठ बराबर रिक्त स्थान, चार गुणा नौ बराबर रिक्त स्थान और चार गुणा दस बराबर रिक्त स्थान। तीन का पहाड़ा, तीन गुणा एक बराबर तीन, तीन गुणा दो बराबर छह, तीन गुणा तीन बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा चार बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा पांच बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा छह बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा सात बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा आठ बराबर रिक्त स्थान, तीन गुणा नौ बराबर रिक्त स्थान और तीन गुणा दस बराबर रिक्त स्थान। दी गई संख्याएं पीले रंग में रंगी गई हैं। सात का पहाड़ा, चार जमा तीन बराबर सात, आठ जमा छह बराबर रिक्त स्थान। अब आप खाली संख्याओं को स्वयं भरें और पहाड़े को पूरा करें। बारह का पहाड़ा बनाने के लिए तुम कौन से दो पहाड़ों का प्रयोग करोगे? पृष्ठ 123। कितनी बिल्लियां? गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थीं। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका, तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियां थीं? यहां पर एक डिब्बे का चित्र है जिसके नीचे बिल्लियों के पैर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद यहां पर गायत्री का चित्र भी बना है। गायत्री सोच रही है, आठ पैर मतलब दो बिल्लियां, बारह पैर मतलब रिक्त स्थान बिल्लियां। आइए अब हम दिए गए कॉलम को पूरा करें। कितने पैर? चार। कितनी बिल्लियां? एक। कितने पैर? आठ। कितनी बिल्लियां? दो। कितने पैर? बारह। कितनी बिल्लियां? रिक्त स्थान। अब आप आगे के खाली स्थानों को स्वयं भरें। इस तरह 28 पैर मतलब रिक्त स्थान बिल्लियां। बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा है। उसने 28 पैर गिने हैं। डिब्बे में कितने चूजे हैं? लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। वो कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है? शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को तालिका भरने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही उनके सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की वृत्ति को बढ़ावा दें। उदाहरण के तौर पर वो समझ सकें कि 48 पैर मतलब 12 बिल्लियां और 12 बिल्लियां मतलब 48 पैर। वस्तुतः ये बीजगणितीय चिंतन का आधार है। पृष्ठ 124। जानवरों की छलांग। क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं? एक मेंढक शून्य से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। अगर वो 27 पर है तो अब तक वो कितने कदम कूदा? उसने लगाई 27/3 रिक्त स्थान कूदें। यहां पर एक सांप का चित्र है जिस पर 0 से 67 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और 0 पर एक मेंढक को बैठे दिखाया गया है जो कूद रहा है। आइए अब हम रिक्त स्थानों को भरें। वो रिक्त स्थान कूदे लगा चुका है अगर वो 36 पर है। अगर वो 42 पर है तो उसने रिक्त स्थान कूदे लगाई हैं। एक खरगोश 0 से शुरू करके 1 बार में 5 कूद लगाता है। कितनी कूदों में वो 25 पर पहुंचता है। वो 8 कूदों के बाद रिक्त स्थान पर पहुंचा। उसे 55 पर जाने के लिए रिक्त स्थान कूदे चाहिए। अभ्यास 1 28/2 रिक्त स्थान, 2 56/7 रिक्त स्थान, 3 48/4 रिक्त स्थान, 4 66/6 रिक्त स्थान, 5 96/8 रिक्त स्थान और 6 110/10 रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश, छात्र गुणा और भाग के लिए इसी तरह का अभ्यास कक्षा 3 में भी कर चुके हैं। देखें पृष्ठ संख्या 173 से 176 गणित का जादू कक्षा 3 NCERT पृष्ठ 125। सीपियां, ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वो पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियां इकट्ठी कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियां हैं। यहां पर ध्रुव का चित्र है जिसे समुद्र के किनारे बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके सामने सीपियों का ढेर है। ध्रुव सोच रहा है, मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? उसने 28 सीपियां निकालकर एक माला बना ली। 112 - 28 = 84। अब उसके पास 84 सीपियां बची। उसने फिर 28 सीपियां लेकर दूसरी माला तैयार की। अब उसके पास कितनी सीपियां बची? रिक्त स्थान। फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियां निकाल ली। अब उसके पास रिक्त स्थान सीपियां बची। 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? रिक्त स्थान। इतनी सीपियों में क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? रिक्त स्थान। इन्हें करके देखें। कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई। 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो ऐसे प्रश्न हल करें जो संख्याओं से भाग पर आधारित हों। ऐसी संख्याएं जिनके लिए उन्हें पहाड़े नहीं आते। वो बार बार घटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें हल करें। बच्चों को रोजमर्रा के जीवन से संबंधित प्रश्न हल करने को दें। पृष्ठ 126। ख, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियां आ सकती हैं। शैली 338 टिकियां पैक करना चाहती है। उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? ग, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बारी में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपए लेता है। मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? गंगू की मिठाइयां, गंगू ईद के लिए मिठाइयां बना रहा है। उसने एक थाली 80 लड्डुओं से तैयार की है। यहां पर गंगू हलवाई का चित्र है जो लड्डू बनाता दिख रहा है और उसके सामने थाली में 80 लड्डू रखे हैं। यहां पर रबिया का चित्र है। रबिया कहती है, एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो, मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए। यहाँ पर 6 डिब्बों के चित्र हैं और उनमें से 3 डिब्बों में 4-4 लड्डू हैं। क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? रिक्त स्थान। और कितने लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी? रिक्त स्थान। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस अभ्यास को करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने तरीके इस्तेमाल करें, जैसे चित्रों का समूह बनाना, गुणा का या बारंबार घटाने की प्रक्रिया का भाग के लिए उपयोग करना। पृष्ठ 127। गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वो 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे ऐसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? अभ्यास का समय। 1। नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? 2। 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की जरूरत होती है। एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की जरूरत होगी? 3। रजिया को 500 रुपए के खुले चाहिए। उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वो बदले में चाहे? क: सभी 100 रुपए के नोट। रिक्त स्थान। ख: सभी 50 रुपए के नोट। रिक्त स्थान। ग: सभी 20 रुपए के नोट। रिक्त स्थान। और घ: सभी 5 रुपए के नोट। रिक्त स्थान। यहां पर 5, 20, 50, 100 और 500 रुपए के एक एक नोट दिखाए गए हैं। तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं। हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे? एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है। सभी ईंटों का वजन कितना होगा? पृष्ठ 128। बच्चे और उनके दादाजी। राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे। यहां पर दादाजी का चित्र है और साथ ही 2 बच्चे दिखाए गए हैं। दादाजी कहते हैं,
1: मेरी जेब में 70 रुपए हैं। मुझे बताओ कि मैं ये पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं? अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा।
0: पहला तरीका। राशि और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले,
2: हम जानते हैं कि ये कैसे होगा, 70/5।
0: सीमा ने लिखना शुरू किया और बोली,
2: 5×10=50। पहले मैं सबको 10-10 रुपए देती हूं। 70×50=20। इस तरह मैंने 5×10=50 रुपए बांटे। 20 रुपए अभी भी बचे हैं।
0: राशि ने इसे इस तरह पूरा किया। उसने कहा, अब हम 70 को 5 से भाग करते हैं।
2: 5×10=50।
0: तो 70 में से 50 गए, बचे 20।
2: अगर मैं हर एक को 4 रुपए और दे दूं तो 20 रुपए बढ़ जाएंगे।
0: अब हम 20 को 5 से भाग करते हैं तो 5×4=20। तो 20 में से 20 गए, बचा 0।
2: 10×4
0: अब कुछ नहीं बचा और सारे पैसे सब में बराबर बराबर बंट गए। अब हम 10 में 4 को जोड़ेंगे। 10×4 हुए 14। इस तरह हर किसी को 10×4=14 रुपए मिलेंगे।
3: शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को जब कुछ वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना हो तो वो वास्तव में यही तरीका अपनाते हैं। इस स्थिति में हो सकता है वो पहले 5 लोगों को 10-10 रुपए दें, फिर शेष बची राशि को भी समान रूप से बांटें। वो इसे पहले 5-5 रुपए देकर भी बांट सकते हैं। बच्चे किसी भी एक तरीके से बांटने का काम पूरा कर सकते हैं। यही इस तरीके की सुंदरता है।
0: पृष्ठ 129। दूसरा तरीका। मृदुल और लोकेश 70/5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: लोकेश लिखता है 70/5। पहले मैं हर किसी को 5 रुपए दूंगा, फिर मैं बांटूंगा 5×5=25 रुपए। 70 में से 25 गए तो बचे 45। दूसरी बार मैं सभी को 6 रुपए और दूंगा तो 5×6=30। तो 45 में से 30 गए तो बचे रिक्त स्थान। इस तरह मैं 30 रुपए और बांटूंगा, अब मेरे पास रिक्त स्थान रुपए बचेंगे।
3: बचे हुए पैसे लोकेश कैसे बांटेगा, इसे पूरा करो। इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे 5×6×रिक्त स्थान=रिक्त स्थान रुपए। यहां पर एक चींटे का चित्र है जो कहता है,
4: अपने उत्तर की जांच करो, तुम्हारा जो भी उत्तर आए उसे 5 से गुणा करके देखो, क्या 70 आता है? क्या तुम्हारा उत्तर ठीक था?
3: तुम्हारा तरीका। अब अपने तरीके से 70 रुपए 5 लोगों में बांटो। यदि तुम चाहो तो पहले 2-2 रुपए बांटकर देख सकते हो, या तुम 11-11 रुपए बांटकर भी शुरू कर सकते हो। यहां पर चींटी का चित्र है जो कहता है,
4: क्या तुम 15-15 रुपए बांटकर भी शुरू कर सकते हो?
3: करके देखो। अब दिए गए प्रश्नों को तुम स्वयं हल करो। क, 65/5=रिक्त स्थान। ख, 84/2=रिक्त स्थान। ग, 69/3=रिक्त स्थान। घ, 90/6=रिक्त स्थान। ल, 72/4=रिक्त स्थान। च, 108/9=रिक्त स्थान। छ, 232/2=रिक्त स्थान। और ज, 428/2=रिक्त स्थान। पृष्ठ 130। झ, मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। वो उन्हें 6 के पैकेट में पैक कर रही है। वो कितने पैकेट बनाएगी? यदि वो उन्हें 12 के पैकेट में पैक करे तो वो कितने पैकेट बनाएगी? य, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं। वो बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं। हर कतार में कितने बच्चे हैं? अपने सवाल बनाओ। सृष्टि की दादी जी उसे सवाल बनाने के लिए कह रही हैं। यहां पर सृष्टि और उसकी दादी का चित्र है, और यहां पर 3 बक्सों में 24 बोतलें दिखाई गई हैं। सृष्टि की दादी कहती हैं,
5: नीचे बनी तस्वीर को देखो और एक सवाल तैयार करो।
3: सृष्टि बोली,
5: यहां 3 बक्से हैं और हर बक्से में 24 बोतलें हैं। मेरा सवाल, इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं?
3: अब तुम भी अगली तस्वीरें देखो और सृष्टि की तरह ही सवाल बनाओ। पृष्ठ 131। एक, राखी के 8 पैकेट हैं। हर पैकेट में 6 राखियां हैं। यहां राखी के पैकेट के चित्र दिखाए गए हैं। तुम्हारा सवाल, रिक्त स्थान। 2, चीनी के 10 पैकेट हैं। सौरभ ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपए दिए हैं। यहां पर चीनी के पैकेट दिए गए हैं। तुम्हारा सवाल, रिक्त स्थान। 3, यहां 35 विद्यार्थी 7 पंक्तियों में बैठे हैं। हर पंक्ति

20 रुपए है। लाल बेग ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपए दिए। यहां पर लाल बेग का चित्र है और साथ ही दर्जी कपड़े को नापता हुआ दिखाया गया है। तुम्हारा सवाल रिक्त स्थान। इसी पृष्ठ पर आखिर में एक चींटी का चित्र बना है जो कहता है, अंदाजे से भी उत्तर दो। इसी के साथ 11वां पाठ, पहाड़ी और बटवारे।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरी हॉबीज तो बहुत है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
2: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को, बहुत सारी चीजें। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
3: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
1: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
4: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव क्रिएटिव शब्द सुनाई दे रहे हैं मुझे।
1: दीदी, आप हॉबीज की बातें हो रही
4: है। अच्छा, इसीलिए मुझे कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
5: हॉबीज के बारे में।
4: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना। जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा, तो आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
6: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
8: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
9: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।

0: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8 में हूँ।
1: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे अपनी इतनी दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
2: खाना बनाना।
1: खाना बनाना, और
2: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
1: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
3: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है।
4: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
0: दीदी मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
1: दो बताओ उनमें से।
0: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
1: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना?
0: जोक सुनाना।
1: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है ना? और राघव को क्या पसंद है?
5: आर्ट और डांसिंग।
1: और शिवांशी को?
6: डांस करना और खाना खाना।
1: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
5: दीदी मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं।
1: सिंगिंग पसंद है आपको? ओके, वेरी नाइस। मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
5: दीदी हॉबी टैलेंट होता है।
1: वेरी गुड।
5: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है।
1: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है। रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो।
5: दीदी मेरी एक और हॉबी है।
1: क्या?
5: पियानो बजाना।
1: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है। अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है?
5: दीदी उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। मतलब पहले जब पापा छोटे होते हैं तो पापा धीरे धीरे कम आर्ट करते, फिर पापा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर पापा आर्टिस्ट बन जाते हैं।
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट।
6: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कंपटीशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते।
0: और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताएं तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है।
1: राइट,
3: बिल्कुल। हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।
1: सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का, बहुत सारे फायदे हैं, है ना? हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
5: लॉन्ग टाइम,
6: जिंदगी भर करना,
1: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल। तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
2: दीदी हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे।
1: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब?
5: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं।
2: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ।
1: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
3: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं।
1: okay.
3: हमें कुछ सीखना होता है।
6: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था उसमें भी कर लेते हैं हम।
1: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
0: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं।
1: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
0: रात को।
1: रात को मिलता है, दिन में नहीं मिलता है। ओके,
0: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क।
1: अच्छा, होमवर्क बाद में?
0: हाँ।
1: ओके,
0: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है इसलिए।
1: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब। ओके,
6: दीदी पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में।
1: और फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा फिर?
0: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मैम प्लीज।
1: हाँ, भाई होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
2: हाँ
1: हाँ, लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए, मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज तो बहुत समय से है ना आपकी,
0: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस।
1: आप इस साल मतलब अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ?
3: हम कहीं से सीख भी सकते हैं।
1: कहीं से सीख सकते हैं? ओके,
0: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ।
1: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, फन के साथ। ओके,
2: दीदी अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: अनुष्का का क्या लगता है?
3: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं।
1: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना, है ना? मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग बहुत समय से, सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारे स्किल को और बढ़ाए। आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, तो अपनी ड्रॉइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं, और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो, है ना? और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
6: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने, कुछ जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है, अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा।
3: और माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना है, गुस्सा हो जाते हैं।
1: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना, अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, लगातार अगर पसंद है तो करते रहना है। और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
0: हाँ जी दीदी। दी।
1: क्या करके देखा है बताओ?
0: क्लासिकल डांस।
1: क्लासिकल डांस, ओके ग्रेट। और किसने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो।
6: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे, मंडला आर्ट।
1: मंडला आर्ट, ओके।
0: शास्त्रीय संगीत
1: किसने सीखा?
0: मैंने।
1: आपने?
0: हाँ।
1: सीख रहे हो अभी?
0: हाँ।
1: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
0: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते पियानो पर।
1: क्या कोई राग होता है उसमें?
0: हाँ।
1: अरे वाह, वेरी गुड। और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, उसमें क्या बात है, आप तो बच्चे हो अभी, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग। नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो।
2: नहीं, मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की।
1: ओके, हाँ अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
3: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है।
1: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज है ना। खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है, लेकिन जरूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना। एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो।
2: ज्यादा खाना बनाने में को कम आता है, मतलब ऐसे ही हूँ, जैसे चावल छोकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीजें।
6: ये थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में है।
3: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ।
1: क्या बनाना आता है आपको?
3: मैगी।
1: मैगी बनानी आती है।
0: दीदी मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ।
1: नई नई डिशेज ट्राई करते तो हो आप।
3: और दीदी मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गया है।
1: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
3: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है, आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी।
1: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो। वेरी गुड। अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे।
5: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ।
1: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को।
5: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी वाला करते है, पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है अभी इसमें?
1: हाँ, ये तो कोई गलती नहीं है आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो।
5: शिवांशी तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होगा मैं खुद बनाऊंगी। तो मम्मी तो सो रहे होते हैं तो इसीलिए मना करते हैं, वरना तो मम्मी पी लेते हैं।
1: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
5: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू।
1: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है। और
0: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया।
1: ओके
2: दीदी, मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर सोचे घर वालों को पिलाती हूँ।
1: सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
2: सोचोगे नहीं जैसे पापा घर में आए मुझे तुरंत बोलते सबके लिए नींबू पानी बना।
1: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना।
6: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था।
1: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना, मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं तो मेहनत करते हैं, है ना। तो आपकी हॉबीज, एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती है हमारी हॉबीज। कैसे बेनिफिट देती है दूसरों को बताओ?
0: कुकिंग से।
1: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा। और हमारी हॉबीज
6: डांस से भी हो सकते हैं।
1: आर्ट और डांस से क्या हो सकता है दूसरों को?
6: डांस से दूसरों को सिखा सकते हैं, और आर्ट से अगर किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, सिखा सकते हैं।
1: हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्या लगता है आप लोगों को?
3: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बना है।
2: और अगर दीदी उनको डांस सीखना है, उनके कोई स्टेप नहीं आ रहा, तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
1: राइट।
2: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
3: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
1: सिखा सकते हैं, है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। और हम मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो, तो भी जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो है ना, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को.
2: अभी 11 मई को मदर्स डे था तो मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
1: मम्मी को. अरे वाह,
3: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था.
2: दीदी आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी.
1: वेरी गुड, क्रिएटिव. तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी हैं. आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना.
3: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली और जब वो खोलते हैं तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे.
1: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं. तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो. और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं. जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना. कितने सारे बेनिफिट्स. तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए.
2: ये तो उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है वो ज्यादा पसंद है, तो इनसे सीख सकते हैं हम.
1: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से.
2: दीदी हमें ये फायदा होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है हम खुद सीखते हैं. जैसे अब मेरे को डांस सीखना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा हमें, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: कुछ नया नया सीखते रहेंगे,
2: नया नया सीखते रहेंगे. जैसे खाना बनाना होता है, अब खाने में जैसे मेरे को ये चीज नहीं आ रही, जैसे मेरे को पहले सिखाया था उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं.
1: अनुष्का क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है हॉबीज का? हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ. कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ, उसका मुझे क्या फायदा है?
5: दीदी हम किसी और को वो जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं.
1: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
5: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी.
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है हाँ.
3: और दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं.
1: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो.
2: दीदी डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है. दीदी मान लो
1: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी.
2: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं.
1: राइट.
5: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया कि मेरे पास ये हॉबी और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है.
1: हाँ, कंपटीशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं.
3: और दीदी अगर हमें कुकिंग कंपटीशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं. हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते. अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं.
1: बिल्कुल
5: दीदी, मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमको खुशी भी मिलती है.
1: हमको खुद को खुशी मिलती है.
6: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी.
1: हाँ भूख लगने लगी. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं. चलो तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना. मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है. खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें हैं. तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
0: नहीं,
1: कभी नहीं. और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ. कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो हो जाता है छू मंतर. ठीक है, तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स. तो फिलहाल रेडियो मधुबन 107.8 FM से लेते हैं इजाजत और हमारे दोस्तों को कहते हैं बाय बाय.

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है एक नज्म। उन्वान है काम और जिंदगी। शायर हैं फैज लुधियानवी। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: बरकतें हैं आज घर घर काम से, चल पड़ा दुनिया का चक्कर काम से। जिनको अपने फर्ज का एहसास है, दिल लगाते हैं वो अक्सर काम से। कामयाबी उनकी किस्मत में कहां, भाग जाते हैं जो डर कर काम से। खेत हो, स्कूल हो या फैक्ट्री, सबकी रौनक है सरासर काम से। काहिली तो जानलेवा रोग है, जिंदगी होती है बेहतर काम से। जिंदा रहने का सलीका है यही, मुंह न मोड़े कोई दम भर काम से। बैठकर बातें बनाना सहल है, असल में खुलते हैं जौहर काम से। कद्र करता है जमाना काम की, नाम पाते हैं हुनरवर काम से। दो घड़ी आराम करना चाहिए, जब फरागत हो मयसर काम से।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: ऊपर वाला
1: मैं कनव हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
2: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
1: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
3: मित्र

0: बाल संसार रेडियो कार्यक्रम में आज का विषय है नैतिक मूल्य, सहानुभूति और करुणा। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर अजय शुक्ला और कार्यक्रम का संचालन करेंगे आरजे रमेश। कार्यक्रम का सारांश इस प्रकार है। कार्यक्रम का परिचय। आज के कार्यक्रम में हम नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और करुणा के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये गुण बच्चों के व्यक्तित्व और समाज में उनके योगदान को आकार देते हैं। मुख्य बिंदु नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सच्चाई और न्याय बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला नैतिक मूल्यों के महत्व और उन्हें बच्चों में विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सहानुभूति। सहानुभूति बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने में सक्षम बनाती है। कार्यक्रम में सहानुभूति के विकास के महत्व और इसे प्रोत्साहित करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। करुणा। करुणा बच्चों को दयालु और मददगार बनाती है, जिससे वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला करुणा के महत्व और इसे बच्चों में विकसित करने के उपायों पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अजय शुक्ला नैतिक मूल्य, सहानुभूति और करुणा को बच्चों में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देंगे।
1: नमस्कार, बाल संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष अजय शुक्ला जी हैं। और पिछले कुछ एपिसोड में हमने बाल संस्कार की बातें की थी और जिसमें हम लोग काफ़ी निर्मल मन और उसमें सीखने की क्षमता के बारे में बातें की थी, रचनात्मक और कल्पनाशील पे बातें की थी। तो आइए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और सहजता और बौद्धिक क्षमता की बातें हम लोग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे आप सभी को बच्चों की जो सहजता है और उनके बौद्धिक क्षमता को समझने में टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन काम हो जाता है। ले चलता हूँ फिर से अजय जी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
2: बाल संसार, बाल संसार।
1: ओम शांति भैजी। बहुत शांति, कैसे हैं आप?
3: बहुत आनंद में, खुशी
1: जी जी जी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि वो पिछले हमारे एपिसोड से कंटिन्यू करते हैं हम लोग
3: जी जी,
1: जहाँ पर हमने रचनात्मक और कल्पनाशीलता की बात की थी। बच्चों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय आपने बताए थे, तो मैं चाहूंगा कि एक और एक दो एग्जाम्पल दे देंगे बच्चों का, कैसे रचनात्मक और कल्पनाशीलता को हम लोग इम्पोर्टेंस भी दें और उसको इम्प्रूव भी करें।
3: बहुत अच्छी बात है, एक बढ़िया संकल्प है कि कई बार रचनात्मकता तो होती है लेकिन उसको महत्व देना होता है, और जैसे ही हमने इम्पोर्टेंस दी तो एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसे इम्प्रूव भी करना है, जो आप कह रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हम देखें तो बड़े होने के नाते हमें किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है और किन्हें इम्प्रूव करना है, इन दोनों शब्दावली को बिल्कुल राइट और लेफ्ट में लेके चलना पड़ेगा। कारण उसके पीछे क्या है कि ये दोनों ही शब्द बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हैं, संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही इम्पोर्टेंस हम देते हैं तो भीड़ में भी आप किसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। या आपने कॉल किया, या टीचर कई बार बच्चों को बुलाते हैं आप आगे आओ, तो एकदम वो बच्चा तो आगे आएगा लेकिन पूरे वातावरण में हजारों बच्चों के बीच में एक सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा कि इनको आगे क्यों बुलाया, इनको इम्पोर्टेंस क्यों दिया। तो इम्पोर्टेंस देने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके अंदर जो गुण शक्ति है, व्यक्ति तो सभी हैं लेकिन बच्चा वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कुछ करना चाहता है, या आपने उसको जज कर लिया कि नहीं इनके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट गुण है, अगर इसको प्रमोट किया जाए और या इसके इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा इनको रिस्पेक्टिव एंगल में उसको लेना पड़ेगा ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि कई बार बहुत अच्छी चीज़ भाई जी होती है लेकिन क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जो अच्छी चीज़ है उससे मैं तो संतुष्ट हूँ लेकिन वो सोसाइटी के लिए कितनी यूजफुल रहेगी, कितनी मैं उसको कंट्रीब्यूट तो करूँगा तो वो उपयोगी कितनी रहेगी। तो ये उपयोगिता को जो कन्फर्मेशन है वो इम्पोर्टेंस से वहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है। अब उसके बाद बात आती है, ये बच्चे के मन में भी आता है कि अब इस इम्पोर्टेंस जो दी गया है मेरे गुण या शक्ति को, अब मैं इसको किस चैनल में यूज करूँगा। तो वो जब बात इम्प्रूवमेंट की होती है तो उसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक तो मुझे प्लेटफॉर्म मिले और दूसरा प्लेटफॉर्म मिलने के साथ साथ में वो इंसान अर्थात बच्चा उस अपनी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के जो एक्सेप्टेंस हैं, तमाम जो पहलू हैं, उसे वो स्वीकार करे, उसे ये भी स्वीकार करे कि केवल आप ऐसा नहीं कि कुछ समय आके और एक, क्योंकि इम्पोर्टेंस और इम्प्रूवमेंट के बीच में एक होता है इम्प्रेशन, वो ये भी हो सकता है कि चालाकी से कुछ समय तक अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर लें लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो वर्क ना करें। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम को एक बार थिंकिंग करना पड़ेगा कि इन्हें जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं तो इनके ड्यूरेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या ये भी अपने लिए कुछ काम करते हैं। अर्थात हमें ये थोड़ा एजेंडा जानना होगा कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन्होंने या बच्चे ने अपने आप को कितना अपडेट किया हुआ है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेसिक बैकग्राउंड है अपडेट। अगर वो अपडेट किया है तो वो अपडेट के अकॉर्डिंग वो कितना अपने को अप टू डेट रखते हैं, वो अपडेट कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ से यहाँ होना चाहिए लेकिन खुद को वहाँ अप टू डेट नहीं रख रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अपडेट भी करें और अप टू डेट भी रखें। अब अप टू डेट रहने का मतलब ये है कि उस टारगेट के अनुसार स्वयं की मैचिंग करना, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुकूल अर्थात मैंने अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लिया है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को जानता हूँ, मैं अपनी वीकनेसेस को जानता हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी थ्रेड्स है उसको मैं जानता हूँ, जो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके अनुसार भी मुझे बिहेवियर करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ एकदम एट ए ग्लांस नहीं हो जाएगा। जैसे एक पुरानी कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन वो एक दिन में नहीं बना, थोड़ा समय लगेगा। तो ये सारी प्रोसेस के बीच में जो बच्चे को एक मूल्य की आवश्यकता होगी और जिसे टीचर या गार्जियन बताएंगे भी कि पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट प्रेयर, धैर्य तो बेटा किसी भी स्थिति में रखना ही होगा और वही धैर्य उनकी इम्पोर्टेंस को और उनके इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस को एक नए इस्टेब्लिशमेंट फॉर्म में वहाँ लाके इस्टेब्लिश कर देगा उन्हें, और उन्हें वहाँ एहसास होगा कि वो जो हमने धैर्य की वैल्यू, जो साइलेंट वैल्यू थी, उसने मेरे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद की। जी
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और खुशी हो रहा है कि कैसे हम लोग जो है रचनात्मक और कल्पनाशील को बच्चों में लाने के लिए एक धैर्य का गुण सिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बनाना हो तो वो अपना टाइम मांगता है। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 10 से 15 साल उनको भी पढ़ाने के लिए समय देना पड़ता है। तो हर चीज़ अपने आप में, जब जिस चीज़ के लिए आप श्रद्धा से समय देते हो तो उतना ही खूबसूरत और लंबा चलता है। तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है। और आइए एक और सवाल आता है जहाँ पर सहानुभूति और करुणा की बात आती है। तो ये हमारे मूल्यों में से एक जो है भावना युक्त मूल्य है, तो बच्चों में सहानुभूति और करुणा के विकास में महत्व और उनके ऊपर विचार करने के तरीके कैसे होने चाहिए या करुणा से कैसे वो भरपूर हो, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप?
3: बहुत अच्छी बात है। ये भी करुणा और सहानुभूति दोनों पैरेलल एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार करुणा दया हमारी अभिव्यक्ति में होता है लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये करुणा हमारे ऊपर बरसेगी कि नहीं बरसेगी, या हमारे लिए ये दया या सहानुभूति होगी कि नहीं होगी। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं किसी समय अपने अलग टीम में काम कर रहा था और उसी समय मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो एक बच्चे ने कहा कि क्यों नहीं हम क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलने के तमाम टूल्स को लेके मॉर्निंग में हम ग्राउंड में पहुँच गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो ग्राउंड होगा वो स्कूल का ग्राउंड

0: होगा, वहाँ कोई नहीं होगा, हम दो ही बच्चे वहाँ पर खेल रहे होंगे. लेकिन वो एक कॉलेज के ग्राउंड में हम चले गए और वहाँ देखा तो बहुत सारी टीम खेल रही हैं. मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि ग्राउंड एक ही होता था और टीम बहुत सारी होती थी. लेकिन एक वंडरफुल बात थी कि मैंने एक एट ए ग्लांस ऑब्जर्व किया कि अलग अलग गेम्स लोग वहाँ खेल रहे हैं लेकिन किसी में टकराहट नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, सभी अपने को फोकस किए हुए हैं. तो इसी बीच में एक स्पेस था तो बच्चे ने कहा कि यहाँ हम लोग खेलते हैं. स्टैम्प तो हमारे पास में था नहीं, तो कुछ स्टोन को एक के ऊपर एक रख के हमने जमा लिया, विकेट बना लिया. और बच्चे ने कहा कि ये काम करते हैं कि आप बैटिंग पहले करो, मैं बॉल करता हूँ, और हम लोग एक प्लान कर लेते हैं कि सिक्स बॉल में दूंगा, जितना आप प्ले करना है कर लो और फिर मैं प्ले करूँगा. उसी बीच में ये प्रोसेस चल रही थी, एक दो शॉट बच्चे ने मारी. और चूंकि मैं बचपन में क्रिकेट खेला था उतना तो नहीं मुझे रिकॉल था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं खेल पा रहा था, बच्चे को निभा पा रहा था. उसी बीच में दो बच्चों का आना हुआ. अब ये बच्चा बड़ा था और वो दोनों बच्चे छोटे थे. तो अब बड़े इन द सेंस कि एट्थ नाइन्थ में पढ़ने वाले बच्चा और वो कहीं हमारे पास जो दो बच्चे आ रहे हैं वो फोर्थ क्लास में, तो वो आके मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैंने कहा, छोटी सी साइकिल पर आए वो और ऐसा वो शो कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम उनको एकोमोडेट कर लें, हम उनको जोड़ लें. लेकिन इस बच्चे ने इस बीच में मेरे से कहा धीरे से आके कि ये अभी बहुत छोटे बच्चे हैं. मतलब ये शब्दावली सुन के मेरे को एक अंदर से खुशी भी हुई कि ये बच्चा देखो खुद तो बड़ा हुआ नहीं और ये इनको कह रहा है कि बहुत छोटे बच्चे हैं. अब ये छोटे बच्चे जो हैं वो खेलेंगे तो अपना जो गेम से हमारा जो फोकस एरिया है वो सब बिगड़ जाएगा. तो मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, कि थोड़ा इनके ऊपर वो शब्द जो आपने पूछा कि थोड़ा दया करो ना करो, क्योंकि मेच्योर तो तुम हो. वो ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो खिला लेते हैं, मैं एक को अपनी टीम में ले लेता हूँ और एक आपकी तरफ हो जाएंगे. हमने कहा ठीक है, दो दो लोग हो गए. फिर ये बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनसे फील्डिंग का काम ज़्यादा कराना है. इसका मतलब वो दया तो करुणा कर रहा है लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखना चाहता है. वो चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि करुणा दया के चक्कर में ये केवल खड़े रहें और हम दोनों लोग फील्डिंग करते रहें या बॉल लेके आए दूर से. तो वो उसने मुझे थोड़ा सा अलर्ट किया. तो मैंने कहा ठीक है. तो फिर ये भी अलर्ट किया कि क्रिकेट में एक रूल्स है कि आप अगर फोर मारते हैं तो आप वहाँ पर खेलते हैं और एक रन लेंगे तो आपका साइड चेंज हो जाएगा. तो वो मुझे ये भी सिखा रहा है कि भाई जी आप ज़्यादातर दो रन लेना ताकि आपको साइड मिले. तो अब वो दया करुणा का यूज़ तो हो नहीं पाया. तो मैंने कहा नहीं भाई, अब ये बच्चे को भी चांस देना है ना खेलने के लिए. बोले भाई जी फिर वो टाइम हो जाएगा और अपना तो फिर अपने को जाना पड़ेगा और ये तो हो नहीं पाएगा. तो हमने कहा ठीक है. फिर भी मैंने ऐसे किया कि मैंने उसकी बात भी मानी और बच्चे के ऊपर उसकी ओर से भी करुणा और दया शिफ्ट करने का प्रयास किया. मैं जानबूझ के एक रन लेता था, फिर उसको बड़ी खुशी होती थी कि मेरे को बैटिंग करने को मिल गया. तो कुल मिला के ये छोटा सा एक जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें एक मूवमेंट दे रहा है. कुल मिला के वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें और समझ में आई जो वहाँ सीखा मैंने, कि उस बच्चे का एडमिनिस्ट्रेशन पावर, मैनेजमेंट टेक्निक, एकोमोडेट करने की भावना, आपस में एडजस्टमेंट, ये बहुत सारे मूल्य एक साथ मिल गया है. और वहाँ उसने मुझे समझाया कि जब बॉल दूर जाती है तो आपको लेने नहीं जाना है. तो मैं बड़ा आश्चर्य में, ये कैसे, जो और टीमें खेल रही हैं ना उनको आप इशारा करेंगे वो बॉल देंगे, क्योंकि आप भी अपने प्लेइंग मोड में जब रहते हैं और उधर से कोई बॉल आती है तो वहां भी आप सहानुभूति पूर्वक देते हो. तो ऐसे करके ये सब लोग आपस में खेल भी लेंगे, डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और हमारे टूल्स समय प्रति समय हमारे पास में आ जाएंगे. तो ये एक, मैं क्रिकेट तो खेलने गया था लेकिन क्रिकेट के साथ में देयर नंबर ऑफ थिंग्स मेरे को वहां सीखने को मिला, समझने को मिला. बच्चे का मैनेजमेंट में सीखा, किसी को एकोमोडेट करना है, एज फैक्टर में गैप है उससे फिर क्या क्या कराना है, ये सारी चीजें सीखने के बाद में मुझे लगा कि कई बार किसी मूल्य को फॉलो करने के लिए हमें एक निश्चित प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि ये प्लेग्राउंड था. और ऐसी जगह हम पहुंच जाते हैं तो इन मूल्यों पर बड़ी सहजता से कार्य भी हो जाता है और जो आपने पूछा था इम्प्रूवमेंट की जो संभावना है वो वहाँ बढ़ जाती
1: जी. डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और बच्चों के अंदर सहानुभूति और करुणा को लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है और ये मूल्य कैसे बढ़ाया जाए, इसके पर भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया. तो आइए आगे बढ़ते हुए इसी बात को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक. सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत, सुनते रहो मस्कराते रहो.

0: संसार। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में, और जहाँ पर हम लोग सहानुभूति और करुणा की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है हमारी आंतरिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मूल्य है और एक नैतिक मूल्य भी है, और नैतिकता और मूल्य ये बात भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। जबकि ये नैतिक मूल्यों पर एक पूरा चैप्टर लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता था, लेकिन आजकल ये पाठ्यक्रम जो है गायब ही हो गया है, क्योंकि लोग मूल्य निष्ठ नहीं रहे और लोगों के अंदर मूल्य के प्रति आस्था नहीं रहा। जबकि ये चीज़ें हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं और ये हमारे जीवन को चरित्रवान बनाता है। तो आज कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आने के कारण शिक्षा में से इस चीज़ को गायब कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पढ़ाना हमको चाहिए, वो चीज़ें गायब हो गई हैं। तो फिर बाकी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी चलिए पापी पेट का सवाल ऐसे कहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें शिक्षा जो है उस पर कायम टिकी हुई है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अजय जी, बच्चों को नैतिकता और मूल्यों का महत्व समझाने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या आवश्यक कदम है, उस पर आप अपना विचार व्यक्त करें।
1: मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न में ही बहुत सारे समाधान छिपे हुए हैं और प्रश्न के साथ में जो कोड रिलेटेड बातें आप अपने गहरे चिंतन के माध्यम से बोल रहे थे, तो वो सभी बड़ी अर्थपूर्ण और मनोयोग से उसका विश्लेषण किया जाए तो प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन में हम लोग मॉरल एजुकेशन को नैतिक शिक्षा के रूप में देखा करते थे, और एक उस समय एक दिन फुल डे उसके लिए होता था, फिर धीरे धीरे वो हाफ डे में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे वो गायब हो गया। अब वो मॉरल साइंस के नाम से तो है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि केवल सब्जेक्ट तक सीमित है, और जिस समय हम पढ़ते थे उस समय

0: होने के कारण समाज से लगभग खत्म भी हो गई, क्योंकि मुझे याद है कि एक सीरियल उल्टा पुल्टा आता था टेलीविजन पर, उसमें जसपाल भट्टी जी रोल प्ले करते थे, और रोल प्ले में मैंने देखा कि जो भी वो बातें बताते थे वो हंसने तक लोगों ने उसको सीमित कर दिया। और मैंने उनके गहरे इंटरव्यू में देखा और पढ़ा, और उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये उल्टा पुल्टा मैंने हंसी मजाक या केवल टाइम पास करने के नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि इसको देखने के बाद लोग रोएंगे, और रोने से अर्थ है कि रियलाइजेशन करेंगे, और रियलाइजेशन के बाद में इंटरनल चेंज की बात आएगी। ये सब बातों को देखने के बाद में उन्होंने लगभग वो सीरियल जब पूरा हुआ तो काफ़ी उनको निराशा हुई समाज से। ये बात अलग है कि वो पॉपुलर हुए, लोग उनको जानते थे, या वो एक मजाक की शैली में बातें आ गईं, व्यंगात्मक शैली लोगों ने फॉलो कर ली, लेकिन नैतिकता के जो मानदंड होते हैं उसको फॉलो करने के लिए थोड़ी सी गंभीरता आवश्यक होती है, और मनुष्य मनुष्य ही रहता है, लेकिन उस मूल्य के साथ जब जीता है तो जो आज बिल्कुल अपोजिट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रही हैं, या दलाई लामा के शब्दों में कहें तो हम चांद पर चले गए हैं लेकिन पड़ोसी के यहाँ नहीं जा पाए हैं, तो ये जो पैराडॉक्स हमारे जीवन में क्रिएट हो गए हैं, जैसे हम बहुत सारे युद्ध का सामान इकट्ठा करें और पीस पर डे कॉन्फ्रेंसेस करें, तो शांति के हम सम्मेलन कर रहे हैं और युद्ध का हम जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो नेचर है वो स्वभाव बनने के कारण जिस मूल्य को हम अपने बच्चों के अंदर लाना चाहते थे, वैसे आदर्श बनना चाहते थे, और उसी का परिणाम हुआ कि एक समय ऐसा भी आया कि टीचर के द्वारा ये भी स्टेटमेंट आया कि भाई हमारे अंदर तो वो सारे मूल्य नहीं आ पाए, लेकिन आप मेरे को मत देखो और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो, उसको फॉलो करो, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो ये भी मुश्किल हो गया टीचर के लिए कि वो बच्चों के ने एक रोल मॉडल बने। हालांकि वहां पर एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रोग्राम में हम लोगों ने टीचर से कहने का प्रयास किया कि अगर आप टीचर हैं तो आपको रोल मॉडल बनना ही होगा, नैतिक होकर चलना ही होगा, क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रोफेशन आपसे नहीं संभल रहा है तो अभी भी मौका है कि रिजाइन करके आप किसी दूसरे प्रोफेशन को फॉलो कर लें, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये उच्च क्वालिटी के गुण मूल्य की बात करता है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, रशिया के अंदर किसी वहां राइटर ने, राइटर का नाम भूल रहा हूं, बहुत एक मॉरल वैल्यूज पर लेके किताब लिखी, और वहाँ उस कंट्री के बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए, और उन्होंने प्लान किया कि जिन्होंने ये किताब लिखी है उनसे हम जाके घर पर मिलेंगे। वो संडे के दिन छुट्टी के दिन गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इतनी बड़ी किताब में आपने जो वैल्यूज पढ़ाई है या बताई है या कम्युनिकेट की है उसको हमारे टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन हमारे मन में एक उत्सुकता थी, हमने उनसे कहा भी और ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि आप वहाँ पर आ पाते और हम आपसे संवाद कर पाते। तो हम एक ही स्कूल के नहीं, कई स्कूल के बच्चे हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपने इस किताब के अंदर ऑनेस्टी की बात की है और शुरू से लेकर अंत तक ऑनेस्टी को आपने यहाँ पर कुल मिला के प्रतिपादित किया है और आखिरी में प्रूफ कर दिया है कि इससे बड़ी वैल्यू दुनिया में नहीं हो सकती है। तो इस मॉरल वैल्यू को हम जानना चाह रहे हैं कि जो लिखा है आपने वो क्या आपके जीवन में भी है। तो लेखक ने बड़े गर्व से कहा कि जब मैंने इस जीवन को जी लिया और मुझे कन्फर्म हो गया कि होल लाइफ इस वैल्यू को मेंटेन रखूंगा, उसके बाद ही मैंने किताब लिखी है। तो बच्चों को एक बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जिस मॉरल वैल्यूज को कोई इंसान बता रहा है या लेखक कहीं छिपा हुआ है पर्दे के पीछे है, अगर हम उनसे संवाद करते हैं, और उनका यही उद्देश्य भी था, तो उन बच्चों ने प्रॉमिस भी किया कि आज जो बच्चे आपसे मिलने आए हैं ये केवल सुनने और सुनाने तक बिलीव नहीं रखते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उनका लेखक जो कुछ बच्चों से संवाद करना चाहता है क्या उस मूल्य के साथ में है। तो ये जो आपने बोला है तो इसका परिणाम देखिए कि हम पूरे बच्चे एक साथ विल करते हैं कि हम भी इस ऑनेस्टी के मूल्य को जीवन भर फॉलो करेंगे। जी
1: चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, और बड़ी सुंदर बातें आज निकल के आए नैतिक मूल्य पर। और जिस तरह से बच्चों के जीवन को हम लोग देखते हैं तो वो निर्मल और कोमल होते ही हैं और करुणा और सहानुभूति को ठीक से समझ भी पाते हैं। बात आती है नैतिक मूल्य की, और वहाँ पर जो है नैतिक मूल्य हमेशा देखा देखी में लोगों के पास आती जाती रहती हैं। तो अगर हम लोग करुणा सहानुभूति को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे तो मूल्य हमेशा अपने साथ रहेंगे। अगर हम इन भावनाओं से दूर होते जाते हैं तो मूल्य भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और सहानुभूति और करुणा अगर बच्चों में आ जाती हैं तो वो मूल्य को अपने अंदर हमेशा बनाए रखते हैं, और बहुत ही अच्छी बातें आज जो है आपने सुनाया। तो आइए ईमानदारी से, सच्चाई से अगर हम इन चीज़ों को समझें और एक इंसानियत के नाते हम अपना जीवन व्यापन करें तो सारी चीज़ें आसानी से ठीक चलती हैं और वो नेचर के अनुसार हम चल सकते हैं। लेकिन चीज़ें मुश्किल में आ जाती है जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में गहराई से अपनी आस्था को बनाए नहीं रखते। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।

0: अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। और बाल संसार इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर हमें फीडबैक दें, मैसेज करें और बताएं हमें कि आप ये कार्यक्रम रेगुलर सुनते हुए आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है या किस विषय को लेकर या कौन सी बात आपको अच्छा लग रहा है वो बताएँ, और जो बात अच्छी नहीं लग रहे हो उस पर भी बताएँ, और हमें और क्या आपको बताने की कोशिश करनी चाहिए, किस विषय को इसके अंतर्गत जो विषय छूट जा रहे हैं उस पर भी आप अपने अपने विचार रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हमें इस बात पर भी बताइए तो हमें अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद,
1: प्रणाम भेजिए।
2: But now I see all eyes on me, and suddenly I made a dream.

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

ब्रह्म ज्ञानीन कते ब्रह्मण कण ज्ञाना ज्ञान।

सुगतो जो के गट में हो अरे तोता ज्ञान दाई नहीं आवे न जैसे मन में देनु चरावे दिन

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज विशेष रोहिणी नक्षत्र है, कृष्णा जन्माष्टमी कलाष्टमी का जो फेस्टिवल है वो आज है। और इसके साथ ही ईला रमेश भट्ट, गोपीनाथ कविराज, मामूटी बी आर इशारा, नीर बानोट, अनिल चौधरी, बानो जहांगीर, कोया जी, शरद चंद्र बोस, राज नारायण बोस, पी भानुमती, सुनील गंगा उपाध्याय, भावना सोमैया, सुरेंद्र वर्मा, आलोक मेहता, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही के एम चंडी और रोमेश भंडारी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में वक्त ना गवाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर गीत सुनते हुए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं कुछ खास लोगों का जिनका जन्मदिन आज है। और इला रमेश भट्ट की कहानी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सहकारिता, महिलाओं और लघु वित्त आंदोलनों की एक सम्मानित नेता है जिन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन की संस्थापक है जिसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह संस्था लघु त्राण देने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा और बच्चों की देखभाल के कामों में संलग्न है। SIWA 100 से अधिक सरकारी समितियों की देखरेख में चलती है जिन्हें महिलाएं संचालित करती है। जनवरी 2010 में SEWA की सदस्य संख्या 12 लाख तक पहुंच गई है। तो इला रमेश भट्ट का ये कमाल है जिन्होंने इस तरह का कारोबार किया है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। इला का जन्म अहमदाबाद में 7 दिसंबर 1933 को हुआ था और उनका बचपन का अधिकांश समय सूरत में व्यतीत हुआ। उनके पिता का नाम सुमंत राय भट्ट था जो कानून का जानकार थे। माता वाना लीला व्यास महिलाओं के आंदोलन में सक्रिय थी। इला ने 1940 से लेकर 48 तक सार्वजनिक गर्ल्स हाई स्कूल सूरत से अपनी शिक्षा पूरी की और 1952 में अपनी हायर एजुकेशन के लिए MTB कॉलेज सूरत से प्राप्त की। और इसके बाद इला ने अहमदाबाद के सर एल शाह लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां से 1954 में अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की। हिंदी कानून पर किए गए नए सराहनीय कार्य के लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई पूरा होने के बाद गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई और इसने गांधीवादी महिला के रूप में प्रसिद्ध हुई। इला रमेश ने बतौर वकील अपना काम तो शुरू किया था, स्त्रियों की आत्मनिर्भरता के हित में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय श्रीमती नाथी भाई दामोदर ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ने के बाद 1955 में वो अहमदाबाद की एक इकाई की टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के लॉ विभाग में आ गई और वहीं से उनमें ये चेतना उभरी कि उन्हें कामकाजी महिलाओं के हित में आत्मनिर्भरता देने के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन का गठन किया जिसके जरिए स्वयं रोजगार में लगी महिलाओं को परामर्श तथा जानकारी दी जाने लगी। और 1979 में इन्होंने वुमन वर्ल्ड बैंकिंग की स्थापना की और 1980 से लेकर 1988 तक इसकी अध्यक्ष करती रही। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके पहले इला रमेश के बारे में अगर बात करूं मैं तो 1977 में इला रमेश भट्ट को सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी में मैग्सेसे पुरस्कार और 1984 में पार्लियामेंट द्वारा राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला। पद्मश्री और पद्म विभूषण और फिर यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की थी। प्रसिद्ध समाज सेविका इला रमेश को 2010 में जापान के प्रतिष्ठित निवानो शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इला को ये पुरस्कार भारत में 30 वर्ष से अधिक समय से गरीब महिलाओं के विकास और उत्थान के कार्य का महात्मा गांधी की शिक्षाओं का पालन करने के लिए दिया गया है। तो ये थी कुछ खास बातें इला रमेश के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Maduba. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम में गोपीनाथ, विशेष रूप से गोपीनाथ कविराज के बारे में बात करते हैं। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक थे। इनके पिताजी का नाम वैकुंठनाथ बागाची था और योग और तंत्र के प्राखंड विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज का जन्म आज के दिन 7 सितंबर 1887 को ढाका, अब जो बांग्लादेश में है, ढाका जिले के गांव में हुआ था। और बचपन से ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण मामा ने किया था। इनकी शिक्षा ढाका, कोलकाता, जयपुर और वाराणसी में हुई। सर्वत्र इन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही और वाराणसी के किंग्स कॉलेज में संस्कृत में एमए का अध्ययन करते समय उनका आचार्य नरेंद्र देव से परिचय हुआ था। संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि आरम्भ से ही थी। जयपुर के प्रवास काल में उन्होंने वहाँ के समृद्ध पुस्तकालयों का भरपूर लाभ उठाया। कार्यक्षेत्र की बात करें तो एमए में प्रथम आने पर कविराज को लाहौर और अजमेर में अध्यापक का कार्य मिल रहा था, किंतु उनकी योग्यता से प्रभावित किंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेनिस ने उन्हें वाराणसी में रोककर कॉलेज के सरस्वती भवन पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया। इस पुस्तकालय को वर्तमान समृद्ध रूप प्रदान करने का मुख्य श्रेय कविराज को ही जाता है। 1924 में वह किंग कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए गए और 1937 तक इस पद पर आसीन रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो है साहित्य में काफ़ी रुचि थी, तो विश्वानंद 5 खंडों में इन्होंने लिखा। विशुद्ध आनंद वाणी, विशुद्ध नंद वाणी 7 खंडों में, अखंड महायोग, भारतीय संस्कृति की साधना, तांत्रिक वर्णमय में शाश्वत दृष्टि, तांत्रिक साहित्य, काशी की सरस्वत। तो इस तरह से अलग अलग ये 7 अलग अलग रचनाओं को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लिखा और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। और इनके लेख के कारण इनको सम्मान और पुरस्कार भी मिले। इनकी किताबों के कारण गोपीनाथ कविराज सेवा निवृत्ति के पश्चात अपना समय प्राचीन ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म आदि पर चर्चा और तांत्रिक साधना में बिताते रहे। और 1934 में सरकार ने उन्हें महाउपाध्याय की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त वे निम्नलिखित सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट 1947 में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य वाचस्पति 1965 में और विश्व भारती द्वारा देशिकोत्तम 1976 में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट 21 दिसंबर 1956। इस तरह के अलग अलग सम्मान इनको प्राप्त हुए और इनके कार्य को देखते हुए ये सारी चीज़ें दी थी। साहित्यिक सेवा करते हुए तांत्रिक सेवाओं के किताबों को रचते हुए गोपीनाथ कविराज का निधन 12 जून 1976 को वाराणसी में हुआ। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गोपीनाथ कविराज के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में आती है, और साहित्य किसी भी तरह का हो वो हमारे जीवन को समृद्ध करने में या हमें विचार करने में ज़रूर मजबूर करती है, और जितना हम साहित्य के साथ जुड़ते हैं उतना ही हमारा जीवन मजबूत भी हो जाता है। तो जितने भी लोग साहित्य के साथ जुड़े, साहित्य पर काम किया, उन सभी को कहीं ना कहीं जो है लोगों का प्यार भी मिला और उनके जीवन में एक नई उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की है। अब बात करते हैं एक और ख़ास व्यक्ति के बारे में। दक्षिण भारतीय सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता मामूटी ने सबसे लोकप्रिय मलयाली के एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण में मोहनलाल और रेसुल पुकुटी को पीछे छोड़ दिया है, और एशियन टेलीविज़न अवार्ड 2010 द्वारा कराए सर्वे में सबसे लोकप्रिय मलयाली मामूटी को घोषित किया गया है। मामूटी ने कहा कि मुझे मलयाली होने पर गर्व है। तो है ना कमाल की बात, हर व्यक्ति जिस जगह पर पैदा होता है उनका गर्व होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मामूटी के बारे में बात करते हैं। केरल के वाइकोम इलाके में चेम्पू गाँव में किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा कोच्चि और एर्नाकुलम में हुई, और एर्नाकुलम से वकालत की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने 2 साल पेशे में दिल लगाया और फिर लेकिन वे वहां पर जम नहीं पाए वकालत में। दरअसल कॉलेज के दिनों में ही उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक हो गया था, इसीलिए शौक के तहत वे फिल्मों में काम भी करने लगे थे, और 1971 में बनी फिल्म अनभंगल पलीचकल और 1973 में बनी फिल्म कालचक्रम वे ऐसी ही भूमिकाओं के नज़र आए और अपना नाम भी बदला। लेकिन 1979 में बनी फिल्म देवलोक में वे फिर से अपने सही नाम के साथ आए, और इस फिल्म का निर्देशन एमटी वासुदेवन नैयर ने किया था, लेकिन मामूटी को ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। उनकी पहली फिल्म केजी जॉर्ज निर्देशित मेला मानी जा सकती है। इसके पहले की सारी फिल्मों में वे अपनी प्रतिभा के बावजूद पहचान बनाने में असमर्थ हुए, और फिर बीच का एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने चंद सालों में ही 150 फिल्मों में काम किया, और इनमें से 1986 में आई उनकी फिल्म 35 फिल्में आई थी। हिंदी फिल्मों के स्टार एक साल में इतनी फिल्मों की कल्पना ही नहीं कर सकते। मामूटी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मलयाली के सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने वहाँ की कला सिनेमा को भी प्रचय किया, और अंडूर गोपाल कृष्ण समेत सभी संवेदनशील डायरेक्टरों के साथ काम करके हिंदी फिल्म प्रेमियों ने शायद मणिरत्नम की दलपति और राजीव मेनन की कुद्दुकोदेन का नाम सुना होगा। मामूटी का महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान बाबा साहेब अम्बेडकर है, और 1999 में आई फिल्म में उन्होंने अम्बेडकर की शीर्षक भूमिका निभाई, और फिर मेकअप से उन्होंने अंबेडकर का रूप ग्रहण किया था। फिल्म में वे अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं से जाहिर करते थे कि वे अंबेडकर ही हैं, चूँकि हम अंबेडकर की चलती फिरती और स्थिर छवियों से बखूबी परिचित हैं। तो ये एक खास जो है इनकी सफलता का राज कह सकते हैं। तो आइए उनके बारे में और बातें आपसे शेयर करूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और बातें हो रही हैं खास मामूटी के बारे में, मामूटी के बारे में। नाम भी बड़ा सुंदर और अजीब है, लेकिन फिर भी कमाल के व्यक्ति हैं। अगर आप उनके फिल्में या उनका जो है कोई भी फिल्म उनका एक देख लेते हैं तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और आइए उनके बारे में आपको।
1: ये दास्ता है भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक की, जिन्हें हम मामूटी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म का नाम रहा मोहम्मद कुटी इस्माइल पनमपरमबिल। जन्म की तारीख 7 सितंबर सन 1951। जगह चंदीरूर, जो कि त्रावणकोर का हिस्सा रही। इनका भरण पोषण एक गांव में हुआ, नाम था जिसका चेम्पू, जो कि कोट्टायम जिले के वाइकम के नजदीक था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके वालिद का नाम रहा इस्माइल, जो कि कपड़ों के व्यापारी थे, और साथ साथ चावल का व्यापार भी करते थे। इनकी वालदा का नाम रहा फातिमा, जो कि घर संभाला करती थी। ममूटी अपने माता पिता के सबसे बड़ी संतान हुए। इनके दो छोटे भाई हुए इब्राहिम कुट्टी और जकारिया, और तीन छोटी बहनें अमीना, सौदा और शफीना। ममूटी साहब की पढ़ाई लिखाई हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलाशेखर मंगलम में, और फिर इनका परिवार केरल के एर्नाकुलम इलाके में जाकर बस गया, जहां पर फिर इनका दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में ही कराया गया। कॉलेज डिग्री से पहले ये सेक्रेड हार्ट कॉलेज पहुंचे थे, और उसके बाद महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये बात कम लोग जानते हैं कि इन्होंने LLB की डिग्री ली थी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से। वो वाकई इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस भी करी। इलाका था मंजेरी, तकरीबन 2 बरस के लिए। ममूटी साहब ने सन 1971 में फिल्म अनुभवंगल पाली चक्कल से शुरुआत की, जिसे K.S. सेतु माधवन ने बनाया था। दूसरी फिल्म रही काला चक्रम। इन्होंने मलयालम फिल्मों में कमाल कर दिया था। 70 की दहाई में धीरे धीरे इन्होंने अपने अभिनय से साबित कर दिया था ये सबसे बेहतरीन कलाकारों में से हैं। इनकी फिल्में रही स्पोदनम, मुनेतम, और इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का किरदार निभाया था, जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये फिल्म जब्बार पटेल ने बनाई थी सन 1999 में। दक्षिण भारत के बहुत से अवार्ड इन्होंने जीते। ममूटी साहब का अभिनय देखते ही बनता है, एक्शन हो कि जज्बाती दृश्य, रोमांस हो या फिर ठहराव, ऐसा लगता है कि ये अभिनय के लिए ही बने हैं। ये हिंदी फिल्मों में भी आए, और भी कई भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने काम किया, और सभी ने कहा कि इनके चेहरे में ही कुछ ऐसी बात है कि दुनिया इनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। इनका फिल्म करियर वाकई बहुत लंबा है। इनके समकालीन अभिनेताओं में मोहनलाल का नाम शामिल होता है। एक से बढ़कर एक हीरोइन के साथ इन्होंने काम किया। इन्हें सन 1998 में पद्मश्री से नवाजा गया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री से नवाजा। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ सलफात से, जिससे इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा सुरुमी, और बेटा हुआ दलकीर सलमान, जो आगे जाकर फिल्मों का हिस्सा बना। इनके छोटे भाई इब्राहिम कुट्टी भी मलयालम फिल्मों के ही अभिनेता हैं, और इनका भतीजा मकबूल सलमान भी एक फिल्म अभिनेता है। ममूटी साहब टेलीविजन माध्यम से भी जुड़े रहे, पर यह बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि यदि सदा हुआ अभिनय आपको सीखना है तो ममूटी साहब की फिल्में आप देखें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के सबसे बड़े सितारों की फहरिस्त में ममूटी साहब का नाम शुमार होता है।
0: है ना कमाल के आदमी। चलिए, उनकी डायलॉग, डांस और संगीत और संवाद आपने सुना, और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका निभा चुके ममूटी ने दक्षिण के दूसरे पॉपुलर स्टारों की तरह हिंदी में ज़्यादा फिल्में नहीं की। उन्होंने हिंदी फिल्मों में धरती पुत्र में काम किया था। उनकी एक दो और हिंदी फिल्मों का जिक्र होता है, लेकिन वे नामालूम सी है। और 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ उन्होंने केरल सरकार के 7 पुरस्कार और फिल्म फेयर के 11 पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके बाद ममूटी को केरल स्टेट फिल्म अवार्ड, 11 साउथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिला हुआ है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी को स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल और प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब के साथ कालीकट विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से नवाजा गया था। कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति और केरल के राज्यपाल R.S. गवई ने एक समारोह में ये उपाधि प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री ममूटी ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और गीत आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में जिनका नाम है नीरजा बानोट। मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी और 5 सितंबर 1986 के पैन एम उड़ान 73 के अपहरण विमान में यात्रियों की सहायता और सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। नीरजा वास्तव में स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना थी। आतंकियों से लगभग 400 यात्रियों की जान बचाते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नीरजा बानोट अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी। उनकी कहानी पर आधारित 2016 में एक फिल्म भी बनी जिसमें उनका किरदार सोनम कपूर ने अदा किया था। तो आइए उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, नीरजा बानोट के बारे में। नीरजा बानोट का जन्म 7 सितंबर यानी आज ही के दिन 1963 को पिता हरीश बानोट और माता रामा बानोट की पुत्री के रूप में चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। इनके पिता मुंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते थे और नीरज की शुरुआती शिक्षा अपने गृहनगर चंडीगढ़ के हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। इसके पश्चात उनकी शिक्षा मुंबई के स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई। नीरजा का विवाह वर्ष 1985 में संपन्न हुआ और वे पति के साथ खड़ी देश को चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज के दबाव को लेकर इस रिश्ते में खटास आ गई और विवाह के 2 महीने बाद ही नीरजा वापस मुंबई आ गई। इसके बाद उन्होंने पैन एम में विमान परिचारिका की नौकरी के लिए आवेदन किया और चुने जाने के बाद मियामी में ट्रेनिंग के बाद वापस लौटी। अब जैसे ही विमान एयरलाइंस का काम शुरू किया, हरीश बानोट के यहाँ जब नीरजा बानोट का जन्म हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इस बच्ची को मिलेगा। बचपन से ही इस बच्ची को वायु सेना में वायुयान में बैठने का, आकाश में उड़ने का प्रबल इच्छा थी। नीरजा ने अपनी इच्छा एयरलाइंस पैन एम ज्वाइन करके पूरी की और 16

1984 को नीरजा को आकाश छूने वाली इच्छा को वास्तव में पंख लग गए थे। नीरजा पैनम एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस का काम करने लगे थे। 5 सितंबर 1986 को वो घड़ी आ गई थी जहां नीरजा के जीवन की असली परीक्षा की भारी थी। पैन एम 73 विमान कराची पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अपने पायलट का इंतज़ार कर रहा था। विमान में लगभग 400 यात्री बैठे हुए थे। अचानक 4 आतंकवादियों ने पूरे विमान को गन पॉइंट पर ले लिया। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि वह जल्दी से जल्दी विमान में पायलट को भेजे, किंतु पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया। तब आतंकियों ने नीरजा और उसकी सहयोगियों को बुलाया कि वह सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित करे ताकि वह किसी अमेरिकन नागरिक को मारकर पाकिस्तान पर दबाव बना सके। नीरजा सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्र किया और विमान में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकियों को सौंप दिए। उसके बाद आतंकियों ने एक ब्रिटिश को विमान के गेट पर लाकर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी कि यदि पायलट नहीं भेजें तो वह उसको मार देंगे। किंतु नीरजा ने उस आतंकी से बात करके उस ब्रिटिश नागरिक को भी बचा लिया। धीरे धीरे 16 घंटा बीत गए। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच का कोई नतीजा नहीं निकला। अचानक नीरजा को ध्यान आया कि विमान में ईंधन किसी भी समय समाप्त हो सकता है और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। जल्दी ही उन्होंने अपनी सहपरिचयों को, सहपाठियों को, यात्रियों को खाना बांटने के लिए कहा और साथ ही विमान के आपत्तकालीन द्वारों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा। नीरजा को पता लगा चुका था कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने की सोच चुके हैं। उन्होंने सर्वप्रथम खाने के पैकेट आतंकियों को भी दिया क्योंकि उनका सोचना था कि भूख से पेट भरने के बाद शायद वह शांत दिमाग से बात करेंगे। इसी बीच सभी यात्रियों ने आपत्तकालीन द्वारों की पहचान कर ली और नीरजा बानोट ने जैसा सोचा था वही हुआ। विमान का ईंधन समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। नीरजा तो इसी समय का इंतज़ार कर रही थी। तुरंत उन्होंने विमान के सारे आपत्तकालीन द्वार खोल दिए। योजना के अनुरूप ही सारे यात्री तुरंत उन द्वारों के नीचे कूदने लगे। वही आतंकियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी, किंतु नीरजा ने अपने साहस से लगभग सभी यात्रियों को बचा ही लिया था। कुछ घायल अवश्य हो गए थे किंतु ठीक थे। अब विमान से भागने की बारी नीरजा की थी, किंतु तभी उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई थी। दूसरी ओर पाकिस्तान सेना कमांडो भी विमान में आ चुके थे और उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया। इधर नीरजा उन 3 बच्चों की खोज चुकी थी और उन्हें लेकर विमान की आपत्तकालीन द्वार की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक बचा हुआ 4th आतंकी उनके सामने आ खड़ा हुआ। नीरजा ने बच्चों को आपत्तकालीन द्वार की ओर धकेल दिया और स्वयं उस आतंकी से भिड़ गई। आतंकी ने कोई गोली उनके सीने में, बहुत सारी गोलियां सीने में उतार डाली। नीरजा ने अपना बलिदान दे दिया और उस 4th आतंकवादियों को भी पाकिस्तानी कमांडो ने मार गिरा, किंतु वो नीरजा को ना बचा सके। तो नीरजा बानोट के बलिदान के बाद भारत सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। वो वही पाकिस्तान की सरकार ने भी नीरजा को तमांग ए इंसानियत प्रदान किया। नीरजा वास्तव में स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना थी। सन 2004 में नीरजा बानोट के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा का नाम हीरोइन ऑफ हाईजैक के तौर पर मशहूर है। 2005 में अमेरिका ने उन्हें जूरिस्ट फ्रॉम फॉर क्राइम अवार्ड भी दिया। तो ये थी कुछ खास बातें नीरजा बानोट के बारे में। नीरजा बानोट के साहस कार्य और उनके बलिदान को याद रखने के लिए उन पर फिल्म निर्माण की घोषणा 2010 में हो गई थी, परंतु कई कारणों से ये कार्य टालता रहा और अप्रैल 2015 में राम माधवानी ने निर्देशन में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की और इस फिल्म में नीरजा का किरदार अभिनेत्री सोनम कपूर ने अदा किया और 19 फरवरी 2016 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अतुल काशबेकार है। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए
नीरजा बानोट के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफल इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ममेटी के बारे में सुनकर। शायद आप ऐसे हीरो को देखा भी होगा अलग अलग फिल्मों में, साउथ के फिल्मों में ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए ममेटी के साथ साथ बीआर इशारा के बारे में बात करते हैं। ये भी अपने ज़माने के बहुत ही पॉपुलर फिल्मकार रहे हैं, बीआर इशारा। और ये कुछ गिने चुने फिल्में बनाकर जो है इन्होंने अपना नाम को बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर किया था। तो इनकी भी कहानी हम थोड़ी देर में सुनाएंगे और बातें करेंगे अभी बीआर इशारा के बारे में। प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे। एक लंबा संघर्षशील जीवन इन्होंने जिया। हिमाचल प्रदेश के उन जिले में किसी पहाड़ी गांव में रहने वाले थे। किशोर उम्र में ही भागकर मुंबई

0: प्रदेश के ऊना जिला में लेखक और फिल्म निर्देशक बी आर इशारा मुंबई के जुहू इलाके में रहा करते थे और छोटी उम्र में ही मुंबई आ गए और बी आर इशारा ने पहले छोटे मोटे काम किए। शब्द और विचारों के धनी बी आर इशारा ने शुरू में लेखकों की मदद की और बाद में स्वयं लेखक बन गए। तो इस तरह से पहले फिल्म को असिस्ट किया, फिर बाद में खुद फिल्म बनाना शुरू कर दिया। इनकी खूबसूरती यही है कि भाई ये सुप्रसिद्ध क्रिकेटर सलीम दुरानी को लेकर चरित्र बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बाबूराम इशारा ने रेहान सुल्तान, परवीन बाबी जैसे कलाकारों को पेश करने के साथ अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, रीना रॉय, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, राजा मुराद, डैनी विजय अरोड़ा, राज किरण जैसे कलाकारों के करियर के आरंभ में बड़े मौके इन्होंने दिए और प्रवीण बाबी को सबसे पहला अवसर बी आर इशारा ने ही दिया था। बी आर इशारा का निधन 25 जुलाई 2012 को मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में हुआ था। तो आइए इनके बारे में और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा अभी।
1: भारतीय सिनेमा के सबसे मकबूल कलाकारों में से एक, जिनका नाम रहा रोशन लाल शर्मा, जिन्हें हम बी आर इशारा के नाम से जानते हैं। वही बी आर इशारा जिन्होंने समय से आगे की फिल्में बनाई कि ये तो बड़ी बोल्ड फिल्में हैं, लेकिन बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन्होंने वो फिल्में बनाई। अजब जज्बात जगाती थी, हंसाती भी थी, हैरान भी करती थी और रुलाती भी थी। बी आर इशारा का नाम बी आर इशारा के सरह से पड़ा। कहां इनका जन्म हुआ जानते हैं ये पूरी दास्तां। इनका जन्म हुआ 7 सितंबर सन 1934 में हिमाचल प्रदेश के ऊना के चिंतपूर्णी इलाके में। इनका जन्म का नाम रखा गया रोशन लाल शर्मा। इस बात पर गौर करना होगा, ये वो जमाना था जब बहुत से बच्चे बम्बई भाग जाया करते थे। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में ही ये अपने घर से भागकर मुंबई पहुंच गए।
2: अबे आ गया तो क्या मेरे सर पे बैठेगा, चल अंदर।
1: जहां पर ये एक चाय वाले की तरह काम करने लगे। ये हिंदी फिल्मों के सेट्स पर लोगों को चाय पिलाया करते थे और एक छोटे से लड़के को जो अक्सर नाम दिया जाता है वो है बाबू, इसलिए लोग इन्हें बाबू कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे चाय वाले से इनकी तरक्की हुई और ये फिल्मों के सेट्स पर बतौर स्पॉट बॉय काम करने लगे।
2: लड़का बहुत होशियार है।
1: एक प्रोड्यूसर थे जिनके गुरु का नाम था रोशन लाल। उन्हें कतई अच्छा नहीं लगता था कि वो एक स्पॉट बॉय को अपने गुरु के नाम से पुकारें, लिहाजा इनका नाम बाबू ही रहा। धीरे धीरे बाबू ने सीख लिया कैसे शब्दों का जादू चलाया जा सकता है।
2: अच्छा बेटा, पहली पिक्चर में डिस्कशन शुरू कर दिया, आते ही सवाल चालू।
1: ये बहुत से डायलॉग राइटर्स के असिस्टेंट बन गए और इन्होंने अपने नाम के आगे बाबू राम लगा लिया और एक डायलॉग ने इनके नाम को मुकम्मल कर दिया और बना दिया बी आर इशारा। इस तरह से बाबूराम इशारा का जन्म हुआ।
3: भैया बम्बई शहर में लोग मजबूरी को मजाक बना देते हैं और वही मजाक कभी कभी नाम भी बन जाता है।
1: इन्होंने बहुत ही छोटी मोटी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे और उसके बाद प्रोड्यूसर एडिटर आई एम कुन्नू के संपर्क में ये आए। फिर इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की और समाज के दोगलेपन का पर्दाफाश किया।
4: ये बात देखी है।
1: शुरुआत में जब ये फिल्में बना रहे थे तब इनकी फिल्में खरीदी नहीं जाती थी, कभी कभी सेंसर बोर्ड से भी कुछ तकलीफ होती थी।
5: यहाँ तो हम जाती कर रहे हो सुरेश, मांग तिरछी हो सकती है, तिरछी।
1: पर जब इनकी फिल्में चलने लगी तो दुनिया समझ गई कि ये लड़का कुछ अनोखी बात कहना चाहता है। इनकी बनाई गई फिल्में जैसे कि जरूरत, चेतना, वो फिर आएगी जो कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बनाई थी, वो भी सिल्वर जुबली साबित हुई थी। बी आर इशारा ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त अभिनेताओं, संगीतकारों और अभिनेत्रियों को ब्रेक दिया, जिनमें परवीन बाबी का नाम शामिल है, क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का नाम भी शामिल है, बप्पी लहरी को भी इन्होंने ही ब्रेक दिया था।
6: दादा तो हमारा मेरा बहुत फेवरेट है।
1: इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ अपने जमाने की मशहूर मारूफ अभिनेत्री रेहाना सुल्तान से। बी आर इशारा साहब ने फिल्मों को ही अपना जीवन बना लिया। एक से बढ़कर एक स्क्रिप्ट्स लिखी, फिल्में डायरेक्ट करें। चेतना फिल्म के पोस्टर की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। पच्चीस जुलाई सन 2012 वो तारीख बनकर आई जब बी आर इशारा ने आखिरी

सांसें ली। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की वजह से इनका इंतकाल हो गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बड़ा ही बेबाक, बड़ा ही दबंग फिल्म डायरेक्टर बनके उभरा था, जिन्हें हम बी.आर. इशारा के नाम से जानते हैं।

0: जहां
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए कार्यक्रम के हम लोग आखिरी मोड़ पे पहुंचे हैं और आज जिन जिन लोगों की कहानी आपने सुनी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है आपको इंस्पिरेशन करते हैं, ये ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं आपको। इला रमेश भट्ट जो खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, गोपीनाथ कविराज साहित्य जगत में उन्होंने अपना विशेष जो है सम्मान प्राप्त किया, मम्मूटी एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किया और तमिल फिल्मों में काम करके सुपरस्टार तो बने वहाँ से, और हिंदी फिल्मों में इतना काम किसी ने अभी तक नहीं किया। तो ये एक कम टाइम में ज़्यादा फिल्मों को करने वाले मम्मूटी के बारे में सुना। और बी आर इशारा जो स्टूडियो में एक साधारण चाय देने का काम करते हुए डायरेक्टर बने, ये अपने आप में खास, इनकी अभी जीवन से मोटिवेशन मिला। और आखिरी में हमने नीरजा बानोट की कहानी सुनी जो एक एयर होस्टेस बनने की सपना देखकर जब बन गई, बनने के बाद आतंकवादियों के बीच उनकी जो है मुठभेड़ हो गई और 400 यात्रियों को बचाकर वो खुद आतंकवादियों के शिकार हो गई, बलिदान हो गया उनका। उसके बाद इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान भी और अमेरिका भी, तीनों राज्यों ने, तीनों कंट्रीज ने उन्हें सम्मान किया है। तो ऐसे विशेष व्यक्तियों की कहानी आपको मोटिवेट करता ही रहेगा जीवन भर। कभी कभी याद कर लीजिए ऐसे लोगों की जीवन कहानी को, तो निश्चित तौर पे आपको प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। तो अपने मन को शुद्ध करें और अपने आप को तीर्थम बनाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
1: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
0: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
1: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ तीन भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न और कई पहलू समाये हुए हैं।
0: जी।
1: तो जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये तीन विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये तीन विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पर स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जैसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय, अन्य स्कूल भी देते हैं, और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र है जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है, और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है, और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है, तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे, और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो उनको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में, तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का, जैसे आपने कहा, प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो वो कहेंगे कि आप कॉमर्स लो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेकर कत्थक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना, क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा, और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे, और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो वो भी घर बैठे आप, कई एप्स हैं जैसे उबर है, उबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर यह आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज। एट द सेम टाइम अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं, तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा। तो चुनाव केवल
0: जी सर,
1: आप अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी 2 प्रकार की होती हैं, और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे? जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से, और ये अलग करना होगा। रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
1: जी
0: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसको से मेरे को क्या होगा करके। अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें ज़रूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीज़ें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन से स्किल्स है, पहली चीज तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
1: देखिए, स्किल्स जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं। अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है। तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक MS ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, हाँ, व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहैंसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और अब वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो
0: जी सर,
1: डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है, और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे, या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
0: जी सर। और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी इस समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
1: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं,
0: जी सर
1: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 डेज अ वीक या ऑल्टरनेट 3 डेज अ वीक। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया, तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में, वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए, जो कि युवा अवस्था होती है, वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं, या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो, या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप, जो कि सोनीपत में है।
0: सर
1: तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किंडरगार्टन, प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ, कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY, जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, वो सीखने को मिलता है। या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर, जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हाँ, इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है, और मिलके अगर करा जाए तो हाँ, एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं, और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है, और मन मन दुरुस्त भी, जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये, या 3,000 रुपये, या 10,000 रुपये, या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं, या हमको खाने का सामान खरीदना है। आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है, इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है, तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी फिर सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही
1: जी
0: हैं, तो कौन सी वो
1: जी
0: स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा।
1: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपरलेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050, इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम, अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं या विंड एनर्जी पे काम करते हैं या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है। तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं, आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
0: सर, जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे,
1: हाँ देखिए, आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया, तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग, जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है। तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं, और वो भी पढ़े लिखे ठग। तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में, भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है। और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है। तो
0: जी सर,
1: अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
0: जी सर। और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि
1: जी
0: इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहां पे कुछ नई चीजें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए, और हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज, कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि, क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं, या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
1: देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना, ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय, वर्तमान का समय चल रहा है, ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, विच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें, और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुअरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुअरीज में। एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसकी वो लिस्ट बनाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा, और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके। तो इसी प्रकार से, और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा, जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है। फिर आप उनको भी दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर, हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें। हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है। अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं। आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए और उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था, हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
0: जी सर जी।
1: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि एमबीए स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
0: जी सर, सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एडीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
1: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप सीवी भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए एचआर ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं अभी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा
0: जी
1: हूँ?
0: सर जी।
1: हाँ, तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहां पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के एचआर को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर एचआर सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इंप्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है, हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे. तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं, जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज
0: जी
1: इफ
0: सर,
1: द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ. जैसे मैं बात करूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है, तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए. आप समझ रहे हो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेस निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें, हाँ, और क्या स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इस स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो.
0: जी सर,
1: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो
0: यस सर,
1: इट वर्क बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा, क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
0: बहुत
1: सीवी,
0: कमी चल रही थी।
1: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम
0: सीट नहीं
1: लोगों को
0: है
1: मिलती है फिर,
0: जी
1: हाँ,
0: सर,
1: वो इसी कारण से. तो सीवी जो हम लिखेंगे, सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10 20 30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम, ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं.
0: जी सर,
1: हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए. और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू और ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिडरेट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई, और इफ समथिंग कैन बी लुक्ड इनटू इट आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस, जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए भी तैयार हैं. कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम, आप तो
0: हाँ
1: कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया, अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं.
0: सर, ऐसा बोलते हैं जी।
1: हाँ, सो यू, और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है, दे हैव दिस
0: सर,
1: मेंटालिटी. सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन इन अ बलून इन अ बबल, क्योंकि
0: यस सर,
1: जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है.
0: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है, तो वो फिर वही समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता, लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहां पर इफेक्ट होता है।
1: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है. तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन मतलब है, बस उतना ही है, पर जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड एंड टू बी अ यू नो अ रोल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस.
0: जी सर, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था। लास्ट
1: जी
0: अब हम शो को खत्म करते हैं सर। आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द
1: जी
0: की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर।
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और की टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूं मैं टू बी सक्सेसफुल। पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं। अगर टेम्पररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है। अगर वो स्थायी रहता है, बना रहता है और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है। दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें। हम हर तीसरे साल, दूसरे साल, अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें। तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है। और
0: जी
1: हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब
0: जी
1: हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया। तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है। फिर चौथा, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहे। और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल।
0: जी सर,
1: पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे। तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध

0: से बदलते हुए समय में। फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं। आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने ऐसे मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं लोग वन डायरेक्शनल हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबी है आपको सफलता की, मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो
0: जी
1: सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ,
1: बहुत कुछ
0: इसके
1: सर।
0: अलावा और क्या मैं बोलूँ।
1: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इस तरह अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई विश एवरीवन अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ ब्राइट करियर रहे। और
1: थैंक यू
0: वेदांत
1: सर,
0: जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
1: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, तो एक बाइक पे तीन है, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं और आगे आपके लिए आज कुछ ऐसे बेहतरीन चीजें लेकर आऊंगी जिनके साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कहानी के साथ साथ कविता भी होगी और पूछा जाएगा आप दोस्तों से सवाल जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज सोमवार की खूबसूरत शाम मेडिटेशन से शुरू करते हैं। मेडिटेशन जो है एक मन को शांत रखने का एक आसान तरीका माना जाता है। इसे रेगुलर करने पर कई प्रकार के फायदे दिखाई देते हैं। सबसे पहले
1: मेडिटेशन क्या है? क्या कभी पढ़ाई करते समय आपका ध्यान भटकता है? बहुत सारे विचार एक साथ आने लगते हैं। ऐसे में मेडिटेशन यानी ध्यान मददगार हो सकता है। मेडिटेशन में हम कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों और विचारों पर ध्यान देते हैं।
0: कैसे करें? एक शांत जगह की जरूरत तो जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ मन की जो परिस्थिति है, मन को मनाने की जरूरत है। सबसे पहले आंखें बंद करें, या आपको लगता है कि आंखें खुला करके करना वो भी करें। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर। वैसे इस क्रिया को प्राणायाम भी कहते हैं, और इस क्रिया में जो सांस को जोर लंबी सांसें अंदर खींचना और धीरे से बाहर निकालना। अपना ध्यान सिर्फ सांसों की तरफ रखें, और अगर ध्यान भटक जाए तो परेशान ना हो, धीरे से वापस उसी स्थान पर लेकर आए। शुरू में 2 से 5 मिनट का अभ्यास, लेकिन आगे इसे बढ़ाते रहें। फायदे क्या क्या है?
1: इससे एकाग्रता बढ़ने में मदद मिलती है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है, और दूसरा है मन को शांत और खुश रखने में सहायक भी होता है ये मेडिटेशन। पढ़ाई के दौरान ध्यान लगाने में इससे मदद भी मिल सकती है। तनाव या बेचैनी महसूस होने पर रिलैक्स करने में भी मदद करता है।
0: तो मेडिटेशन कोई परीक्षा नहीं, इसका मकसद बस कुछ देर रुकना, शांत होना, मन को ध्यान लगाना और मन में सुविचारों को आने देना। तो चलिए इसके साथ साथ ये गीत आपके लिए, हमको मन की शक्ति देना।

0: प्रीति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM आप सुन रहे उड़ान। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
2: रूहानी।
1: चलिए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के चारों ओर कौन सी काल्पनिक रेखा चलती है? आपके सामने ऑप्शन 3 है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। पृथ्वी के जो उत्तर भाग को इसीलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, पर दक्षिणी गोलार्ध अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, अमेरिका या फिर एशिया का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो जिसके मध्य से ये रेखा गुजरती है। हाँ, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये कॉन्टिनेंट या जिसे क्या कहते हैं आपके महादेश कहते हैं, उसके बीच से ये गुजरती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के चारों ओर कौन सी काल्पनिक रेखा चलती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। सही जवाब जरूर देना, थोड़ा टफ है जरूर, लेकिन कोशिश करना। 9414151415 पर देना,
2: 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM। श्याम तेरी बंसी पुकारे।

0: तो सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है, सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू।
2: जी मालिक, कहिए।
1: इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा, समझे?
2: मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा।
1: बाकी सभी भी कान खोल कर सुन लो कि मेरे पैसे समय से पहुंच जाने चाहिए, समझे? चलो ध्यानचंद।
2: मालिक, सभी को ये बता दीजिए कि आप कौन हैं।
1: तुम पागल हो? सब लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं।
2: नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूँ, और अगर पागल हूँ तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही रखोगे।
1: ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो।
2: ठीक है मालिक, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई।
1: बोलो कमअक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया?
2: मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं है, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया?
1: अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने इन्हें उधार दिया। बस तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है, और साथ में मेरा हुक्म भी।
2: ये नगर हमारा है,
1: मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की।
2: मान गए मालिक आपको, गरीबों का खून चूसना कोई आपसे सीखे।
1: क्या कहा तुमने?
2: कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं।
1: अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर आज मैं मालिक बना हूँ, समझे कम अक्ल इंसान?
2: समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया।
0: तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम करते लीलू को देखा। लीलू अकेले काम कर रहा था। तभी धनीराम ने लीलू से कहा,
1: लीलू लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो।
3: मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं है।
1: मुझे अभी पैसे चाहिए।
3: मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक।
1: ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो।
3: मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक।
1: मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे।
0: गरीब आदमी लीलू के बैल लेकर दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा हुआ है।
1: आइए आइए मंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे।
4: धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद आप गरीब कैसे हो सकते हो?
1: आप भी कुछ कम नहीं हो।
4: तभी तो हमारी ये दोस्ती है।
0: दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोमू और मालती दोनों खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर में दिन छिप जाएगा, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए।
3: अभी हम कुछ ज्यादा काम भी नहीं कर पाए।
0: हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी।
3: खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ।
0: तभी वहाँ धनीराम ध्यानचंद के साथ फिर से आ गया।
1: सोमो।
3: जी मालिक।
1: घर जा रहे हो? अभी यहाँ रहकर काम करो।
3: नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा।
0: ध्यानचंद हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी।
3: ये कैसी आवाज है?
1: ये आवाज कैसी है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है।
3: मालिक, ये एक मटका है।
1: क्या सच में यहाँ एक मटका है?
3: जी मालिक, अभी निकालता हूँ।
1: हाँ जल्दी निकालो बाहर।
0: सोमू ने मटका बाहर निकाला, धनीराम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक और मटका, अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया।
3: ये मटका मुझे मिला है तो ये मेरा हुआ ना?
1: इस नगर में हर किसान के खेत पर धनीराम का हक है, समझे? ये मटका मेरा है।
3: मेरा खेत में मिला है तो आप इसे नहीं ले सकते?
1: ये नगर मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को ये मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा।
3: मालिक, ये मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ, इस मटके से मेरे परिवार का भला हो जाएगा।
1: नहीं, मैं ये मटका तुम्हें नहीं दूंगा।
0: सोमू और मालती उदास होकर अपने घर चले गए। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में मालती उदास बैठी थी, तभी सोमू ने पूछा,
3: अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो?
5: हमें किस्मत से धन मिला था और वो भी हाथ से जाने दिया।
3: मैं कर भी कह सकता था, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देते।
5: हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? मुझे लगता है कि हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए, उन्हें सब सच बता देने की हिम्मत करनी होगी।
3: मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
5: हम कल राज दरबार में चलेंगे, हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वो इस पापी से हमको बचा लेंगे।
3: तुम कहती हो तो ठीक है, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है।
5: अब तुम सो जाओ, सुबह राज दरबार चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
0: राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था, वहाँ सभी उपस्थित हुए। तभी मंत्री ने सभी से कहा,
1: कहिए कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है?
5: मंत्री जी, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं, गांव के जमींदार धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है।
1: अच्छा, वो धनीराम? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो, धनीराम जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए आरोप लगा रहे हो?
4: मंत्री, क्या तुम धनीराम को जानते हो?
2: हाँ राजा साहब, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ना जाने ये लोग धनीराम पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं।
4: मंत्री, तुमने आरोप सुने भी नहीं है और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार में सबको न्याय लेने का अधिकार है।
2: माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन
4: बोलो तुम्हें क्या कहना है।
3: राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनीराम आकर आधी फसल ले जाता है, और हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा एक मटका मेरे खेत में मिला और उसे भी धनीराम ले गया।
0: इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा,
4: मंत्री शायद चोर मिल गया है, धनीराम को तुरंत पेश करवाओ।
2: महाराज, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहे हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।
4: मंत्री, जितना कहा गया है उतना करो, धनीराम को मेरे सामने पेश करो।
0: मंत्री ने दो सिपाही भेजकर धनीराम को दरबार में बुला लिया।
2: महाराज की सदा ही जय हो, आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया, हुक्म करें महाराज।
4: सोमू और मालती, ये जो भी कह रहे हैं क्या वो सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था?
2: नहीं महाराज, आप और सोमू किस मटके की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा है।
3: जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है।
2: नहीं नहीं राजा साहब, सब झूठ बोल रहे हैं।
0: तभी पीछे से ध्यान चंद आया, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था।
1: तुम यहाँ और इस बोरे को लेकर क्यों घूम रहे हो?
2: राजा साहब, मैं ध्यानचंद हूँ और हमेशा जमींदार के साथ रहता हूँ, मैं कुछ सच आपको बताना चाहता हूँ।
1: हाँ बोलो।
2: महाराज, इस बोरे में धन से भरे हुए मटके हैं जो राजमहल से चोरी किए गए हैं, और सोमू के खेत से जो मटका मिला वो भी इसी में है।
4: देखा राजा साहब, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा नौकर चोरी कर रहा था, इसका मुझे दुख है, आप इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए।
2: रुकिए जरा, सब्र करिए धनीराम जी।
4: ध्यानचंद, तुम अपनी पूरी बात रखो।
2: महाराज, धनीराम आपका बहुत दिन से धन चुरा रहा था, इसलिए मैंने एक मटका सोमू के खेत में छुपा दिया, जिसको धनीराम ने वापस छीन लिया। मालती को मैंने पहले बता दिया था।
4: लेकिन तुम तो धनीराम के साथ वर्षों से काम कर रहे हो, अचानक उसके खिलाफ कैसे?
2: लंबी कहानी है महाराज, इस कपटी धनीराम से मैंने बस कुछ रुपए उधार मांगे थे, आज से 15 साल पहले, जब मेरी बीवी रज्जो पेट से थी, उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था, मैंने धनीराम से बहुत मिन्नतें की। मालिक, मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए, अगर मैं अभी उसको नगर की आया के पास न ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी।
4: मुझे उससे क्या फायदा होगा, कल मरे सो आज मरे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है।
2: मालिक रहम करे मालिक।
4: हट पिल्ले।
2: उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था, मैंने उस दिन से इंतजार किया आज का, और आज सब आपके सामने है महाराज, इस कपटी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए।
4: पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लुटता रहा है, हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की।
1: नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सिपाहियों, धनीराम से सारा धन वापस लेकर इसको उम्र भर के लिए कैद कर दो।
0: सिपाही धनीराम को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी धनीराम ने रुक कर कहा,
3: महाराज मैंने गलती की है और मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन मैंने ये अपराध अकेले नहीं किया है, इसलिए मेरे साथी को भी साथ भेज दीजिए।
1: कौन है तुम्हारा साथी?
3: आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और इसमें से हिस्सा भी लेता था।
1: क्या मंत्री जी, आप भी? आप पर तो मैंने समस्त राज्य का कार्यभार सौंप रखा था और आप भी इस कुकृत्य में शामिल हैं। सिपाहियों, इस राज्य को ऐसे कपटी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने न सिर्फ धन लूटा बल्कि गरीब किसानों को भी दुखी किया। कपटी मंत्री को अभी फांसी लगा दी जाए।
3: नहीं नहीं, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए।
0: सिपाही मंत्री और धनीराम को ले गए। राजा ने सोमू, मालती और ध्यानचंद को इनाम दिया और राज दरबार में नौकरी भी दे दी।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका। हेलो, स्वागत है आपका।
1: आवाज नहीं आ रहा था, फोन कट हो रहे थे।
0: हाँ हाँ, बताइए।
1: शुक्रवार को भी फिरोज भाई ने कई फोन किए, उनके पोते ने किया, उनका भी नहीं लगा।
0: अच्छा,
1: तो चलो कोई बात नहीं। आज सवाल का जवाब है मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जिसे भी क्षुद्ध भी कहते हैं। थैंक यू आपको, रूहानी को, सभी को नमस्कार। ओम शांति।
0: थैंक यू, नमस्कार रेडियो मधुबन में हमसे जुड़ने के लिए। वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कुछ और हिंट्स। पृथ्वी की सतह पर दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित है 0 डिग्री अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा। ये रेखा कुल लगभग 40,075 किलोमीटर है और ये गोलार्ध जो विभाजन करता है, ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, जिसके विषय पर मैंने जानकारी पूर्व ही दे चुकी हूँ मैं। साथ ही साथ इस रेखा पर साल भर दिन और रात 12-12 घंटे बराबर होती है, इसीलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। सूर्य की स्थिति साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर इस सूर्य ठीक ऊपर लंबवत रहता है और गुजरने वाले कुल 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 महासागर से होकर ये रेखा गुजरती है। 13 देशों, 3 महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये गीत आप तक पहुँचा रहे थे। हमारे बीच कौन है?
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज जी, कैसे हैं आप?
1: बस एकदम अच्छे हैं। और आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब है भूमध्य है।
0: भूमध्य है, ओके। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: जी जी, थैंक यू नमस्कार।
1: ओम शांति ओम शांति ओम शांति।

नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो,

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार। और जो आपने आज क्वेश्चन पूछा उसका जवाब तो मेरे नाना ने दिया है।
0: अच्छा, कौन है नाना आपके?
1: और अभी पालमपुर से फिरोज खान बोले ना।
0: हाँ, ओहो, थैंक यू ये बताने के लिए, शुक्रिया। चलिए, बहुत इंटेलिजेंट है आपके नाना जी और आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, थैंक यू।
1: हाँ, वो जो मैं सादिया बोलती हूँ ना।
0: हाँ सादिया।
1: हाँ वही वही।
0: ओहो सादिया, कैसी? अच्छा, आप कैसी हो आज?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सोमवार का दिन कैसे बीता?
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा बीता। और स्कूल?
1: स्कूल में भी अच्छा रहा।
0: ओहो चलिए, थैंक यू। चलो आज बता, भूमध्य रेखा के अलावा कुछ और जानकारी देना चाहती हो इस विषय पर?

0: कर सकती। नमस्कार। हाँ बोलो
1: नमस्कार।
0: बोलो।
1: हाँ
0: सादिया
1: बोलो। गाती हूँ।
0: बोलो बोलो गीत का।
1: गीत गाती हूँ।
0: हाँ
1: तेरी काले नाथ मेरे काली हाथ और तार तार सपने गजब

0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सादिया आपके लिए सभी तरफ से।
1: हाँ जी
0: हाँ, और हमारे शो के साथ हमेशा जुड़े रहना। थैंक यू, नमस्कार
1: जी।

0: जय संतोषी माँ। तो चलिए आज के सवाल का जवाब भी दे देते हैं और आपसे कहेंगे थोड़ी देर में गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आज के सवाल का जवाब। सवाल था, 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के चारों ओर कौन सी काल्पनिक रेखा चलती है? हमारे साथियों ने तो कर्क नहीं बोला, कर्क रेखा नहीं बोला, न ही मकर रेखा को बोला। सही जवाब भूमध्य रेखा, और वही चुनकर हमें दिया है। कर्क रेखा भी भारत के ही हिस्से से गुजरता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो चलिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से काफी ऊपर है भारत, लेकिन हिंद महासागर से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। पर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो संस्कृति है, जो लोकगीत है, जो प्रतिभाएं समूह रूप में जो करते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको ओम शांति नाम से प्रसिद्ध है और सरकार लाइसेंस दिया है आसपास गाँव को उन्नत करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सबका भाव भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, तो आज हमें आबू रोड तहसील के और ग्राम पंचायत के नाड़ी में पहुंचे माताओं बहने आई लोग और बड़े बड़े भाई बुजुर्ग लोग को सम्मान करते हुए उनको स्वागत करते इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो एक प्रस्तुति सुनेंगे खासकर भजन संध्या में जैसे अपना दिल का बात रखते हैं। तो हमारा साथ एक होवनहार दिव्यांग कहेंगे नहीं लेकिन उसका अंतर चक्षु बोले इस तूल चक्षु को दिखाई कम देता है लेकिन उनका बुद्धि रूपी आंख है वो तेज है, तो उसको स्वागत करके उनका नाम शायद प्रभु राम है ना। वाह, नाम है कितना सुंदर, प्रभु राम, प्रभु का राम है और प्रभु को राम भी कहते हैं है ना, हर घर में प्रभु को याद करते हैं। तो हमारा प्रभु राम को स्वागत करते हैं, प्रस्तुति सुनाएंगे। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने और हमारा जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रभु राम को स्वागत करते हैं। प्रभु राम जी आप कहाँ से?
1: हम और गांव से।
0: और गांव से आज खुशी लग रहा है?
1: खुशी है सर,
0: खुशी हमेशा खुशी रहते हैं,
1: हमेशा खुशी रहते हैं लेकिन आप आने से हमारे को ज्यादा खुशी हो गई।
0: क्या बात, क्या बात, हम आने से उनको खुशी मिला और हमारे पास ऐसे क्या विशेषता है जो आपको खुशी मिला?
1: आपने हमारे को जो सब जो जिनों को जो शुद्ध बुद्धि दी है और जितना भी आपने जो बताया वो बहुत अधिकृत बताया, हमारे जो नहीं मालूम था उनको भी सबको मालूम हो गया।
0: अभी उलाना नहीं देंगे
1: जी,
0: उलाना और नहीं देंगे कभी किसी को, बोलेंगे नहीं हमको पता नहीं, अभी पता चल गया, पता चल गया
1: हमारे को, सबको पता चल गया।
0: हाँ बहुत अच्छा, पता चल गया जी हम कौन है और कैसे और कहाँ पर है। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे, सुनेंगे एक प्रस्तुति भजन के रूप में, शुरू करिए।
2: मन डर रे सेवा माता पिता कर रे, ओ गर्भवास में आयो थारी माता घणो दुख पायो, रियो नवरे वास ओ डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ जब थारो जन्म हुओ रे थने पालनिए लड़ायो, माई की दो मरने रे मुँह कर रे सेवा माता पितारी कर रे, फूतोरे 5 वर्ष रो वेगो थने स्कूल बनवा लेगो, थारे पढ़ाई कराई भरपूर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ तो 20 वर्ष रो होगो ओ थने माता पिता परणायो, थारे नारी लाई रे सुंदर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ थारे छोरा टाबर वेगा माँ बाप से न्यारा वेगा, फे तो नारो बनायो वो घर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ माता पितारे वाली सेवा वही ब्रह्मा विष्णु महादेवा, वही रामचंद्र रघुवर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ गावे राम लाल हरिजन रे सेवा माता पितारी कर रे, ओ मन डर रे सेवा माता पितारी कर रे।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: जय हिंद और जय प्रभु राम, प्रभु राम की जय हो। और माता पिता, सही में माता पिता कितना भी जन्म ले लेकिन माता पिता मिलना मुश्किल होता है, ये माँ बाप नहीं मिलेगा जो माँ बाप अभी फिर जन्म लेंगे तो दूसरा माँ बाप मिल सकता है, लेकिन इस जन्म में जो माँ बाप है जो हमें इतना पालना दिए, इतना सेवा किए, माँ जैसे मातृ गर्भ में रखकर कितना 9 महीना तक पाल उसको कितना बड़ा किया, और जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जैसे गीत का माध्यम से प्रभु राम जी बताए, सेवा माँ बाप का सेवा से बड़ा सेवा कोई है नहीं। इसलिए सबको मालूम है, जब एक कहानी आप सुनते होंगे जानते होंगे, जब शिव जी का दो बेटा एक गणेश जी और कार्तिकेय, उनको घूमने के लिए भाई पूरा भ्रमण करके जल्दी जो आएगा रेस लग गया, उनका प्रयास दौड़ लगे, जो पहला आएगा जीतेगा उनको अग्र पूज्य नाम दिया जाएगा। लेकिन कार्तिकेय का तो वाहन मोर था और गणेश का वाहन क्या था, चूहा। लेकिन बुद्धि का खेल है, आत्मा का खेल है, तो तुरंत वो पंछी लेकर चल गए अपना कार्तिकेय, लेकिन उसका तो चूहा वाहन गणेश का पास था, इसलिए वो माता पिता का चार तरफ घेरी लगा दिया और तुरंत पहुंच गया। तो बुद्धि का काम वो किया, कौन बुद्धि से काम किया, श्री गणेश ने, इसलिए अग्र पूज्य हुए। तो प्रभु राम जी अपने बात में या गीत में, माँ बाप का सेवा से बड़ी सेवा कोई है नहीं। इसलिए माँ बाप जो भगवान हमारा माँ बाप है, उनका सेवा के लिए हमें भेजा था, उनका सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए,
3: करना चाहिए।
0: तो सबसे बड़ा माँ बाप कौन है, भगवान, तो भगवान का सेवा हम लोग कर रहे कि नहीं, इसलिए उनका सेवा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खास कर आज प्रभु राम का आवाज को रोक नहीं पाए, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रभुराम जी को पुनः स्वागत करते हैं। प्रभुराम जी, पुनः आपको एक चांस मिल रहा है, क्योंकि सबको आप पार करके और आपका जो विशेषता है देखने को मिल रहा है, तो सुनाइए और एक प्रस्तुति शुरू करिए प्रभुराम जी।
2: हंस सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार।
1: क्या बात, क्या बात।
2: अंसा सुंदर काया रो थे मत कर जो अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। गर्भवास मेरे दुख पायो जब हरि से करी पुकार, पल पल भूल नहीं रे अनजुग तेरे मां। अंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। कुटुंब कबेलो देखने थे तो गर्भ कियो मन माए, हंस अकेलो जावे रे कोई ने आवे साथ। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार। राम नाम रे बांध गाटरी बहु से कर लपात, सात सेवटिया के वेरे आवे थारे काम। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। आखिर एक दिन जानो रे ईश्वर रे दरबार।
1: धन्यवाद। सही में एक प्रेरणादायी और जो हकीकत है इस कार्यक्रम का माध्यम से हमारा श्रोता मित्र तक पहुंच पा रहे हैं, और हर गांव में इस तरह भावना है। भले बहुत सारा लोग है, बहुत सारा मनरेगा में आते, लेकिन एक कमाल कर दिए, एक जैसे आकाश में रात को बहुत सारा सितारे रहते, लेकिन एक चांद पूरा उजला दे देता है। तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा प्रभुराम जी सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, और एक दिन हमें जाना ही है, और एक दिन हमें आए थे और एक दिन जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाना है। लेकिन हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारा बुद्धि यदि तेज होगा, तब जो भी जिसका घर में भी जन्म लेंगे वो अच्छा से अच्छा निभा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभुराम को भूलने पर नाम, जैसे प्रभुराम जी आपका नाम कौन रखा था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाम कौन रखा था?
3: कोई ज्योतिष ने रखा था।
1: हाँ, इसलिए प्रभु को प्यारे हो गया, प्रभु का साथ भजन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा माताएं बोलते भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, पांडव सेना, प्रभुराम पांडव सेना का तरफ से और हमारा शक्ति सेना की तरफ से हमारा मेट भी स्वागत करेंगे। एक भजन होगा, भजन संध्या में आज, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी है, आज भाई लोग और माता लोग, बाबूजी लोग अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच पूरा जहाँ जाते वहाँ पर हमारा स्टूडियो बन जाता है। आज रेडियो मधुबन यहाँ का मंच स्टूडियो है। स्टूडियो में सभी माताओं को धन्यवाद देते हैं। संगठन पहला बार देखे, पूरा सभी दिल से भाई लोग का आवाज को, प्रभु राम का आवाज को सुन के हमारा रेखा बहन और उनका टीम उनको आगे बढ़ाएंगे। और रेखा को आज तो भाग्य का रेखा स्वयं परमात्मा ने दे दिया, जितना खींचना हो भाग्य का रेखा खींच लेगा, क्योंकि परमात्मा का ये काम है, मेरा काम नहीं है। भाग्य का रेखा भगवान के हाथ में रहता है और भगवान जब चाहता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो आज हमारा भाव और भावना को भगवान तक पहुंचे। और जैसे प्रभु राम जी अपना बात में संगीत में एक मोटिवेशनल मैंने जो आवश्यकता है संसार को जो सीखने की चीज वो बताए, जैसे हमें एक दिन जाना है, दिन जानने का पहले क्या करना चाहिए हमें सीख मिली। तो हमारा रेखा देवी को स्वागत करते, उनका टीम को और मैट को भी धन्यवाद देते जो कि इस कार्यक्रम को सजा रहे। तो एक प्रस्तुत सुनाएंगे रेखा देवी बहन।
2: अरे सतगुरु

0: कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाव और भावना को लेकर, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम इस तरह मंच मिलता नहीं माताओं बहन को। आकाशवाणी में जाएंगे तो उनको कोई भुलाएगा नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। किंतु सरकार क्या किया, रेडियो मधु आपका रेडियो नाम पे रेडियो दिया है, जो आपका आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक का बाद और एक भजन सुनेंगे, शायद रेडी है तो अल्प विराम का बाद। रेखा बहन को भी धन्यवाद और हमारा मैट को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ा

आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए सुनते हैं। हमारा सभी साथी उनको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पांडव का बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पांडव पीछे से हमें सहयोग देते हैं, हमारे भाई लोग और हमारा बहन है, माता भी एक गीत प्रस्तुत करेंगे, रेखा एंड पाठ।

0: बोले शिव शंकर भगवान
1: की जय हो।
2: बोलो शिव बाबा की जय, शिव भोले बाबा की जय, हर हर महादेव की जय। और जय में ही हमारा माता बहनों का भी जय है। आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी ने अपना अपना बात को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से सुना है। तो भाई साहब आपका नाम बताइए।
3: केशव पुरोहित।
2: पुरोहित जी, अरे बाप, पुरोहित को तो मानना पड़ेगा भाई। पुरोहित बहुत चालाक होते हैं और बहुत होशियार होते हैं। हर स्कूल में पुरोहित यही है। मास्टर साहब, आपका गांव में भी बहुत सारा पुरोहित है।
3: मास्टर जी है।
2: क्या नाम है?
3: अशोक।
2: अशोक पुरोहित। आप बोला ना, पुरोहित शंभु पुरोहित है, मोहन पुरोहित है, सब पुरोहित। हमारा शिक्षक का नाम स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पुरोहित लोग बहुत शिक्षित होते हैं। और आज तो सभी माताएं शिक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे। और एक प्रस्तुति होगा, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। खोना नहीं है, पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति के लिए हम चलेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि खुशी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आज माताएं बहनें अपना आवाज को रेडियो में दे रहे हैं। रेडियो को जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक सेकंड में 10 रुपया खर्च होता है आवाज सुनने के लिए एडवर्टाइज। लेकिन माताओं को बहन को आज रेडियो मधुबन जितना गाना चाहिए, जितना आपका 1 घंटा का प्रोग्राम है, इसलिए कितना खुशी का बात है। एक एडवर्टाइज के लिए 100-100 रुपया खर्च करते हैं बोलने के लिए, लेकिन आज सरकार ने दिया एक गरासिया भाषा का एक आदिवासी गीत, न हो आदिवासी एरिया में आए एक आदिवासी गीत सुनाएंगे। 1 2 3 शुरू।

जय हो, सभी का जय हो और बहुत खुशी और हर्ष का साथ इस कार्यक्रम को सजाए। सभी बहन माता और भाई लोग को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर, किसी भजन संध्या को लेकर, किसी मनरेगा का आवाज को। तो आज हमें बहुत खुशी है, सभी को राम राम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक आपके पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बातें, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर लौट आया हूँ पूरे एक हफ्ते के बाद। मैं जानता हूँ आप सभी ने मुझे भी मिस किया और शो पे बजने वाले इन गानों को भी, बट रेडियो तो चल ही रहा था, गाने भी बज रहे थे, लेकिन हाँ जी हाँ हम नहीं थे। बट इस वीक, इस हफ्ते हम लौट आए हैं, कुछ और रीजंस की वजह से हम गए थे बाहर, लेकिन फिर आ गए हैं हम आपके पास और फिर से इसी शाम को और सुहानी बनाने के लिए ले आए हैं आपके लिए बेहद ही बेहतरीन गाने उस ज़माने के। और हमारे साथ हमारा पहला ही कॉल जुड़ रहा है, चलिए सुनते हैं सबसे पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी, रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं, आप रक्षाबंधन करके भी आगे हो
0: जी। नमस्कार,
1: कैसे हैं आप? क्या कार्यक्रम है? मेरी रक्षा तो बांधनी बाकी है अभी।
0: अच्छा चलो, हैप्पी रक्षाबंधन।
1: बांधूंगा, बातें में बांधूंगा।
0: हाँ बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल।
1: गाने के साथ में बांधूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर।
1: मेरा पहला गाना है
0: जी,
1: जब जब पुकारे मैं बेड़ूंगा और नदिया किनारे
0: आए। क्या बात है,
1: क्या कह रहे हैं आपके साथ में मेरे को रह करके गाने सुनने हैं।
0: बिल्कुल,
1: सभी साथियों को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। सुरेश भाई है, मयूर भाई है, और वो बुराराम जी है, और सभी साथियों को मेरा प्यार प्यार बड़ा नमस्कार।
0: चलिए आपको भी,
1: और आपको तो है ही है।
0: बिल्कुल। लेकिन आपको, आपने भी पूरे हफ्ते में मुझे लगता है कॉल तो जरूर किया होगा ठीक इसी समय 8 बजे।
1: अरे कॉल क्या करें, हम तो इंतजार कर करके बैठे हैं, बाद में मत पूछो। बहुत अपेक्षा कर रहा था, मैंने कहा रक्षाबंधन कहाँ गए, रक्षाबंधन कहाँ गए, रक्षाबंधन बांध, रक्षा बांधने के लिए कहाँ गए वो। अपने अपने बहनों के यहाँ चले गए, या फिर बहने इनके यहाँ आ गए, ये बिजी हो गए, इसलिए मैंने कहा अब जब मिलेंगे जब बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर हम लौट आए आपके लिए और वही पुराने गाने लेकर के आ गए।
1: आप आ गए और हमारी खुशियां बढ़ गई है।
0: चलिए थैंक यू सो मच बुरीलाल जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप लोगों ने अपनी रक्षाबंधन को खूब ही अच्छे से मनाया, और जन्माष्टमी भी आप लोगों की बहुत ही अच्छे से मनाया। और हाँ, खास करके जन्माष्टमी में आप लोगों ने क्या किया ये ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए 9414151415 पर, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया जन्माष्टमी में ये बता देता हूँ। जी हाँ, मैं था माउंट आबू में जन्माष्टमी के समय पे, रक्षाबंधन के दिन से उसके पहले से ही मैं वहाँ चला गया था। जन्माष्टमी के दिन भी मैं वहीं था, और जन्माष्टमी में हमने क्या किया कि हमने दही हांडी फोड़ी। जी हाँ, दही, जन्माष्टमी के दिन दही हांडी फोड़ने के लिए हमारे और भी साथी मित्र थे, जिन्होंने सबने मिल करके एक दही हांडी फोड़ने की तैयारियाँ की और दही हांडी फोड़ी और बहुत ही एंजॉय किया, मक्खन खाया। फिर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे, चलिए सबसे पहले करते हैं उनसे बात। हेलो
2: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया, गुड इवनिंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बस अच्छे हैं, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, अगले हफ्ते तो आप नहीं थे लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छा लगा
0: जी। शुक्रिया, तो शुक्रिया।
2: आपका इंतजार, हमारा इंतजार खत्म हुआ, आप आ गए, हम भी कॉल लगा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं लगाऊं, लेकिन मेरे लगाने से पहले हमारे गुरीलाल जी का एंट्री हो गई, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे से मैं उसके पीछे जरूर लगाऊंगा फोन, तो बस आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है सर, सभी त्योहारों की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी भी गई और रक्षाबंधन का भी त्यौहार था
0: जी। बिल्कुल,
2: तो सभी त्योहारों की भी शुभकामनाएं आपको।
0: थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की।
2: जी सर, जी सर, बस गाना तो हमने सुना है कि छुप गए सारे नजारे, हुई क्या बात हो गई,
0: क्या बात है,
2: सोने का जल लगाया, दिन में रात हो गई,
0: क्या बात है।
2: बस अब आप आ गए तो हमारे सभी दिन में रात हो गई, या दिन में रात हो गई।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया सुरेश जी, लेकिन सच में ये जो आज आपने जो गाने की मुझे बताई ना, ये भी मेरे एक बहुत ही फेवरेट गानों में से एक है।
2: बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट गाना है, बहुत अच्छा गाना है वो, तो हमारे सभी साथियों मित्रों को आपकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमारे बुराराम जी, बुरीलाल जी तो आते ही गए
0: जी,
2: बुराराम जी, मदन लाल जी, सुभाष भाई है, हमारे कई सारे मित्र जो आज हमको सुन रहे हैं, सभी को हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी।
2: तो सावन में का हमारा लास्ट सोमवार है आज।
0: हाँ
2: तो हाँ, आज लास्ट सोमवार था, अभी कुछ सोमवार नहीं आएगा, आएगा तो दूसरा महीना का आएगा।
0: बिल्कुल।
2: तो आज भी हम एक हमारे गांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बहुत अच्छा एक जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ गए थे हम सुबह। अच्छा। ट्रेन में गए, ट्रेन में वापस आ गए, दर्शन करने के लिए गए थे।
0: ओके।
2: और वो हमारा जो मंदिर है वो सर हमारा जो मसीहा महादेव जी है, मसीहा महादेव बोलते हैं उसको।
0: ओके।
2: तो किसी को कोई होता है ना कोई गर्दन पे जो छोटा छोटा काला मस होता है, वो कोई बदन पे होता है, शरीर में होता है, तो सर क्या है उसकी हम मन्नत मानते हैं तो आपको आप वो मस निकल जाता है।
0: अच्छा।
2: हमारा चार अनुभव है।
0: क्या बात है।
2: तो हाँ ऐसे मन्नत कोई गुड़ चढ़ाना है वाले कुछ नहीं है, आपकी मन्नत के हिसाब से कोई 100 ग्राम 200 ग्राम गुड़ चढ़ा दीजिए जाके, कभी भी ऐसा नहीं कि आप ही जाइए। तो वो मस्त जो होता है वो बिल्कुल आपो आप मिल जाता है सर।
0: ओके। लेकिन
2: मेरे भी कई सारे, मेरा मुंह पर था, गर्दन पे था, कई सारे मस मिले था, लेकिन मैंने मन्नत मानी तो मेरा मस कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं है।
0: क्या बात है, वाह तो बहुत अच्छी बात है।
2: तो ये तो वरदान है उसको, उसको मसीहा महादेव जी बोलते हैं।
0: मसीहा जी महादेव जी।
2: हाँ मसीहा महादेव बोलते हैं वो। वहाँ पे सर वो कई लोगों को जात अनुभव है और वो मिठाई देता है, ऐसा वरदान है भगवान का।
0: क्या बात है। चलिए फिर तो ये हमें हर किसी को बताना चाहिए कि इस जगह पे जाकर के अगर किसी को ऐसा है तो जरूर से जाकर के ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच सुरेश जी, नमस्कार। थैंक यू। यहाँ दोस्तों आप सभी ने अगर इस बात को सुना है और जैसे सुरेश जी ने बताया मसीहा महादेव जी, तो वहाँ जा कर के अगर आपको भी कोई ऐसा मसीहा है, मसा है या कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, बातें और भी करेंगे, पूरे हफ्ते की बातें करनी है, लेकिन वक्त है पहला गाना सुनने का। सुनते हैं ये पहला गाना और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा नगमा सुना रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये तूने क्या कहा, कहा होगा ये मैंने क्या सुना, सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत ही प्यारा अभी हमने गाना सुना फिल्म 1966 में आई फिल्म इंसाफ से ये गाना था। गाने की थीम दो प्रेमियों के बीच की उस नाजुक बातचीत पर आधारित है जहां एक दिल की बात कहता है और दूसरा सादगी व शरारत से उसका जवाब देता है। क्या नगमा था ना 1966 की फिल्म। जैसे मैंने बताया आपको, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में ये गाना जब भी कानों में पड़ता है ना तो चेहरे पर अपने आप एक अलग ही मुस्कान तैर जाती है। हसरत जयपुरी साहब के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुरीली धुन और जब पुरानी यादें और मैं मासूम नटखटपन का साथ मिलता है तो कुछ ऐसा ही जादू बनता है। दिल की बात कहीं भी कहें भी दी और सामने वाले मुस्कुराकर टाल भी दी, तो यही तो उस दौर के गानों की असली खूबसूरती थी, है ना। बिल्कुल इस गाने की खूबसूरती भी कुछ ऐसी है कि कुछ कह भी दिया और कुछ सुन भी आया लेकिन उसे ना सुना कर दिया। एक हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े, चलिए सुनते हैं सबसे पहले उनको। हेलो,
1: नमस्कार, केतन भाई बुराराम बोल रहा हूँ।
0: बुराराम जी कैसे हैं आप?
1: बस आपकी
0: जी बिल्कुल, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कई बार नेटवर्क ठीक नहीं रहता है वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, अब आ रही आवाज। कहिए कैसे हैं आप? बुराराम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से कॉल लगाइए, शायद नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है।
1: अच्छा मैं लगाता हूं
0: जी। यहाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है।

0: है कि नेटवर्क ठीक ना होने के कारण बात भी हमारी ठीक से नहीं हो पाती है और हम उनको सुन भी नहीं पाते। लेकिन जी हाँ दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें ज़रूर से बताइए कि आपने किसी की ऐसी बात को सुना, अनसुना कह दिया, या फिर सुन के आपने कह दिया कि हाँ मैंने सुन लिया, और सुनने वाले ने जो भी कह दिया हाँ ठीक है सुना होगा सुना होगा, या कहाँ होगा तो कहाँ होगा। जी हाँ, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ तो हमसे ज़रूर से शेयर कीजिए 9414151415 पे। चलिए फिर से बुराराम जी का कॉल है, सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: हाँ सर, अभी आवाज आ रही है क्या?
0: बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है।
1: अच्छा, आपको इतना है कि बहुत इंतजार करवाए, आप बहुत दिनों के बाद में मिले, चलो मेरा हाथ जोड़।
0: नहीं, शुक्रिया सो मच, आप हमारा इंतजार कर रहे थे, और हाँ बिल्कुल, हम एक हफ्ते के बाद फिर से आपसे मिल रहे हैं और आपसे फिर से बातें कर रहे हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छा, हम खुश हो गए।
0: हाँ हाँ शुक्रिया।
1: और बाकी सब मधुबन भाइयों को, सुरेश भाई, सुभाष भाई, भूरेलाल जी, सब मधुबन भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम।
0: सभी
1: और जन्माष्टमी बहुत अच्छी बनाई, हमारे इधर विठल भगवान का मंदिर है।
0: हाँ जी,
1: बहुत बड़ा, कम से कम
0: अच्छा।
1: और जन्माष्टमी इधर बनाए, और मैं ऐसा कह, ये भजन का मारवाड़ी में भजन का कलाकार, तो मैंने रात भर भजन गाए उधर, और बहुत अच्छा रात बिताई ये जन्माष्टमी के।
0: क्या बात है, वाह बढ़िया। तो कुछ भजन कीर्तन भी हुए होंगे उसमें?
1: भजन कीर्तन ना तो मेरा है ही, कभी भी गांव में होता है तो पहले मेरे को बुलाते हैं भजन कीर्तन में, मैं बहुत ये मारवाड़ी में बोलता हूँ ज्यादा करके।
0: अच्छा, क्या बात है। तो कभी हमें मारवाड़ी भी भजन कीर्तन आप अपनी बताइएगा, तो हम जरूर से, अगर कोशिश करेंगे, हमारे पास भी होगा तो हम जरूर से उसे प्ले करेंगे। कई बार अच्छा लगता है लोगों को भी ये भजन कीर्तन इस तरह से।
1: हाँ तो आप बोलेंगे तो मारवाड़ी में भी भजन, अच्छा भगवान का भी सुना दूंगा। कभी
0: बिल्कुल
1: आप बोले तो टाइम देते,
0: बिल्कुल कभी भी, शायद हो सकता है हम कल ही सुने आपसे।
1: ओके, तो आप बोलेंगे जब सुनाऊंगा, और बाकी तो अभी क्या, कोई अच्छा भगवान का भजन सुनाएंगे तो अच्छा है।
0: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे, कौन सा भजन सुनना है?
1: भजन तो अभी इसमें अभी कौन सा वो ऐसा, हमारे भाषा में तो ऐसे मारवाड़ी में बोले तो मन हरी ओम रख रे तेरे पाप जावे सब कट रे, ऐसा करके भजन अच्छा है। लेकिन ये अभी उसमें रिकॉर्ड है कि नहीं आपके पास? मेरे
0: कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल से आपके लिए बजाएंगे, भले दो लाइन ही सुना दे लेकिन जरूर से सुनाएंगे आपको।
1: ओके सर, ओके सर। हेलो,
0: हाँ जी बताइए, गाने के मतलब वो भजन के बोल क्या है?
1: ऐसा भजन के बोल है, मन हरिओम हरिओम रत रे तेरे पाप जावी सब कटरे, मन राधे श्याम रत रे तेरे संकट जावी सब कटरे, ऐसा करके भजन में मारवाड़ी में। और वो तो सुना देना।
0: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं भूराराम जी, हम आपको ये गाना, ये जो आपने भजन हमें बताया है, हम कोशिश करते हैं आपको सुनाने के लिए। शुक्रिया सर।
1: ओके सर, ओके
0: सर। तो ये थे हमारे भूराराम जी, और हम आशा करते हैं आज इनको हम ये जो भजन हमने बताया है, इन्होंने हमें जो फरमाइश दी है, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल से उनको सुनाएं। लेकिन बढ़ते हैं सबसे पहले एक फरमाइश की ओर, हमारे सुरेश जी ने हमें जो फरमाइश दी थी, छुप गए सारे नज़ारे, सुनते हैं ये गाना और फिर करते हैं इस गाने के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जीना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।
2: वेलकम बैक दोस्तों, सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहिए, मुस्कुराता रहिए। यान दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले यानी कि अभी आप जब गाना सुन रहे थे तो हमारे प्यारे सुभाष जी ने हमें कॉल किया, और हमारे सभी श्रोता जो भी हमें सुन रहे हैं नाम सहित, चाहे वो सुरेश जी हो, बुरीलाल जी हो, बुराराम जी हो, सभी को नाम के सहित उन्होंने अपना याद प्यार दिया है, नमस्कार किया है, और उन्होंने भी सभी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएँ दी है। और बढ़ते हैं, अभी हमने जो गाना सुना, जी हाँ दोस्तों, ये भी मेरा भी बहुत ही फेवरेट गानों में से एक है, छुप गए सारे नज़ारे, हो क्या बात हो गई। एक समय था, मुझे याद है कि जब हम कार में बैठते थे और उस वक्त सीडी प्लेयर्स वगैरह की नहीं होती थी, उस वक्त वो टेप रिकॉर्डर होता था, कैसेट होती थी, जो कैसेट बजती थी, और उस पे ये हमारा लूप पर गाना बजता था। हम डेली कंटिन्यू इसे लूप पर बजाते रहते थे, सुनते रहते थे, और इसी तरह से कुछ और भी दो चार गाने थे जो मैं लूप पर सुनता था। तो चलिए दोस्तों, बातें करते हैं इस गाने के बारे में कि ये एक आइकॉनिक रोमांस 1969 से रोमांस से भरा नगमा, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने अपने जादुई आवाज़ से सजाया था, भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में से एक। आनंद बख्शी साहब के लिखे ये बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का धड़कन बढ़ा देने वाला संगीत प्यार की उस मासूमियत और शरारत को बयां करता है, जहां दो दिल मिलते हैं पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। यह 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, दो रास्ते का ये गाना सुनते ही दिल आज भी 70 के दशक में उसी हसीन शाम में चला जाता है ना दोस्तों। राजेश खन्ना साहब का वो अंदाज और मुमताज़ जी की वो नटखट अदाएं, जब भी यह गाना बजाते हैं माहौल में एक अलग ही रवानगी खुल जाती है, और आनंद बख्शी साहब की शायरी की तो दाद देनी पड़ेगी। काजल लगाने भर से दिन में रात हो जाना, प्यार में डूबे आशिक का तो हर बात में बस हुसन की एक कारीगरी नजर आती। जी हाँ दोस्तों, जब ये कहा था ना कि तूने काजल लगाया और दिन से रात हो गई, तो ये इस तरह से जो वर्डिंग्स पे जो खेला ना, वो बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। उस वक्त मुझे याद है, किसी को भी देखते थे काजल लगा के, हाँ है तूने काजल लगाया और दिन में रात हो गई, ये वर्ड्स बहुत यूज़ होते थे। यहाँ दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक नज़र, किसी की ज़रा सी भी मुस्कुराहट ने आपके पूरे दिन का मिजाज ही बदल दिया? जी हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पता है आपको क्या करना है, 9414151415 पे अपनी दिल की बातें शेयर करनी है। जी हाँ, क्योंकि इस शो का नाम ही है खुशी के नगमे, दिल की बातें। जी हाँ, अपने दिल की बातें, खुशी के वो नगमों को आपको हम तक पहुँचाना है, अपनी फरमाइशों को हम तक पहुँचाना है, और हम कोशिश करेंगे आपकी वो फरमाइशों को हम पूरा करें। हमारे बुराराम जी अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बुराराम जी, हमने कोशिश की आपके उस भजन को आपको तक पहुँचाने की, आप तक आपको सुनाने की, लेकिन शायद वो नहीं प्ले कर पाऊँगा इस बार, बट कोशिश करेंगे कि मुझे वो मिल जाए, मैं ढूंढ लूँ, डाउनलोड कर लूँ और फिर आप तक वो पहुँचाऊँ। चलिए दोस्तों, वक्त है हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हमारे कॉलर से, सुनते हैं उनसे। हेलो
3: भाई जी, एक बात बोलने की रह गई।
2: जी सुभाष जी।
3: तो पहले सभी दोस्तों को नाम सहित नमस्कार, और दूसरी बात जो आपकी खूबसूरत बात है, जो रक्षाबंधन के दिन दो छोटे छोटे क्लिप आपके आज जी केवल जी और हमारी बहना आज जी शुभा जी के साथ में रक्षाबंधन की जो भावना प्रदान और कम शब्द में बहुत कुछ रक्षाबंधन में भाई बहन का कैसे प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार, तो आंखों से पानी आ गया हमको जब हमने सुना, और दो तीन बार सुना अभी तो आंखों में पानी आ गया। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्टिंग, अभिनय, आवाज, चर उदार उतार लयबद्धता से वो क्लिप तैयार की है। तो आप दोनों रेडियो मधुबन परिवार का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई और थैंक, और सभी को नाम सहित नमस्कार। ओम शांति भाई जी।
2: ओम शांति सुभाष जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से हमारे उस एक्ट को देख सुना, और आपने आवाज़ें पहचानी, और आपने ये भी बताया कि कौन कौन किस किस ने इसमें आवाज़ें दी है, और आपके ये भावुकपनों को मैं हमें देख करके हमें बड़ा अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, होता ही था कभी ऐसा कि जब हम भाई बहनों के प्यार ही ऐसे होते थे, चाहे पूरा दिन झगड़ ले, पूरा दिन एक दूसरे की टांग खींच ले, लेकिन राखी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन ये जो प्यार था भाई बहन के बीच में, मैं जानता हूँ मेरी बड़ी बहन है और हम किस तरह से हम रक्षाबंधन को मनाने थे, पूरा दिन झगड़ने के बाद फिर जब वो वक्त आता था राखी बांधने का तो मम्मी को बीच बचाव में आना पड़ता था, और बस जल्दी से राखी बंधवा ले, और फिर वो कहती थी कि गिफ्ट क्या चाहिए, गिफ्ट क्या लाई है, तो मैं तो कहता था मैं तो छोटा हूँ, मुझे क्या गिफ्ट ला, मम्मी से मैं मांगता था मम्मी दे दो इसको कोई गिफ्ट। और इसी तरह की छोटी छोटी सी प्यार भरी टकराव के साथ जब आज उन पलों को, उन समय को याद करते हैं तो बिल्कुल दिल भावुक सा हो ही जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहन दूर है, हम उनके साथ अपनी राखी को बांध नहीं सकते हैं या वो बांधने के लिए नहीं आ सकती, लेकिन वो जो प्यार होता है आजकल के ज़माने में, वो फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है जिससे वो प्यार हम तक पहुंच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास रहने की जो खुशी होती है वो दूर रहती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, और अगला जो नगमा है रेडियो मधुबन 107.8 पर आप सुनिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
4: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये गाना महल 1969 का सदाबहार नगमा, जिसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने अपनी मखमली आवाज़ से सजाया है, अपनों के स्वागत और इजहार मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आनंद बख्शी साहब की कमल कलम जब एक साथ मिलती तो इंतज़ार की इस तड़प को बेहद नज़ाकत और खुलूस के साथ धुन में पिरोया गया। क्या ताजगी इस नगमे में। 1969 की फिल्म महल का ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत दिल से और प्यार से हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। आनंद बख्शी साहब ने भी क्या खूबसूरती से लिखा, जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो फिर जमाने की परवाह किसे होती है। रफ़ी साहब की संजीदा और आशा जी की चुलबुली गायकी का यह संगम आज भी कानों में पड़ता है तो दिल झूम उठता है। ऐसे दोस्तों, इंतज़ार का भी एक अपना अलग ही नशा होता है ना, चाहे वो किसी के खास के आने का हो या फिर अपने पसंदीदा गाने को रेडियो पर बजने का। और मैं जानता हूँ दोस्तों कि पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते आपने मेरा इंतज़ार किया और फिर आज जब हम आए तो बड़ी प्यारी प्यारी दिल की बातें हमने की। तो ये जो इंतज़ार का, ये जो मेरा भी था कि एक हफ्ता मैं नहीं हूँ, फिर आज मुझे सोमवार को जाना है, रेडियो पे शो करना है, तो मेरा भी जो इंतज़ार की जो बात थी, मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल थी। और बस फिर से आप सभी के बीच में हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की। और अगला जो नगमा सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

वाह, क्या नगमा अभी हमने सुना है। आशा भोसले जी की जो आवाज़ है और जो मिठास है, और मन्ना दे के साथ की उनकी जो चुलबुली नटखट सी ये जो शरारतें थी कि हाँ भाई सांझ ढली, दिल की लगी थक चली पुकार के, अब तो आ भी जा, आ जा, आ जा, आ भी जा। और सामने से जो रिस्पॉन्स आता है कि अब मैं तुझे क्या दूँ, जब पहले से ही मैं बैठी हूँ दिल हार के, अब तू जा जा जा जा जा तू जा। यार दोस्तों, अभी हमने ये जो बेहतरीन गाना, बेहतरीन नगमा अभी हमने सुना, गीतकार इसके जो थे शैलेंद्र, गायक हमारी आशा भोसले जी, मन्ना डे, और म्यूज़िक डायरेक्टर संगीतकार हमारे एस डी बर्मन जी। मूवी थी काला बाजार, 1960 की ये मूवी थी। और आज भी जब भी हम इस तरह के गाने सुनते हैं और इन गानों के इन जो बोलों को हम सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ये मन के अंदर उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ें याद आने लग जाती है उन गानों के बोलों के साथ, कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के साथ वो रिलेट करने लगती। मैं आपको बताऊँ, मैं कल शाम को कुछ पुराने गाने ऐसे ही सुन रहा था, 1970s 1980s के ऐसे ही पुराने गाने मेरे स्क्रोल पे आने लगे, और मैं उन पुराने गानों को सुनने लगा तो उन यादों में ऐसे खो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाह क्या नगमे थे उन पुराने गानों के, कि कहीं भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, आप उन गानों के धुन में, उन गानों में खो जाते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह को आप देखने लगते हैं कि हाँ मैं वहीं हूँ और सच में ये मेरे साथ हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की, और अगला नगमा भी बेहतरीन हमारे साथ जुड़ रहा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गहराइयों को चीरता हुआ है।

0: दो गुलाब,
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं दो

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना। हाँ जी दोस्तों, कभी ऐसा भी होता है क्या कि हम आपके लिए कुछ भी करें और उसके लिए हमें ये कहना पड़े कि मौसम जानता हो। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि यार इससे पूछ ले मैंने ये किया, या उससे पूछ ले, मेरे दोस्त से पूछ ले। मैं अपने आजू बाजू वाले का नाम लेता हूँ और कहता हूँ कि यार तू इससे पूछ ले। लेकिन इस गाने में जो कहा है कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। जी हाँ दोस्तों, मूवी थी जिद्दी 1964 की, गीता दत्त मन्ना डे जी की आवाज़, सचिन देव बर्मन यानी कि हमारे SD बर्मन जी और हसरत जयपुरी जी इसके गीतकार। बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, लेकिन हम सभी आपसे विदाई लेना चाहेंगे, आपको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि कहना चाहते हैं और कल फिर मिलने का करते हैं वादा। आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला जो कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, हमें दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य की मंगल कामना हर कोई करते आए हैं, हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं भी करते आए हैं। और तो और, भारतीय संस्कृति में हम ये देखते हैं कि हम अपने आरोग्य के लिए एक अलग से देवता भी देखते हैं। कहीं हम वेदों के समय में अश्विनी कुमारों की बात करते हैं तो फिर बाद की कथा परंपराओं में हम आरोग्य के देवता के रूप में भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं। ऐसे में जब आरोग्य की बात कही जाती है तो ये कोई नई चीज नहीं है कि व्यक्ति आरोग्य की कामना करते आ रहा है, मगर आरोग्य की कामना करते हुए भी समय समय पर हम अपने आरोग्य के क्षेत्र में बदलाव देखते आ रहे हैं। आज समय बीतते बीतते हम ये मानते आए हैं कि पहले जो बीमारियां नहीं थी, आज वो बीमारियां बहुतायत में होती जा रही हैं, या ऐसी बीमारियां जिससे लोग पहले कम बीमार होते थे, आज अधिक से अधिक लोग उन बीमारियों के ग्रास में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ करने की जरूरत है या सिर्फ प्रार्थनाओं से काम चलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी ही उन्नतियां होती आई हैं, नई नई खोजें नई नई चीजों के बारे में हमें ज्ञान बढ़ाती हुई आ रही हैं। आइए आज स्वास्थ्य जगत से ही जुड़े एक ऐसे एक्सपर्ट से हम बातचीत करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में हमें मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो हम इस बात को समझें कि हम प्राचीन काल से स्वास्थ्य की प्रार्थना करते आए हैं डॉक्टर साहब, और सिर्फ प्रार्थनाओं से काम नहीं होता, ये भी हमने चीज समझी है कि हमें भी कुछ चीजों को करने की जरूरत है, और इसी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में कई उन्नतियां होते हुए हम देखते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे साथ ही साथ जितने चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों की बीमारियां भी बदलती जा रही हैं, या यूं कहें कि ज्यादा संख्या में लोग बीमार भी होते हुए जा रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों में पूरे देश में हम देखते हैं कि डायबिटीज की मरीज तो ऐसे आम जनता के रूप में कहते हैं, हाँ इनको तो डायबिटीज है, ये तो स्वाभाविक बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप इस स्वास्थ्य के बदलते परिवेश पर क्या कहते हैं?
1: भैया, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि आपने कहा था कि हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना निश्चित रूप से कठिन समय में लोगों की मदद करती है, वो मानसिक शांति देती है, सकारात्मकता देती है और शक्ति प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई उसको बीमारी ग्रसित करती है और उसको एकाएक लगता है कि उसका कठिन समय शुरू हो गया है, अगर आपको ये भी मुझे बोलने में कोई भी परहेज नहीं होगा कि कुछ लोग जो बहुत सीरियस होते हैं या जो बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं, वो तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं अचेत अवस्था में, उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत कठिन समय होता है और वो हर तरफ भगवान को याद करते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ भी हैं जो लोगों की चिरायु के लिए कराए जाते हैं, एवं या जो लोगों को बहुत बीमार होते हैं उनके लिए लोग ये पूजा पाठ करा। कहते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं रहा होता है तब हम भगवान की शरण में आते हैं। मैंने माउंट आबू में डॉक्टर्स का कॉन्क्लेव अटेंड किया है, वहां लोगों ने अपने साक्षात्कार साझा किए थे। उन्होंने बोला था कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने सिर्फ ब्रह्मा बाबा की तरफ देखा, प्रणाम किया और ये सोचा कि अब आपने स्थिति में डाला है तो आप ही स्थिति से हमें बाहर निकालें। प्रार्थना बहुत विश्वास देती है। जब डायबिटीज किसी व्यक्ति को होती है तो जैसा मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है कि एक ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप स्वस्थ रहें, आप अपने शरीर के बारे में कुछ अच्छा सोचें। क्यों लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है, हमारा भोजन दूषित हो रहा है और हमारा जो शारीरिक श्रम है वो कम होता चला जा रहा है। हम शरीर से ज्यादा अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और हमारे सभी मित्र बहन भाई जो हमें सुन रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि अब हम आपस में बात करना कम कर चुके हैं, बनस्पत हम एक मोबाइल के पीछे पागल हो चुके हैं। वो मोबाइल हमारी सोचने की शक्ति को छीन कर रहा है, हमारी समझने की शक्ति को छीन कर रहा है और हमें एक ऐसे वायुमंडल में डाल रखा है हम जिसको सच मान बैठे हैं। उसकी एक और कमी है कि हम जो भी उसमें कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है हम सोचे समझे उसको अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरे जितने श्रोता भाई बहने जो भी सुन रहे हैं, आरोग्य की कुंजी सिर्फ मिताहार मतलब कम खाने में, दूसरा शारीरिक श्रम करने में और अच्छे से 6 से 7 घंटा सोने में और 3 से 4 लीटर पानी पीने में है। थोड़ी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा अपने मन के लिए भी सोचिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करिए। आप देखिए ब्रह्म कुमारी का ये चैनल सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि सब लोग एक सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, उससे कितनी मानसिक शांति प्रतीत होती है। तो कृपा करके अपने शरीर और मन दोनों को शांत रखिए। आपको कोई भी बीमारी हो गई हो उसका उपचार ढूंढने से जरूर मिलेगा, और कोई भी बीमारी अगर क्रॉनिक डिजीज है आपको तो उसका उपचार एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड डाइट एंड गुड मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन में है।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम अपने ही आरोग्य के बारे में इतने स्पष्ट रीति से जानकारी नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अस्पतालों में जाएंगे तो आरोग्य वहां मिलेगा, और अपने दिनचर्या पर, अपने भोजन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम न रखने के कारण हम ज्यादा बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस स्वास्थ्य की कुंजी की आपने बात की, ये बात कितनी सहज और सरल है ये बात स्पष्ट होती है। आज एक और विषय पर जो हमारे दोस्त पिछले कई दिनों से चर्चा में सुन रहे हैं उस पर मैं प्रश्न करना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की समस्या हो गई है, डायबिटीज की बीमारी है। तो अक्सर हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई उनको खाने पीने पे ध्यान रखना होता है, कि भाई डायबिटीज है आपको खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, इतना बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता कि भाई आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और पिछले दिनों हमने अनेक ऐसे विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो आम भोजन करता है, जो हर दिन जिसकी भोजन का रूटीन है, उसके भोजन की थाली में क्या क्या चीजें होती हैं, वैसे प्रश्न उठता है कि एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको डायबिटीज की बीमारी है उसके भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, क्या उसके लिए नॉर्मल खाना है, ये आप बताएं।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। अगर हम अपने थाली को देखें, और सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो करीब आधा भोजन जो है हमारा वो फल और सब्जियों से बनना चाहिए। मतलब हमको किसी भी तरीके से ऐसी सब्जियां और ऐसा फल जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो या न हो, जैसे इंग्लिश में जैसे बोलते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल या एंड फ्रूट्स, से पहले हमको आधा अपना भोजन ये करना चाहिए। 25% भोजन हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी अनाज हम खा रहे हैं या जिन भी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 25%, और 25% हमारे भोजन में प्रोटीन होना चाहिए। जैसा हम लोग ने पुराने एपिसोड में बात किया कि बैलेंस डाइट में आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड फाइबर्स, मिनरल, विटामिन्स, ये सब होने चाहिए। तो हमको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पूरी जो भोजन की प्लेट है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और 25% प्रोटीन होना चाहिए। इतना करने से हमारा जो पूरा भोजन है वो ठीक हो जाएगा। आप ये समझिए कि जब हमें डायबिटीज हो रहा है तो हमारे शरीर में जो शक्करा है, जो चीनी है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो हमें वो भोजन करना चाहिए जिससे ये मात्रा जो है वो जल्दी ना बढ़े। हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में ये भी बात किया था कि हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या जो भोजन में जितनी शक्कर की मात्रा है उस हिसाब से भी हम अपना डायबिटीज का या अपना डाइट जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो हमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, मतलब जितने भी प्रोसेस फूड्स हुए, मैदा से बनी हुई चीजें हुई, मिठाइयां हुई, चॉकलेट्स हुई, ये सारी की सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसे हम पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और इनका सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा हमें सजग होना पड़ेगा कि हम अपने भोजन में फाइबर जो है उसकी मात्रा एकदम ठीक रखें। और इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है कि अगर आपको संतरा बहुत पसंद है तो संतरे की फाक को खाइए, न कि उसका जूस निकाल के पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फाइबर कंपोनेंट है वो भी सही रहेगा और आपका जो शुगर कंपोनेंट है वो बढ़ेगा नहीं। फल जैसे आपके अमरूद हुए, आपका सेब हुआ, आप जितनी भी आपकी बेरीज हैं या आपका पपीता हुआ, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आपको सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करना चाहिए, मतलब आपको जो फल पसंद हो वो फल खाइए और करीब 200 से 250 ग्राम वो फल खाइए। अगर आप अपने सवेरे का जो नाश्ता है वो कच्चा करेंगे और जिसमें फल जैसे कि अमरूद हुआ, सेब हुआ, पपीता हुआ, ये सारे फल अगर आप सवेरे अपने नाश्ते में इनका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो शुगर है वो एकाएक बढ़ेगी नहीं। मैं एक अपने श्रोताओं की बात बोलना चाहूंगा कि सवेरे खाली पेट कोई भी चीनी से बनी पदार्थ का सेवन मत करिए। कोई भी सवेरे उठते ही, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि हम पूजा करके प्रसाद खा के अपना दिनचर्या शुरू करेंगे, मैं उन सभी भाई बहनों को बोलना चाहूंगा कि सवेरे उठते ही प्रभु को अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कृपा करके कोई फल का प्रसाद चढ़ाइए और उससे अपने दिन की शुरुआत करिए। चबा चबा के भोजन करिए, सवेरे फल करिए, दोपहर के भोजन में आधा भोजन आपका सलाद और सब्जियों से होना चाहिए, आपका 25% भोजन जो है वो प्रोटीन से होना चाहिए और 25% में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जो भी अनाज आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। यही चीज आपको शाम को करनी चाहिए कि आप 3-4 बजे 250 ग्राम फल ले लें आप, और रात के समय फिर यही चीज पे आप कोशिश करें कि आप सब्जी, सलाद, सूप इसको ले लें। इससे आपका जो डायबिटीज है वो पूरा कंट्रोल में रहेगा।
0: ये बात समझ में आती है कि हम अपने भोजन पर अगर ध्यान देते हैं, भोजन की थाली कैसी दिखनी चाहिए, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात्रि के भोजन, इन सभी चीजों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये सब कुछ सरल हो सकता है। प्राय जब आप ये बात कहते हैं कि सुबह का नाश्ता 250 ग्राम जितने फल होने चाहिए, कच्चा होना चाहिए, कई लोग फलों के मामले में भी लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये चबाने में हमको तकलीफ होती है, जैसे अगर हम किसी को सलाद खाने के लिए कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये चबाना पड़ता है बहुत, और खासकर उस उम्र में जब लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं तो कई लोग अपनी बड़ी उम्र में या उम्र के बढ़ते हुए फेज में होते हैं तो वहां पर वो उन चीजों को करने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि लोग ये कहते हैं, कई लोग ये बात कह देते हैं कि अरे जिंदगी भर तो हमने नहीं खाया, अब खाने से क्या होगा, ये भी चीज कह देते हैं। तो दो प्रश्न है, पहले तो जो लोग इन चीजों को चबाकर खाने वाली कच्ची चीजों को लेकर जो इश्यूज कहते हैं उसके बारे में क्या किया जाए, और क्या उम्र के एक बढ़ते पड़ाव में जब व्यक्ति 50-60 की उम्र के बाद डायबिटीज से ग्रस्त हो रहा है और उस समय पर उसे ये बदलाव करने पड़ेंगे तो क्या उससे उसको उतना फायदा होता है।
1: जिस दिन हमें मालूम चलता है कि हमको डायबिटीज हो गई है, वो उम्र कोई भी हो, उस दिन से हमें अपने भोजन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। आपको घूमना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो प्लीज कुर्सी पे बैठ के, बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसमें अपना हाथ हिलाना है, अपने कंधे हिलाना है, अपनी कोहनियां हिलानी है, अपने पैर की उंगलियों के हिलाना है, एड़ी हिलाना है, आगे पीछे चलना है। आप कुर्सी पे बैठ के बहुत सारे व्यायाम कर सकते हैं। मैं सबको एक राय देता हूं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सामने के आपके घर में कोई भी दरवाजे का कुंडा है उसमें अपनी चुन्नी या कोई रस्सी फंसाइए और पुराने जमाने में जिस तरह से दही मथा जाता था अपना हाथ आगे पीछे करके खींचिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप 50 साल 60 साल के हैं और आपको तब मालूम चलता है कि आपको डायबिटीज हुई है तो आपको सजग रहने की उतनी ही जरूरत है जितना एक 30 साल या 20 साल के बच्चे को होगी। अगर आप 60 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा कमजोर हो सकती है, इसीलिए आपको सजग होने की पूरी जरूरत है। आपका दूसरा सवाल था श्री भैया कि जो लोग कहते हैं कि हम सलाद नहीं खा सकते या फल हम नहीं खा सकते, उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि आप फल को या तो थोड़ी सी दही डाल के या थोड़ा सा पानी डाल के उसको चला लीजिए मिक्सी में और वो एक सूदी टाइप बन जाएगा, उसको खाना शुरू करिए। आप अगर किसी चीज को मिक्सी में चला लेते हैं, आप गाजर को ही मिक्सी में चला लीजिए तो आप देखिएगा कि उसका थोड़ा सा रस निकलेगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। आप देखिए जब हम गाजर का रस निकालते हैं तो रस पूरा एक तरफ आ जाता है और उसका जो खुज्जा है वो अपने आप बाहर फेंक दिया जाता है। पर हमें अगर डायबिटीज है तो उस खुज्जे की भी हमको जरूरत है। तो कोई भी आप फल खा रहे हो आप उसको मिक्सी में चला सकते हैं, आप बहुत थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दही डाल के उसको चला सकते हैं और ये उसमें आपको क्या होगा कि वो जो मेहनत आपके दांतों को करनी है उसको चबाने के लिए वो मेहनत मिक्सी में चलाने के बाद हो जाएगी और वो आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। आप देखिए श्री भैया, जो भी रस हमको चाहिए, किसी भी चीज का हम जूस अगर निकालते हैं तो बहुत सारा खुज्जा उसमें से बच जाता है। हमको डायबिटीज में खुज्जा चाहिए अपने शरीर के लिए क्योंकि वो फाइबर है, वो हमारे शरीर को ताकत देगा। बहुत सारे लोग सुबेरे नाश्ते में टमाटर और दही का भी प्रयोग करते हैं, वो टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और दही में मिला के उसको हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आप मतलब उस फल को आप अपने चाकू से छोटा छोटा काट के भी खा सकते हैं, मगर आप ये चाहिए कि आप प्रोसेस्ड फूड खाएं, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स खाएं, वाइट ब्रेड खाएं, आप बिस्किट्स जो हैं वो खाएं, वो सारी चीजें आपको बहुत नुकसान करेंगी। तो अगर आपको शुगर हुआ है और जो भी डायबिटीज रिवर्सल की बात करता है, डायबिटीज रिवर्सल में यही बात की जाती है कि आप फाइबर रिच फूड खाइए और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा को जीरो कर लीजिए। आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भोजन ही आपका डॉक्टर बन जाएगा। कहा जाता है ना, मेक दाई फूड दाई मेडिसिन, आपका भोजन ही आपकी दवा बन जाएगी और आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे।
0: आज ये बात समझ में आ रही है कि आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप किसी भी उम्र में डायबिटीज के मरीज क्यों ना बन रहे हो, आप उस डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, उसे रिवर्स किया जा सकता है। सिर्फ आपको अपने भोजन ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इन चीजों से ये चीज समझ में आती है। देखते देखते वक्त ये कह रहा है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज जो बातें हमने आपसे सुनी मैं समझता हूँ उन चीजों में सबसे पहले तो अपने आहार पर, हर दिन के हमारे भोजन की थाली कैसी होनी चाहिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। आप डायबिटीज के मरीज किस उम्र में बनते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भी उम्र में डायबिटिक बने तुरंत आपके लिए वो एक सुनहरा मौका है अपने जीवन में सुधार लाने का, कि आप अपने सुबह के नाश्ते को कच्चा करें, यानी फ्रूट्स खाएं, 250 ग्राम जितने फल खाएं उन फलों को खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा हो, और साथ ही साथ अपने भोजन के समय पर भी किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है ये चीज आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुनी। भोजन के साथ साथ अपने व्यायाम पर भी हाथ पैर हिलाने, अपने श्रम के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और कितना सरल उपाय आज हम सब लोगों के लिए ये पता चला कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप किसी कपड़े को अपने दरवाजे के खूंटे पे बांध कर अगर उसे हिलाने का भी अभ्यास शुरू करें तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका दैनंदिन अभ्यास शुरू होगा। अच्छी आदतों को लाने से हम अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी वापस पा सकते हैं दोस्तों, और आज की चर्चा से ये बात बहुत ही सरल रीति से स्पष्ट होती है कि डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ जिंदगी भर दवाई लेते हुए रहना ही नहीं, मगर हम बदलाव करते हैं तो बदलाव संभव है। आज हम सभी श्रोता मित्रों के लिए डॉक्टर राहुल मोदी जी ने ये मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीजें सुनी है वो आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार और अपने साथियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करें, इससे उनके जीवन को स्वस्थ बनाने का तोहफा आप दे सकते हैं। आज रेडियो मधुबन पर सहज स्वास्थ्य में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सपनों की सैर में। परी और मनी दीदी आ गए।
1: हाँ बच्चों, और आज फिर से करेंगे हम ढेर सारी बातें, तो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लेना थोड़ा।
0: हाँ बच्चों, पता है मनी दीदी, आज मैं परी लोक से आई तो आज कोई नई परी मुझे दिखाई दी।
1: अच्छा, जादुई जंगल की परी?
0: हाँ, जादुई जंगल की परी नजर आई मुझे। और पता है मनी दीदी, उसका नाम था तारा।
1: तारा? अच्छा, छोटी सी नन्ही सी परी तारा मिली आपको? अच्छा, वो क्या कर रही थी?
0: बच्चों, वो तारा परी मुझे सुना रही थी कि वो जंगल की ओर जा रही थी ना, तो एक घायल नन्ही सी चिड़िया उसको मिली।
1: अच्छा।
0: और फिर तारा ने अपने जादुई पंखों से उसे ठीक कर दिया।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर चिड़िया ने भी उनको थैंक्स कहा होगा ना, खूब खुश हो गई होगी और वो उड़ने लग गई होगी फिर से।
0: हाँ मनी दीदी, चिड़िया ने उसको कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी भी कभी मदद करूँगी।
1: अच्छा, तो देखा बच्चों, क्या सीख मिली तारा से, यदि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद मिलती है जरूरत के समय में।
0: हाँ बच्चों, इसीलिए हमेशा सबकी मदद करना। कहीं आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो कोई अपंग या कोई अंधा व्यक्ति मिले तो उसे क्रॉस करवा देना।
1: हाँ, और भी कई बातों में आप छोटी छोटी मदद एक दूसरे को कर सकते हो।
0: जैसे आपका कोई क्लासमेट पेंसिल पेन लाना भूल गया हो तो आप अपनी पेन शेयर कर सकते हो।
1: हाँ, और उसको होमवर्क करने में भी मदद कर सकते हो यदि कोई थोड़ा कमजोर है तो।
0: तो देखा बच्चों, तारा परी कैसी जादुई है और सबकी मददगार है।
1: हाँ, तो ऐसे ही हमें भी सबका मददगार बनना है।
0: तो चलो मनी दीदी, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: हेलो बच्चों, चलो बैठो रेडियो के पास क्योंकि परी आ गई है आपको कहानी सुनाने। और आज परी अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने वाली है जो बीरबल की खिचड़ी के ऊपर है। एक दिन बादशाह अकबर के एक अधिकारी ने कड़ाके की ठंडी में एक गरीब आदमी से शर्त लगाई। उसने गरीब आदमी को कहा, यदि तुम तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहो तो मैं तुम्हें 50 अशरफियां दूंगा। गरीब आदमी को तो पैसे की जरूरत थी तो उसने शर्त मान ली और पूरी रात बच्चों पानी में ठिठुरता हुआ खड़ा रहा। अधिकारी ने पहरेदारों की निगरानी में उसको रखा था और रात भर पानी में खड़े होने के बाद वो गरीब आदमी 50 अशरफियां लेने पहुंच गया। लेकिन बच्चों अधिकारी ने तो कहा कि क्या वहां कोई दीपक जल रहा था, तो गरीब आदमी ने कहा हाँ वहां दीपक तो जल रहा था और पूरी रात मैं उसी दीपक की ओर देखता रहा। तो बच्चों अधिकारी की तो नीयत खराब थी, उसने कहा अच्छा तो तुम दीपक से गर्मी लेते रहे रात भर और इसलिए तुम ये शर्त हार गए हो, यहाँ से चले जाओ। बच्चों गरीब आदमी तो बहुत दुखी हुआ, वो बीरबल के पास गया और बीरबल ने सारी बात उसकी सुनी। दूसरे दिन बच्चों बीरबल तो दरबार में गए ही नहीं। महाराज ने सेवकों को कहा कि बीरबल क्यों नहीं आए पता करके आओ। तो बीरबल के घर में जब सेवक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीरबल खिचड़ी पकाने में व्यस्त है, पक जाएगी तो दरबार में हाजिर हो जाएंगे। और बहुत देर तक बच्चों बीरबल तो आए ही नहीं, तो महाराज खुद वहां गए। बच्चों पता है महाराज ने क्या देखा? बीरबल के घर के अहाते का दृश्य देखकर तो महाराज चकित हो गए। बीरबल ने जमीन पर आग जला रखी थी, तीन ऊंचे बांसों पर मिट्टी की हंडी बंधी हुई थी। बच्चों बादशाह ने कहा बीरबल ये क्या बेवकूफी है, जमीन पर आग जल रही है और जमीन पर जल रही आग की आंच इतने ऊपर टंगी हांडियां तक कैसे पहुंच सकती है? बच्चों बीरबल ने क्या जवाब दिया पता है? महाराज यदि तालाब के पानी में खड़ा आदमी तालाब के पास के दीपक से गर्मी प्राप्त कर सकता है तो जमीन पर जल रही आग की आंच से ऊपर बंधी हुई है हंडी क्यों नहीं गर्मी पा सकती? बच्चों महाराज ने बीरबल से कहा बीरबल पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। तब बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई और बादशाह अकबर ने तुरंत अधिकारी और गरीब आदमी को बुलाया। दोनों पक्षों की बातें सुनकर बादशाह ने उस अधिकारी को आदेश दिया कि तुम शर्त हार गए हो इसलिए इसी वक्त इस आदमी को 50 अशरफियां दे दो। अधिकारी को बादशाह का आदेश तो बच्चों मानना पड़ा, उसने गरीब आदमी को तुरंत 50 अशरफियां दे दी और बच्चों गरीब आदमी ने उस बीरबल का बहुत शुक्रिया किया। तो देखा बच्चों कहानी हमें क्या समझाती है, जैसे को तैसा है ना, इसलिए कभी भी ऐसी चालाकियां मत करना। अगर हम चालाकी करेंगे तो हमारे साथ कोई और हमें बेवकूफ बनाएगा या धोखा देगा। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
2: इतना तो
3: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया, और हम पढ़ रहे हैं कहानी। उसका शीर्षक है ऋतुभाषिता, जिसमें महाराज कृष्णदेव राय अपने दामाद के कड़वे वचनों से बहुत ही परेशान है, और उन्होंने रात को ही तेनाली रामा को अपने दरबार में बुलाया है। तो आगे क्या होता है वो मैं आपको बिना देर किए पढ़कर सुनाना शुरू करती हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहर में तेनाली राम महाराज के निर्देशानुसार उनके महल में उपस्थित हो गए। वह अपने साथ एक थैला भी लेकर आए थे। महाराज ने जब तेनाली राम को देखा तो उनके हृदय की शंका का स्वतः निवारण हो गया, और उन्होंने तेनाली राम को अपने पास बिठाया और सुबह की घटना उसे सुना दी कि उनकी पुत्री के हाथ में कांटा छुपा था, फिर भी उनके दामाद उनकी मदद किए बिना ही उनको ज्ञान दे रहे थे कि असावधानी से कार्य करोगी तो यही होगा। सब कुछ सुनने के बाद तेनाली राम ने महाराज से कहा, महाराज जो हो गया उसके लिए पश्चाताप नहीं, असल में आपके दामाद पुस्तकों में ही रमे रहे हैं, उन्हें बाह्य जगत की व्यवहारिकता का बोध नहीं है, जिसके कारण वे वैसी बातें भी कह देते हैं जो लोक व्यवहार के अनुकूल नहीं। लेकिन विश्वास करें, ये समस्या अब एक दो दिन की मेहमान है। अब तक मैं इसी समस्या के समाधान के लिए अपने ढंग से प्रयास करता रहा हूँ। कल शाम को आप अपने दामाद के साथ हमारे घर पधारे, अभी तो थोड़ी देर के लिए उन्हें बुलवाए ताकि मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण दे सकूं। महाराज को तेनाली राम पर विश्वास था, इसीलिए स्वयं जाकर वे अपने दामाद को लेकर अपने कक्ष में आए, जहां तेनाली राम उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज ने अपने दामाद का परिचय तेनाली राम से कराया। फिर बच्चों अब आगे क्या होगा वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा और कहीं जाना नहीं, मैं और परी अभी फिर से आने वाले हैं इस गाने के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: चलो फिर से बैठो रेडियो के पास। अभी हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर, और पिछली कड़ी में हमने आपको पहेली पूछी थी, याद है ना? माखन चोरी मेरी शान, बांसुरी बजाना मेरी पहचान, गोपियों संग खेलू रास, बताओ मैं कौनो खास।
1: और बच्चों, सही जवाब है श्री कृष्ण। हाँ, हम सभी का दुलारा। अभी अभी हमने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया ना, और दही हांडी भी मनाई, इसीलिए परी ने श्री कृष्ण वाली ही पहेली पूछी थी।
0: बिल्कुल बच्चों, तो चलो अब नोट कर लो आज की पहेली। दिन में छिप जाता हूँ, रात में जगमगाता हूँ, आसमान में मोती सा चमकू, बच्चों को हंसाता हूँ।
1: अच्छा, दिन में छिप जाता है, रात में जगमगाता है, और आसमान में मोती के जैसे चमकता है, तो बच्चों बताओ वो कौन सी चीज है? उसका जवाब तो आप जान ही गए होंगे। तो जल्दी से हमें 9414141415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
0: हाँ बच्चों, और भी एक काम करना है, याद है ना? भगवान जी को सारे दिन के कारनामे का सॉरी लिखना है और थैंक यू लिखना है।
1: हाँ बच्चों, तो वो जरूर आप करके भगवान जी की गोद में सो जाना। तो हम भी करते हैं गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आज है अजा एकादशी, तो इस एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वही रिश्ते कभी बुड्ढे नहीं होते। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय आप सभी को देने वाली हूँ। रेसिपी भला कैसे भूल सकते, आज एकादशी है तो मैं आपको फराली रेसिपी ही सिखाऊंगी। खुशनुमा जीवन की भी ढेर सारी बातें करेंगे और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वहां रिश्ते कभी बुढ़े नहीं होते। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी, तो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत ही सुंदर जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। बहू, इस घर की चाबी तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। सास ने इस तरह की शर्त रखी। नई नवेली दुल्हन काव्या ने चौंक करके अपनी सास कमला देवी की ओर देखा। उसने सोचा शायद माँ जी घर के नियम बताएगी, सुबह 4 बजे उठना होगा, सिर पर पल्लू रखना होगा या किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी होगी। काव्या ने धीरे से कहा, जी माँ जी, आपकी हर बात मानूंगी। कमला देवी अलमारी से चाबियों का बड़ा गुच्छा लेकर के आई। उन्होंने उसे काव्या की हथेली पर रखते हुए कहा, ये घर की चाबियां है, लेकिन मेरी शर्त सिर्फ एक है। क्या शर्त है माँ जी? कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में कभी किसी की गलती का फैसला उसी दिन मत करना। काव्या को बात समझ नहीं आई। मतलब? कमला देवी मुस्कुराई। गुस्से में इंसान गलती नहीं देखता, सिर्फ दोषी ढूंढता है। इसलिए इस घर में 24 घंटे का नियम है, कोई भी नाराजगी हो फैसला अगले दिन होगा। काव्या को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह हड़कंप मच गया। ससुर जी की दवा की शीशी फर्श पर टूट गई थी। वह दवा बहुत महंगी थी और उसी दिन लानी थी। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, घर में मतलब उसी दिन लाए थे, तो कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। घर में काम करने वाली बाई घबरा कर बोली, मालकिन मुझसे गलती हो गई। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, आज इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसे लगा इतनी बड़ी गलती पर भी डांट नहीं। काव्या बड़ी हैरान हो गई, आश्चर्य हुआ उसको। अगले दिन कमला देवी ने बाई को बुलाया, कल तुम बहुत डर गई थी ना? बाई रोने लगी, हाँ मालकिन, रात भर नींद नहीं आई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, देखो गलती दो तरह की होती है, एक लापरवाही की, दूसरी इंसान होने की। तुमने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा था, आगे ध्यान रखना, ठीक है? बाई रोते रोते उनके पैर छूने लगी। काव्या ये सब देख रही थी। एक सप्ताह बाद खुद काव्या से बड़ी भूल हो गई। उसने जल्दी में वॉशिंग मशीन में ससुर जी की ऊनी शॉल डाल दी थी। शॉल सिकुड़ गई, उसकी कीमत भी बहुत थी और वह ससुर जी को उनके पिता की निशानी के रूप में मिली थी। काव्या के हाथ कांपने लगे, अब तो माँ जी बहुत नाराज होगी। लेकिन कमला देवी ने वही कहा, आज कुछ नहीं बोलेंगे। उस रात काव्या रोती रही, उसे अपनी गलती बार बार याद आती रही। अगले दिन उसने खुद सास के सामने जाकर कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। देखा बहू, अगर मैं कल ही डांट देती तो तुम सिर्फ मेरी डांट याद रखती, लेकिन एक रात सोचने के बाद तुम्हें अपनी गलती खुद समझ आ गई। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी बोली, डर इंसान को कुछ समय के लिए बदलता है, लेकिन समझ पूरी जिंदगी के लिए। समय बीतता गया, काव्या अब इस नियम को समझने लगी थी। एक दिन अमित ऑफिस से लौटा तो बहुत चिड़चिड़ा था। उन्होंने बिना बात किए खाना खाया और कमरे में चला गया। काव्या को बड़ा बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि आज वह भी उनसे बात नहीं करेगी। इतने में कमला देवी उसके पास आई, क्या हुआ? माँ जी, इन्होंने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। कमला देवी मुस्कुराई, फैसला आज करोगी या कल? काव्या चुप हो गई। अगली सुबह अमित खुद उसके पास आया। माफ करना, कल दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। काव्या को अपनी सास की सीख याद आ गई। अगर उसने उसी रात झगड़ा कर लिया होता तो बात बढ़ जाती। उसने मुस्कुरा कर कहा, आप चाय पीजिए, बाकी बातें बाद में। कुछ महीनों बाद पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। पूरा मोहल्ला उस बेटे को कोस रहा था। काव्या भी बोली, कैसा बेटा है। लेकिन कमला देवी ने कहा, पूरी कहानी जाने बिना किसी पर फैसला मत करो। 2 दिन बाद पता चला कि बेटा खुद कैंसर से जूझ रहा था और इलाज के लिए दूसरे शहर जा रहा था। उसने माँ को अकेला छोड़ने के बजाय ऐसी जगह रखा था जहाँ उनकी देखभाल हो सके। काव्या का सिर झुक गया। कमला देवी ने कहा, बहू, आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। उस दिन के बाद काव्या ने लोगों पर तुरंत राय बनाना छोड़ दिया। साल बीत गए, कमला देवी बुढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने वही चाबियों का गुच्छा फिर से काव्या के हाथ में रखा। आज से ये घर पूरी तरह तुम्हारा है। काव्या की आंखें भर आई। माँ जी, आपने मुझे चाबियां तो पहले ही दे दी थी। कमला देवी मुस्कुराई, नहीं बहू, उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ लोहे की चाबियां दी थी, आज मैं तुम्हें इस घर के रिश्तों की चाबी दे रही हूँ। वे कौन सी? कमला देवी ने धीमे से कहा, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझने से पहले फैसला नहीं सुनाते, वही रिश्ते कभी बूढ़े नहीं होते। कुछ वर्षों बाद जब काव्या खुद सास बनी, उसकी बहू से गलती से उसकी सबसे प्रिय चाय की केतली टूट गई। बहू डर के मारे रोने लगी। काव्या ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटी आज नहीं, इस घर में किसी की गलती का फैसला अगले दिन होता है। बहू हैरान होकर उसे देखने लगी। काव्या की आंखों में अपनी सास की छवि तैर रही थी। उसे समझ आ गया था कि घर दीवारों से नहीं बल्कि उन नियमों से बनते हैं जो रिश्तों को टूटने से बचाते हैं। उस दिन से उस घर में एक परंपरा शुरू हो गई, गुस्से में कभी फैसला नहीं होगा, पहले एक रात गुजरेगी फिर बात होगी। और शायद यही वजह थी कि उस घर में बर्तन कभी कभी टूटते थे लेकिन रिश्ते कभी नहीं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, यह हर एक के लिए है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुरंत फैसला नहीं लेना है। जोश में अक्सर हम होश गवा बैठते हैं, इसलिए तुरंत फैसला नहीं लेवे, कम से कम 24 घंटे के ऊपर डाल देवे। तो हो सकता है कि एक घर में नहीं, हर घर का रिश्ता बुढ़ा नहीं होगा और मजबूत होगा, सभी खुश रहेंगे। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार मैं हूं हरमीत सिंह
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माय गॉड
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो क्या करेंगे? मंदाग्नि देखिए किसे कहते हैं आपको पता है? पेट और पाचन की समस्या होती है ना, तो उसको मंदाग्नि की तकलीफ कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो देखिए, पहले आधा किलो अदरक अच्छी तरह से उबाल लीजिए, फिर उसे छील करके पीस लीजिए और उसमें 100 ग्राम हल्दी मिला दीजिए, ठीक है? पीस करके, मतलब हल्दी पाउडर मिलाना है। इसके बाद इसमें शेर भर पुराना गुड़ मिलाकर रख दीजिए। इस औषधि को रोज आप 3-3 ग्राम की मात्रा में लीजिएगा। इससे अग्नि दीप्त होती है और पाचन शक्ति बढ़ाती है और साथ ही साथ खांसी भी दूर हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो पहले आधा किलो अदरक अच्छी तरह से उबाल लीजिए, फिर उसे छील करके पीस लीजिए और उसमें 100 ग्राम हल्दी पाउडर मिला दीजिए। इसके बाद मतलब हल्दी पाउडर, अगर कच्ची हल्दी है तो अच्छी बात है, उसके पेस्ट करके मिला दीजिए, ठीक है? फिर आप पुराना जो गुड़ है वो शेर भर लीजिए, मतलब शेर बोले तो आधा किलो, ठीक है, इसमें मिला दीजिए और इस औषधि को 3-3 ग्राम की मात्रा में रोज लीजिएगा। इससे अग्नि दीप्त होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ खांसी भी दूर होती है। अब मैं दूसरा और भी सुंदर उपाय बता रही हूँ। भूख कम लगने पर पेट की गैस, भोजन के प्रति अरुचि, भूख कम लगना, कब्ज, जीभ व गले में बलगम चिपटना, ऐसी स्थिति में लगभग 5 ग्राम अदरक महीन काट करके आवश्यकता के अनुसार इसमें नमक डाल करके 1-1.5 सप्ताह रोज आप इसको खाइए तो ये सारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर भूख कम लगती हो, पेट की गैस हो, भोजन के प्रति अरुचि हो, कब्जियात की शिकायत हो, जीभ व गले में बलगम चिपटता हो, तो ऐसी स्थिति में लगभग 5 ग्राम अदरक बारीक काट करके आवश्यकता के अनुसार उस पर नमक डाल करके 1-1.5 सप्ताह तक रोज आप खाइएगा, इसका सेवन करिएगा, तो इन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर चोट लग गई हो तो क्या करेंगे? अदरक पीस करके गर्म कर लीजिए, इसके दर्द वाले स्थान पर लगभग 1/2 इंच, मतलब मोटा ही, ठीक है, इतना मोटा रखना है, लेप करिए और पट्टी बांध दीजिए। लगभग 2 घंटे बाद लेप को हटाइए और सरसों का तेल लगा करके सेक कर लीजिए। इस प्रक्रिया को लाभ होने तक मतलब आप रोज करिए। अगर चोट लग गई हो तो अदरक पीस करके गर्म कर लीजिए, फिर इसके दर्द वाले स्थान पर लगाइएगा, थोड़ा सा 1/2 इंच मोटी ऐसे लगाना है, ठीक है, फिर पट्टी बांध लेना है। लगभग 2 घंटे बाद लेप को हटा करके सरसों का तेल लगा करके इसका हल्का सा सेक कर लीजिए, ठीक है, तो इस तरह चोट वाला स्थान भी ठीक हो जाएगा। अपच की समस्या है तो भोजन के उपरांत अदरक और नींबू के रस में सेंधा नमक मिलाकर सुबह सुबह पीते रहिए तो अपच की समस्या दूर होगी और भूख बढ़ेगी। कान का दर्द है तो अदरक का रस किंचित गर्म करके कान में डालिएगा, कान का दर्द तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। कान का दर्द है तो आप अदरक का रस हल्का सा गर्म करके कान में डालिएगा, इससे 1-2 बूंदी डालनी, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो कान का दर्द में तुरंत ही राहत मिलेगी। दंत शूल है मतलब दांतों में दर्द है तो अदरक के टुकड़े दांतों के बीच में चबा कर रखिएगा, इससे दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। दांत का दर्द है तो अदरक के टुकड़े दांतों के बीच में दबा कर रखिए, इससे दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, निमोनिया है तो अदरक के रस में 2-1 वर्ष पुराना घृत और कपूर मिलाकर गर्म करिए और लेप करिए, इससे तुरंत ही लाभ मिलेगा। अदरक के रस में 1-2 साल पुराना घृत बोले तो घी और कपूर मिला करके गर्म करके लेप करिए, इससे निमोनिया में काफ़ी राहत मिलेगी। तो सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या था? श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या है? तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यहीं पर एक कल्पना लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदवंतहीन सी आशा हूं जो सबसे सुंदर काव्य रचे। मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, बात करेंगे। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो,
0: कैसे हैं आप?
1: आवाज आ रहा है
0: जी,
1: आवाज आ रहा है। हेलो,
0: तो अच्छी बात है ना, आपको सुनाई दे रहा है?
1: आपको सुनाई दे रहा क्या?
0: हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ।
1: लाइव है क्या, ऑन एयर है या ऑफ एयर?
0: अभी ऑन एयर बात कर रहे हैं आप। और आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम बताना है। विषय है, ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान के रूप में वो हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: तो सबसे पहले आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से नमस्कार, और सभी का स्वागत और सुविचार और विषय बहुत अच्छा है। मैं थोड़े में विषय के बारे में बोलता हूँ और सवाल का जवाब तो आप एयर दूंगा। देखो, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, हम उससे ध्यान योग लगा सकते हैं, उससे मिलन भी कर सकते हैं। आत्मा आत्मा अभिमानी रूप में उनसे मिलन भी कर सकते हैं, शक्तियां ज्ञान गुण ले सकते हैं, लेकिन वो हमको दिखा नहीं है। तो वो अगर हम ईश्वर के प्रति आस्था, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा रखेंगे तो हमें शक्ति तो देता ही है, और किसी न किसी रूप में कोई निमित्त बनाकर संकट में हमें कोई भी व्यक्ति आके, ईश्वर जैसा आके वो हमको साथ दे देता है। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो और ईश्वर से ध्यान योग करो, तो वो निमित्त बनाकर किसी ना किसी को जरूर भेजता है और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। और सभी को नमस्कार, ओम शांति दीदी।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, विषय भी बहुत ही सुंदर है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। आज का प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के धनुष का और चक्र का नाम आपको बताना है, और विषय बहुत ही सुंदर है कि देखिए, ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान लाते रहते हैं। हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ चट्टाना से, कैसे हैं जी?
0: हाँ जी, नमस्कार सुरेश भाई, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: और बताओ, तो आज हमारे गुजरात में आज लास्ट सोमवार है सावन महीना का।
0: जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि आज एकादशी हो गई है।
2: हाँ, सोमवार भी है और ग्यारह भी, दोनों साथ में है एकादशी। और
0: जी,
2: तो चलो दोनों की शुभकामनाएं सबको, और बहुत अच्छा विषय तो हमारे सुभाष भाई ने कई सारी बातें बता दी हैं। तो बस मैं भी यही दीदी कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ न कुछ तो रूप में हमारे पास आ ही जाता है। और कोई भी हमारा काम, कोई हम कोई काम में अटक गए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, तो कुछ न कुछ तो लोग भगवान के रूप में आ ही जाते हैं। तो इसे हम भगवान ही मानते हैं कि भाई चलो हम कोई भी मदद आ जाती है तो हम मानते हैं चलो भाई भगवान ने हमारा काम कर दिया
0: जी,
2: तो हम इसे भगवान ही मान लेते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो ईश्वर तो दिखाई चाहे कुछ भी ना दे, लेकिन हमारे साथ ही रहता है। कोई भी संकट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो बस इसका ईश्वर का कोई भी काम हो तो ईश्वर का धन्यवाद मान ही लेना, क्योंकि ईश्वर का धन्यवाद मानने से भगवान भी खुश हो जाता है कि चलो भाई हमारा भक्त हमको याद तो कर रहा है किसी न किसी बात में
0: जी।
2: तो बस हम तो दीदी एक ही कहना चाहे कि परमात्मा के साथ रखिए, परमात्मा से ही जुड़ते रहिए, तो परमात्मा आपका हर काम अच्छी नीति से रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ रहेगा
0: जी।
2: नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी अपने बात को रखी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है। आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय प्रैक्टिकल है और हर एक के जीवन में अनुभव होता ही होगा, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी कि बस अब तो हम चारों खाने चित्त हो गए, फिर एक प्रकाश की किरण आती है, कोई ना कोई बंदा हमारे लिए तैयार रहता है कि आप क्यों घबराते हो, ये ऐसा करो, ऐसा करने से आपका ऐसा हो जाएगा, और सचमुच में वैसा हो जाता है, खुशियां लौट आती है, ऐसा होता है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसी तबीयत है आपकी अब?
3: बस बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ऐसे बीच में दो चार दिन पथरी की बहुत तकलीफ हुई थी, तो अभी दवाई वगैरह ली तो ठीक है, और बिल्कुल आज प्रोग्राम सुन रहे है, विषय भी बहुत अच्छा आपने रखा है दीदी। बिल्कुल, जैसे कि हम किसी वृक्ष के हड़ में नीचे पानी डालते हैं तो पान तक और फल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम निस्वार्थ सेवा भाव रखे ना तो भगवान तक पहुंच ही जाती है और वो अच्छे फल देते हैं
0: जी।
3: और देखो ना, जो नेपाल में इतनी बड़ी बाढ़ आई और हजारों लोग हताहत हो गए, तो कई लोग ऐसे निस्वार्थ थे तो सेवाएं की और कर भी रहे हैं, और जो वीडियो में देखा तो कई कई लोग तो नौ नौ दिन से बाहर निकले, नौ दिन तक भूखे प्यासे रहे फिर भी जिंदा बाहर
0: जीवित है
3: निकले
0: जी। सही है।
3: तो ऐसा है कि कहते हैं ना कि हम जीवन में अकेले आएंगे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन साथ में क्या लेके जाएंगे हम
0: जी।
3: कोई पैसा धन जो भी हम बीच में कमाते हैं वो आखिर में लेके तो नहीं जा सकते
0: जी। बिल्कुल।
3: तो कुछ कुछ ऐसा जो कार्य करे और कुछ सेवा भाव दया भाव रखे ना दीदी, तो बिल्कुल भगवान भी हमारे पर प्रसन्न रहेंगे
0: जी।
3: और बस ये बात है दीदी,
0: इस तरह ऐसे विकट परिस्थिति में हम लोगों की मदद करके भी दुआएं कमा सकते हैं निस्वार्थ भाव से।
3: मेरा भी यही कहने का मतलब है
0: जी।
3: और कई लोग क्या करते हैं कि सेवा के नाम पर जो स्वार्थ ढूंढते हैं, और दीदी पहले मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या तो एक रुपया भी कम नहीं लेते, और ज्यादा से ज्यादा लूटने की कोशिश करते हैं, और वही लोग दान धर्म पुण्य करने की ये करते हैं, तो फिर क्या फायदा दीदी। एक तरफ तो हम किसी से लेके ये वो कुछ देखते ही नहीं, और फिर दान धर्म पुण्य करके ही कोई फायदा नहीं, एक तो ये भी बात है दीदी
0: जी।
3: ये आप क्या कहेंगे इस बारे में?
0: बिल्कुल कोई ठीक है, जैसे हाँ पैसे वाले लोग खरीदने आ रहे हैं उनका आप कम नहीं करो चलेगा, लेकिन गरीब है, गरीब की स्थिति वैसे ही पता चल जाते हैं कि ये गरीब है या मध्यम है या पैसे वाले हैं, तो गरीब के ऊपर तो हम करना ही चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, दो रुपए कम कर दो।
3: सही बात है। वैसे ही अगर उनके मन में दान धर्म पुण्य का जो भाव है तो फिर थोड़ा सा देखना लोगों की परिस्थिति भी देखकर मदद करनी
0: चाहिए। बाकी क्या
3: है,
0: बहुत जनों की आदत है फिक्स रेट की, तो वो अच्छा है, वो मिनिमम कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसमें वो धोखाधड़ी नहीं करते, जो फिक्स रेट वाले कि भाई बस इतने लेने हैं तो इतने ही लेने हैं, ठीक है। बहुत जने क्या है कि चार गुने बता करके फिर थोड़ा कम कर देते तो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा कम कर दिया, वो भी बात सामने आ जाती, पता चल जाता है वो भी।
3: हाँ वही तो
0: जी।
3: तो चलो ये बात है, तो दीदी
4: और भी बहुत अच्छा विषय है, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों और भी जुड़े और अपने भी प्रतिक्रिया भाव व्यक्त करें मेरी।
0: जी जी, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा।
4: जी जी जी, जय
0: जी,
4: जी नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी आज के विषय में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम आपको बताना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आप दोनों में जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो SMS भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। तो आइए यहाँ पर हम एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम आपको बताना है। विषय बहुत ही सुंदर है। ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते जो हमारे जीवन में खुशी या सुख अथवा समाधान लाते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकल विषय है, हर एक का अनुभव होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम जरूर आया होगा, तब आपने आशा छोड़ दी होगी कि अब तो ये काम होने वाला नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं और कौन करेगा मेरी मदद। हम हताश हो जाते, निराश हो जाते। उस समय अचानक कोई आकर के हमें कह देता है कि क्या हुआ, अरे इतना सा काम है, क्यों घबरा रहे हो, हम कर लेंगे। और हमारी खोई हुई खुशियां लौट आती कि अच्छा आप कर लोगे, कैसे कर लोगे, अरे आप चिंता मत करिए हम कर लेंगे, ऐसे नहीं इसको ऐसे करिए तो हो जाएगा। अरे रास्ता बता देते वो भी बहुत बड़ी बात है। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें इस कार्य को कैसे हम पूरा करेंगे। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।

0: हाँ तो तुरंत ही बना देते हैं।
1: बना देता।
0: हाँ जी।
1: तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, सारंग हाथ लेके सुदर्शन चक्र साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
0: क्या बात है। चले बहुत अच्छा। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे?
1: विषय के बारे में है कि मालिक ईश्वर अल्लाह से अपने को श्रद्धा रखनी है, और कोई भी काम हो तो मालिक को ध्यान, ईश्वर को, अल्लाह को ध्यान में रख के अपन कोई भी काम करेंगे तो अपन निष्फल नहीं जाएंगे, अपना सफल ही काम होगा।
0: नहीं देखिए, विषय से थोड़ा सा आप अलग जा रहे हैं। ईश्वर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इंसानों के रूप में अपनी पहचान देता रहता है। अर्थात ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं जो हमारे जीवन में खुशी या सुख या समाधान का मतलब लाते रहते हैं।
1: सही बात है आपकी। तो ईश्वर अल्लाह है ना, कोई ना कोई तो अपना काम में जरिया बना देता है।
0: जी
1: जी हाँ। किसी के कोई कोई इंसान के रूप में, कोई अपने भाई के रूप में, कोई अपने पड़ोसी भाई के रूप में, कोई अपना मित्र के रूप में है, कोई ना कोई काम में रुकावट अपने को नहीं आती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये जरिया बना देता है कुदरत कोई ना कोई तो।
0: जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई।
1: जी ओम शांति।
0: ओम शांति। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। तो विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है कि कोई भी कार्य रहता नहीं है किसी के बिना, है ना। मैं नाराज होकर के चली भी जाऊंगी तो भी मेरी जगह कोई दूसरा ले लेगा, लेकिन वो काम रुका नहीं रहेगा। तो ऐसा ही होता है। और देखिए कभी कभी हम सोचते ही रहते हैं कि अब क्या होगा, ये कार्य मुझे नहीं आता है, अब कौन करेगा, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल जाता है। हेलो।
2: हाँ दीदी ओम शांति।
0: हाँ जी सगुना बहन नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्ते, बहुत अच्छे हैं
0: जी।
2: आज का विषय भी बहुत अच्छा है। परमात्मा किसी न किसी रूप से हमारी मदद करते ही है
0: जी।
2: हमारा तो बहुत अनुभव है दीदी। हाँ एक अनुभव है, जब भी हम हमारे रेडीमेड कपड़े का धंधा था
0: जी।
2: हाँ तो अहमदाबाद से हम माल लेके आते थे
0: जी।
2: और 30-40 किलोमीटर जितना होगा हमारे गांव से, वो पार्सल या गाँव बोलते, हाँ वहाँ पर आए और हमारी गाड़ी खराब हुई दीदी।
0: अच्छा।
2: हाँ तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप है ना गाड़ी पहले खराब हुई, आप दूसरे रिक्शा में चले जाओ माल लेके और मैं आता हूँ। जब कोरोना का समय चलता था दीदी
0: जी।
2: हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ, मैं तो गई रिक्शा में माल लेके, फिर मेरे को टेंशन आ गया, मैं अभी अकेले कैसे आएंगे, गाड़ी खराब हो गई है और कैसे आएंगे। तो मैं रिक्शा में गई और 10-15 मिनट हुई और वो आ गए
0: जी।
2: मैं बोला इतने जल्दी कैसे आ गए, तो एक भाई थे
0: जी।
2: तो भाई ने उन्होंने उनको मदद की और मुंह ऐसे बांधे लगा, ऐसे डर लगे ऐसा भाई था, तो भी उनको बोला कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है भाई जी। तो बोले कहाँ जाना है, तो बोलते कि मेरे को जुटाना जाना है। तो बोले क्यों चिंता करते हैं, मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो भाई ने छोड़ दिया यहाँ पर आके, फिर हमने उनको चाय नाश्ता कराया। भाई बोलते नहीं नहीं मैं जाऊँ नहीं, मैं बोला चाय नाश्ता करके जाऊँ, आपने बहुत मदद की है, जैसे हमारी मदद की ऐसी परमात्मा आपकी करेंगे मदद। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे तो एक दूसरे के काम आना जरूरी है
0: जी।
2: फिर ऐसे बात निकली तो हमारे जाके ही थे और बहुत हमारे, मैं बोलती हूँ कि बाबा के ऐसे कितने अनुभव हुए मेरे
0: जी,
2: बहुत अनुभव हुए ऐसे
0: जी,
2: बाबा
0: जी,
2: मदद तो करते ही है हमको
0: बिल्कुल।
2: तो गांव में हमारे देखो पाठशाला भी चल रही है, हम तो जाते है कभी कभी, नहीं भी जाते है कि थोड़ा ऊपर नीचे स्थिति होती है पाठशाला में
0: जी।
2: एक दीदी है तो बोलते तो हर रोज मुरली चलाते हैं, तो हम बोलते हैं कि कभी कभी किसी को दिया करो
0: जी,
2: तो मुरली चलाना। बाबा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी पहले सबको आगे रखा है
0: जी।
2: हाँ तो हम बोलते हैं कि भाई आप दूसरे को भी दे दो, हम भी कभी मुरली चला लेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं अरे कोई बात नहीं, तो हम तो बोलते हैं कि बाबा तुम सबको

0: नहीं रखते
1: जी,
0: अब ये सब चल रहा है, फिर भी हम जाते, इससे नहीं जाते, लेकिन उसकी याद तो हमेशा रखनी चाहिए, भगवान की याद। देखो जीवन में एकदम अंधेरा है, मैं तो यही सबको बोलती हूँ कि सदा परमात्मा को याद करिए, उसको साथी बनाइए, बहुत हमारा अच्छा ही होता है। शांति
1: जी, बहुत बहुत आभार हूँ शांति सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, बहुत अच्छी बात बताई है, प्रैक्टिकल अपनी ही बात बताई है, तो बिल्कुल सही है। हर एक के साथ का अनुभव होगा, ऐसे नहीं कि किसी के साथ अनुभव नहीं हुआ होगा। चलिए मैं अपना ही सुना देती हूँ कि एक बार मुझे ट्रेन से कहीं जाना था और घर से ही लेट हो गई, मैंने कहा आज तो ट्रेन मिस हो जानी है। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
2: हाँ दीदी, तो आप जो बात कर रही थी, तो मेरा भी एक बहुत बड़ा कष्ट जो याद आ रहा है अनुभव,
1: कि
2: जगदीश मेरा जो बड़ा बेटा है ना, तो वो जब पैदा हुआ था कुछ दिन ही हुए थे, तो बहुत बीमार हो गए, तो हम अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया कि चलो अब तो ये वो हो गया है, तो आप घर पर सीधे चले जाइए।
1: अच्छा।
2: तो हम दवा खाने से बाहर आकर बैठे, हताश निराश, आंखों में भी आंसू थे वो, तो अचानक एक भगवान के रूप में रिक्शा वाला आया और कहा कि चलो आप रिक्शा में बैठो, मैं एक अच्छा दवा खाने में के ले जाता हूँ। तो हम बैठ गए, कुछ सूझ भी नहीं रहा था, तो दवा खाने में उतारा, पैसा भी नहीं लिया और जल्दी इमरजेंसी में दाखिल किया, तो बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद ठीक हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। अगर शायद मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो रिक्शा वाला भगवान के रूप में न आता और हमें उस अस्पताल पर न जाता तो क्या होता। तो एक तो ये बिल्कुल आपने जो विषय है ना, भगवान के रूप में कोई भी अगर हम भी कोई ऐसे मदद करे जो भगवान के जरिए, तो भगवान भी किसी ना किसी को भेजेगा जरूर। दीदी
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी जी जी,
1: बहुत सुंदर आपका भी अनुभव है। हर एक का ऐसा कोई ना कोई अनुभव होगा। तो जैसे मैंने भी ट्रेन का कह रही हूँ कि अब तो आज तो ट्रेन मिलनी नहीं है और जाना बहुत जरूरी था, मैंने कहा जाने दो, भगवान है, ईश्वर करेगा सो सही, निकलो तो सही घर से निकले। और सचमुच ट्रेन में 10 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन ऑलरेडी ट्रेन 5 मिनट लेट थी, फिर कुछ कारण हो गया कि वो ट्रेन रुकी हुई थी, और जैसे ही ट्रेन में बैठी और ट्रेन रवाना, तो आश्चर्य हुआ कि हे भगवान आप कैसे मदद करते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे मतलब कितनी खुशी होती है कि अब ये चीज़ हो ही नहीं सकती और वो हो जाती है, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो आपके हमारे सभी के होंगे। हेलो,
3: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ जब एंगे।
1: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम।
3: अच्छा, वो उसका ये चक्कर का तो बताया था
1: जी,
3: और इनके जो धनुष का नाम है सारंग।
1: अच्छा ठीक है, देखते हैं है ना।
3: तो
1: और
3: इसमें कोई भूल, हाँ वो भूल बोलते बोलते भूल गया था मैं।
1: कोई बात नहीं, और विषय के बारे में आप कुछ कहेंगे?
3: विषय के बारे में तो अभी बतावे कि ईश्वर तो अपने बोले तो जो भी अपन करते हैं काम करते हैं उसमें ईश्वर का ही साथ रहता है, लेकिन ईश्वर के ऊपर ही भरोसा रखो, सब कुछ करने वाला तो वही है। और जब काम भी अपनी ईश्वर कोई भी वाले से अपने कोई भी तकलीफ में मदद करता तो ईश्वर ही करता, तो ईश्वर को प्रति जागरूक और ये और अच्छे भगवान में विश्वास रखो तो सब कुछ है तो होता है। मैं आगे तो क्या बोलूँ मैं।
1: जी जी जी,
3: ओके सर,
1: बहुत बहुत आभार आपका बुरा राम जी। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, ईश्वर में विश्वास होगा तो किसी न किसी को निमित्त बना देंगे, और हमें पता ही नहीं चलने देगा कि कौन निमित्त बन के हमारी मदद कर रहा है, तो ऐसा होता है। एक बहन का फोन आया था, वो बता रहे थे कि वो चलते चलते रास्ते में गिर गए, ठीक है, और जैसे ही गिरे उनके भी फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तो उठने की ताकत नहीं रहती, अब करे तो क्या करे। जितने पहचान वाले देखे तो सोचा कि पहचान वाले आएंगे पास में, लेकिन उन्होंने देखा अनदेखा कर दिया, और कुछ गांव के ही लोग दौड़ के आए और उनको मतलब खड़ा भी किया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो बोल रहे कि मेरे लिए तो वही भगवान है जिन्होंने समय पर मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर तो घर वालों को फ़ोन करके सभी आ गए। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई काम आता है तो उनको कभी भूल नहीं पाते हैं, और ईश्वर को तो खैर कभी नहीं भूल पाते, धन्यवाद तो ईश्वर का ही देते कि भगवान आपने ऐसे समय में इनको भेजा कि सचमुच मेरे को एक नया जीवन मिल गया, ऐसे फीलिंग आती है ना। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा बहुत जनों के साथ होता होगा, कभी काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, आता ही नहीं है कैसे करे क्या करे, और कोई ना कोई निमित्त बन जाता है कि चलो आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम किस लिए, हम आपको सिखा देते हैं, और वो काम इम्पोर्टेंट होता है और वो हो जाता है। तो हर एक का अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं कि भगवान को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह समस्याओं से गिर जाते हैं और कोई समस्याओं के बीच समाधान ले आता है तो उसको हम कभी नहीं भूल पाते हैं, और भूलना भी नहीं चाहिए, और उस समय हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते और देना भी चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, और हरेक के होंगे अनुभव, तो सभी के जीवन में कहते हैं ना अनुभव से ही परिपक्व बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बस जैसे बेवक्त कोई हमारी मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए। प्रेरणाएं तो ऐसे ही मिलती है ना, हमें भी प्रेरणा ले करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वो भी विपत घड़ी में तो इंसान ही इंसान के काम आता है, तो बस एक गांठ बांध दीजिए कि हमें भी इंसान की मदद करनी ही है। लेकिन आजकल तो सोच समझ करके करना है, आजकल बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं कि गए मदद करने और कुछ हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है, वो भी खैर सिचुएशन से पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है, कोई जानबूझ करके परेशान करता है तो वो मदद नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें भी आजकल परख शक्ति की आवश्यकता है, बाकी मदद करना बहुत ही अच्छी बात है, ईश्वर का मदद करने वालों के लिए धन्यवाद दो उतना कम है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आशियाना के किचन में, आज आपको फराली आइटम सिखाएंगे क्योंकि आज है अजा एकादशी। एकादशी का उपवास तो रखते ही है माताएं बहने, तो चलिए आपको फराली आइटम सिखाते हैं, फराली हांडवा। ठीक है, आजकल तो व्रत उपवास इतने इजी हो गए कि पूछे मत, जो फराल लेते हैं उनके लिए, कोई तो निराहार भी रहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जो फराल खाते हैं वो सोचते हैं कि अरे आज क्या बनावे क्या नहीं। तो आजकल तो बहुत ऑप्शंस है, फराली इडली बना सकते हैं, फराली हांडवा बना सकते हैं, फराली चीला बना सकते हैं, फराली पकौड़े बना सकते हैं, फराली आलू बड़े बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हांडवा सिखा देते, कभी इडली भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हांडवा के लिए आप सामग्री ले लीजिएगा कुट्टू का आटा, कुट्टू जिसको राजगिरा कहते हैं, ठीक है, राजस्थान में तो कांगनी भी कहते हैं इसको। तो राजगिरे का आटा ले लीजिए, फिर आप थोड़ा सा लीजिए सिंगाड़े का आटा, ठीक है, फिर थोड़ा सा आप लीजिएगा मोरैया, तो मोरैया को भी पीस करके इसका आटा कर लेना है, तो मोरैया का आटा। फिर आप लीजिएगा लौकी, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, तेल, नमक, अदरक ले सकते हैं आप, दही लीजिएगा, हल्के से शक्कर भी लीजिएगा, तो तिल लेना है आपको, सिंगदाने लेना है। ठीक है, फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लीजिए राजगिरे का आटा, थोड़ा सा सिंगाड़े का आटा, आप लीजिए ये जिसको मोरैया बोलते हैं, मोरैया का आटा लीजिए, लौकी लीजिए, लौकी जिसको गुजराती में दूधी कहते हैं, फिर आप लीजिएगा सिंग दाने, तिल, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, फराली जो सेंधा नमक आता है वो लीजिएगा, तिल और सिंग दाने लेना है, तेल लेना है। ठीक है, अब बना, हाँ, और दही और मिठास दोनों ही। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, ये तीनों ही प्रकार के आटे को छान करके मिक्स कर दीजिए और इसमें दही डाल करके और थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसको घंटों भर भिगो के रख दीजिए। ठीक है, अब आप इधर काम कर लीजिए, लौकी की धुलाई करके, लौकी के छिलके निकाल कर कद्दूकस करके फिर इस मिश्रण में डाल दीजिए, हरी मिर्च की धुलाई कर दीजिए, धनिया साफ कर लीजिए, धुलाई कर लीजिए, हरी मिर्च अदरक की पेस्ट बना लीजिए। और अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल डालिए, तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरे का तड़का लगा दीजिए, थोड़ा सा जीरा डालना है, फिर आप तिल डाल दीजिए, सिंग दाने डाल दीजिए, ठीक है, और मीठा नीम तो आप डाल ही सकते हैं। तो ये सब डाल करके इस छोक को आप इस मिश्रण में डालिए, जो आपने आटा भिगो रखा है उस पर खटास मिठास भी डाल देना है, नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, बाकी के अदरक हरी मिर्च की पेस्ट आप वगार में डाल दीजिए छोक में, ठीक है, और यह तड़का इसमें डाल दीजिए आटे में और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और इस कढ़ाई को वापस गैस पर रखिए, गैस बंद मत करिए, धीमे आंच कर लीजिए और इसको जल्दी से आप हिला दीजिए, इसमें कद्दूकस की हुई लौकी भी डाल दीजिए, मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए, ठीक है, और फटाफट हिलाइए। हिलाने के बाद आपको ऐसा रखना है, देखिए हांडवे का कैसा रखते हैं, जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं ना ऐसा गोल रखते हैं, ऐसा गोल आपको रखना है, ठीक है, तो आप जो साइज पसंद करते हैं उस साइज के अनुसार आप चम्मच भर के कढ़ाई में छोड़ दीजिए और फिर ऊपर से थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और झाली वाला ढक्कन ढक दीजिए, क्योंकि इसमें भाप नहीं बननी चाहिए, थाली ढकेंगे तो भाप बनेगी, भाप बनेगी तो पानी की बूंदे अंदर गिरेगी तो हांडवा नीचे से भी चिपक जाएगा और वो कड़कपन नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए आप झाली वाला ढक्कन लगाइए, फिर आप देखिए 5-7 मिनट में धीमी आंच पर ही इसको रहने दीजिए, 5-7 मिनट 10 मिनट बाद आप देखिए एक खुरपी की मदद से आप उसको निकालने की कोशिश करिएगा, अगर वो चिपका हुआ है इसका मतलब कच्चा है तो फिर से उसको थोड़ा सा सीजने दीजिए, फिर आप हल्के से कुर्पी को चारों तरफ तीखी धार से थोड़ा सा उसको हटाने की कोशिश करिए, अगर वो
नीचे से पक गया है तो हट जाएगा, ठीक है, आसानी से उसकी पलटी मार दीजिए। पलटी मारने के बाद थोड़ा सा तेल की बूंदे चारों तरफ डाल दीजिए और फिर से ये थाल भी अच्छी तरह होने दीजिए, और जब अच्छी तरह हो जाए तो निकाल दीजिए और दूसरा हांडवा डाल दीजिए, दूसरे हांडवे का डंगेला, ठीक है, इसी तरह चम्मच भर भर के आपको डालना है। तो ये स्वादिष्ट हांडवा बन गया है। हरा धनिया भी आपको मिश्रण में ही डाल देना है, ठीक है। सारा मसाला मिश्रण में डालने के बाद इस तरह आपको करना है, जो आपने तड़का लगाया वो तड़का भी पतीली में ही डालना है, अच्छी तरह हिलाना है। फिर आप थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में तेल डालते जाइए और एक दो चम्मच जो साइज पसंद करते हैं वो डंगेला आप डालते जाइए कढ़ाई में। तो ये बन गया हांडवा, बहुत ही स्वादिष्ट फराली हांडवा है। तो आप अगर बोर हो गए हैं कि कौन रोज रोज साबुदाना की खिचड़ी बनावे, कौन रोज मोरैया बनावे, कौन रोज आलू टमाटर की सब्जी और राजकीरा की पूरी बनावे, क्योंकि ये सारे कॉमन हो गए हैं, तो ये नई नई चीजें भी आप बना सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव को भोग लगाने के बाद ही खाना है, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, श्री कृष्ण जी का धनुष और उनके चक्र का नाम आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज का कार्यक्रम था, आपने सुना ही है, काफी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। अगर मंदाग्नि की तकलीफ है तो नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो रेसिपी में जो आपको हांडवा बनाना सिखाया है, गुजराती हांडवा जरूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि श्री कृष्ण जी के धनुष और चक्र का नाम क्या था। तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम सुनाना चाहूंगी। सगुना बहन सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और सुरेश भाई धानेराव से, भूरा राम जी ओर से, फिरोज भाई पालनपुर से, दीपा जी कपासन से, अलका जी कपासन से, ममता जी सूरत से। अभय सिंह जी ने आधा जवाब सही दिया है, आधा गलत है। और किरण जी जयपुर से, इनका भी आधा जवाब सही है आधा गलत है। इन दोनों ने आधा जवाब तो सही दिया है, चक्र का नाम सुदर्शन, लेकिन धनुष का नाम इन्होंने गांडी कहा है। गांडी तो अर्जुन के धनुष का नाम था, श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम था सारंग, और चक्र है सुदर्शन। तो आप सभी ने सही जवाब दिया जिन्होंने, उनके लिए मैं ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी। और आप जो भी विषय में जुड़े उसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, हमारा सबसे अच्छा मित्र वही है जो हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमारे अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को ही देखता है, वही सच्चा मित्र है। अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

इस बंगले के चार बरुज है बतर बना कंगूरा, 360 चिनावन लाग्या जब से हुआ चो फेरा, बंगला खू

जिसमें नारायण बोले, इन नयना नारायण देखे सुरत राम से ठागे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, दिल की दुविधा भागे। बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले, हो बंगला खूब बना महाराज जिसमें।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हों या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाद्यदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्नि कन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
4: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
5: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
4: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
5: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहाँ भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
4: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
5: तुम्हारी आंखों की ये चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
6: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
4: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
6: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
4: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
5: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक न रह जाए।
4: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था। तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
3: मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
3: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
3: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, तुम मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।

0: घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
2: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
3: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
2: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
4: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेशवाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
3: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
4: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
2: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
3: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
4: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
3: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
2: क्या क्या किया था उन्होंने?
3: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
2: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनके कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
0: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
5: कैसे दादा?
0: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी।

0: के पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
1: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
2: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
0: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था, फिर भी प्रीति को घर में नजर बंद कर दिया गया।
3: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
1: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
3: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
0: प्रीति लता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सही में इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुँचाने के लिए एक मंच देते हैं, जिसका चलते सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना भाव और भावना को रखते हैं और कार्यक्रम सुंदर बन जाता है। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास का जो गतिविधि है हमारा अंचल में हमारा गांव में जो गतिविधि हो रही है, क्यों सीमित रहे अपना गांव और अंचल में, जन जन तक पहुंचे, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रेडियो मधुबन शाखा और राजकीय विद्यालय के मिली सहयोग से आज का कार्यक्रम सुंदर रूप में प्रस्तुति होगा। तो आज हम आबरोड ब्लॉक से सीधा चलते हैं रेवदर ब्लॉक में, जो रेवदर तहसील के बांट ग्राम पंचायत है, उसके अंदर में हमारा इस प्रोग्राम आज आपके पास रखने जा रहे हैं। क्योंकि बांट एक दूरस्थ गाँव है आबरोड से, तो आज बच्चों का आवाज़, विद्यार्थियों का आवाज़, भाव और भावना लेकर पहुँचेंगे। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति सुनेंगे, हमारा होवनहार छात्राएं उपस्थित है, एकता रिया कुमारी और मंजुलता शिवानी इस कार्यक्रम को सजाएंगे, तो उनको स्वागत करते हैं। तो शुरू हो जाए, एक प्रार्थना के रूप में माँ सरस्वती को याद करते हैं। कोई भी कार्यक्रम शुरू करते तो प्रभु याद में, माँ सरस्वती का याद में, अपना कुल देवी कुल देवता, जिसको हम भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी नाम से हम पुकारते, हमारे भगवान कहे अल्लाह कहे खुदा कहे, जो भी नाम से आप पुकारते उनको स्मरण करते हैं, जिसका चलते कार्यक्रम व कोई भी कार्य अच्छा हो जाता है। तो आज विद्यालय में जब पहुँचे तो प्रार्थना सत्र में बच्चे प्रार्थना के रूप में अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। तो एक प्रार्थना सुनते हैं बच्चों से।
1: मेरा नाम एकता कुमारी है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं से पढ़ती हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं बांट से आती हूँ।
2: मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
3: जय

0: ಬಟಕೆವೇ ಕೋರಾದಿ ಕಾಣೆ ಶಿವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತ ಭವಾನಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ವೀಣಾವಾದಿ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर इतने दुरस्त जगह में जब आए तो दुरस्त बच्चों को तंदुरुस्त होकर अपना बात को रखें, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, जो इससे पता चलता बच्चे किस तरह कार्यक्रम को सजाते हैं और धन्यवाद देते हैं. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर.

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए आप सब सुन पा रहे खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि रैबदर तहसील में आते हैं मंडर का आसपास है, तो बहुत दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुनाने के लिए पहुंचे, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब मन का बात सच्चे दिल से गाते हैं समूह रूप में। तो आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी सजा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा पास उपस्थित है आरती और रिंकू, है ना। तो अपना अपना नाम और क्लास और कहाँ से वो चीज बताएंगे और हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे। भाई एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा हो, जो भी अपना अंदर में आता है अचानक में जब आए अचानक में ही एवर रेडी जो है, ना ज़्यादा ना कम वो दे रहे हैं, तो हम बोल भाई ठीक है जितना आपका पास है वो विशेषता गीत का माध्यम से, संगीत का माध्यम से, भाव का माध्यम से प्रकट करिए। तो शुरू।
1: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
3: मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है।
4: मैं मर भी जाऊँ तो वतन याद

0: याद और याद रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। चाहे मैंने पहले भी बताया था भाई, एक अंतरा हो चाहे एक मुकड़ा हो, जो है तो हमारा उससे पता चलता बच्चों का स्वर और लय। तो इस कड़ी को ही और साथ देने के लिए और कुछ छात्रा है तो उनको भी स्वागत करते हैं। तो रेडी बच्चे? ओके, शुरू करिए आप भी।
2: लक

0: दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ, चाहे रिंकू हो, चाहे आरती हो, चाहे सभी जो नाम बताए आपने अपना, तो उन सभी को धन्यवाद देते सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद आप सब सुन पा रहे, खास कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट की आवाज सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमारा साथ बहुत सारा छात्राएं उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और सजबाज होकर अपना स्वर लय को सेट होते हुए आए हैं अपना प्रस्तुति देने के लिए। तो देर किस बात की, एक देशभक्ति गीत हो, क्योंकि भारत देश महान है। जिस गांव जिस अंचल में रहते हैं वो गांव और अंचल भारत में आता है, तो भारत को समर्पित देश को समर्पित एक भक्ति भरा देशभक्ति सुनेंगे बच्चों से। है ना बच्चे, रेडी? सभी अपना अपना भाव को प्रकट करेंगे देश हित में, जन हित में, लोक हित में। तो सुनते हैं

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आज तो बच्चे विद्यार्थियों का आवाज बच्चे के रूप में दे रहे हैं और बच्चे सच्चे होते हैं, चाहे उनका अंदर में जो भी भाव और भावना है देश का प्रति हो, चाहे खुद का प्रति हो, चाहे राज्य के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, चाहे विश्व के प्रति हो, सब में तत्पर रहते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद आप सब सुन पा रहे खासकर रेडियो मधुबन, जो कि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। आज हम दूरस्थ जगह में पहुंचे तो दूरस्थ जगह से आपको कवरेज सुना रहे हैं, तो खुशी लग रहा है क्योंकि कोई उल्लाना न दे जे हमारा पास रेडियो मधुबन पहुंचा नहीं, हमें मंच नहीं दिया, कोई नहीं कहे जे हमें रेडियो मधुबन चांस नहीं दिया, तो कम से कम एक बार तो चांस मिलना चाहिए। उल्लाना नहीं देंगे, है ना बच्चे, आपको मिल रहा है इसलिए आप उल्लाना नहीं देंगे जे हमें रेडियो मधुबन का साथ रूबरू नहीं हुए हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए एक का बाद एक प्रस्तुति है सुनने को मिल रही है और हमारा विद्यार्थियों में खासकर बालिका विद्यार्थी कम नहीं है, हर प्रोग्राम में भाग लेते हैं क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में बालक से बालिकाएं ज़्यादा भाग ले रहे हैं क्योंकि उनका अंदर में ना कोई झिझक ना कोई डर ना कोई भय, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई सजबाज नहीं। अचानक में जब पहुंचे अचानक में एवरेडी का पाठ पक्का करते हैं तो सुंदर प्रस्तुति के लिए तैयार है एक सीख भरी गीत जिसमें पूरा साहस उद्यम उमंग उल्लास को लेकर पहुंचेंगे। तो सभी को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजाने के लिए, शुरू होंगे 1 2 3 शुरू।

क्या बात क्या बात, बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए। और देखिए बच्चों के अंदर में जो विशेषता है, आज रेडियो मधुबन जो मौका दिया वो मौका का फायदा ले रहे हैं और हमें भी खुशी है, बच्चों को एक मंच मिल रहा है और इसका माध्यम से अपना भाव और भावना को प्रकट करते हैं। इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब अभिभावक माता पिता बंधुगण और दोस्त लोग सुनेंगे तो विद्यालय का नामांकन में भी वृद्धि होगा और बच्चों को ओपन राउंड में उनको कोई पूछने के लिए भी, उनका बारे में जानकारी के लिए भी पहुंचते, तो बहुत खुशी लग रहा है। सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद, क्योंकि समय को देखते हुए बच्चों का जो भाव और भावना को, चाहे एक मुखड़ा हो चाहे एक अंतरा हो, उससे पता चलता है कैसे और किस तरह प्रस्तुतिकरण करता है, तो उससे पता चल जाता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और विद्यार्थियों से हम भी विद्यार्थी बन के उनका विद्या का अर्जन का साथ साथ उनका अंदर में जो भाव है, भावना है, संगीत में जो रुचि है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, इस तरह मंच का माध्यम से निखारते हैं। तो और एक प्रस्तुति के लिए बच्चिया उपस्थित है, तो सभी विद्यार्थियों को स्वागत करते हैं। इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, एक को देकर दूसरे भी, सर मैं भी मतलब क्यों नहीं भाई, आज तो चौका छक्का लगाना है, मौका मिला है, मौका का फायदा लेना चाहिए। कभी कभी मिलता है इस तरह मौका, तो आज जब रेडियो मधुबन का टीम पहुंचे हैं तो हमारा अलेक जी जो कि एडिटर भी आए हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनको भी सुनने को मिलता है, सुनाने को भी मौका मिल जाता है। तो सभी को लेकर संगठित रूप में किस तरह बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर रुकना है और किस तरह स्वर और लय के साथ करना है वो भी बताते हैं, जिसका चलते उनको एडिटिंग में दिक्कत नहीं होता है। सभी को एक साथ करके संगठित रूप में एक के बाद एक रिकॉर्डिंग कराए। तो लेते हैं बच्चों से आवाज़ सुनने के लिए, सभी श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनिए अगला प्रस्तुति।
1: तेरा

बहुत खूब बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए एक सीख भरी पूरा त्रिरंगा जो कि देश का झंडा है, तो उनको सलाम करते हुए और देश भक्ति में ओत प्रेत होकर सभी ने अपने प्रस्तुति दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो कि मिरबदर तहसील के एरिया में आता है। तो बच्चे बारी बारी अपना आवाज को बुलंद से दे रहे एक सीख भरी गीत के लिए उपस्थित है। तो जैसे कि नाम है झलक और जयश्री, है ना, झलक और जयश्री को स्वागत करते हैं, जो कि अपना अपना परिचय कौन सा क्लास और कहाँ से वो चीज रखेंगे, है ना। तो रेडी हो जाए, शुरू करें, चलिए देर किस बात की, शुरू करिए।
1: मेरा नाम झलक कुमारी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
2: मेरा नाम जयश्री कुमारी, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट, जिला सिरोही है।

मैं ही ताली बजा दिया आप लोग के लिए, क्योंकि आप तो है ही महान और हमें खुशी है इस तरह प्रेरणादायी सीख भरी गीत का माध्यम से अपना भाव को प्रकट किया। हमारा श्रोता मित्र लिसनर सुन रहे ध्यान से, अपना वॉल्यूम को तेज करते हुए वो भी एक सीख लेकर सुनते हैं। और आप लोग इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से, हर विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हमें बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिकता पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज बांट राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सुन पा रहे हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए अच्छा गीत सुन रहे हैं और रेडियो मधुबन के द्वारा भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणादायी और भक्ति भावना में ओतप्रेत होकर गीत सुनाते हैं हमारा शेड्यूलर बीके शुभश्री बहन, उनको भी स्वागत करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से हम तो रिकॉर्डिंग बाहर से लाते हैं और वो स्टूडियो में रहकर सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, जैसे अभी ब्रेक का पहले में सुन रहे थे, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए साथ दे रहे हैं मंजुल, ये शायद अंतिम प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति में अंतिम आवाज आपके पास हम रख रहे हैं, तो शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
1: मेरा नाम मंजुला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से स्कूल आती हूँ।

ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। हो अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, हो टूटी यारिया मिला दे ओए, उड़ते पतंगों में होने वाले रंगों में जुमेंगे फिर से दोनों यार, उड़ते पतंगों में होने वाले रंगों में जुमेंगे फिर से दोनों यार।

0: टूटी आरिया मिला दे ओए।
1: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इस कड़ी को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम। चलिए इस कड़ी में ही और एक जोड़ देते हैं, जिसको सजाने के लिए मंजुलता और खुशी भी हाथ उठा रहे, तो उनको भी चांस देते, भले एक अंतरा हो चाहे एक मुकड़ा हो, प्रिपरेशन होकर आए तो उनको भी कैसे भूलेंगे। तो आ जाइए, आप भी अपना प्रस्तुति दीजिए।
0: मेरा नाम मंजुला कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट है और मैं बांट गांव से आती हूँ।
2: मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट।
0: मारिया

0: ठीक कोन्या हाल मेरा, हाथ जोड़ू राम दे दे सासा तेरी आई मने। गीता में गाई तने छाती के लगाई मने, जिंद भी गया रे तेरी याद घणी पाई मने। श्याम श्याम राखू तो छाती के लगाई मने, तेरी याद घड़ी माई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रस्तुति में अंतिम रूप में सुंदर लग रहा है, चार चांद लगा दे, 20 लाखों लगाकर आपने स्वर और लय का साथ सुंदर प्रस्तुति दिए। चाहे सीख भरी गीत हो, चाहे भाव विभोर होकर अपना बात को रख पड़े उमंग उल्लास का साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। तो ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांट जो की रेबदर तहसील से आपका पास हम रखे हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का हुनर को आज आपका पास रखें। सुनते रहिए, सभी को पुनः नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती है? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए। और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बी के शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया। और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
2: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था, और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी अच्छा. कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए, और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था, और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया, तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथारसिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्हें कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में एक ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगे, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल

0: बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनके कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और अच्छा। तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
1: और हार नहीं मानता
0: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
1: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई, आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
0: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
1: जी जी जी,
0: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
1: अच्छा।
0: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहाँ जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहाँ की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे, तो वो फिर बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा था। तो वो सारी जो चीजें थी तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहाँ की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे, तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं। इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी। तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
1: नजर और नजरिया जो आपने कहा।
0: बिल्कुल हाँ,
1: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहाँ से लिखन की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हो?
0: क्या हुआ था ऋषि जी, कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं, मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी और मैं बहुत छोटी सी थी। तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी, वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा। तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्चे क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लाइट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं। तो सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे। तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब और तो सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई। तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से। तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए। तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
1: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
0: जी।
1: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना, किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
0: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लिखता है, लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती है। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को, तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे, और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्ति बोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है। तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है, कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता, जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते

0: ये ना बता, जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी, मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप, तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं, मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा। तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से, मक्कार हो जाओ, क्या करें, इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
1: वाह वाह वाह।
0: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, तो जब वो 5 साल की थी ना, तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा, वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे, और मुझे बहुत मतलब, तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी पे।
1: प्लीज प्लीज, जरूर जरूर।
0: तो क्या सपने बन गए बॉन्जाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ, करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा, बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत, या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बॉन्जाई, बन जाते हैं बॉन्जाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बॉन्जाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका। उसने टटोला खुद के वजूद को, महसूस किया अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका। एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी। यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्जाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली। क्या बोला था इसमें आएगा, सुबह की सुहानी बयाज सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
1: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे, इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
0: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और 4th ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा।

0: बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है. तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है. तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी. तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है. तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है. तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है. तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है. और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूँ, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था. तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है.
1: क्या बात है. अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया. क्या बात है. तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
0: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ.
1: अच्छा,
0: ठीक है. वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है. और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर.
1: जी.
0: तो मुझे कहते कि थोड़ा ना थम थम के
1: आराम से,
0: है ना. तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं. और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ. अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई. ये बहुत होता है आरुषि जी. मेरी तो आपको बताऊँ, ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कह लिया सुनो द्रौपदी श्रेष्ठ उठा लो अपना आएंगे गोविंद. ये मैंने लिखी थी कविता.
1: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के किसी
0: बदल के, और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया. तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी. अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को. हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को. एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी. तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो.
1: बिल्कुल.
0: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था. लेकिन खैर, उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी, तपस्या वाला था वो. क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में. अब मैं सीरियल का नाम ही पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते. तो उस पर सीरियल बन गया, और वो मेरी कहानी की चोरी थी. तो खैर, मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में, मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ. पर ठीक है, क्या किया जा सकता है. तो बहुत कुछ होता है. लेकिन और भी, जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो.
1: जरूर जरूर. और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके. हाँ. तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप कोई.
0: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना, कि मतलब सुनो द्रौपदी शेर उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब अब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा. तो ये एक तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना. कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने किरदार, ये देखिए, जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना. ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में. तो मेरा शीर्षक भी है मुर्दे इतिहास में लिखते, कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना. तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना. कई लोग कहते होता ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं. आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे. तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर, कामयाबी की शान में रखना. हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं. और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना. अपने दिल और ध्यान में रखना. और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं. मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है. तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना. और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं. तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे. तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना. और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और ये कि कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की. कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना. तो आपने जैसे कहा तो मेरी कहानी थी बेटी
1: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा. और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है. बहुत सारी जो चीजें,
1: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है. तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं. फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है.
1: अच्छा.
0: आपकी और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है. और कि मतलब अब की बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था. तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं. तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जा करके भी एक घर संभालना है. तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ. बहुत बदलना पड़ता है. तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा है? मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
1: अमूमन सभी सोचते.
0: तो मैंने भी सोचा था. बोले अच्छा. तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया. मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए. बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता. मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है.
1: और इससे पहले शायद वो,
0: हाँ वो, तो वो
1: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे.
0: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितने अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
1: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना. और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते हैं. तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
1: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से. मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पाए.
0: चलिए वही वाली बात. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
1: बदलाव कितना
0: उसको समझना चालू कर दिया. तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया. और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे. हमको कभी पता, आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
1: लड़का और लड़की वाला.
0: हाँ लड़का अच्छा. लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादाजी ने, ना पापा ने, मम्मी किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
1: अच्छा कि हाँ. बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली.
0: हाँ
1: की.
0: तो उन्होंने हाँ कहा. और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात.
1: हाँ,
0: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगी, छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही. दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
1: क्या बात.
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते कि उन्हें अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी
1: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना करना एक सीख. क्या बात है, मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है. तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां. तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे.
0: बिल्कुल सही बात है जी,
1: ये पढ़ना चाहिए. और जी
0: बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से कि पुस्तकें सबसे अच्छे दोस्त होती हैं. और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं और खास करके बच्चों के माता पिता जाते हैं. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती है, ठीक है, वो अंग्रेजी में पढ़ती है लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं. और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा. ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई, मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है. जो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है. कई बार
1: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का. अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं. तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है. साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
1: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए.
1: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें.
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए. और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको, उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी. तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी, एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे. तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे, तो बोले नहीं आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा. आप हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को. बोले क्या किया आपने इतना सब लिखा, बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे. तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें. और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप AI दे देता है, गूगल को पूछिए,
1: डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी.
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में. अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
1: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है. तो जिसमें खुद की रुचि हो, बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचें, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं,
1: कुछ पढ़िए।
0: कहते बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
1: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
0: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
1: हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है, तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का। फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का से हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम, वो ये रेशमी और ब्राउन कलर के वैसे सब, तो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता। तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती है कि उसके सिर पे बाल नहीं है, क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ आ गए, तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी आज चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है, मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं, और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही हूँ वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं, कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए। तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है। जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती, सबको मिलती, सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी, मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब वो लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
1: ओके।
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, अच्छा हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उसमें मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है।

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग। कैसे

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला था
0: वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता ये सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ न कुछ बदलाव. और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिखकर भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: अलका जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया तो आवाज

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

ओम शांति। आज है 8 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बाबा कहते हैं शिव बाबा पढ़ाने आए हैं हम बच्चों को, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है तो कितना नशा रहना चाहिए इस पढ़ाई का भी। बाबा कहते दुनिया में जैसे कोई डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं तो भी उन्हें नशा रहता है, तो तुम बच्चों को तो कितना नशा रहना चाहिए। इस पढ़ाई में तुम्हें श्रीमत मिलती है तो श्रीमत में हमेशा कल्याण समाया हुआ है, ये श्रीमत ही तुम्हें ऊंचते ऊंच बनाने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें एक्यूरेट श्रीमत पर चलना चाहिए। साथ ही मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनने की, ये नहीं कि नशे में रहना माना कोई देह अभिमान में आ जाना। बाबा कहते हैं यहां बाबा आए हैं हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाने। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना बाबा को याद करना सहज होगा और याद से ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए, नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। उत्तर है अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा, तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे, जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहे इसीलिए ये ईश्वरीय पासपोर्ट अपने पास निकाल करके रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर में राजाई पोशाक वाला चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र। आज की मुरली से पहले गीत बजा है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा, अब भक्ति मार्ग के घोर अंधेरे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता, यहां बैठे हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली है। जो व्यक्ति बार बार अपने आप को समझता जाएगा, स्मृति में लाएगा, वह स्वरूप बनता जाएगा, वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त कर ली। तुम यहां बैठे हो जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं, यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। जैसे आज और कल की बात है, यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है, हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा।
दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्म अभिमानी बनो। इस पढ़ाई में मुख्य है आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है मैं यह बन रहा हूं। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे, असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहां कितने पतित मनुष्य है। शकल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हमारे में कोई गुण ना ही। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। बाबा कहते ये पता नहीं कि कब जाएंगे, चाहना जरूर है। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको श्रीमत दे रहे हैं, बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। इस पढ़ाई का आधार है श्रीमत। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रिस्पॉन्स दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। साधारण चित्र और राजाई का चित्र साथ निकालो। कहीं जगह देखा है दादियों का ये चित्र जिसको बाबा पासपोर्ट कहते हैं, तो ये चित्र बने हुए हैं।
मम्मा बाबा के भी है, दादी जी के, गुलजार दादी के, जानकी दादी के, सबके चित्र देखे हुए हैं। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं, राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो, यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीख डबल सिर ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे, हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, बल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं, विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएंगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, फिर वो पासपोर्ट बना उसका नहीं रहेगा। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा। हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। सोचेंगे हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं, ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो, ये राजयोग से स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही हो उच्च पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े हैं कि हम नर्कवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहां जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे, अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया कौन बनाएगा, भगवान वाच। मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूं, गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है।
एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अभी ये हिले तो हलचल मच जाए, इसलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं हिलेगा, आगे चल होने का है, लेकिन ये भी भविष्यवाणी कर दी कि आगे चल सबके तख्त हिलने हैं। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो, संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मातन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं, इसमें वह तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिंस को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। बाबा कहते गाया जाता है गुरु माता, तो माता गुरु कब होती है ये तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है, कलयुग में ही गुरु का सिलसिला चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो माताओं को इतना ऊंचा बाबा ने उठाया। शुरू भी ऐसे होता है, सेंटर्स के लिए भी कहते ब्राह्मणी चाहिए। भाई बहने कहते हैं हमारे सेंटर के लिए अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। तो क्या कहते, नहीं बाबा माता चाहिए, ये भी ठीक है, मान देते हैं। बाबा कहते माताओं को मान देते हैं, आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। लंगड़ा मान माना, आज मान देंगे कल सीट से उतर जाएंगे तो बस गाली भी देने लग पड़ेंगे। स्थाई किसको मिलता नहीं है, इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। बताओ कितना बाबा हम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा राज्य भाग्य दे रहे हैं। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। मुख्य बात है कि सदा नशा रहे, खुशी में रहे, और उसके लिए विभिन्न युक्ति बाबा बता रहे हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए, अहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें, तदबीर माना पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। बाबा तो तदबीर बताते हैं, तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी बात का पुरुषार्थ या मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे। बाबा कहते अभी तुम इतना समझाते हो तो भी नहीं समझते, लेकिन आगे चल करके सब समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए, इसलिए अभी नहीं समझेंगे। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्तिधाम। एक तरफ मुक्तिधाम का चित्र, एक तरफ सुखधाम का चित्र। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं
निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली है, परम धाम की रहने वाली है। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूं, कल्प बाद फिर आऊंगा, हर कल्प कल्प आएंगे। भारत ही पैराडाइज है, कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व पैराडाइज था, ऐसे कहते हैं। 3000 और 2000 साल बाद अभी फिर से वही स्थिति आ गई है। अब नहीं है, फिर होना है तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। बाबा सारे सृष्टि चक्र की समझ हमें यथार्थ रूप में दे रहे हैं, तो बाबा कहते ये सारी समझ चाहिए कि स्वर्गवासियों की स्थापना कैसे होती है, नरक का विनाश कैसे हो रहा है, तभी तो हम किसी को भी यथार्थ रीति समझा सकेंगे, नहीं तो कैसे समझाएंगे। इसीलिए बाबा कहे खुद समझा होगा तो नशा भी चढ़ेगा और खुशी भी रहेगी, और जब उस नशे से समझाते हैं तो फिर कोई की ताकत नहीं कि वहां कोई प्रश्न करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना। तो आज की जो बाबा की मुरली पढ़ाई के ऊपर थी, एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है, अपना पासपोर्ट बाबा कहते बता दो ताकि नशा रहे अंदर में कि हम ये बनने वाले हैं। पढ़ाने वाला श्री श्री है, उसकी श्रीमत हमें मिल रही है, उस श्रीमत पर निरंतर चलना है, उसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। और उस पढ़ाई से क्या बनेंगे, क्या प्राप्ति होगी, बाबा कहते उसका भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, तभी वो नशा स्थायी रहेगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता, पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे, पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगे। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो, सदा स्थित रहो। आज का स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो,
उसके अंतर्गत बाबा कहते जैसे गायन है कि भाग्य विताता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो जो ब्रह्मा का काम वो ब्राह्मणों का काम। दुनिया वाले कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो आप भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते हो। जिसे भाग्य प्राप्त हो जाए उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो, भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो। अच्छा,